भी लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस फुर्ती की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है। इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए, लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है।
इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरेंस और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी है, जैसे मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खराटे। एक को खराटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े इनके फायदों को जानें और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है। उसी प्रकार इसका उल्टा, यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है या हम कहें ऐसी अवस्था है जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्रचित होकर के हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने
दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो हमें सामने अपने ईश्वर अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हों, और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

अपनी अपनी सारी मन की चित्तियों को शांत करते हुए, श्वासों को एकत्र करते हुए, अपना पूरा ध्यान आती जाती पर लगाते हुए, एकाग्रचित होकर के लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे।

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे तो हमें कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमें श्वास लेने में, अगर हमने अधिकतर लोगों को देखा है कि वह जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं और प्राणायाम के बाद में उन्हें कुछ दिक्कतें इस प्रकार की होने लगती हैं, जैसे तेज धूप में निकल के जाते हुए उन्हें श्वास का जो चलन है वह अपने आप में इस तरीके से प्रतीत होगा जैसे जल्दी जल्दी श्वास चल रही है, या श्वास भारी होने लगती है, या यदि हम भोजन करते हैं उसके बाद श्वास का भारीपन हो जाना, फेफड़ों में भारीपन लगना। तो हम पहले से ही यह सावधानियां करेंगे तो हमें यह दिक्कतें नहीं आएंगी। श्वास अपने ही स्वतः जिस तरीके से आपको लगे कि हम यह हमारे लिए सावधानी और हमें आसानी होगी, उस तरीके से हम श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। प्राणायाम को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं। इनहेल यानी श्वास लेंगे, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, यानी हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ते समय हम रेस्ट बोल रहे हैं, यानी हमें आराम की स्थिति में आ जाना है। यह प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इस प्राणायाम में श्वास की गति नियंत्रित रूप से सामान्य स्थिति में होनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी किया। अगर आपको समय का बोध है, यानी समय बोध का मतलब हुआ हम अपनी घड़ी में 20 मिनट यानी 15 मिनट यानी 10 मिनट यानी 5 मिनट, हम अपनी सुविधा अनुसार 5 मिनट से शुरू करते हुए एक टाइमर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम टाइमर लगा सकते हैं अपनी मोबाइल में, अपनी घड़ी में, ताकि आपको यह प्राणायाम या कोई भी आगे प्राणायाम करने में सावधानी और सुरक्षा एवं आपको आसानी होगी। जैसे हमने अगर टाइमर लगा दिया तो वह टाइमर जो आपने टाइम सेट किया है उसी पर करके वह टाइमर स्टॉप होगा और आपका वह प्राणायाम एक नियमित रूप से, एक नियमित गति से होता रहेगा। बच्चों के लिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 2 मिनट से हम करेंगे, जैसे कोई भी प्राणायाम हो, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान योग मुद्रा हमने आज टॉपिक लिया हुआ है, हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ध्यान और भस्त्रिका, यह दोनों प्राणायाम हम बड़ों के लिए 5 मिनट जैसा कि हम लोगों ने अभी किया, और बच्चों के लिए 2 मिनट। हम फिर से पुनः अपनी उसी स्थिति में आएंगे। जैसे श्वास हम ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, तो आइए अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी शरीर से लेकर के, रोगों को लेकर के होती रहती है, जैसे दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह आपकी एकमात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। और यह प्राणायाम करने से जितनी भी आपको दिक्कतें होंगी श्वास से रिलेटेड, हम श्वास ले रहे हैं, श्वासों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह आपकी दूर होगी। जैसे फेफड़ों से संबंधित हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी हमें जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हमारी भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से करने में
करते रहने से दूर होती है। सूक्ष्म व्यायाम करते समय यदि अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम को उस गति में हम समाहित कर रहे हैं तो हमें इसका लाभ पूर्णता दुगना होकर के मिलने लगता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे हमने आपको अभी बताया कि श्वासों से नियमित रूप से करने से श्वासों की गति को संचालित करने के लिए यह प्राणायाम है, तो हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम को आपके सामने, आपके साथ में हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आज आपने यह अभ्यास हमारे साथ किया और यह अभ्यास आपको समझ में आया होगा और हम इसको नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहेंगे। और यदि आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने में कोई भी परेशानी हो तो आप जैसे प्रश्नोत्तरी में आप हमसे इनबॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने आज बात करी भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में, तो कुछ मुख्यतः बातें ऐसी

प्रह रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भगतिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान् मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसम्।

रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदयति भाए। तब लगी मोहि परखियो तुम भाई सही दुख कन्न मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतई देखी होई ही काज मोहि हर्ष विसेखी। एकई नाई सबन को माता चलियो हर्षेधर रघुनाथा। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ियो तायु पर। बार बार रघुवीर सवारी तरके पवन तन बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता चलियो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोग रघुपति कर बाणा एही भांत चलियो हनुमाना। चलनिधि रघुपति दूत बेचारी तई मैं ना कहो ही समहारी।

मोई दीन आहारा सुनत बचन के भवन कुमारा राम काज करी फिर मैं आवाऊ सीता के सुर प्रभु सुनावाऊ अव तव बदन पैटियो आई सत्य कहूं मोरि जान दिमाई अब न्यू जतन दे नहीं जाना रस्य मोई कहे हनुमाना योजन भरते ही बदन पसारा कब

रूप भवन सुदलीना बदल पैट पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताई सिर नावा मोई सुरन जय लाग पटावा बुद बल मर्म तोर मैं पावा राम का सर्व करी हूं तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान निश्चर एक सिंधु मारही करि माया नव के खगही जीव जंतु जय गगन उड़ाई जल बिलोक तिन के परछाई गाय छा सक सोना उड़ाई ए बिन सदा गगन चरखाई सोई चल हनुमान तय कीना दासु कपट कपि तुर तय चीना ताही मारि मारु सुत बीरा बारिद पार गयो मत धीरा कहां जाय देखी वन शोभा गुंजत चंचरीक मद लोभा नाना तर फल फूल सुहाए खगमरग वृंद देख वन भाए शैल विशाल देख एगे आगे तापर धाय चढ़ो वह तागे मानक झुक बिकै अधिकाई प्रो प्रताप जो कालई खाई गिर पर चढ़ लंका दे देखी कहीं न जाय अति दुर्ग विसेखी अति उतंग जल निचो पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मन कर सुंदर आयत नाग नौ चौ हट हट सुबट बीति चार पुरभो विधि बना गज बाज खच्चर निकर पद रथ बरुथन को गने बहु रूप निश्चर जूत यदि बल सेन वर्णत नहीं बने बल भाग उपवन बाटिका सर कूप वापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल शैल समान यदि बल घर जही नाना खरन बिरई बहुविध एक एक तर जही करि जतन भटकोटिन विकट तन नगर चौद सिर छहि कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहि हे लाग तुलसीदास इनकी कदा कछु इक है कही रघुवीर सर तीरथ सरी ऋण त्याग गति पय हई सही पुर रखवारे देख बहु कभी मन की विचार अतलग रूप धरो निसी नगर करो पैसार मसक समान रूप कपि धरी लंकई चलो सुमिर नर हरी राम लंकिनी एक निसी चरी सुख चल सिमो निंदरी जानी नहीं मर मो सट मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुटका एक महा कपि हनी रुदिर भवत धरनी धनमनी उन संभारी उठी सो लंका जोरी पान कर भी नहीं ससंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीना तरत विरंच कहा मोई चीना विकल होस तय कपि के मारे तव जानस निश्चर संघारे।

राजा गरुड़ सुधारिपु करै मिताई गोपद सिंधु अनलस तुलाई गरुड़ सुमेर रेणु समताही राम कृपा कर चित वाजाई अतिलघु रूप धरयो हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवाना मंदिर मंदिर पति कर शोधा देखे जयत अग्निद जोधा गयउ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात सुनाई सैन के देखा कपिते ही मंदिर मौन देख वै देही भवन एक मुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा पर न जाई नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराई लंका निश्चर निकर निवासा यहां तहां सज्जन करवासा हनुमउ तर्क करे कपिलागा तेही समय विभीषण जागा राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना ऐसन हट करे हो पहचानी साधु ते होइ न कार जहानी विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उड़त आए हरि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहू निज कथा बुझाई की तुम हरि दासन मैं कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोई करण बड़ भागी अब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम सुनौ पवन सुत रहनी हमारी जिमे दसनन मौ जीव विचारी तात कबो मोई जानिए ना था करि है कृपा भानुकुल ना था आमस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोई भाव रोस हनुमंता बिन और कृपा मिले नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोई दर्श हट दीना सुनौ विभीषण प्रभु कह रीति करै सदा सेवक पर प्रीति भाव कवन में परम कुलीना कवि चंचल सब ही विधहीना रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा असमय दम सखा।

रामा बाबा अनिर्वाच्य विश्रामा उन सब कथा विभीषण कही जय वीर जनक सुदाता रही। अब हनुमंत कहा सुनिभाता देखी कहो दान की माता जगत विभीषण सकल सुनाई चले भवन सुत विदा कराई हर सोय रूप गये पुण्य तैवा बने अशोक सीता रह जयवा देख मन मन कीन प्रणामा बैठे बीत जात निस जामा ग्रस्त शीश जटा एक बैनी जबत हृदय रघुपति गुण श्रेणी।

चुन चरी करू पन मोरा एक बार भी लुक ममियोरा रण धरी उठ के तवे देही सुमिरिय वदपति परम सनेही सुन दस मुख ज्योत प्रकाशा कब हो किनल नी करे विकासा असमन समझ कहत जाने की खल सुध नहीं रघुवीर बाण की सट सोने हरियाने मोही अदम निलज लाज नहीं तो ही आप ही सुनिखर ज्योत समय रामई बाण समान हर्ष वचन सुनिकाड़ी असी बोला अति किसियान सीता ते मम गति अपमाना कटियो तो सिर खटिन कृपाना नाहि तो शब्द मानु मम वाणी समक होत नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रोभुज कर कर समद सकंदर सोभुज कंठ की तवी अस गोरा सुनसट अस प्रमाण पन मोरा चंद्रहास हर मम परिताप रघुपति विरे अनल संजातम शीतल निषद बैस वर धारा के सीता हर मम दुख बारा सुनत वचन पुनि मारन धावा मैतनिया कई नीति बुझावा कैसी सकल निश्चन बोला।

राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका सबने बोल सुनाए से सपना सीता ही सेव करो हे दीपना सपने बानर लंका जारी जातु धान से ना सब मारी खरे आरूढ़ नगंद सीसा मंडित सिर खंडित भुज वीसा हे विद सोद छिंद से जाई लंका मनो विभीषण पाई अगर फिरी रघुवीर दुहाई तपरो सीता बोली बठाई ऐ सपना मैं कहूँ पुकारी हुई सत्य गए दिल चारी आसुभ जन सुन दे सब डेरी।

बात करें मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी, सुनत बचन पद कही समझाए, सि प्रभु प्रताप बल सुज सुनाए, सि जस नाल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी, ऐसी था विधि बाप तिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला, देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अपनी नयावते कौतारा, पावक में सही सवत नया घी, मानो मोहि जान हत भागी, सुने विनय मम मिटव अशोका, सत्य नाम करो हर मम सोका, नूतन किसले अनल समाना, दे अग्नि जन करे निदाना, परम विराकुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता, कब कर हृदय विचार, तीन मुद्रिका डार तब, जन्म सुख अंगार, तीन हर्ष फुट कर गए हु, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, चकित मुदरी पहचानी, हर्ष विषा दे गए खुलानी, जीत को सके दे रघुराई, माया ते अस नहीं रच जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई, श्रवणामत जय कथा सुहाई, कई सो प्रकट होत किर भाई, तब हनुमंत निकट चली गए हु, फिर बैठी वन विस्मय भयो, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य जपत करुणा निदान की, जय मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम कोई सही दानी, नरवान रहे संग कहो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, सबके वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास, हर जन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल का बलिबाड़ी, घोड़त बिरह चल दे हनुमाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुसहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कब के हेत धरी निठुराई, सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबो किशोर करत रघुनायक, कबो नयन मम शीतल ताता, हुई

दुख दुखी सुख पान खेता जन जननी मानो जी ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर अस कही कभी गद गद भयो भरे बिलोचन नीर कहो राम भी योग तव सीता मोको सकल भय विपरीता अवतर किस लय मनो करसानो काल निश्वासम निस्स शिवानु कबले विपिन कंद बन सरसा बारे तपल तेल जनि बरसा जय हित रहे करते पीरा उरक श्वास संत्र वि सवेरा कहो ते कछु दुख घट होई का कहो ये जान न कोई अत प्रेम करो मम यर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रह तोय पाई जान प्रीति रस इतने उमाई प्रभु संदेश सुरत बह ते ही मगन प्रेम तन सुध न ते कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदा रघुपति प्रभु ताई सुनिम बचन तजो कदराई निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु जननी हृदय धीर धरो चरे निसाचर जानु जौ रघुवीर होत सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम मान रवि कुए जान की तंबरुत कहु जात दान की अभय मात मैं जाऊं लवाई प्रभु आय स्ने राम दुहाई अचुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित अय है रघुवीरा शरमार तोय लय जय है त्रिपुर नारदाद सु गई है सुत कवि सब तुम्हें समाना जात उधान अति बटवल मोरे हृदय परम संदेहा सुनकर प्रकट कीन निर्देहा करत भूधरा का शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब हो पुन लग रूप पवन सुत लय हो सुन माता सा कामरक नई बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप दे गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल मन संतोष सुनत कवि बाणी भक्ति प्रताप तेज बल सानी आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निसुद हो करो बहुत रघुनायक जो करो कृपा प्रभु सुनी काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार ना स्पर्श सीसा भोला वचन जोर कर कीसा अब कत कत भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता सुनो मात मोहि अस्य भूखा लागि देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करे विपिन रखवारी परम सुभद्र रजनीचर भारी दिन कर वह माता मोहि नाही जो तुम सुख मानो मन माई देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ रघुपति चरण हृदय धरी पात मधुर फल खाओ चलो नाय सिर पैठो बागा फल खा स्तर तोरे लागा रहे तहां बहु भट रखवारे कछु मारस कछु जाय पुकारे नात एक आवा कवि भारी तेय सुख वाटिका उजारी हाय स्फलियर बिटव उबारे रक्षक मर्द मर्द मई डारे रावण पटे बट नाना तिनै देख कर जेउ हनुमाना सब रजनी चर कवि संगारे गए पुकारत कछु अद मारे उने पटे उते अच कुमारा चला संग ले सुबड़े अपारा आवत देख बिटव गई दर जा ताय निपात महादुनि गर जा कछु मारस कछु मर देसी कछु मिलिय सी धरि धूर कछु पन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर सुन सुत बदलं केसरी साना पटे से मेघनाथ बलवाना मार्स जन सुत बांध सिताही देखिए कभी कहा खरी आई चला इंद्रजित अदलित जो

ब्रह्म मान कपि कौते मारा परते उबार कुटुक संहारा हे देखा कपि मूर्छित भय हो नाग पास बांधे सिले गये हो रास नाम जप सुनो भवानी भव बंधन काटे नर ज्ञानी वासुदूत की बंतर वावा प्रोकार जिले कपि बनावा कपि बंधन सुन निश्चर धाये कौतुक लाग सभा सभी आए असुमुख सभा देख कपि जाई कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई कर जोरे सुरत से विनीता भक्ति विलोक सकल सविता देख प्रताप न कपि मन शंका जिमि है गण मन करुण असंका कपि विलोकित सानन बेसाखी दुर्वाद प्राण कह बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया जाके बल बिरंच हरी सा बल सुजत हरद सीसा जा बल सीस दरस से सानन अंड कोश समित गिर कानन हरई जो विविध दे सुर त्राता तुमसे सटन सिखा वंदाता हर को दंड कटेंजे बन जाती समेत नव दल बद गंजा हर दूषण तिसराय रुबाली बदे सकल यतुलित बलशाली जाके बल्लव लेस तेज दौ चरा चर झारी वासुदूत मैं जा करी हरिया ने उप्रिय नारी जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सन परे लड़ाई समर बाल सन कर जस पावा सुन कवि वचन बेस बेहरावा खायो बल प्रभु लागी भूखा कवि सुभाव ते तोरे रूखा सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार गामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे मोहि न कछु बांधे कै राजा कीन चाहो निज प्रभु कर विनती करूं चोरी कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन देखो तुम निर्कुल बिचारी भ्रमत भजो भगत बहारी जाके डर अति काल डराई सोसुर असुर चरा चर खाई आसो बैर कबो नहीं की जय मोरे कहे जान की दी जय प्रणत बाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण पव राख है तवे अपराध बिसार रामचरण पंकज उर्धर लंका अचल राज तुम करहु शुभुलस्त जसु विमल भयंका तेई सज मौजन होई कलंका राम नाम बिन गिरान सोहा देख विचार त्याग मद मोहा बसनहीन नहीं सो सुरारी सभूषण भूषित बर नारी राम विमुख संपति प्रोथाई जाई रही पाए बिन पाई सजल मूल जिन सरतन नाही वर्ष गए पुनि तबई सुखाई सुंदर कंठ कहो पन रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकई न राख राम कर द्रोही मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तवि अभिमान भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान जद भी कही कभी अतिहित वाणी भक्ति विवेक विरत्न सानी भोला भी असि महाअभिमानी मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी नत्तु निकट आई कल तो ही लाग सी अदम सिखावन मोही उल्टा हुई ही कहीं हनुमाना मतवम तोर प्रकट मैं जाना सुन कवि वचन बहुत खिसियाना बेगिन हरो मोड़ कर प्राणा सुनत निसाचर मारण धाये सचवन सहित विभीषण आए नाय शीश कर विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता आन दंड कछु करी गुसाई सब ही कहा मंत्र बल सुनत बेस बोला दस कंदर

देखो मैं दिन की प्रोताई, वचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, धातु दान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सुई रचना, रहान नगर बसन गतेला, बाड़ी पूछ कीन कवि खेला, कौतुके आए पुरवासी, मारे चरण करी मोहासी, बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ पुजारी, आवक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, विभुक चढ़ो कवि कनक अटारी, भई सबीत निसाचर नारी, हर प्रेरित दे अवसर चले मरत उनचास, अट्ठास करी गर जा कभी बड़ लाग आकाश, देह विशाल परम हर आई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई, जरय नगर मां लोक विहाला, जबट लबट भो कोटि कराना, आत्मा तहां सुनिए पुकारा, ऐ अवसर को हमें उबारा, हम जो काय कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर ये नाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, आकर दूत नल जे सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु बजारी, पूछ बुझाई खोई शम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर, मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, कहो तातिस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, तात सुख सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस मऊ नाथ नयावा, तो पनि मोहि जीत नहीं पावा, औ कभी कहि विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहते अब जाना, ओहि देख शीतल भई छाती, पुनि मोह दिन को सोई दिन राती, जनक सुतई समझाई करी, वो विधि धीर दीन, चरण कमल सिर नाई कपी, गवर राम पाकीन, चरत महादुनि कर जसे भारी, गर्भ सबई सुनि निश्चर भारी, नाग सिंधु ए पार आवा, शब्द किलकिला सबई सुनावा, हर्षे सब लोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिंद बजाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री राम चंद्र कर काजा, मिले सकल यति भय सुखारी, तलपद मीन पाव जे भारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कैत नवल इतिहासा, तव मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधु बल गाए, रखवारे जो बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार अनस भागे, राई पुकारी ते सब, बने उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कवि, करि आए प्रभु काज, जौ न होत सीता सुत पाई, मधुबन के फल सकई की खाई, ऐ विधि मन में चार कर राजा, आए गयो कब कवि समाजा, आई सवन्ना वापस सीसा, मिलु सबर अति प्रेम कपीसा, ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कर बाबा काज विशेखी, नाथ काज की न्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, उन सुग्रीव बहुरते मिले हो, कपिन सहित रघुपति पै चले हो, राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेखा, पटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन।

आई सदा शुभ कुशल निरंतर स्वर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विदेपी नई गुण सागर तासु जद्रय लोक उजागर प्रभु की कृपा वे सब काजु जन्म हमार सुफल बाजु नाथ पवन सुत कीन जो करनी से सो मुख न जाई सो बरनी अवंतन की चरित सुहाए जाम बंत रघुपति सुनाए सुनत कृपा निधि मनियति भाए पुनि हनुमान ऋषि लाए भावतात की भात जानकी रहत करत रक्षा सुपान की नाम पा हरु दिवस निसी ध्यान तुमार कपाट।

प्राण करे हटि बाधा गिरे अग्नि तन धूल समीरा श्वास जरई छन माय शरीरा नयन सवे जल निहित लागी जरे न पाव देह बिरहा की सीता के यति विपति विशाला विनय कहे बल दील दयाला निमिष निमिष करुणा निधि दाई कलप संभीत मेघ चले प्रभु आनि है भुजबल खल दल जीत सुन सीता दुख प्रभु सुखे ऐना भरियाए जल राजीव नैना चन काहे मन मंगत जाही सपने बूझ विपत गीता ही कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई एतिक बात प्रभु जातु धान की रिपुई जीत यानी बिजान की सुन कपि तो समानी उपकारी नहीं कोई सुर नर मुन तन धारी अति उपकार करो का तोरा सन्मुख होइ न सकत मन मोरा सुन सुत तोई ऋण मैं नाही देखो कर विचार मन माही मन पुन कपि चित सुर काता लोचन नीर पुलक यति गाता सुन प्रभु वचन बिलोक मुख गात हर्ष हनुमंत धरण पर प्रेमा कुल त्राय त्राय भगवंत बार बार प्रभु चहे उठावा प्रेम मगन ते उठव न भावा प्रभु कर पंकज कब कैसी सा सुमे सुदसा मगन गौरी सा सावधान मन कर पुण्य शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा कौ कपि रावण पालित लंका के विदित हे दुर्ग अति भंगा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला भजन विगति अनुमाना साखा मृके बड़ मन स्वाई साखा ते साखा पर जाई नाग सिंधु हाटकपुर जारा निश्चर गण विद विपिन उजारा सोसव तो प्रताप रघुराई नाथ नग चुमोरी प्रोताई ताको प्रभु कुछ अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तव प्रभाव बड़वा नल ही जार सके गल तूल नाथ भगत यदि सुख दायनी देव कृपा कर अन पायनी सुन प्रभु परम सरल कपि वाणी एवं अस्तु तव कहे भवानी उमा राम सु भव जय जाना ताई भजन तई भावना आना संवाद जा सुरिया।

सुरत कपिन कहो आयुष बीजे कौतुक देख सुभन बहु वर्षी नवते भवन चले सुर हर्षि अभिपति बेग बुलाए आए जूतब जूत नाना वर्णी अतुलवल वानर बालु बरूत द्रौपद पंकज ना वही सीसा गर्जय बालु महाबल की सा देखी राम सकल कपि सेना चित कृपा करे राजीव नैना राम कृपा बल पाए कपिंदा भयो पच्छ जत मनो गिरिंदा हर्ष राम थव कीन बयाना सगुन भय सुंदर सुबनाना दास सकल मंगल मैं कीति दासु बयान सगुन ये नीति रौ बयान जाना भय देही फरक बाम अंग जन कई देही जोई जोई सगुन जान की होई अजगुन भयो राव नहीं सोई चला कटुको भर नहीं पारा गर्जय वानर भालु अपारा नखिया विद गिरि पादब धारी चले गगन में इच्छा चारी घेरी नाद भालु कपि कर ही डगमगाए दिग्गज चिक्कर चिक्करा ही दिग्गज ढोल मई गिरि लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाद किन्नर।

रसायन बुनि बुनि कमट पृष्ठ कठोर सोख में सोहई रघुवीर रुचिर प्रयान प्रसिद्ध जानी परम सुहावनी जन कमट कर पर सर्प राज सुलिखते हुए चल पावनी कई विध जायक पानी दी उतरे सागर तीर जैते लागे खान फल भालू पुलक में वीर वहां निसाचर रही से शंका जब ते जार गयो कपि लंका निज निग्रह सब करे बिचारा नहीं निश्चर पुल के दुबारा जासु दूत बल भरने न जाई ते आए पुर कवन बलाई दूतन सन सुनि गुरजन वानी मंदोदरी अधिक गुलानी ऐसे जोर कर पद पद लागी बोली वचन नीति रस भागी अंत कर शहर सन परि हरियो मोर का अति हिति हे धरियो समझत जासु दूत कई करनी गर्भ सबई रजनी चर धरनी आसुनार ने सचिव बुलाई पटवो कंत जगहो बलाई सब कुल कमल विपिन दुख दाई सीता सीत ने सांस में आई सुनो नाथ सीता बिन दीने इतना तुम्हार शंभु अज कीने राम बान आई गण सरस निकर निसाचर भेक जब ले गसन तब लगी जतन करो तज ते श्रवण सुनी सड़ता करी बानी बेसा जगत पिदे अभिमानी सब स्वभाव नारी कर साचा मंगल मऊ में बनी अति काचा जो आवे मर कट कट काई जिए बेचारे निश्चर खाई हम पाई लोक बजाकी त्रासा ता सुनार सबित बड़हासा असकई व्यसिताई उर लाई चले सवा ममता दिखाई मंदोदर हृदय कर चिंता भयो कंत पर विध विपरीता बैठे सभा कबर सिपाही सिंधु बार से ना सवे आई मुझे सचिव जित मत कहू ते सभा से मष्ट करी रहे जिते उस तो शमनाई नरवा नर के लिखे माई सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले बै आस राज धर्म धर तीन कर होई बे गई नाग सोई रावण को बनी सहाई अस्तुति करी सुनाई सुनाई अवसर जान विभीषण आवा प्राता चरण शीस दे नावा उन सिर नाई बैठ निज आसन भूला भजन पाई अनुशासन नौकर पाल पूछे मई बाता मतिन रूप कहो हिताता जो आ पंचा है कल्याण सुज सुम सुभग सुख नाना सो पर नार ललार गुसाई तजो चोत के चंद्र की नाई चौदह भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई उन सागर नागर न

गरीबा नर चले जहाँ रघुपति करुणा कर घूरे ते देखे दो भ्राता नैना नंद दान के दाता गौरे राम छवि धाम बिलोकी रहे टटक एक टक पल रोकी पलम गंजारो न लोचन श्यामल गाद प्रणत वह मोचन सिंध।

उठे उठे प्रभु हर्ष विषेखा दीन वचन सुन प्रभु मन बावा बुझ विशाल गए हृदय लगावा अनुसहित मिल टिक बैठारी भोले वचन भगत बैहारी अवलंकेश सहित परिवारा कुशल कुटा हर बास तुम्हारा खल मंडली बसो दिन राति सखा धर्म निभाई के भाति मैं जानो तुम्हारी सब रीति अतनय निपुण भावे नीति परबल बास नरक करता था दुष्ट संग जन दे विधाता अपते कुशल रघुराया जो तुम कीन जान जन दाया जब लगे कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम जब लगे वेतन राम कहूँ शोक धाम तज काम तब लगे हृदय बसत कल नाना लोभ मोह मच्छर मद नाना जब लगे उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिबाथा ममता तरुण तमी दियारी राग देश ओ लुक सुकारी तब लगे बसत जीव मन माई जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाई अव मैं कुशल मिटे वह भारे देखे राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा परियन फूला ताहि न व्याप्ति बिरबल सूला मैं निश्चर अति अदम स्वभाव शुभ आचरण की न नहीं काहू दास रूप मुनि ध्यान न आवा ते प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देखौ नैन विरंज शिव शिव जुगल पद कंज सुनो सखा निज कहौं सुभाओ जान बुसुंड संभ गिर जाओ जो नर होई चराचर द्रोही आवे सबे शरण तक मोही नजमद मोह कपट छल नाना करौ सद्य ते साधु समाना जननी जनक बंधु सुत तारा तंदन भवन सुरत परिवारा सबके ममता पाक बटोरी मम पद मन बांध पर डोरी समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मनवाई अस जन्म उर्वत कैसे लोभी हृदय बसे तन जैसे हम सारी संत प्रिय मोरे धरौ देह नहीं आन्य होरे सगुण उपासक पर हित नृत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम दिन के दुज पर प्रेम सुन लंके सकल गुण तोरे।

बारा करौ देव सचराचर स्वामी ब्रजपाल उर अंतर जामी उर कछुपतम वासना रही द्रौपद पीत सरित सोबही अब कृपाल निज भक्त भावनी देव सदा शिव मन भावनी एव मस्तु के प्रवण धीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा यदि सका तब इच्छा नाही मोर दर से मोग जग माही अस्कई राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नव भैया।

नाथ स्वयं संपदा विभीषण ही सकुज दीन रघुनाथ अस्त्रो छाड़ बजे जय आना ते नर पशु बिन पूछ विसाना निर्जन जान ताई अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा गुण सर्वज्ञ सर्ववर वासी सर्व रूप सवरे।

ऐ लंकेश सुनो रघुनायक कोटि सिंधु सो शक्त सहायक तदवि तदवि नीति सगाई विनय करिय सागर समझाई प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलद कहीं उपाय विचार बिन प्रयास सागर तरही सकल भालु का विधार सखा कही तुम नीकी उपाय करिय दैव जो होई सहाय मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा

रघुराई अदम प्रणाम कीन सुरनाई बैठे पुण्य तन दर्प दसाई जब विभीषण द्रौपद आए पाचे रावण दूत पटाए सकल चरित्र देखे धरे कपट कवि देह प्रभु के हृदय सराही शरणागत पर नेह प्रगट बखाने राम स्वभाव अस प्रेम का विसर तुराओ रिप कह दूत कपिन तब जाने सकल बांध क बिस्पयाने कै सुग्रीव सुनो सो बानर अंग भंग करि पटवो निश्चर सुन सुग्रीव वचन कपि धाये बांध कटुक चौपास फिराए बहु प्रकार मारण कपि लागे दीन पुकार तद बिन त्यागे जो हमार हर नासा काना तई कौशला दीस कयाना सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लाग हस्तुर छुड़ाए रावण कर दी जो ये पाती लक्ष्मण बचन बाच कुल खाती कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उतार सीता देव मिलो न था आवा काल तुम्हार पुरत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत पर नद गुन गाथा कहते राम जस लंका आए रावण चरण शीस त्रिनाए व्यसित सानन पूछी बाता कैसे न सुख आपन कुशलाता उनको खबर विभीषण खेरी जाहि मृत्यु आई न देरी करत राज लंका सट त्यागी हो जीव कर कीटे भागी उनको बालू की चकटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भयो मदुल चंद सिंध बिचारा कब तब जिनके बाद बहोरी जिनके हृदय ताजे मोरी।

कभी सब सुख रीव समाना इन सब कोटिन घने को नाना राम कृपा इतनी तबल तनी धर समान त्रय लोक है नहीं असमय सुना श्रवण दस कंदर पदुम अठारह दूत बंदर नाथ कटुकमा सो कवि नाई जो न तुम जी तई मन माही परम क्रोध मी दे सब हाथा आयुष पै न देह रघुनाथा सोशिय सिंधु से इज्जत प्याला पूरे नत पर कुदर विशाला मर्द गर्द मिलवई दस सीसा ऐसे ही वचन कहे सब कीसा तर जय सहज असंका मानव संचहित है लंका सहज सूर कभी भालू स्वपुन श्री प्रभु राम रावण काले कोट कहूं जीत सके संग्राम राम तेज बल बुद्ध विपलाई से सहज सक सके न गाई अक्सर एक सोत सत सागर तब राते पूछे नहीं नागर आसु वचन सुन सागर पाई मांगत पंत कृपा मन माही सुनत वचन बैसा दस सीसा जो असीमत सहाय कत की सा सहज वीर कर वचन दड़ाई सागर संठानी मचलाई पूर्ण वशाखा कर सि बढ़ाई रिपल बुद्ध था मैं पाई सबीत विभीषण जाके विजय विभूत कहाँ जगता के सुन खल वचन दूतरे से बाड़ी समय विचार पत्रिका काड़ी रामानुज दीनी है पापी नाथ बचाई जुड़ावो छाती वैसे बाम कर लीनी रावण सचिव बोल सट लाग बचावन बातन मने रिजाई सट जन घाल स्कूल खीस राम विरोध न उबर सी शरण विष्णु अज ईस की तज मानी अनुज एव द्रौपद पंकज भंग होय की राम सरानर खल कुल सहित पतंग सुन सब मन मुख मुस्काई कह दसान सबई सुनाई ओमे परा कर कहते कासा लगता बस कर बाप बिलासा है सुखनाथ सत्य संवाणी समझो छाड़ प्रगति अभिमानी सुनो वचन मम परि हरि क्रोधा नाथ राम सन तजो विरोधा अति कोमल रघुवीर सुभाओ यद्यपि अकल लोक कर राओ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही उर अपराध न एक उधरही जनक सुता रघुनाथ ही दीजे एतन कहा मोर प्रभु की जय जब ते कहा देन भय दे चरण प्रहार कीन सड़ते ही नाई शरण सिर चला सुता कृपा सिंधु रघुनायक जहां हरि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपाया पन गति ऋषि अगस्त की साफ भवानी राक्षस भय और राम ज्ञानी बंदे राम पद पार बारा मुन्नि आश्रम को पगदारा विनय न मानत जल्द जड़ गए तीन दिन पीत भोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत लक्ष्मण मान सरासन आनो सौशो बारित बिसिक सानो घट सर विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीत ममता रसन ज्ञान कहानी अतलो भी सन वृत्ति बखानी क्रोधी समकामी हरि कथा उसर बीज भय बल जता अस्कई रघुपति चाप चढ़ावा ये मत लक्ष्मण की मन भावा संधान उपरो किसी कराला उदी उदत उर जंतर ज्वाला मकर उरग जश कन्या कुलाने जरत जंदु जल नित तब जाने करक थार भर मनगन नाना विप्र रूप आयु तजमान

गगन समीर अनल जड़ धरनी, इनके नाद सहज जड़ करनी। औ प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब गंथन गाए। प्रभु आए देखे जस अही, सोते मात रहे सुख लही। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। भोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मैं जाप सुखाई, उतरे कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु अज्ञा अपेल शुद्ध गाई, करो सुवेग जो तुम्हें सहाय। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुझकाई। जय विधि उतरे कभी कटकु, आत सुखो उपाय। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आसित पाई। तनके परस के गिर बारे, तरी हई विनती प्रताप तुम्हारी। मैं पुनि उर्धर प्रभु प्रताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय। जय विधि नाथ पयोध बंधाई है, जइये सुजस लोक त्यु गई है। जय सर ममी उत्तर तटवासी, हतो नाथ नर कल अग्रासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, दुर्तय हरि राम रण धीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निर्भयो सुखारी। सकल चरित गई प्रभु सुनावा, चरण बंदि पादोत सिधाम। निज भवन गवन्यो सिंधु, श्री रघुपति है मत भायो। ये चरित कलमल हर जथा, मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुनगना। तई सकल आस भरोस गावै, सुनै संतन सट मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनै ते तरै भव सिंधु बिना जलयान। सियावर रामचंद्र।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या बात है चांदनिया, वाओ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर जो अदनान। और आज है संडे स्पेशल, जिसको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले हम और आप मिल करके। सो ऑफ कोर्स ये संडे और भी ज़्यादा स्पेशल होगा क्योंकि हमारी आपकी बातचीत तो होती ही है 10 से 11 कॉल इन प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले ऐसा बहुत कुछ है जो आपसे बताना है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं, तो ऑफ कोर्स सोचने वाली बात नहीं है, बस ये है कि काफ़ी अलग बातें हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी होने वाला है, कुछ जानकारियाँ भी मिलने वाली है और एंटरटेनमेंट तो भरपूर रहता ही है, जानते हैं। सो चलिए इस संडे को और भी ज़्यादा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल सब बनाते हैं मिल करके आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है आपकी गोंडा शहर की धड़कन। और देखिए ना, फिलहाल धूप का कहर वापस से शुरू हो चुका है, मतलब सुबह होते ही ऐसा लगता है जैसे सीधे दिन में 12-1 बजे उठे। क्यों? क्योंकि इतनी चमकदार धूप होती है, फिर ये लगता है कि घर में 100 वाट के बल्ब तो सच में अब उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है सिवाय रात के। सो बिल्कुल वही वाला लगता है कि भाई रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इतनी रोशनी तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। फिलहाल मौसम में तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है और आ रहा है, लेकिन आप में कितना आ रहा है, आप कैसे उन बदलावों को देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और आज की मॉर्निंग आपकी कैसी रही, क्या आपने कुछ अलग किया? शुरुआत कहते हैं कि भाई अलग करने से हो जाती है, सो अगर आपने कुछ भी ऐसा अलग किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज संडे में, चूँकि हम पूरी तरह से संडे वाले मूड में हैं, संडे वाली वाइब में हैं, और ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें पूरा एंजॉय करना चाहिए। मतलब जिस तरह से ये वाइब मिलती है, जिस तरह से जैसे मिलती है, इसको पूरी तरह से लेना चाहिए। वैसे क्या ख्याल है आपका, आप भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ आज कॉल इन प्रोग्राम में भी हम जुड़ने वाले हैं, जिसके लिए हम उन लोगों को एक बार वापस से नंबर बता देते हैं जो आज ही फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं। सो नंबर है 6393-316-429, जी हाँ, 6393-316-429, 6393-316-429 ये नंबर है 89.6 एफएम के स्टूडियो का। इस पे ही करते हैं 10 से 11 बजे के बीच, जी हाँ, यानी हर संडे 10 से 11 बजे के बीच हम आते हैं और आपसे बातचीत करते हैं इस टाइम में, क्योंकि मुझे लगता है एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए जब हम डायरेक्ट आपसे बात करके आपकी बातों को समझने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कहाँ हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इस बहाने हमारी आपकी सामने से ही बात हो जाती है। फिलहाल चलिए चलते हैं, क्योंकि आपको पता है दिन की शुरुआत हमारी कैसी होती है, और जब दिन की शुरुआत ज़बरदस्त तरीके से हो जाए तो फिर क्या ही बात है, कहते हैं कि मज़ा ही आ गया। तो अच्छी बात है, हम अब चलेंगे भाई उस थॉट ऑफ द डे की तरफ, जिसको हम जानने वाले हैं कि भाई आज संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या लेकर आया है और क्या अल्तजा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी हमेशा शुरुआत एक बेहतर तरीके से करें, क्योंकि वो बेहतर शुरुआत हमको आगे तक बेहतर तरीके से ले भी जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं बताने कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, आपके मॉर्निंग वाले शो का थॉट ऑफ द डे, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आज का संडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या कहता है, चलिए बताते हैं। आज का थॉट कहता है कि हर चीज पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। हर चीज पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। हर कोई आपकी जो एनर्जी है, जो आपका कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार है, उसका हकदार नहीं है। अपनी एनर्जी को बचाना ये कोई सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ नहीं है, बल्कि ज़रूरत है। आप अपना वक्त, अपने विचार और अपनी भावनाएं कहाँ लगाते हैं, ये आपके इनर हेल्थ यानी आंतरिक स्वास्थ्य और आपकी ज़िंदगी को आकार देते हैं। तो सोच समझ कर ही चूज़ करें कहाँ लगाना है। ये इतना अच्छा, इतना बेहतरीन थॉट है कि जिसको समझ ले तो कहे कि भाई क्या बात है, संडे ने बहुत ज़्यादा ही संडे स्पेशल दे दिया है। जी हाँ, आज का थॉट कहता है कि भाई हमारे आसपास, हमारी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप हर चीज़ पर ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं, राइट। और जब आप हर चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है चूज़ करना होगा अपने आसपास की उन ख़ास कुछ चीज़ों को। क्योंकि आप अगर एनर्जी बचाते हैं तो वो स्वार्थ नहीं है, बल्कि वो ज़रूरत है आपकी। आपके पास एक लिमिट में ही इमोशंस हैं, आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है, आपका वक्त है, ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं एक इंसान के लिए उस तक। सो आप अपना वक्त हो, चाहे अपनी सोच हो, चाहे अपनी भावनाएं हो, कहाँ लगाते हैं ये आपके इनर पीस और आपकी ज़िंदगी को शेप देता है। तो यानी यहीं से तय होता है कि आपकी लाइफ किधर जा रही है और आप कितने खुश हैं या कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए बहुत ही आराम से इसको चूज़ करना होता है। अब देखिए ना, कई बार हम लोग ज़्यादातर लोगों को खुश करने में लग जाते हैं, या हमको लगता है कि यार वो खफा हो गए और बाकी चीज़ें आपकी बेहतर चल रही होती है और आप सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। हालांकि हमारे और आपकी सोचने से चीज़ें बेहतर हो नहीं पाती हैं, लेकिन अब हमारी आदत है कि हम सोचते ही जाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आ जाती है और हमारे पास टाइम भी इतना नहीं होता है। फिर शिकायत करते हैं वो लोग जो हमारे सच में काफ़ी क्लोज होते हैं, वो भी कहते हैं टाइम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर हम हर तरफ टाइम देने लग गए, हर कहीं एफर्ट लगाने लग गए और अपनी भावनाएं हर किसी से व्यक्त करने लग गए, तब तो हो चुका कल्याण ही, तो आपको भी पता है, ये आपको भी पता है। सो ये बड़ा ही वाइजली चूज़ करना होता है, बहुत ही अच्छे से, बड़ी ही आराम से, कि भाई आपको अपना वक्त, अपना थॉट, अपना समय, अपने विचार, अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। और ये कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर शख्स आपकी तरह का नहीं है, हर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इवन आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप जब कुछ भी छोटा सा भी बेहतर करते हैं और खुशी खुशी किसी को दिखाते हैं तो समटाइम्स सामने वाला थोड़ा सा टॉन्ट मारने पर आ जाता है, शायद उसको नहीं पसंद आता है कि आप बेहतर करें। उस इंसान में नहीं प्रॉब्लम है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो वर्क करती है। सब जगह एक ही तरह से नहीं वर्क करती है, किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम, या किसी पे नहीं, कोई इसको बैलेंस कर ले जाता है, लेकिन ये यूजुअली वर्क करती है। इसलिए ये कोई जो है वो सेल्फिशनेस नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, आपका अपना डिसीजन है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अपना वक्त, अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा और अपना समय, ये आप किन लोगों को देते हैं, कहां पर लगाते हैं, प्लीज़ इसके बारे में बी अवेयर। ओके, सो ये रहा आज का थॉट ऑफ द डे। मुझे लगता है इस थॉट ने बहुत कुछ बता दिया है। इवन इतना खूबसूरत थॉट है कि ज़रा सा अगर आप और सोचेंगे तो आपको बहुत कायदे से सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। इसलिए अब आप फटाफट से कमेंट करिए और बताइए कि आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे कैसा लगा, क्योंकि ये संडे स्पेशल थॉट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट क्या होता है कि खाली मुझे पसंद आया, भाई ये है, होता तो आपके लिए भी है ना। तो अब आपको कैसा लगा, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, जिस कोने से भी, आप चैट बॉक्स पर आ सकते हैं। चैट बॉक्स मतलब वही जहाँ आप सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थ 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, वहीं चैट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आके जो कुछ लिखते हैं वो सीधे हम तक पहुँच जाता है। हाँ, आपकी भावनाएं भी मिल जाती हैं, आपका वक्त भी बच जाता है और आपकी एनर्जी
चैनलाइज हो जाती है। तो चलिए बताइए फटाफट से कि आपको आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा और ये संडे की शुरुआत आज मॉर्निंग में कैसी रही।

0: हाँ जी, क्या बात है, इतने सुपर्ब गाने के बाद वापस से आ गए आपके मॉर्निंग वाले शो में। अब बताने वाले हैं कि किस लोगों ने क्या क्या मैसेजेस किए और आज की मॉर्निंग आपकी कैसी रही। स्पेशली आज का थॉट ऑफ द डे, भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आया आज का थॉट ऑफ द डे। अब आपको कैसा लगा ये आप बताने वाले हैं, सो चलिए शुरू करते हैं।
1: Now you're listening, Good Morning Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो चैट बॉक्स पर आ गए हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं, प्रमुख कुमार का आया है और लिखा है, गुड मॉर्निंग उन सभी श्रोताओं को जो लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम, क्या बात है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पार्थ का आया है, हाउ आर यू डियर अदनान सर, होपिंग पॉजिटिव फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और सही उम्मीद लगा रखा वैसे आपने ऑलवेज। सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सुप्रभात आपको भी। आश मिश्र जी लखनऊ से लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवास विकास, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग गोंडा, सुनने वाले श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। अदनान सर जी को मेरा प्यार भरा सुप्रभात, आपको भी रिटर्न में प्यार भरा सुप्रभात। एंड इसके बाद हमारी प्रीति जी हैं बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग। और आशु मिश्र जी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद जो है पूर्णिमा का मैसेज भी आ गया है, संडे वाला गुड मॉर्निंग आरजी अदनान सर, कैसे हैं आप? आपको भी संडे वाला गुड मॉर्निंग, मैं मस्त बढ़िया, अपना बताई तुसी दसो जी कैसे। पार्थ लिखते हैं, लवली एंड एनर्जेटिक थॉट्स सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये थॉट बहुत पसंद आया। आशु जी लिखती हैं कि जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र जी का कहना है कि ऊर्जा का प्रयोग अपने कार्यक्षेत्र में, जिससे मेरा डेवलपमेंट हो, और भावनाएं अपने मित्र और बड़े बुजुर्गों के लिए दर्शाता है, वो कैसा भाव देते हैं, मुझे कैसा भाव देना चाहिए, क्या बात है। प्रीति जी लिखती हैं, ऑसम थॉट, और कुछ अपने लिए भी समय निकालना बहुत बड़ी बुद्धिमानी सिद्ध होता है भविष्य के लिए, सदव्यवहार और अपने हाथ शेष सब विधि विधान, क्या बात है। बहुत सही बात कही पूर्णिमा ने, कहा बहुत प्यारा थॉट, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग मौजूद हैं और इतने प्यारे प्यारे रिएक्शंस दे रहे हैं, यानी आप सब लोगों को अच्छा लगा, ये अच्छी बात है भाई, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपको अच्छी ना लगे ऐसा कहाँ हो सकता है। देखिए मुझे भी अच्छी चीज़ें बहुत पसंद आती है, हो सकता हो मेरे सामने ही हो, अरे भाई आप हैं ना मेरे सामने, मैं सब मान के चलता हूँ। तो चलिए इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं और वापस से आप सबका वेलकम करते हैं। नरेंद्र जी आए फ्रॉम बलरामपुर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। कायनात ने भी गुड मॉर्निंग कर दिया है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं जो इस वक्त फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। तो चलिए वक्त आ गया है आपको ये खूबसूरत सा, सच में खूबसूरत, मतलब लिटरली खूबसूरत है ये गाना। अब आप कहेंगे कि अगर हो सकता आपको ना पसंद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, खूबसूरत तो है ये गाना, आप सुन के देख लिए गारंटी है मेरी। फिलहाल 9:26 हो रहा है, मॉर्निंग का शो है, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके साथ है।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या बात है भाई, शाहिद कपूर वो भी पुराने वाले याद आ गए, जिनको लोग काफी इनोसेंट कहते हैं। भाई जब शाहिद कपूर इंडस्ट्री में आया तो क्या जबरदस्त बंदा आया है। तो चलिए उस टाइम का गाना सुनने के बाद आई होप कि आप भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होंगे और आपको इस गाने में काफ़ी एंजॉयमेंट मिला होगा। अब आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसके बाद रोटी की इज्जत बढ़ जाएगी निगाह में आपके। आप सोचेंगे रोटी से इज्जत कैसे बढ़ेगी, चलिए हम बताते हैं कि आखिर रोटी का कमाल आज का नहीं है जो हम चपाती घर में खाते हैं। दरअसल इनका जो कनेक्शन है वो आज से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई बात है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी हुई बात है। अब आप सोचेंगे इसमें रोटी का क्या रोल है, चलिए भाई वही तो बताने वाले हैं।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई भारत के हर घर में बनने वाली जो रोटी है, किस तरह से ये 1857 के विद्रोह का हिस्सा रही है, ये आपको पता है? नहीं पता है, डेफिनेटली नहीं पता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। सो अनोखी चपाती आंदोलन के बारे में अगर आपको नहीं पता कि यह चपाती का आंदोलन भी हो चुका है जिसने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी लिटरली। देखिए, शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। यहीं से कुछ हफ्ते पहले भारत के गांव में एक अजीब सी चीज़ देखने लगी। लोग चुपचाप एक दूसरे के हाथ में रोटियां थमा रहे थे। मार्च की बात है 1857 की एक शाम, भारत से इंग्लैंड एक चिट्ठी भेजी गई। गिलबर्ट हेडो ने इसे सबसे रहस्यमय घटना कहा। इन्होंने लिखा कि चपातियां हर तरफ घूम रही है लेकिन किसी को नहीं पता ये शुरू कहां से हुई। हर रात कुछ लोग छोटी छोटी रोटियां गांव के चौकीदारों तक पहुंचाते थे। इनमें से कई चौकीदार अंग्रेजी पुलिस का हिस्सा थे और वो रोटियां बनाते और बिना कुछ बोले आगे भेज देते थे। रोटियां आगे बढ़ने से ये रहस्यमय सिलसिला बहुत तेज़ी से फैल रहा था। चपातियां सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर रही थी। अवध से दिल्ली तक, नर्मदा क्षेत्र से नेपाल की सीमाओं तक ये सिलसिला चल रहा था। सो ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट मार्क थारहिल ने इसकी जांच करने की कोशिश की और रिपोर्ट्स में सामने आया कि चपातियां एक रात में लगभग 300 किलोमीटर आगे पहुंच रही थीं। गांवों, पुलिस चौकियों से पूरे ज़िलों तक अंग्रेज़ों की डाक व्यवस्था से भी तेज़। सबसे हैरानी की बात यह थी कि लगभग 90,000 पुलिस चौकीदार इस सिलसिले का हिस्सा थे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उनका जवाब बस इतना था, हमें इसे आगे भेजने को कहा गया है, बस। अंग्रेज़ों के लिए ये चीज़ बहुत डराने वाली थी क्योंकि उस चीज़ को कैसे रोका जाए जिसका मतलब ही समझ में ना आए। ना कोई स्वतंत्रता सेनानी, ना कोई साफ उस पर संदेश, फिर भी रोटी का ये पूरा नेटवर्क अंग्रेज़ों की जो व्यवस्था था उसमें उससे भी तेज़ चल रहा था। इसके पीछे कई तरह की बातें कही गई। कुछ लोगों ने इसे आने वाली क्रांति का संदेश माना, एक संकेत। कुछ का मानना था कि शायद हैजा जैसी बीमारी के वक्त जल्दी खाना पहुंचाने का तरीका था, लेकिन इसका असली मकसद जो है वो आज भी रहस्यमय है लिटरली। 10 मई 1857 की बात करें तो मेरठ में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और अचानक उन रोटियों का मतलब समझ आने लगा। वो ना कोई संकेत थी, ये सिर्फ संयोग था, लेकिन क्रांति से पहले ही रोटी आंदोलन ने अंग्रेजों के बीच बेचैनी, विरोध और डर जगा दिया था। सो ये रहा है रोटियों का यानी चपातियों का किस्सा। आप जरा सोचिए कितनी अनोखी बात है कि आज तक उसका सही सही मतलब कोई निकाल ही नहीं पाया कि ये रोटियां आखिर क्यों लोग एक दूसरे को देते जा रहे थे और क्यों आगे बढ़ते जा रही थी। फिलहाल आप इस रहस्यमय किस्से पे को सुनने के बाद क्या सोच पा रहे हैं, क्या होगा ये और किसने शुरू किया होगा ये रोटियों को आगे पहुंचाने का सिलसिला और इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा? आप भी कमेंट करिए, बताइए। मैं आपकी बताए जाने का, आपकी राय का इंतज़ार रहता है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
7: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
8: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88-40-33-95-84, 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉ का आरजी अदनान। और भाई देखिए, साथ में चैट बॉक्स में अमर उजाला से श्री नंदलाल तिवारी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए और बड़ी ही प्यारी इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए, मुझे लगता है वो पढ़ करके आप तक पहुंचा ही देनी चाहिए।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan. RJ Khan.

नंदलाल तिवारी जी लिखते हैं, गोंडा में हर पांचवा मरीज जो है इस वक्त हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। ये एक फिक्र करने की बात है कि ये लाइफस्टाइल डिसीज इतनी ज़्यादा फैल गई है कि अगर हम गोंडा की आबादी पे एक एवरेज निकाल रहे हैं तो हर पांचवा शख्स जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार है यानी हाई ब्लड प्रेशर का। सो अगर किसी को हाई बीपी या स्ट्रेस कम रखना है तो उसका तनाव बीपी से बढ़ सकता है, यानी बीपी की वजह से तनाव भी बढ़ जाता है। सो तनाव कम करने और बीपी को कंट्रोल करने के आपने उपाय भी बताए हैं और बहुत ही कारगर उपाय हैं। मुझे लगता है अगर ये हम में से लोग इसका ध्यान दें तो इस नंबर से ख़ुद को, अपनी फैमिली को और अपने जानने वालों को बचा सकते हैं और इस तरह से फिर हम इस चीज़ को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं ह्यूमन चेन की तरह से। जैसा कि पहला पॉइंट आपने बताया कि 7 से 8 घंटे की पूरी नींद ले, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि भाई हम शायद ले ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, इतनी देर तक जाग रहे हैं कि ये 7 से 8 घंटा तो हो ही नहीं पा रहा है। दूसरा है सुबह और शाम हल्की एक्सरसाइज, योगा या फिर टहलना करें, जो कि बड़ा मुश्किल ही देखा जाता है। मॉर्निंग में तो खैर कई लोग निकलते भी हैं, इवनिंग में भी कई बार खाना खाने के बाद निकलना बहुत अच्छा होता है। सो इसकी आदत थोड़ी सी चलने की आप ज़रूर डालें, स्टार्टिंग छोटे छोटे से करें। इसके बाद गहरी सांस लेना और प्राणायाम की आदत डालें। सो गहरी सांस लेना सुनने में बड़ा मजाक सा लग सकता है, बट ये सच है कि हम सांस तक ढंग से नहीं लेते हैं, यानी जो सांस से हमको गहरी लेनी चाहिए वो इतनी ऊपर ऊपर से लेते हैं कि उसका भी असर सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो गहरी सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमक, चाय, कॉफ़ी और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत कम करिए, जितना हो सके उतना कम, और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवा वक्त पर लीजिए, यानी वक्त से आगे पीछे ज़्यादा करने पर भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वक्त पर दवा लेना ज़रूरी है। मोबाइल और काम के तनाव से थोड़ा ब्रेक लेना होता है यार, मतलब कुछ ऐसा भी वक्त होना चाहिए जब कोई काम नहीं, कोई किसी से मिलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, बस आप बैठ जाइए आराम से, सुकून से, क्या दिक्कत है, है ना। इसके बाद परिवार और दोस्तों से मन की बात शेयर करना। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो आप कह नहीं पाते हैं, तो परिवार या फिर दोस्तों से आप अगर शेयर करते हैं बातें तो ये बहुत अच्छा रहता है। बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशंस दी है श्री नंदलाल तिवारी जी ने फ्रॉम अमर उजाला गोंडा से, और आपने चूंकि डेटा भी बताया, गोंडा में हर पांचवा मरीज हाइपरटेंशन का शिकार, इससे परेशान हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है, चिंता का विषय है जिस पर हमको ध्यान देना ही चाहिए। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि गर्मी में हो जाती है वो है भीषण गर्मी में पौधे मरने लगते हैं, यानी जिसके यहाँ भी पौधे लगाए हैं वो सूखने लगते हैं। तो ऐसे क्या कोई तरीके हैं जिससे हम सूखते हुए पौधों को बचा सकते हैं और

गमले को सीधे गर्म सीमेंट की ज़मीन पर नहीं रखना होता है, ईंट या स्टैंड का इस्तेमाल करना होता है। यानी बेवकूफ़ी नहीं कि अगर जो लोग उस पर ईंटे पे रख के रखते हैं, बल्कि ये समझदारी है, क्योंकि सीमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसकी टोटल जो गर्माहट है सीधे पौधे तक आती है और पौधा है बेचारा नन्हा सा छोटी सी जान, इसलिए उसको परेशानी होती है। तो इसलिए अगर गमला रखा हुआ है अगर आपकी छत पर सीधे, तो बीच में एक ईंटा रख दे उसके ऊपर रखे, या कोई स्टैंड अगर आपने बनवाया तो सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पौधों के बीच में पानी से भरी बाल्टी रखें, इससे हवा में नमी बनी रहती है। ये जुगाड़ आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, देखा। सो अगर कई सारे पौधे हैं तो वहाँ अगर पानी से भरी बाल्टी आप रखते हैं तो उससे हवा में जो है वो नमी बनी रहती है, जिससे पौधे सूखते नहीं हैं। ये बड़ा अच्छा जुगाड़ होता है। और इसके अलावा मल्चिंग करना होता है, मिट्टी को सूखे पत्तों या फिर नारियल के छिलके से ढक देना होता है। यानी जो गमले की मिट्टी होती है पौधा छोड़ करके नीचे पत्तियों से या नारियल के छिलके से ढक दीजिए, ताकि सीधे जो धूप पड़ रही है वो मिट्टी को बहुत गर्म ना कर पाए, जिससे कि आपका पौधा नरम यानी उसमें नमी मिट्टी में बनी रहेगी और पौधा नहीं सूखेगा। इसके अलावा पौधों को अकेले ना छोड़ें, उन्हें एक दूसरे से सटा कर रखें ताकि ठंडक बनी रहे, यानी एक दूसरे का छाया बनी रहेगी, सपोर्ट होगा। बिल्कुल वैसे जैसे फैमिली से अलग होते हैं तो अकेला महसूस करते हैं, बीच में होते हैं तो आप बहुत ताकतवर और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। खैर यहाँ पे सीधी सी बात है कि भाई इस तरह से जो छाया है वो बनी रहेगी। इसके बाद है तेज़ गर्मी में कोई भी खाद फर्टिलाइज़र नहीं देना होता, इससे जो है जड़ें जल जाती है, तो इसलिए गर्मी में इस तरह के खाद देने से बचे। ग्रीन नेट यानी शेड नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधों को सीधी और धूप से बचाता है। अगर ज़्यादा पौधे हैं तो आप अपनी छत पर ग्रीन नेट यानी शेड नेट का इस्तेमाल करिए, ये सीधी धूप जो आती है उससे बचाता है। सो ये कुछ बहुत अच्छे तरीके हैं, अगर इसको आप अपनाते हैं तो आपके घर के पौधे जो सूख रहे थे अब वो नहीं सूखेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है बाकी सभी लोगों तक पहुंचा दी, क्योंकि गर्मी शदीद हो गई है और इस तरह से जैसे हम खुद को बचा रहे हैं, जानवरों को अपने बचा रहे हैं, पेट्स को, उसी तरह हमारे ज़िंदा ये पेड़ होते हैं जिनको पौधे नन्हे मुन्ने, इनको बचाना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते, हम पौधा रोपण करके चले आते हैं लेकिन जब बचा ही ना पाए तो मतलब फिर क्या है। तो ये कुछ अच्छे और ज़रूरी तरीके हैं जिसको आप बाकी सभी लोगों तक पहुंचा दिए, कि किस तरह से पौधों को मरने से बचाया जाए, किस तरह से उनकी देखभाल किया जाए और इन बातों का ध्यान रखा जाए। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान। और फिलहाल 9:57 हो गए आपके स्टूडियो की घड़ी में, वापस से लौटेंगे कॉल इन प्रोग्राम में, तैयार रहिएगा।

हाँ जी, और फाइनली 10 बज चुके हैं, यानी घड़ी में 10 बज चुके हैं। अब आप मिला सकते हैं अपने नंबर 6393316429 पर, यानी 6393316429 पर। ये आपके स्टूडियो का नंबर है और इस पे आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद आज हम 10 से 11 आपसे बातचीत करने वाले हैं आपके कॉल इन प्रोग्राम गायगा गुंडा विद आरजे अदनान, जिसमें मस्ती भी होती है, फन भी होता है, यादें भी होती हैं, इमोशन भी होता है और गाना भी होता है। सो कोई गाना अगर आपको डेडिकेट करना है अपने क्लोज फ्रेंड या फिर अपने पार्टनर या फिर फैमिली मेम्बर्स या किसी के लिए या इवन खुद के लिए भी गाना हो तो भी आप कर सकते हैं। और नहीं भी गाना होता है, आपको कोई पोएट्री सुनानी होती है, कोई बात कहनी होती है, या हम कुछ सवाल करते हैं उसका आप जवाब भी देते हैं, नंबर सिंपल सा ही है 6393316429। लेकिन उससे पहले, चूंकि हमको कई सारी बातें आपसे पूछनी है, तो हम आपको ले चलेंगे एक म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, वापस से आएंगे, फिर आपके कॉल्स को रिसीव करेंगे और आपसे बात करेंगे आपके अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोना में। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अब चलिए आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन से उम्दा सॉन्ग की तरफ, जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है, यानी आपके लिए मुंतज़िर है। सो आखिर कौन सा गाना है और क्या कहना चाहता है इस गाने के ज़रिए हम सुनने वाले हैं, आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं।

0: हाँ जी, आपका एक बार वापस से वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन, और जिस पल का इंतजार था आपको, फिलहाल वो घड़ी आ गई है आपसे कॉल इन प्रोग्राम में बातचीत करने को लेकर के। तो चलिए भाई, अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ में कौन है कॉलर के रूप में मौजूद।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: हाँ जी, तो चलिए भाई देखते हैं कि कॉलर के रूप में कौन है आखिर हमारे साथ में। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: पूर्णिमा बोल रहे
0: हैं
1: सर। गुड मॉर्निंग सर।
0: हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आपको, आपका स्वागत करते हैं मॉर्निंग शो में। कैसी हैं आप?
1: जी बहुत अच्छे।
0: क्या बात है यार, ये कोई संडे को मॉर्निंग में बोल देता है, बहुत अच्छा। केम चो, हाँ आप ये पूछने वाले हैं, मोजा मच है, बहुत बार छे। फिलहाल इधर मोजा पहन नहीं रहे हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन फिर भी मोजा।
1: मैं वही सोच रही थी क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था मोजे में, तो मैंने कहा था सर को मैं मना कर दूंगी, प्लीज मोजा मत पहने इस समय।
0: अरे सर में गर्मी चढ़ जाएगी भाई साहब, राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ रही कि आईफोन बंद हो गया अपने आप। सच बता रहे हैं? हाँ, मतलब लिटरली आईफोन ने वर्क करना बंद कर दिया कि भाई हीट ज्यादा ही है, तो इतनी गर्मी में मोजा पहनना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
1: ओके, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक उपाय है।
0: क्या है उपाय, आप बताइए।
1: मैं कॉटन का मोजा बना देती हूँ, मुझे बनाना आता है।
0: कॉटन का मोजा बनाना आता है, मतलब क्या?
1: हमने कॉटन के कपड़े का।
0: आपके पास वो सोना आंटी है क्या, इत्तु पिल्तु झिम पतूता करके?
1: नहीं सर, एक दिन ऐसे बस ट्राई कर रही थी, मशीन पे बैठी हुई थी घर में।
0: मशीन के ऊपर बैठी थी आप?
1: नहीं, मेरा मतलब है मैं मम्मी की साड़ी पीको कर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
1: फॉल लगाना था ना, मैंने कहा मैं पहले पीको कर लेती हूँ। तो मेरे दिमाग में आया, मेरा एक पुराना सूट था जो मैंने कम ही पहना था, कॉटन का था।
0: ओके।
1: हाँ, तो वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मैंने उसको कट करके ग्लव्स बना लिए।
0: कट करके ग्लव्स बना लिए?
1: हाँ, ग्लव्स बना लिए। और मुझे मोजा भी बनाना आता है, तो मैं बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत आता है मुझे।
0: मोजा किस तरह बनता है? थोड़ा अजीब ही उसका शेप लगता है, समझ में नहीं आता है बनता क्या।
1: एक्चुअली मैं बाहर के लिए नहीं बनाया था, तो मुझे खरीदना पड़ेगा। बस मैंने बच्चों के सेफ्टी के लिए, जैसे बाहर आते जाते हैं तो गर्मी होती है, तो कवर करने के लिए बस। ज्यादा बहुत अच्छा नहीं बना था, बट मेरे हिसाब से ठीक ही था।
0: अरे मोजा बना लिया, इसके लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। अच्छा और बुरा तो छोड़ी दी, जाने दीजिए, मतलब बनी गया, बहुत बड़ी बात है।
1: मुझे लगता है अपने आप से कोई भी काम करना खराब भी हो जाए, तो एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि हाँ हम कितने काबिल हैं या कितना कर सकते हैं या हमने कितना सीखा।
0: देखिए, हमेशा अपने को चैलेंज करना या इवैल्यूएट करना ये तो ठीक नहीं है,
1: कभी कभी अच्छा हो ही जाता है।
0: हाँ, मतलब होना ना होना बात की बात है, आपने किया। हाँ, ये आपकी राजा वाली एक सोच है, मैंने करा। करेक्ट,
1: थैंक यू।
0: यस ऑफ कोर्स, यू वेलकम। एक बात पूछना था आपसे।
1: जी बिल्कुल पूछिए।
0: संडे का दिन मतलब आराम का दिन होता है कहते हैं ना,
1: बहुत मस्ती का दिन होता है, आराम का दिन होता है, काम का दिन होता है मेरे लिए।
0: आराम और काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार आजकल देखा ही जाता है लोग सुबह उठ करके अपने मोबाइल की स्क्रीन लॉक जो है खोलते रहते हैं, रील्स देखते हैं, चैटिंग करने के चक्कर में संडे भी स्क्रीन डे कहीं बंद तो नहीं गया है, हमको ये सोचना है। सो एक लिसनर की भी कॉल आई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने आज के दिन का करीब एक घंटा अपने फ़ोन को खुद से दूर रखने का दम रखा था, और ये आपको कैसा लगता है कि जैसे आज उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, हमसे बस ये कहा कि सर हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बट चूंकि संडे का दिन आराम का दिन होता है या फिर अपनों के साथ मिलने जुलने का, और वो जो डिजिटल डिटॉक्स की हम बात करते हैं तो लोग अभी भी स्क्रीन डे में ही पूरा संडे कई बार निकाल देते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे?
1: सर पहली बात तो मेरे साथ ऐसा होता नहीं है।
0: आपके साथ
1: दूसरी बात, हाँ मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास अभी कल ही का दिन अगर मैं ले लूँ तो मुझे फोन को छूने का तक का टाइम नहीं मिला। मैं रात में बस 10 मिनट के लिए मैंने फोन लिया और फिर मैं गजल को सुनते हुए जो है मैं सो गई।
0: ओके।
1: तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। दूसरी बात, ये जो लोग फोन स्क्रीन पे इतना समय बिताते हैं या रील्स को देखते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप फोन ही को देख रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ अच्छा देखें और उसका भी एक टाइम बना लीजिए। और मुझे लगता है जिसके पास कोई काम नहीं हो तो ज्यादातर फोन देखता है, तो वो उसके फोन देखना तो सबसे खराब आदत है।
0: ओके। अच्छा, आपने कहा कि आप फोन इस्तेमाल नहीं करते, तो डेफिनेटली कई बार फ्रेंड्स का या लोगों का एक बार टॉन्ट भी मारते होंगे कि हमने कॉल किया तो आप तो ये कि फोन ही नहीं चलाते हो, अजीब इंसान हो, देख तो लिया करो, कॉल तो कर लिया करो, ऐसा कहते होंगे।
1: कहीं अगर मैंने उनका मैसेज सीन कर लिया और रिप्लाई नहीं किया तो उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, मतलब तुम्हें इतना टाइम है कि तुमने मैसेज को देख लिया तो रिप्लाई नहीं कर सकती,
0: रिस्पॉन्ड नहीं किया।
1: ये उनका सबसे बड़ा काउंट होता है।
0: तो क्या मतलब, मान लीजिए चलिए आप तो काम में बिजी हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप उन लोगों को क्या कहेंगे जिनकी फिलहाल दिनचर्या का हिस्सा बन गया, वो भी नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी कहीं तो एडिक्टेड हो गए हैं जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान है। सो क्या कुछ तरीके हो सकते हैं इससे डिटॉक्स करने के खुद को?
1: सर मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि काम में बिजी रहो, और क्योंकि आप काम में बिजी रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान उससे कम ही जाएगा। क्योंकि खाली इंसान क्या मतलब क्या करता है, सबसे ज्यादा फोन ही देखता है, तो उसको तो अवॉइड करना है। दूसरी बात, अगर मॉर्निंग में उठते हैं तो आप अपना रूटीन फॉलो करिए, क्योंकि आपने अगर एक बार अपना रूटीन फॉलो कर लिया तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे।
0: और मान लीजिए कोई रूटीन ही ना हो तो फिर?
1: रूटीन ही ना हो, ऐसा कोई हो नहीं सकता किसी का रूटीन ना हो, बट अगर नहीं है तो अपने आप को पढ़ाई में बिजी कर ले,
0: रूटीन बनाना पड़ेगा। करेक्ट,
1: हाँ रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन के बिना नहीं चलेगा।
0: That's the point, कि रूटीन के बिना नहीं चलेगा, यानी आपको।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फोन अगर आप देखते भी है, चले मान लिया कि देखते हैं, तो फोन में कुछ अच्छी चीज सीखे जिसको फिर आप अपने ऊपर अप्लाई करें, फिर उसको देखने के बाद कुछ चीज सीखते हैं तो आप घर में ही फॉलो करिए उसको, कुछ बनाना सीखे, कुछ करना सीखे, कुछ खाने में हो गया, कुछ कपड़ों में हो गया, है ना, और कढ़ाई बुनाई में हो गया, तो बस। और पढ़ाई के भी बहुत सारे तरीके हैं।
0: ओके
1: जी,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने ऑफकोर्स चीज़ें बताई हैं, प्रैक्टिकल बात है, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से आप खुद को दूर होते हुए ज़रूर पाएंगे।
1: अब मुझे देख लीजिए सर, मुझे नहीं आता था कुछ चीज़ें, मुझे नहीं आता था मतलब खाने के लिए, तो मैं फ़ोन कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं डिशेज नहीं देखती, वो तो मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ, अपने आप से करती हूँ जितना मुझे आता है। और दूसरी बात, कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं फ़ोन से जो मैंने फॉलो की, तो मुझे अच्छा मतलब सीखा, मतलब आया, मैंने किया तो ठीक है, बेहतर है।
0: बिल्कुल। सो ये बहुत प्यारी बात कही, और आप खुद बिजी रखते हैं, और आपने कहा आपको खुद वक्त मिल नहीं पाता फोन चलाने का अलग से, ये मतलब आप एक मिसाल हैं हमारे लोगों के लिए।
1: मुझे सबसे खराब जानते सर कब लगता है?
0: नहीं पता नहीं, बताइए कब लगता है?
1: एक तो इंसान मतलब जो बिजी नहीं रहता वो फोन चलाता है, ठीक है वो तो बिजी नहीं रहता, लेकिन जो इंसान बिजी रहता है, जब कहीं जाता है किसी से मिलने के लिए या किसी के पास बैठता है, तो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि मैं कितना बिजी हूँ, तो उस टाइम पे अगर कोई फोन छूता या चलाता है तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है।
0: बिजी कोई नहीं है लेकिन बिजी सब दिखा रहे हैं।
1: हाँ, किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इवेंचुअली वो बंदा आया है आपसे मिलने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए, क्या जरूरत थी उसको मिलने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, आपके साथ समय बिताना चाहता है, तो आप उसके साथ समय बिताइए। देखिए काम तो होता रहेगा, सबके लाइफ में काम है।
0: करेक्ट,
1: तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उससे कुछ पूछिए, उससे बातें करिए, तो कहीं ना कहीं उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, अरे बॉन्ड बन जाता है। और फिर हम पूरे दिन में एक खूबसूरत सी बात होती है जब हम किसी से मिलते हैं,
0: क्या बात,
1: कुछ अच्छा होता है, तो पूरी लाइफ याद रहता है।
0: बेशक, बहुत सही बात कही आपने, बड़ी अच्छी बात कही। और संडे हो सकता है, आज कई लोग मिलने भी जाएंगे एक दूसरे फ्रेंड्स से, तो इस बात का, पूर्णिमा का हम लोगों को ख्याल रखना है कि भाई फ्रेंड के सामने नो फोन।
1: अरे सर मेरी कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस मैंने जो देखा।
0: नहीं नहीं सही है, कोई दिक्कत होगी तो लोग आपसे निपट लेंगे, मुझे नहीं कहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा ने कहा है ऐसा, बट लिटरली सही कहा है, मैं समर्थन करता हूँ आपकी बात का, कि जब मिलने जाते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं तो आपको फोन इस्तेमाल उस वक्त तो नहीं करना चाहिए। करेक्ट। एंड आप कुछ सुनाना चाहेंगी गाने के रूप में? काफी दिन से हम लोगों ने कुछ गाना सुना नहीं आपसे। जी
1: कुछ लाइनें,
0: क्या बात है, प्लीज। हाँ हाँ हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ध्यान से कान एकदम लगा दिया हमने।
1: दोस्तों से रिश्ते रखा करो, दोस्तों से रिश्ता रखा करो जनाब, तबियत मत रहेगी, दोस्तों से रिश्ता रखने को जनाब, तबियत मत रहेगी, वो हकीम है जो अल्फाज से दिया करते।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज तो खुश होंगे दोस्त, अलग से पार्टी आप इंतजाम कर रहे हो इनडायरेक्टली अपने दोस्तों को इम्प्रेस करके कि पार्टी आर्टी मिल जाए, आ जाए।
1: कुछ बताओ सर, मेरे फ्रेंड की शादी।
0: ओके,
1: और फ्राइडे को उसकी एंगेजमेंट थी।
0: अच्छा
1: जी, तो रिश्तों के बंधन में वो बन गया।
0: क्या बात है, बांध दिया गया या बंध गया?
1: बांध दिया गया, अब हम उसके पास पार्टी लेने वाले।
0: बंधने के बाद पार्टी,
1: तो
0: डबल डबल बंधाऊ। बढ़िया।
1: अच्छा मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ।
0: हाँ
1: जी। वो तू है अलबेला, हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को ना देखा। वो तो है अलबेला।
0: थैंक्स टू यू। और आपके फ्रेंड को एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद उनके दांपत्य जीवन को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पूर्णिमा।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। और ये थी हमारे साथ में पूर्णिमा, जिन्होंने हमसे बातचीत किया और साथ ही साथ अपनी बातों को रखा। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई पूर्णिमा ने बताया कि किस तरह से उनके संडे की शुरुआत होती है। एंड मुझे लगता है कि आपकी भी शुरुआत होती है और आपके भी अपने कुछ तरीक़े हैं। सो वो क्या तरीक़े हैं, कैसी शुरुआत होती है, ये भी हम ज़रूर जानने वाले हैं। और साथ ही साथ हम और भी सॉन्ग्स एंजॉय करने वाले हैं आपके साथ इस मॉर्निंग वाले शो में। फ़िलहाल आतिफ असलम की आवाज़ में, आतिफ असलम ज़िंदगी को लेकर के आ रहे हैं इस गाने में। आइए सुनते हैं, ये गाना है बड़ा ही लाजवाब।

0: चलिए भाई मैं जिंदगी आ गया हूँ लेकर के, आतिफ असलम साहब की आवाज में गाना जबरदस्त लगता है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम और इस वक्त 10:22 हो रहे हैं आपके 89.6 एफएम के स्टूडियो की घड़ी में। आरजे अदनान घड़ी की नोक को देख रहे हैं कि भाई किस तरह से वक्त जो है वो गुजर रहा है। फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो।
1: हेलो सर।
0: वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: सर मेरा नाम मुसीना अंसारी है।
0: हाय मुसीना, कैसी हैं आप?
1: आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, लेकिन आवाज में आज थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है।
1: जी सर, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा सर्दी हुआ है मुझे इसलिए।
0: इतनी आवाज से कड़ी गर्मी में भी आपको सर्दी कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल
1: है। खानदानी असर है क्योंकि हम को पूरे साल सर्दी होते रहती है अगर पानी चेंज हो तो। मेरे अब्बू भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं।
0: पानी चेंज होने से दिक्कत होती है? पानी मतलब चेंज, जैसे इस कमरे में पिया था दूसरे वाले कमरे में पी लिया इसलिए ऐसे चेंज माना था? कैसे चेंज होता है?
1: नहीं, अच्छा। जगह के बदलाव की वजह से ऐसा होता है क्योंकि कहीं कहीं नल से पानी आता है, कहीं कहीं डायरेक्ट बोरिंग से लिया जाता है, या कहीं डैम से पानी आते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ पे वो हम लोग का घर जो मोरदी में जो है वो यहाँ डैम से पानी आता है। और मैं फिलहाल जब मम्मी के घर थी तो वहाँ पे डायरेक्ट बोरिंग जो होती है ना वहाँ से पानी आता था। तो पानी का ये बदलाव मैंने कहा था, एक रूम से दूसरे रूम का बदलाव नहीं था।
0: ओह अच्छा, हमारे यहाँ जमीन से आता है, मतलब अभी इतना ही पता था।
1: नहीं वैसे तो पानी सारे जमीन से ही आते हैं, लेकिन कुछ सोर्सेस होते हैं ना पानी निकालने वाले, वो अलग होते हैं। मैंने उन सोर्सेस का बात किया, बात मतलब बताया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पानी को लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पथरीला इलाका है तो पानी यहाँ बहुत नीचे से लेना पड़ता है और उसके लिए 400-400 फीट अंदर बोरिंग की जाती है यहाँ पे।
0: गुजरात में आपने बताया क्योंकि वहाँ का पानी दूसरा है और आप कुछ वक्त के लिए गोंडा आए थे तो इसलिए पानी का बदलाव हो गया।
1: नहीं सर, मैं गोंडा नहीं आई हूँ, मैं गुजरात का एक हिस्सा है वापी, वो लगभग मुंबई से 4 घंटे की दूरी पे। अच्छा। मैं फिलहाल वहाँ गई थी, मेरे घर से वहाँ की दूरी 5-56 किलोमीटर है, यानी एक रात लगता है या एक दिन लगता है जाने में।
0: ओके।
1: और गोंडा मुझे लगभग 1 साल जैसा हो गया, अगले साल की ईद जो गई थी मैंने वो अम्मी के घर की थी, जब से मैं गोंडा नहीं गई हूँ। अब मेरा प्लान बन रहा है 2027 के नवम्बर तक जाऊंगी, अभी भी 1.5-2 साल जैसा है मेरे पास वहाँ जाने का।
0: करेक्ट, सही बात है। तो 2-3 गैलन पानी लेके आइएगा साथ में ताकि अचानक से चेंज ना हो।
1: हाँ सर, वैसे भी यहाँ पे गांव में जब जाते हैं अम्मी के घर तो नल का पानी होता है, डायरेक्ट नल से लेके हम लोग पीते हैं, और यहाँ पे जो है वो फिल्टर पानी आता है, तो वैसे भी तब्दीली होती रहती है पानी की।
0: करेक्ट, पानी बदलने से असर तो आता है हेल्थ पे, बात सच है। अच्छा मोहसिना, हम संडे की शुरुआत की बात कर रहे थे, आपका संडे कैसा होता है? फोन के साथ शुरुआत होती है या कुछ और तरीका आपका?
1: नहीं सर, मेरा तरीका अलग है, मैं उठती हूँ आम गृहणियों के जैसे, आप जैसे घरों में होता है मैं भी वैसे उठती हूँ। मेरा फोन से तो शुरुआत नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता फोन से शुरुआत करना।
0: हाँ। कैसी होती है शुरुआत आपकी?
1: उठते हैं अपने पर्सनल कामों के फ्री होने के बाद किचन में जाना होता है, नाश्ता तैयार करना होता है, फिर जिसको उठाना होता है वो लोग उनको उठाते हैं टाइम पे, नहीं तो संडे का दिन होता है तो लगभग तो सोते ही रहते हैं, अपने हिसाब से उठते हैं, कोई 10 बजे कोई 10:30 बजे ऐसा उठता है। तो उन लोग से उठने पर उनको नाश्ता देना, फिर घर के काम करना, फिर वही डेली का शेड्यूल काम करना, और अगर किसी की फरमाइश हुई कुछ बनाने की तो वो बना के देना, बस ऐसे दिन बीतता है हम लोगों का, मेरा तो ऐसे ही बीतता है और लोगों का मुझे नहीं पता।
0: एक तरफ जहाँ पे आप इतना सारा काम कर रही हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, वो फोन काफी अच्छे से चला रहे हैं, वो कॉल्स भी कर रहे हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं, सर्फिंग भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को और उनकी लाइफ को जब देखते हैं तो किसकी बेहतर पाते हैं अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से आप बताएं कैसे?
1: क्योंकि मैं जब देखिए सर, अगर आप फोन चलाएंगे तो आपका सारा ध्यान जो है वो फोन पे ही होगा, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं मान लीजिए किचन में, अगर किसी ने आपको उधर से आवाज दी फला चीज करनी है बेटा आपको, तो आपका ध्यान उधर भी गया, प्लस आप अपना भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फोन चला रहे तो मेरे अकॉर्डिंग आपका पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके फोन पे होता है और इसकी वजह से आपका दिमाग जो है वो दबाव महसूस करता है। अगर आप लगातार 3 से 4 घंटे फोन चला के अगर निगाहें उठाएंगे इधर उधर करेंगे तो कुछ अजीब सा महसूस होगा आंखों के आगे। और अगर आप काम करते हुए सबकी बातें सुनते हैं, बातों को एंजॉय करते हैं तो उसी जगह पे माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और सर मुझे फोन चलाना अच्छा लगता है, ये नहीं कि मैं फोन यूज ही नहीं करती हूँ, लेकिन अपने कामों से फ्री होने के बाद कुछ टाइम के लिए 1 घंटा 2 घंटा दोपहर या शाम में बस ऐसे ही, अब दिन भर फोन को लेके बैठना नहीं अच्छा लगता है।
0: बड़ी प्यारी बात कही आपने कि आप अगर ऐसी लाइफ से कंपेयर करती हैं जिनके पास फ़ोन है वो चला रहे हैं और आपका जिससे काम के साथ स्टार्ट होता है, पर आप खुश हैं क्योंकि आपको आपका दिन पता चलता है, आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप रियल टाइम में मौजूद होते हैं।
1: स्ट्रेस महसूस होता है जब फोन चलाते रहने से दिमाग पे बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है, कभी कभी तो आंखें इंसान की सूजी सूजी लगती हैं, फिर वैसे ही पता चल जाता है कि फोन चलाया है रात भर या दिन भर या अभी फोन चला के ही आ रहे हैं।
0: आपके सामने अगर दो शख्स हैं, एक बेचारा किसी की जुदाई में रात भर रोया है और एक फोन रात भर चलाया है, तो किसकी सूजी हुई आंखों से आप पता कर सकते हैं?
1: सर रोने का जो सूजी हुई आंखें होती हैं उनमें भी एक अलग कहानी होती है कि हाँ वो रोया है इंसान, उसके पूरे फेस पे वो जवाइया आ जाता है कि हाँ ये रो के आया है, और फोन चलाने वालों के फेस पे ऐसा कुछ नहीं होता।
0: फोन चलाने वालों के फेशियल हो जाता है क्या?
1: हाँ हो जाता होगा सर, क्योंकि मैंने ऐसा आजमाया है कि हाँ रोने से वो जो आपके चेहरे का हाव भाव होता है वो बहुत ही अलग हो जाता है, तसव्वुरात चेहरे के अलग हो जाते हैं रोने से।
0: सो बड़ी अच्छी बात कही आपने और मैं खुद भी अग्री करता हूँ इस पॉइंट से कि हाँ सच में चेहरे पे हो या आंखों पे असर आता है अगर आप लगातार फोन स्क्रीन पर जमे रहते हैं। एंड आपकी दिनचर्या से ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को एंजॉय करते हैं, आपके रिलेशंस कनेक्शंस अच्छे हैं क्योंकि आप रियल टाइम में लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, ये बहुत प्यारी बात है।
1: वो जो रिश्ते जो होते हैं सर वो वक्त मांगते हैं, हर रिश्ते का एक अपना अलग वक्त होता है और वो देना पड़ता है, अगर हम नहीं देंगे तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं हमसे नाराज हो जाएंगे या कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ मन मुटाव होगा कि हाँ ये फोन में ही लगी रहती है, इनसे क्या बातें करना या इनसे कोई भी चीज क्या डिस्कस करनी, छोड़ो हटाओ जाने दो, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान से और सुनते भी हैं और अमल भी करते हैं तो सामने वालों को भी लगता है कि हाँ मेरे बात का ये इतना असर ले रही है तो मुझे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे इसको शामिल करना चाहिए, सामने वाला ऐसा सोचेगा। और अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे तो कोई एक बार कहेगा, आपसे दो बार कहेगा, तीसरी बार वो आपको देख के इग्नोर कर देगा कि ये तो फोन में ही रहती है, इसको क्या कहना।
0: बहुत पॉइंट की बात कही, भले ही ये सुनने में बड़ी आम सी बात लगे लेकिन बहुत गहरी है। इसका असर होता है यानी डायरेक्ट कई बार कोई कहता नहीं लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई वक्त दे रहा है तो मैं भी उसको फिर पहली प्रायोरिटी दूंगा बिना उससे कहे, है ना। तो ये बहुत प्यारी बात आपने कही, बहुत ही अच्छी बात, और थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया, आपसे जुड़ी।
1: थैंक यू सर
0: अल्लाह हाफिज़। सो भाई ये तो थी हमारे साथ में मोहसिना फ्रॉम मोरबी गुजरात। अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो
2: हेलो
0: गुड मॉर्निंग क्या नाम है आपका? खैर
2: मैं
0: प्रेम चोपड़ा
2: ऐसा है क्या? प्रेम नाम है मेरा ऐसा क्या?
0: प्रेम चोपड़ा या प्लेन चोपड़ा, मतलब सिंपल
2: नहीं सा सर, मैं कुछ नहीं, मैं ओनली ऑन
0: ओके। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया।
2: बस सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। काफी दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई, शो पे भी आना हो नहीं पाया मेरा
0: बेशक,
2: इसके चलते आज मैं सोच रहा था कॉल नहीं करूं, पर आप क्या करूं, मैं रहा नहीं जाता, वो ही जाता है,
0: छिपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, कॉलिंग प्रोग्राम हो तो हमें खुद को रोकना भी नहीं आता, क्या बात है?
2: मतलब ये हो जाता है अगर सुन लिया तो फिर लगता है यार बात कर ही ले
0: क्या जाता है इसमें क्या ही जाता है, मिल जाता है जाता कुछ नहीं
2: नहीं बैठे कुछ लोग हमारे जो अच्छे मित्र हैं वो उनसे मुलाकात, उनसे बात हो जाती है, सबका हालचाल मिल जाता है।
0: सही बात है। बहुत प्यारी बात कही। वैसे हमारा सवाल जो आज चल रहा है उसको शायद आप समझ गए होंगे कि सुबह की शुरुआत कैसी हो रही है, फोन के साथ ही या कुछ और, तो इस पे प्लीज अपने
2: मुझे मोहसिना ने जो भी कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें काफी अच्छी थी, उनका सोचना उनका सही बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि ये चीजें होना चाहिए सभी के लिए। रहा मेरे दिन की शुरुआत, तो सर अन्य दिनों में भले ही मैं थोड़ा लेट उठता हूँ लेकिन संडे मेरे लिए काफी जरूरी होता है, मैं बहुत जल्दी उठने का प्रयास करता हूँ सोकर।
0: अरे वाह।
2: और मेरी शुरुआत माता रानी के मंदिर पे होती है।
0: वाह।
2: और फिर अपनी माता जी के साथ बैठने से।
0: वाह।
2: और फिर अपने काम पे लग जाने से और उसके बाद आपसे मुलाकात में।
0: क्या बात है,
2: ये मेरा 11 बजे तक का प्रोग्राम फिक्स होता है।
0: बहुत बहुत प्यारी बात है।
2: 6:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है, 7:30-8 में मंदिर पहुंच जाता हूँ।
0: ओके।
2: तो उसके बाद लौटने के बाद माता जी के पास, फिर आपके पास अपने काम पे, और फोन वैसे भी सही बात है, फोन बड़ी खतरनाक चीज भी है, बहुत अच्छी भी है, सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। और अति सर्वत्र वर्जते हमारे संस्कृत में कहा गया है, तो अति किसी चीज की नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे, आप 7 दिन में कॉलिंग कर प्रोग्राम रखते हैं, अगर रोज रखने लगेंगे तो लोगों का मन खराब हो जाएगा, फिर वो आनंद नहीं रहेगा।
0: वही मैंने भी कहा था, बल्कि मुझे लगता है 1 महीने में करना चाहिए।
2: नहीं, 1 महीना तो ज्यादा हो जाए, फिर मन दूसरी तरफ चला जाएगा।
0: मतलब हफ्ते में बैलेंस बना हुआ है।
2: पत्नी मायके जाए तो उसको 7 दिन 8 दिन में बुला लेना चाहिए।
0: अच्छा।
2: और उसको खुद भी आ जाना चाहिए लौट के।
0: जनहित में जा, ये जो शैलेंद्र जी ने बोला वो जनहित में जा रही।
2: बता रहा हूँ मैं, अब आप कहेंगे 1 महीना तो मैं तो भूल जाऊंगा ना, कहाँ अदनान तरफ कब आने वाले हैं, 1 महीना तो बहुत लंबा समय होता है।
0: फिर महीनों की बात होगी भैया, जनवरी में कॉल हुई थी।
2: बताइए, और फिर पता नहीं नंबर लगता है कि नहीं, ये 500 रन बनाने पड़ेंगे।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही आपने। लेकिन एक बात जो आपने कही वो बड़ी यूनिक लगी कि बाकी दिन भले ही आप थोड़ा सा लेट हो भी जाता है, बट संडे के दिन आप प्रयास करते हैं जल्दी, चूंकि आपके पास अपनों से मिलने के लिए वक्त आपको लगता है संडे में ज्यादा बेहतर है।
2: वाकई सर, वाकई बहुत जरूरी है संडे, मेरे ख्याल से सिर्फ हॉलीडे, मेरा तो खैर 24/7 आवर्स का काम रहता है।
0: जी जी जी।
2: लेकिन अन्य लोगों के लिए जिनकी छुट्टियां भी होती हैं संडे या सैटरडे, उनको थोड़ा अपने रिलेटिव्स के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपने मित्रों के लिए निकालना चाहिए। इसी के लिए मैं कभी कभी, मैं दोपहर में 1-2 घंटे के लिए बंद करता हूँ तो जरूर किसी दोस्त से या अपने स्वयं के काम से निकल जाता हूँ। दोपहर में या शाम को आप फ्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मोबाइल को ही वक्त दें। जानकारियां लेना है वो अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए उसका। करते सभी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत मिसयूज मेरे से भी होता होगा, आपसे भी होता होगा, सबसे होता है, लेकिन वो मनोरंजन होता है, वो थोड़ी देर का मनोरंजन है।
0: बिल्कुल। तो इसी,
2: लेकिन अगर हम, हाँ,
0: ये बहुत प्यारी बात कह रही, तो एक छोटा सा कोई सॉन्ग भी बड़ा प्यारा सा आपसे सुनना चाहेंगे।
2: मेरे से
0: आज के वक्त में अगर कोई कहता है कि भाई हमने अपने जमाने में हमने किशोर साहब को नहीं देखा, तो लोगों को लगता है चलिए उनका एक लाइट वर्जन है शैलेंद्र जी, जिनको सुन करके
2: एक्चुअली
0: अच्छा लगता है।
2: कुछ नहीं,
0: आपका जो नेचर है वो आपके गानों में झलकता है, आपकी गायकी में झलकता है।
2: थैंक यू सो मच।
0: Yes, of course, आप डिजर्व करते हैं, तो प्लीज एक छोटा सा गाना हम लोग प्लीज सुनना चाहेंगे आपसे।
2: सर, 2 लाइनें बताया सुना दे रहा हूँ आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
0: क्या बात, एकदम सटीक गाना कैसे आप उठा लेते हैं, मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका अंदाज, आपका तरीका सब बहुत प्यारा है, बहुत उम्दा गया। नहीं ये सब तो हमने सीखा, ये तो हमने सिखाया भी नहीं, नहीं तो कुछ कल करार कोई कोई आपने छोटी मोटी गड़बड़ कर दी कही यार, तो सीखने सीखने में ये सब भी सीखी गए थे। नहीं नहीं आपके अचूक निशाने हैं पहले से,
2: ये हमारे यहाँ सर अर्जुन हुआ करते थे, आपको पता होगा अर्जुन जी, उनका निशाना बहुत सटीक हुआ करता
0: था। जी जी जी जी जी,
2: तो वो विद्या हम लोग भूलते जा रहे हैं, अब कभी आपसे कभी आप हमसे ऐसे सीखते रहे तो अच्छा रहेगा।
0: नहीं आपके जो ये अचूक बाण है वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, गाने की च्वाइस बिल्कुल थीम के हिसाब से चली जाती है तो नहीं बहुत प्यारा, और ये गाना लिटरली मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत अच्छा ये गाना लिखा गया है, उतना ही अच्छा इसको गाया भी गया है बेशक।
2: क्या है पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
2: और ना हम नेगेटिव सुनेंगे उतना हमारा असर अपने दिमाग पर वही आएगा।
0: सही बात है,
2: Think positive, be positive.
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल भी किया और बहुत प्यारे अंदाज में हमारे सवालों का जवाब दिया।
2: थैंक यू सो मच सर,
0: थैंक्स टू यू, बाय बाय, टेक केयर। और ये थे हमारे साथ में शैलेंद्र रिछारिया जी फ्रॉम मध्य प्रदेश खजुराहो। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है हमारे साथ। हाँ जी हेलो,
3: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
3: मैं सविता जी बात कर रही हूँ।
0: और मैं आरजे अदनान बात कर रहा हूँ। कैसी हैं
3: आज? मैं अच्छी हूँ, पर मेरे को दो विषय के लिए मेरे को सुबह सुबह डांट पड़ी है।
0: आज आप अच्छी हैं लेकिन दो चीजों के लिए सुबह सुबह डांट पड़ गई। अच्छा क्या थी वो दो चीजें?
3: एक चीज था मोबाइल चलाना और एक चीज था मैं जल्दी काम पे क्यों नहीं जाती हूँ। मुझे मेरे को बोला जाता है कि 8 बजे काम पे जाओ, 11 बजे चले जाओ, ठंडी में जाओ, जल्दी चला आओ, इतना धूप में जाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरा के काम छोड़ दो। काम छोड़ दूंगी तो फिर काम अगर मैं छोड़ दूंगी तो मेरे को टाइम मिलता है तो मैं मोबाइल में व्यस्त हो जाऊंगी। मैं चाहती नहीं कि मैं मोबाइल के अंदर में घुस जाऊँ, मोबाइल में नहीं रहना चाहती, मैं इसीलिए काम ढूंढ रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मोबाइल के अंदर तो बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि वो जाने लायक चीज भी नहीं है। बट ये कि जहाँ तक बात रही काम की, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इधर आप कोशिश कर सकते हैं काम पे थोड़ा जल्दी आने की, ये कर सकते हैं।
3: जल्दी आऊंगी तो मैं मोबाइल पे सुनते सुनते जाती हूँ तो पेड़ के नीचे जब मोबाइल आता है तो नेट पर चली जाती, तो आप अगर कुछ जानकारी चीज बताते हो मैं सुन नहीं पाती, वो भी तो मुश्किल है ना।
0: कोई नहीं, आप कोशिश करेंगे तो आपको सुनाई पड़ जाएगा, थोड़े बहुत ग्लिचेस अगर आते तो उतना मैनेज हो जाएगा, आप समझ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है।
3: इसके लिए डांट पड़ा है आज।
0: हाँ नहीं तो ये कोशिश करिए कि आप काम पे थोड़ा सा और जल्दी टाइम पे पहुंच जाइए। वादा
3: करना पड़ेगा।
0: और क्या करना पड़ेगा?
3: हाँ मुझे घर पे भी डांट पड़ता है, जहाँ पे जाते वो लोग भी बोलते कि थोड़ा जल्दी आ जाएगा, इतना धूप में मत आया करो ताकि कभी कभी चक्कर फक्कर करके गिर जाओगे।
0: वही वही वही बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त धूप जो है उससे अब लगातार हम लोग भी इसीलिए अनाउंस कर रहे हैं बता रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी धूप सही नहीं है, तो आप प्लीज कोशिश करा करिए कि थोड़ा जल्दी निकल करके पहुंच जाया करिए आप।
3: अच्छा वैसे तो मैं 9 बजे भी पहुंच जा सकती हूँ।
0: नहीं लेकिन थोड़ा सा जल्दी, ठीक है?
3: थोड़ा सा जल्दी कितना बजे? 8 बजे?
0: 8 बजे नहीं लेकिन आप 9 बजे तक निकल आइए, 8 से 8:30, 9 बजे तक,
3: तो मुझे वहाँ पे जाके सुनना पड़ेगा शुरुआत।
0: हाँ ये अच्छा है ना, पहुँच जाएंगे, घर वालों की बात भी हो जाएगी, जहाँ पे आप जाते हैं उन लोगों की बात भी हो जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: हाँ वो तो ठीक है, पर मेरे को शांत एकांत में सुनने को अच्छा लगता है आपका शो। ठीक है मैं कोशिश करूँगी, मैं आपका भी बात में मानूंगी। ठीक है तो मैं कल से मैं जल्दी जाएगा।
0: ये अच्छे बच्चों की निशानी, और आप देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं। बहुत बहुत प्यारी बात है अगर आप सच में ऐसा करने वाली, मुझे पता है कि कितने इमोशंस है आपके इस शो से कि आप उसको सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप चीज़ें सोचते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अपनी सेफ्टी, अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए यहाँ आके फिर आप उस चीज को कंटिन्यू करिएगा।
3: अच्छा मैं एक काम करूंगी,
0: हाँ।
3: कैसे मैं रेडियो ले जाके जाऊंगी, रेडियो वाली रेडियो वहाँ पे रख दूंगी, एक दूसरा रेडियो लेके मैं घर में सुना करूंगी।
0: ठीक है, ये भी सही है।
3: हाँ मोबाइल में मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, मोबाइल पे मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती, थोड़ा मैं मोबाइल का जीवन से थोड़ा दूर करना चाहती हूँ, ताकि मैं मोबाइल से मेरे को बहुत कुछ तकलीफ मिली है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सही आपका डिसीजन है, एक रेडियो यहाँ एक रेडियो वहाँ,
3: वही करना पड़ेगा।
0: बहुत बहुत
3: प्यारा है। नौ बजे से पहले पहुँचूंगी, ताकि 9 बजे के बाद भी तो आपका शो में आप आ जाते ना, तो 9 बजे से पहले जाएगा। हाँ, और मोबाइल से और एक चीज का फायदा हुआ है,
0: तो
3: जो मेरे भाई मेरे से 10 साल से मेरे से बात नहीं करता था ना, तो मोबाइल पे अब फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रील वगैरह सब भेजने लगाए, एक दो बातें भी करने लगाए, और मेरी पुरानी सहेली लोगों के साथ मेरे को थोड़ा बहुत बातचीत भी हो गई है फेसबुक के जरिए, ताकि मेरी बहन बड़ी मोबाइल ली है तो इसके वजह से सबको ही जुड़ गई है,
0: जुड़ गया उस पे। वाह क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात आपने कही। एंड यूं ही परिवार जुड़ा रहे, यूं ही आप खुश रहें, ऐसे ही बचपन आपके अंदर बरकरार रहे, इसको लेकर मेरी पूरी दुआएं आपके साथ में।
3: और आज का सुविचार बहुत ही अच्छा था कि आपने अपने लिए भी थोड़ा सोचना जरूरी है, जीवन के लिए अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी है।
0: हाँ, आज का सुविचार ये कह रहा था कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी ताकत है, एनर्जी है, उसको आप किस समय किन लोगों पे खर्च कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये जरूरत है, क्योंकि आपके पास चीजें बड़ी सीमित है, आप सब तरफ नहीं बांट सकते उतना उतना, इसलिए
3: आज तो मैं फिलहाल 11 बजे बांट जाऊंगी, कल से मैं जरूर 9 बजे के जाने से शुरू करूंगी।
0: क्या बात है, ये वादे के साथ
3: 9 बजे से पहले पहुंच जाऊं तो सही है, ताकि मैं सुन सकूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आपकी ये तमन्ना पूरी हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारी बात है आपने की, और आपकी ये दुआ जरूर कबूल हो जी, थैंक यू सो मच। सो भाई, ये तो थी हमारे साथ में सविता दुबे जी, जो कि हरखापुर गोंडा से बात कर रही थी, और बड़ी प्यारी बात कही आपने, दो प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट्स बताए, उसके बाद फिर किस तरह से उसका ओवरकम करना है, उसका सोल्यूशन क्या, ये भी आपने बताया, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो
4: सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, ये आवाज जानी पहचानी काफी ज्यादा है।
4: इतनी जानी पहचानी है सर,
0: इतनी कि इसमें प्रबलता नजर आ रही है। कैसे हैं आप?
4: बिल्कुल चकाचक हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपके दिन की शुरुआत तो मुझे लगता है पूछने वाली नहीं भाई, आपकी तो बॉडी बिल्डिंग से ही शुरुआत होती है।
4: सर मैं सोता अपने मर्जी से हूँ, उठता दूसरे के मर्जी से हूँ।
0: अरे वाह, ये जिंदगी में इतना दो दो दोराहे पे जो आप खड़े हैं, सोते दूसरे की मर्जी से, उठते अपनी मर्जी, मतलब सॉरी, सोते अपनी मर्जी से, उठते दूसरे की मर्जी से, क्या बात।
4: जी जी जी,
0: तो ये उठने का होता क्या है, जब आप उठते हैं तो उसके बाद आपकी दिनचर्या क्या होती है?
4: बहुत अच्छी होती है, बस अगर कोई झट से उठाए फट से मैं उठता हूँ, थोड़ी देर के बाद तो पहचान में आता है आप कौन है।
0: अच्छा, पहले ब्लर दिख रहा होता है सब कुछ, धुंधला धुंधला सा,
4: बिल्कुल ब्लर, हाँ ब्लर कर दिया जाता है, फिर पूरा कैमरा हमारा ब्लर में आ जाता है,
0: कहाँ हूँ मैं।
4: अच्छा अच्छा सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि सोते सोते कोई ऐसे सपनों में आप मंजिल से गिर रहे हैं और सीधा आके बैठ के नीचे गिर जाएं?
0: हाँ, ऐसा हुआ कि पहाड़ से गिरते गिरते फिर आंख खुल गई थी, उठ के बैठ गया, देखा अरे रे बच गए भैया, एक बार नहीं कई बार चीजें हुई, अरे रे बच गए।
4: ऐसा मेरे साथ 10 चक्कर हो चुका है सर, मैं रजाई लेके नीचे, ठंडी में ज्यादा होता है सर।
0: ठंडक में ज्यादा होता है,
4: हाँ रजाई के साथ नीचे, वो तो बाद में पता लगता है, हम तो तीसरी मंजिल के नीचे हैं, जब आंख खुली तो पता लगा रजाई और बेड के नीचे पड़े हैं।
0: अच्छा, पहले लगता होगा भूसे में गिर गए, फिर लगता होगा भूसा नहीं, ये तो हमारी रजाई है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा ख्वाब तो बचपन में बहुत देखा है, बिना टैक्स के आता है और जबरदस्त तरीके से डराता है, फिर उठा के बैठा देता है। ऐसा तो हुआ।
4: और एक बार मैंने हैरी पॉटर देखा था सर, ना हैरी पॉटर है जो झाड़ुओं पे घूमता नहीं है, ऊपर मतलब उड़ने वाला सीन।
0: वो झाड़ुओं पे नहीं घूमता, अपनी एक पर्सनल झाड़ू पे ही घूमता है।
4: हाँ मतलब वही वही है सर, हैरी पॉटर देखा, जिस रात को मैं देखा उसी मतलब उसको देखते देखते मैं सो गया, और वही चीज मतलब हमारे साथ भी होने लगा कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ।
0: ओह माय गॉड, अच्छा।
4: और जब उड़ते उड़ते मतलब एक जगह ऐसा स्टॉप आता जहाँ मतलब हैरी पॉटर का जो एंटी होता है वो गिरता है नीचे ना, ऐसे मैं भी गिरा।
0: कुछ ज्यादा ही आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं जो आप चीजों को ले लेते हैं अपने अंदर। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दिनचर्या की जहां तक बात रही, आपने बता ही दिया कि आपकी दिनचर्या अच्छी शुरुआत होती है, और ये बहुत अच्छी बात है कि फोन से दूर होके होती है, सबसे अच्छी बात तो ये है।
4: जी हाँ, फोन से दूर तो है ना, जब सोने के समय तो मैं कोई मतलब उसमें कोई मैनेज नहीं करता हूँ, सोने के समय मोबाइल दूर, मतलब जो चीज जगाने वाला चीज है वो सारा दूर।
0: क्या बात है। ये बहुत।
4: और दूसरी बात है सर, संडे पे बात हो रही थी, संडे का दिन कैसा होता है, मतलब क्या बैलेंस लेके चलते हो आप लोगों को, करना क्या है संडे को?
0: बिल्कुल।
4: तो पहली बात है, मैं अपना जो अपना हिसाब से मैं चलता हूँ कि मैं बैलेंस नहीं बनाता कि संडे को ही करेंगे सारा काम हम।
0: अच्छा।
4: मैं 8 घंटा दूसरों का मतलब जो कुछ है, जो कोई भी जॉब है तो मैं 8 घंटा देखता हूँ उसके, 8 के बाद मैं अपना खुद का सुनता हूँ।
0: अच्छा, 8 बजते ही आपकी पर्सनालिटी स्विच हो जाती है एक बार?
4: बिल्कुल, उसमें कोई मैनेज नहीं, कोई भी हो, उसके बाद मैं अपना खुद का सुनना शुरू करता हूँ, फिर अपने बारे में जो हमारा काम है, जो अगर मान लीजिए कि वो 2 दिन का काम है तो उसे मैं घंटों में मतलब उसे निपटाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बैलेंस बना के कि मैं संडे को आराम पे हूँ तो फिर मैं क्या करूँ भाई, इसको करना उसको करना, नो। हमने एक लेवल से सब काम किया है आज तक, ऐसा नहीं कि संडे का दिन आया तो इस चीज को करना है भाई, संडे को ही करेंगे इसको हटा दो, नो।
0: क्या बात,
4: बैलेंस बना के नहीं रखना है हमें इसे। अभी जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो इंसान पहले से अगर दौड़ भाग के सब कुछ की व्यवस्था कर ले, खाने पीने की, दोस्तों की, ये चीज दोस्त आएंगे तो ये देंगे वो देंगे, अब पता लगे जिस दिन प्रोग्राम आपका है कि बैठ के हम इतना पैसा खर्च करे हैं इंजॉय करें, तो उस दिन हम पता लगे भाई ये चीज खत्म हो गई मार्केट, वो चीज खत्म हो गई मार्केट, तो हम किस चीज का पार्टी कर रहे थे फिर बैठ के, आज तक तैयारी क्या की हमने।
0: बिल्कुल, जो आपने तरीका बताया ये कई जगह सटीक बैठता है कि हम इतना ज्यादा भी चीजों को प्लान नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होती है।
4: जी,
0: बहुत सही बात।
4: इसको अगर प्लान में बैठाया जाए कि नहीं हम संडे को करेंगे सर, तो बहुत बैलेंस हो जाएगा, वो माइंड इतना वो कहते नहीं, सोचने की क्षमता इतनी नहीं है।
0: बिल्कुल।
4: अब इसी को अगर देखा जाए तो आप सर पहले आज के 2-4 साल पहले किसी से बात करते होंगे तो उससे अगर हल्का सा मजाक भी करके होंगे तो हंस के टाल देता था, याद है ना। और आज के डेट में किसी से आप बात करना चाहोगे और जरा सा भी एक शब्द अगर इधर का उधर हो गया तो हाइपर हो जाएगा।
0: सही बात है।
4: तो सोचने की क्षमता खत्म किसने किया, मोबाइल ने, नेटवर्क ने, रील ने, बहुत कुछ ऐसी चीज है सर जो मतलब माइंड को बहुत ज्यादा प्रेशर दिया है।
0: क्या बात है। इस बात मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो लाइन आपको दोहराना पड़ेगा क्योंकि आप वैसे ही पर्सनालिटी हैं। आपको बोलना है, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, मैं दुनिया में निराला हूँ। चलिए गाइए।
4: नहीं सर, मुझे गाना नहीं, गाना के सिवा कुछ भी करवा लो।
0: इतनी ही लाइन बोलना है, इतनी ही लाइन बोलना है।
4: नहीं नहीं,
0: हाँ हाँ, क्योंकि गाना तो हम झेल भी नहीं पाएंगे ना आपका, हमें इतनी लाइन सुनना है।
4: हम एक ही गुनगुनाते, कभी कभी एक लाइन दो लाइन गुनगुना लेते
0: अच्छा,
4: हैं
0: अच्छा, अच्छा।
4: जिन के है 4 दिन, ओए ओए।
0: ये क्या था, ये था क्या?
4: वो ओए, तो ओए, जिने के है 4 दिन,
0: 4 दिन तो समझ में।
4: 5वां दिन तो दोस्त खा जाएंगे, 6वां दिन परिवार खाएगा, 7वें पे बीबी 7 फेरा लेके आएगी वो खाएगी, 8वें पे अपने आप को क्या ध्यान देंगे सर हम।
0: 8वें दिन अगर आप ऐसी बदमाशी करेंगे तो पिताजी से मार खाएंगे।
4: नहीं नहीं नहीं, बदमाशी हर इंसान के अंदर छुपी है।
0: बिल्कुल, बेशक सही है।
4: हाँ, कोई पर्दा उठा के जी रहा है तो कोई पर्दे में जी रहा है, लेकिन सब लोग एक तरह एंजॉय कर रहा है।
0: क्या बात है। और ऐसे ही आप फ्री स्टाइल जीते रहिए, ऐसे ही आप बढ़िया एंजॉय करते रहिए, हमारी दुआ है।
4: आज मुझे ये पूछना था सर कि हम तो आपका पूछते हैं सर, लेकिन कभी आपने भी याद किया कि प्रबल आज दिखाई नहीं दे रहा?
0: आप
4: कभी याद किया आपने?
0: कभी याद किया मतलब?
4: कभी आपने सोचा कि आज प्रबल चैट में नहीं है, रेडियो पे नहीं है?
0: मुझे पता है जब रेडियो पे नहीं है, चैट में नहीं है, रोड पे नहीं है, तो फिर जिम में ही है ना। ये तो दुनिया जानती है।
4: सारा दिन जिम में थोड़ी ना रहेंगे हम, सारा दिन जिम में नहीं रहेंगे सर।
0: अरे आप नहीं भी रहते हुए ख्यालों से वहीं रहते हैं आप।
4: ए तो मजाक का सर, मुझे पता है अपने अपने लिसनर का आपको याद रहता है कि हमारा ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया।
0: बेशक सही,
4: ये तो है, तो पता रहता है सर।
0: बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
4: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और स्वस्थ रहिए, यूं ही खुश रहिए,
4: ऐसे ही खुशी आप लोग से बांटते रहें।
0: बिल्कुल। बेशक, थैंक यू सो मच।
4: धन्यवाद
0: सर। सुबह ये तो थे हमारे साथ प्रबल मिश्र, और ऑफ कोर्स हमने इनसे बातचीत किया। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो
5: हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, कैसी हैं अनु आप?
5: बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ आज मैं।
0: क्या हुआ आपको?
5: मेरा दिमाग खराब हो गया है।
0: अच्छा, दिमाग खराब आपका क्यों हो गया है?
5: जिस चीज की आप बात कर रहे हो ना, उसी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
0: जिस चीज की बात कर रहे हैं, क्या मतलब आपके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है?
5: नहीं, दिन की शुरुआत तो मेरी अच्छी हुई थी।
0: तब नहीं,
5: ये मोबाइल फोन है।

0: देख पाते हैं।
1: हाँ
0: हाँ जी,
1: जब रेडियो सुनते हैं तब एकदम फ्री रहते हैं, कोई भी काम करे कुछ भी करे, और जब कॉल करते हैं तो निगाहें स्क्रीन पे होती है।
0: चलिए इसी पे कोई गाना सुना
1: दीजिए। हाँ, ये बात अलग की है कि मैं बगैर स्क्रीन को देखे हुए भी कॉल कर लेती हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, इतना बढ़िया।
1: एक हाथ से काम करती रहती हूँ और एक हाथ से कॉल लगाती रहती हूँ।
0: अच्छा यही काम रहता है आपका?
1: अरे दोनों हाथ से काम करती हूँ, एक हाथ से बाकी जो काम वो करती है, एक हाथ से कॉल लगाती हूँ।
0: हाँ मतलब एक हाथ को आपने पहले ही अलॉट कर दिया है काम करने को लेकर के, ये अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। कुछ गाना चाहेंगे आप?
1: सर पता है मैं 1000 रन बना के आई हूँ, आप सबको पुरस्कार दिलाते हो मुझे क्या दोगे?
0: 1000 रन किस चीज का?
1: अभी कॉल किया 1000 बार।
0: अरे वाह तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1000 कॉल्स का सर्टिफिकेट हम रेडी रखवा रहे हैं, आप आइए रेडियो स्टेशन पे उसको रिसीव करिए जब भी आपको। आज संडे बढ़िया रहेगा।
1: नहीं नहीं मैं संडे को नहीं आऊंगी, आज तो छुट्टी है।
0: अच्छा कोई नहीं, वर्किंग डे में आप आ जाइएगा।
1: लेकिन सर खाली सर्टिफिकेट ही मिलेगा, इसके साथ कुछ कैश भी मिलेगा?
0: कैश कैश के पीछे दुनिया भाग रही है, और जो दुनिया भाग जाता है या भगती है उसके पीछे हम तो बिल्कुल नहीं भागते हैं।
1: अरे सर वो कैश नहीं, खाने पीने के लिए भी तो कुछ हो सकता है।
0: तो वो तो है ही है, वो तो है ही है,
1: वो मिलेगा,
0: बिल्कुल मिलेगा।
1: पक्का?
0: पक्का मिलेगा।
1: ओके सर पता है अभी
0: नहीं,
1: मैंने
0: पता
1: ना
0: नहीं है।
1: एक गाना भी लिखा है।
0: अच्छा सुना रही है आप?
1: अभी
0: सुनाने वाली है आप?
1: Okay. अभी कॉल करते करते लिख लिया।
0: चलिए सुनाइए।
1: सुना दूं? ता नंबर के बोलिया तो हे लागे रे, करे लिया ता नंबर के बोलिया तो जहरे लागे रे, कैसे करी बतिया को लिया ना।

0: बोलिया तो हे लागे रे ता नंबर कई बोलिया तो हमके जहेरे लागे रे पूरे पूरे जो पूरे पूरे जो तराई करी तब को लिया हमार लागे रे ता नंबर के बोलिया तो हमके जहेरे लागे रे।
1: क्या बात है, तो आपने जो आपके साथ हुआ वो पूरा गाने में निकाल दिया सारी भड़ास आपकी।
0: लेकिन सर पता है इसमें हम अकेले नहीं थे, हमारी सिस्टर
1: जी जी लगा कि दोनों की भड़ास थी इसमें, तभी ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अब वक्त हो रहा है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा।
0: ओके सर, बाय
1: बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। भाई बहुत अच्छे से बात की इन्होंने और अच्छा तरीका ये लगा कि भाई जैसी सिचुएशन हो उसको आप गाने में लिख दो और गुनगुना दो, आपकी जो भड़ास है, आपकी जो तमन्ना है, वो सब कुछ जो है वो जाहिर हो जाती है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने कॉल किया और उन सब का भी शुक्रिया जो कॉल नहीं कर पाए। फिलहाल हम मैसेजेस की तरफ ज़रूर आएंगे और बताएंगे कि क्या क्या मैसेजेस आ चुके हैं, किन किन लोगों के हैं। तो हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद मैसेज आया था नंदलाल तिवारी जी का अमर उजाला से, गोंडा से, जीवन का हर दिन बेहतरीन होता है क्योंकि कोई भी दिन लौट कर नहीं आता। कितनी प्यारी बात कही आपने, थैंक यू सो मच। जिनके मन में सफलता पाने के सुदृढ़ इरादे होते हैं उनके पास किसी भी तरह के बहाने नहीं होते, वाओ वेरी नाइस। इसके अलावा दोनों गाने अच्छे लगे, धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर हमारे उद्दालक शर्मा जी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। मीनू जी गोंडा से, गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड प्रबल मौजूद हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए जाते जाते एक कॉल और आ गई है, देखते हैं भाई कौन है कॉल पे। हाँ जी हेलो
2: सर जी, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, पहचानी सी आवाज़ लखनऊ की आशु मिश्र जी की है, कैसी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके दिन की शुरुआत कैसी हो रही है आजकल?
2: बहुत अच्छी हो रही है सर जी।
1: आप कैसी कर रही हैं प्लीज बताएं उसके बारे में।
2: सर जी मैं सुबह उठती हूँ, पहले अपने हाथों को, हथेलियों को देखती हूँ, माथे लगाती हूँ, धरती माँ को प्रणाम करती हूँ।
1: अरे वाह क्या बात
2: सर जी। फिर बाहर जाके गेट खोलती हूँ, पूरा घर की सफाई करती हूँ, चिड़ियों का पानी बदलती हूँ, दाने डालती हूँ, गार्डन में पानी डालती हूँ।
1: क्या बात है
2: सर जी, यही शुरुआत है मेरी रोज की।
1: तो आप मतलब एक छोटी

0: छोटी सी नन्ही सी फैमिली को और अपने साथ में रखे हुए हैं, वो है चिड़ियों की फैमिली। क्या बात है,
1: बिल्कुल सर,
0: बहुत
1: बिल्कुल सर बनाई है। सर जी मैं गत्ते, जो गत्ते आते हैं बच्चे मंगाते हैं प्रोटीन, उसका मैं घोंसला बना के रखी हूँ, उसमें चिड़िया आती है, अंडे भी दे रखे हैं।
0: क्या बात है, वाओ, मतलब आपने तो एकदम बातचीत का दिशा ही चेंज कर दी। इतनी प्यारी बात आपने बता दी कि हम लोग उसी में खो गए।
1: बिल्कुल सर जी, मैं रोज पानी बदलती हूँ उनका, रोज दाने डालती हूँ, प्रकार की चिड़िया आती है सर जी।
0: नहीं बहुत अच्छा, और मेरी तरफ से दुआएं आपको बहुत सारी है।
1: बिल्कुल सर जी,
0: क्या
1: जानवरों को भी पानी जरूर देती हूँ सर, बाहर बाल्टी भी रखी हूँ, जानवर पानी बेचारे कहाँ पाए।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम इतने थोड़े से काम में आजकल हर घंटे पे प्यासे हो जाते हैं, बट जानवरों से कौन पूछे और उनको साफ पानी कहाँ मिले। सच बात है, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल भी किया। शुक्रिया शुक्रिया, आज थोड़ा सा वक्त की कमी है और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट संडे में प्लीज आप करिएगा और हम आपसे थोड़ा सा और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। सो ये तो थी हमारे साथ में आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ, और फिलहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का इस प्रोग्राम से, और नेक्स्ट प्रोग्राम में अब मिलिए गीता दीदी से, हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM।

0: हम्टी डम्टी विद गीता दीदी। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं चिल्ड्रंस स्पेशल प्रोग्राम संडे स्पेशल हम्टी डम्टी विद गीता दीदी, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। सो कैसी हैं गीता दीदी आप?
1: बिल्कुल ठीक।
0: बिल्कुल ठीक कोई कैसे हो सकता है?
1: सवाल मैं तो हूँ, संडे आता है मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ।
0: संडे आता है
1: क्योंकि देर से उठना, देर से नहाना, देर से खाना और जल्दी यहाँ आना।
0: देर से उठना, देर से खाना और जल्दी यहाँ आना, क्या बात है। दो बार देर के बाद तीसरी बार जल्दी हो गई। इस तरह से बैलेंस करती हैं आप?
1: बिल्कुल।
0: आज क्या खाया नाश्ते में?
1: लालच में पड़ जाओगे बच्चों।
0: लालच में पड़ जाएंगे, ऐसा कौन सा है?
1: पानी आ जाएगा मुंह से।
0: पानी आ जाएगा? ऐसा क्या है?
1: आज मैं बहुत बहुत अच्छी डिशेस खा के आ रही हूँ, मालूम है क्या?
0: नहीं, तभी तो पूछ रहा है।
1: मीठा मीठा दही, साथ में जलेबी और आलू भरे पराठे, उसके ऊपर से बटर।
0: ओ माय गॉड, क्या बात है। इसीलिए आपने कहा था कि भाई मुंह में पानी आ जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। तो इतना सब कुछ ये आपने बनवाया था कि खाया था, या कैसे क्या किया था?
1: अब खाना ही ज्यादा अच्छा लगता है बनाने में तो।
0: देर से उठना तो बनाना आज नहीं हो पाता।
1: बिल्कुल।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है। तो इतनी बढ़िया सी आपने शुरुआत की है खा करके। अब मुझे लगता है कि अब बढ़िया सी कोई कहानी ये शुरुआत कर दी, ताकि इस शो की भी बहुत बढ़िया से शुरुआत हो जाए।
1: बिल्कुल, कहानी तो मेरे पास बहुत अच्छी है, लेकिन मालूम है क्या?
0: क्या,
1: आज जब मैं आ रही थी तो एक बच्चे को मैंने देखा, वो साइकिल चला रहा था। तो मैंने कहा ऐसे ही सब लोग अगर साइकिल चलाने लगे तो जो मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल बचाना है, सोना नहीं पहनना है, तो कितना अच्छा हो जाए, लोगों की सेहत में भी सुधार हो जाए। और हमारे देश में जो इतना कंजप्शन बढ़ गया है इस पेट्रोलियम का, वो थोड़ा कम भी हो सकता है, क्यों?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और वो साइकिल देख के मुझे अपना बचपन भी याद आ गया, और शायद आपको भी अभी याद आ जाए जब मैं बात करूं।
0: नहीं, मैं तो दो दिन पहले तक साइकिल भी चला रहा था।
1: देखिए, हम लोगों में ना बचपन में ये नहीं, आजकल बच्चों को देखिए बहुत सारी इलेक्ट्रिक राइड्स दे दी जाती हैं अभी से, लेकिन हम लोगों में क्या था ना कि किसी की साइकिल अगर खड़ी है, आ गया है कोई, तो गायब हो जाना लाजमी है।
0: अच्छा।
1: तो पापा का कहना ये था, पहले साइकिल सीख लो, फिर मैं खरीदूंगा। और वो साइकिल मालूम कितनी बड़ी होती थी? हम लोग पढ़ते थे फर्स्ट सेकंड में, तो कितने बड़े होंगे, हाइट में बहुत छोटे होते थे, मतलब साइकिल हमसे बहुत ऊंची होती थी। तो उसको शुरू करते थे, तीन चरण में वो साइकिल हम लोग सीख पाते थे।
0: तीन चरण में?
1: हाँ, तो पहला चरण तो होता था कैंची।
0: कैंची होता, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: साइकिल के वो जो ट्रायंगल बना होता है, उसके अंदर से पैर फंसा करके,
0: हाँ,
1: और उस पर बैलेंस करके साइकिल को चलाना।
0: सही कहा, सही।
1: और उसके बाद फिर आता था डंडे का नंबर।
0: हाँ,
1: तो आधा पैर डंडे में लटकाते ही डर लगता था कहीं गिर ना जाए।
0: सही।
1: और उसके बाद धीरे धीरे धीरे वो पूरा पैर नीचे आता था, और जब नीचे आ जाता था उसके बाद गद्दी का नंबर आता था।
0: वाओ, मतलब साइकिलिंग का आपने पूरा एकदम तो याद दिला दिया।
1: बहुत मजा आता था। और वो समय था कि हम लोग को ऐसे साइकिल नहीं मिल जाती थी, बहुत परिश्रम करना पड़ता था, और ये सफर जो बहुत मजेदार होता था। वैसे गिर जाए तो देखते थे कि ये कोई आए उठाने के लिए और सहलाए और समझाए, लेकिन जब साइकिल से गिरते थे तो चुपचाप उड़ जाते थे और दर्द का एहसास भी नहीं होता था।
0: सही कह रहा है।
1: ये सारी कहानी हम लोग के बचपन में, आपके साथ भी हुआ है कि नहीं?
0: बिल्कुल हुआ है, क्योंकि आपने जो कैची से शुरुआत की, कैची से ही शुरुआत होती थी, उसके बाद डंडे पे आते थे, फिर गद्दी पे, और फिर चौथा फेज होता था कि पीछे बैठ के स्टाइल में चलाओ।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ कैरियर पे, जहाँ पे बाकी के बैठाते थे, वहाँ खुद बैठ के।
1: कई बार तो हैंडल छोड़ करके,
0: अरे वो तो नक्शेबाजी कहलाता है।
1: तो ये सारे पापड़ बेल चुकी हूँ मैं, और होप करती हूँ कि आपने भी बेले होंगे।
0: क्या बात है, बिल्कुल। और मीनू जी ने कहा है, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, कैसे हैं आप दोनों?
1: मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, सर का तो सर जाने।
0: बिल्कुल, मैं भी साइकिल चला के तो खैर काफी अच्छा हो गया हूँ। और प्रबल ने कहा है, मैम जी राधे राधे, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है।
1: जय श्री राधे, जय श्री राधे।
0: फिर मीनू जी लिखती हैं कि FIR उसकी तरफ से आया, आवाज थी ये बच्चे कितने दुष्ट हैं, भगवान कहाँ से आ गए हैं, शैतान है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी साइकिल गायब होती थी
0: वही चीज़
1: तो समझिए कि FIR ही हो जाती थी घर में।
0: क्या बात है, ये सुहानी यादें हमेशा हमारी किताबों में रहेंगे यादों की। अब हम चलते हैं कहानी की तरफ जो गीता दीदी लेकर आई हैं आज।
1: तो अब ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, भूत प्रेत वाली।
0: होई होई
1: अब बड़े होकर के तो विश्वास नहीं, लेकिन अगर पहले कोई भूत प्रेत की कहानी सुना दी तो डर लगता था और रात में उसी तरीके के सपने भी आते थे।
0: वही आते थे, सही बात है।
1: तो चलो एक शुरू करते हैं, प्यारी सी कहानी है।
0: बिल्कुल।
1: कि बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा समृद्धशाली राज्य था और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, यानी कि बड़े बड़े अमीर जमींदार लोग रहा करते थे। उनके पास अकूत धन दौलत, खेत खलियान और साथ में ढेर सारे नौकर चाकर, इनकी तो कोई कमी ही नहीं थी। तो एक ऐसे ही जमींदार रहते थे और उनके पास बहुत सारी धन दौलत, बहुत सारे खेत खलियान और उनके पास एक प्यारी सी बेटी भी थी। उसका नाम था चंपा और चंपा जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और चतुर भी थी। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, अब जो जमींदार थे, चंपा की शादी की चिंता होने लगी तो, और उसकी सुंदरता, उसके गुणों की चर्चा भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो जब वो विवाह के योग हुई तो वो तो ढूंढने का सोच ही रहे थे, लेकिन तब तक बहुत सारे राजाओं ने, मंत्रियों ने और बहुत सारे जमींदारों ने अपने पुत्रों के लिए रिश्ता जमींदार के घर भेजना शुरू कर दिया। अब जमींदार तो बड़ी उलझन में पड़ गए, क्या करें, इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी का विवाह किससे करें। अंत में उन्होंने चंपा से ही सलाह मांगी। चंपा ने कुछ सोच समझ कर उत्तर दिया, पिताजी पूरे राज में घोषणा करवा दीजिए कि जो व्यक्ति तीर अंदाजी में अचूक निशाना लगाएगा उसी से मेरा विवाह होगा। तो जमींदार ने ठीक वैसा ही किया। राजभर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अगले ही दिन प्रतियोगिता शुरू हो गई और दूर दूर से ढेर सारे राजकुमार, मंत्रियों के पुत्र और बड़े अमीर घरानों से लोग, यानी युवक आने लगे। सब ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया पर कोई भी जो सटीक निशाना नहीं लगा पाया, हार जाते थे लोग। तो लोग आपस में बातें करने लगे कि राज में क्या एक भी ऐसा सच्चा तीरंदाज नहीं है जो राजकुमारी के शर्त को पूरा कर सके। तो उसी राज में चंदन नाम का एक सुंदर सा युवक रहता था और वो बहुत ही सीधा साधा और मेहनती भी था। किसी से बैर की भावना नहीं थी उसके दिल में और जितना कमाता था उसी में बड़े संतोष से अपना जीवन बिता रहा था। जब उसने लोगों को तीरंदाजी की हंसी उड़ाते देखा और सुना तो उसका मन बड़ा दुखी हो गया। फिर उसने निश्चय किया कि वह भी अपनी कला आजमाएगा। चंदन जब जमींदार के घर की ओर चल रहा था तब रास्ते में एक पुराना पीपल बरगद का पेड़ उसे मिला। उसने सोचा लाओ यहाँ पे कुछ देर आराम कर लेते हैं। पर उसी पेड़ पर एक भूत भी रहता था, यानी पिशाच रहता था और उसने भी जो चंपा से शादी का मन बना लिया था। अब वहीं पर वो विश्राम करने लगा। पिशाच चंपा से विवाह करना चाहता था पर उसके लिए वो इंसान का रूप धारण किए बिना तो ये संभव ही नहीं था। तो उसने चंदन से उसके आने का कारण पूछा तो भोले भाले चंदन ने सारी बातें उसको सच सच बता दी। अब पिशाच जो था बड़ी जोर से ठहाका लगाकर हंसा और बोला, जमींदार तुम्हें इतनी आसानी से अपनी बेटी नहीं देंगे, वह कठिन परीक्षा लेंगे, लेकिन मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसे पढ़कर अगर वो तीर चलाओगे तो तीर का निशाना कभी चूकेगा नहीं। अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो तब मैं तुम्हें वो मंत्र सिखा दूंगा। चंदन ने पूछा, क्या शर्त है? तो उस भूत ने कहा, 1 साल बाद तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे नौकर बनकर यहाँ रहोगे। और हाँ, अगर तुम मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ दो जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं तभी तुम मुक्त हो पाओगे। अब चंदन ने बिना अधिक सोचे समझे उसकी शर्त को मान लिया। पिशाच ने उसे मंत्र सिखा दिया। अब चंदन जमींदार के सामने पहुंचा तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी शुरू की। पहले उन्होंने उड़ते हुए पक्षी के एक पंख को गिराने को कहा। चंदन ने झट से मंत्र पढ़ा और तीर चला दिया। तीर लगते ही पक्षी का एक पंख नीचे गिर पड़ा। फिर जमींदार ने दूर चल रही एक बकरी की पूंछ काटने को कहा। चंदन ने फिर मंत्र पढ़ा और तीर चला दिया। बकरी की पूंछ कटकर नीचे गिर गई। अब की बार चंदन ने दूर जाते एक राहगीर की पगड़ी की ओर इशारा किया कि वो पगड़ी अगर गिरा दो तो मैं मान लूँ कि तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो। चंदन का तीर सीधा जाकर पगड़ी पर लगा और पगड़ी नीचे गिर पड़ी। जमींदार को बड़ा आश्चर्य हो गया कि अब क्या करें। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने फिर चंपा का विवाह उसके साथ कर दिया। एक वर्ष बीतने को था। अंतिम दिन चंदन को उस भूत की शर्त याद आ गई तो बहुत घबरा गया और उसने सारी बात चंपा को धीरे से बताई। चंपा बुद्धिमान थी। उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा उपाय करूंगी कि पिशाच हार जाएगा। चंपा ने अपने शरीर पर गोंद लगाकर खूब सारी रुई चिपका ली और अपने सर पर पक्षियों के पंख लगा लिए, चेहरे पर सिंह का मुखौटा पहन लिया और पीछे मोर जैसी पूंछ बांध ली। उसका रूप इतना विचित्र हो गया कि कोई भी उसको पहचान नहीं पा सकता था। अब एक साल पूरा हुआ, तब पिशाच चंदन को लेने आया। चलो, चंदन उसे जंगल में ले गया जहाँ चंपा अपने विचित्र रूप में घूम रही थी। चंदन ने पिशाच से पूछा, बताओ वो कौन सा जीव है? अगर तुम बता दो तो मैं उसे तीर मारूं। पिशाच ने ध्यान से देखा और चारों तरफ उसके घूम घूम करके उसको आजमाया, पर अजीब सा जीव था, उसकी पहचान हो ही नहीं पा रही थी। अंत में उसने हार मानते हुए कहा कि मैं नहीं जानता वो क्या है। अब चंदन हंस पड़ा और बोला, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी बेगारी से मैं मुक्त हुआ और वो कोई जीव नहीं, मेरी पत्नी चंपा ही है। अब पिशाच स्तब्ध रह गया। उसने अपनी हार स्वीकार करी और चुपचाप वहाँ से चला गया। तब से चंदन और चंपा सुख शांति से जीवन बिताने लगे। उनकी बुद्धिमानी और साहस की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। तो अदनान जी, कैसी लगी आपको ये कहानी?
0: बहुत ही विचित्र लगी, जिसमें मोर भी था, शेर भी था और बाघ भी था।
1: देखिए कितना इंटेलिजेंट वो युवक था, तो उसने जो है चंपा को जीत लिया। और चंपा कितनी बुद्धिमान चतुर थी कि उसने पिशाच को भी हरा दिया।
0: बुद्धिमान भी थी प्लस ईमानदार भी थी अपने पति को लेकर।
1: जी बिल्कुल।
0: तो बहुत ही तो प्यारी स्टोरी बताई आपने।
1: तो बिल्कुल, अब कमेंट्स की बारी है और मैं कहूंगी कि जल्दी से आकर के कमेंट्स में बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी।
0: बिल्कुल सुभाई, ये पिशाच, चंपा और चंदन की कहानी थी और सुनने के बाद आपके क्या रिएक्शंस हैं? वाओ मैम, वेरी नाइस लिखा है मीनू जी ने।
1: जी थैंक यू मीनू जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी कि आपको पसंद आई, और मुझे उम्मीद है कि हमारे और भी श्रोताओं को ज़रूर पसंद आई होगी। अब गीता दीदी फिलहाल चल रही हैं चंपक कली पढ़ने वाले बच्चों के पास, ना कि चंपक
1: पढ़ने वाले बच्चों के पास।
0: चंपक पढ़ने वाले बच्चों के पास। तो अब दीदी जाएंगी और बच्चों के साथ वापस आएंगी। बच्चों के पास कई साइंस के सवाल हैं, कई कहानियां हैं, कई स्टोरीज हैं और कई सारी कविताएं हैं
1: और उनकी जिज्ञासाएं हैं जिन्हें मैं अभी चुटकियों में शांत करती हूँ।
0: क्या बात है भाई। तो चलिए गीता दीदी को दे दिया जाए इजाजत कि बच्चों को लेकर आए। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए जबरदस्त राइम्स ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM।

0: One potato, two potatoes, three potatoes, four. Five potatoes, six potatoes, seven potatoes more.
1: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
10: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
11: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
10: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
11: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
10: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
11: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
12: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी। भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
3: रम बच्चों पे सितम।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब?
1: बहुत अच्छे
2: दीदी।
0: बहुत अच्छे हो
2: जी दीदी।
0: लग रहा है कि आज सब बहुत अच्छे हो। अच्छा ये बताओ, क्या सुबह सुबह तुम लोगों ने क्या नाश्ता किया है? सबसे पहले अनन्या बताएगी। अनन्या, क्या खाना आज नाश्ता किया है?
3: दाल चावल।
0: दाल चावल? ओ माय गॉड, इतनी सुबह सुबह दाल चावल। ओ, और वो अनन्या, दाल चावल इतनी सुबह सुबह नहीं खाते बेटा। सुबह सुबह क्या पीना चाहिए?
3: चाय।
0: दूध पीना चाहिए। अभी आप बहुत छोटे हो तो सबसे पहले दूध से शुरुआत करनी चाहिए। सुबह सुबह एप्पल खाया करो, है ना, स्ट्रांग हो जाओगे, है ना
3: दीदी।
0: हाँ, और सानिध्या ने क्या खाया है
4: दीदी? दूध पिया।
0: देखो, सानिध्या ने दूध पिया है, और दूध पीने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। और आराध्या ने क्या खाया है?
5: मैक्रोनी पास्ता।
0: ओ, मैक्रोनी और पास्ता। तो मैक्रोनी पास्ता कभी कभी तो ठीक है बच्चों, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा क्या खाना चाहिए? रोटी खाइए, पराठे खाइए, फ्रूट खाइए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो आप लोग। अच्छा ये बताओ, मैक्रोनी पास्ता आपको कितना अच्छा क्यों लगता है? क्या ऐसा होता है उसमें कि मैक्रोनी पास्ता? सोच के देखो। खैर चलिए, अभी बाद में हम फिर बात करते हैं कि मैक्रोनी पास्ता और ये पिज्जा और मोमोज ये सब क्यों नहीं खाना चाहिए, अभी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा ये बताओ कि सानिध्या, आज आपने क्या तैयार किया है, क्या सुनाएंगे आज हमको?
3: दीदी कहानी।
0: कहानी? ओ माय गॉड, इतनी छोटी बच्ची कहानी सुनाने जा रही है। कहानी की पोयम? क्या पोयम? तो पोयम सुनाने जा रही है। हम, इसने कहा कहानी, हम तो डर गए। हमने कहा अरे भाई, सब कहानी ही सुनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और हमें आज तो अच्छी अच्छी कविता

0: कविता सुनने का मूड था, तो चलो कविता सुना दो जल्दी से।
1: एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख चार, पूरब को पश्चिम को जाए,
0: हाँ
1: उत्तर छपे दक्षिण आए,
0: हाँ हाँ फिर क्या होता है?
1: घूमते हैं जब घर को आए, मम्मी को एक बात में देख ले, हमने जब चारा पड़ा घर चपचपा।
0: तो देखो ये सही में कहानी सुनाने जा रही थी, ये कहानी ही थी जो इसने कविता के माध्यम से सुनाई है ना। क्या होता है कि जो छोटे से चिड़िया के बच्चे होते हैं तो फिर जब उड़ना सीख जाते हैं तो इधर उधर फर फर खूब उड़ते हैं, और जब उड़ के वापस आते तो उनको लगता है। अच्छा ये बताओ अपना घर तुमको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता
2: जी
0: है?
2: दीदी
0: अच्छा लगता है
3: जी दीदी।
0: सानिध्या
2: अच्छा लगता है।
0: हाँ तो सभी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी जब स्कूल से और इधर उधर घूम के थक जाते हैं तो फिर घर में ही सुकून मिलता है, क्योंकि घर में मम्मा होती हैं है ना
2: जी दीदी।
0: जो आते ही बोलती थक तो नहीं गई बेटा, और उसके बाद अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है कि फिर से हम तरोताजा हो जाएं। इसलिए सबको अपना घर बहुत प्यारा लगता है ना
2: दीदी।
0: तो चलो चलते हैं सानिध्या की ओर। सानिध्या आज क्या सुनाने वाली हो?
2: छुट छुट तरती रेल चली। छुट छुट तरती रेल चली। टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी थे से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा देश धुमा कर लाती, आधे इंजन पीछे डिब्बे, तुझ डिब्बोटे आधे डिब्बे, तुझ डिब्बोटे पीछे डिब्बे, हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
0: तो देखा छुक छुक करती रेल चली। रेल तो भाई बहुत बढ़िया मजेदार सवारी होती है। और
2: दीदी मैं एक और कविता सुना दूं?
0: अरे वाह तो सुना दूं, देर किस बात की।
2: रंग बिरंदा मेरा छाता, बारिश से यह मुझे बचाता, बंड करो लाठी बन जाता, ठंडे पर डोल हो जाता, धूप तेज जब आ जाए, छाया मेरी यह बन जाए, ताले ताल बादल छाए, चाहे जितना जल बरसाए, तभी न मैं इस घबराऊं, ठोल्ट छाता झट छिप जाऊं, रंग बिरंदा मेरा छाता, बारिश से ये मुझे बचाता।
0: बारिश से ही क्यों भाई, आजकल तो धूप से ही खूब बचा रहा है छाता। भाई आप लोग भी जब घर से निकलिए तो एक छोटा सा छाता अपने साथ रखिए, ताकि इतनी तगड़ी जो ये कड़ी धूप हो रही है उसे आप लोग बचे रहे है ना सनी। हाँ तो किसके किसके पास छाता है? अरे वाह सबके पास छाता है, पर मेरे पास छाता नहीं है। हमको दे दो भाई एक छाता, मुझे भी चाहिए। कौन देगा? सानिध्या देगी मुझे एक छाता। और रेलगाड़ी की बात होते ही ना सानिध्या ने इतनी अच्छी पोयम सुनाई तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। अभी आप लोग भी जाते होंगे जब नानी के घर या कहीं दूर घूमने के लिए किसी ट्रिप पे, तो क्या होता है कि खिड़की के बगल वाली जगह ही अच्छी होती है ना। क्योंकि उससे नज़ारे खूब दिखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, नदी आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, खेत आ रहे हैं, खलियान आ रहे हैं, बाग हैं, खूब से जंगल हैं, देखने में खूब मजा आता है ना। तो अभी फिर हम भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और फिर ट्रेन में बैठ करके मस्ती करना है, और आप सबको हमारे साथ चलना है, ठीक है ना
2: जी दीदी।
0: तो चलते हैं आराध्या की ओर। और आराध्या क्या सुनाने वाली है
4: दीदी? कहानी है।
0: कहानी कौन सी कहानी है?
4: तीन दोस्तों की।
0: अरे वाह तीन दोस्तों की कहानी है
4: जी दीदी। ज्ञान धन और विश्वास,
0: ये
4: तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे।
0: अच्छा।
4: तीनों में प्यार बहुत था। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा। तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया, आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे? ज्ञान ने कहा, हम मंदिर और मस्जिद और किताबों में मिलूंगा। धन ने कहा अमीर के पास मिलूंगा, लेकिन विश्वास चुप रहा और कुछ नहीं बोला।
0: विश्वास क्यों चुप रहा?
4: दीदी बताने दो। ठीक है। जब दोनों दोस्तों ने उसे चुप रहने का तकाड़ पूछा, तुम विश्वास ने रोते हुए कहा कि मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा।
0: ये सही बात है कि विश्वास एक बार चला जाए फिर वो कभी नहीं मिलता है।
4: कि ज्ञान ने और धन अपना जब चाहे तब पा सकते हैं, लेकिन विश्वास एक ऐसा है जो एक बार छूट जाए तो फिर से नहीं मिल सकता।
0: बहुत सही बात कही है कि ज्ञान को तो अर्जित किया जा सकता है ना। किताबें पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं और मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कहीं ना कहीं हमको ज्ञान मिल जाता है। लेकिन धन भी मिल सकता है, बहुत सारे प्रयत्न करेंगे तो धन भी मिल जाएगा, लेकिन विश्वास एक बार अगर खो गया किसी का भी तो विश्वास वापस नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है आराध्या ने। आराध्या खूब अच्छे से कहानी जो है आप तैयार करके आइए, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। तो चलते हैं हम, हमारे छोटे से श्रेष्ठकर हैं, श्रेष्ठकर भी कहानीकार बन रहे हैं, इनका नाम मैं रख लूँगी छोटा कहानीकार। तो देखिए आज छोटे कहानीकार हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं, कौन सी कहानी लेके आए हैं कि जो हमको मोटिवेट करेगी, क्या हमारे लिए मॉरल प्रस्तुत करती है।
3: दीदी आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है घमंडी हाथी।
0: घमंडी हाथी?
3: जी दीदी। जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जिसे अपनी अत्यधिक ताकत पर बहुत घमंड था। उसका यह मानना था कि उसकी बड़ी और मजबूत देह उसे जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनाती है।
0: उसके अपने परिश्रम और अपने बलशाली शरीर पे घमंड था।
3: एक दिन वह हाथी जंगल में घूमते हुए एक छोटी सी चींटी को देखकर हंसने लगा। उसने चींटी के छोटे आकार का मजाक
0: उड़ा दिया
3: और कहा, तुम जैसे छोटे प्राणी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चींटी जो अपनी बुद्धिमता और चतुराई के लिए जानी जाती थी, चींटी ने हाथी को चुनौती दे दी। उसने कहा, शायद मैं छोटी हूँ लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि आकार ही सब कुछ नहीं होता।
0: बिल्कुल सही बात कही।
3: हाथी ने चींटी की बात सुनकर और जोर से हंस दिया और चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन जंगल के सभी जानवर इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुए। हाथी अपनी शक्ति और बड़े शरीर का प्रदर्शन करते हुए चींटी के पास आया। चींटी ने बिना किसी डर के हाथी की सूंड में प्रवेश किया और अंदर जाकर गुदगुदी करने लगी। हाथी को बहुत खुजली होने लगी, वह बेचैन हो उठा और इधर उधर भागने लगा। हाथी को इस तरह परेशान होने को देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। चींटी ने हाथी की सूंड से बाहर आकर उसे कहा, देखा तुम्हारी ताकत और आकार के आगे मेरी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने कैसे काम किया। हाथी ने अपनी हार स्वीकार की और चींटी से माफी मांगी। उस दिन हाथी ने सीखा कि असली ताकत शारीरिक आकार ही नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र और बुद्धिमत्ता में निहित है।
0: बिल्कुल, जो बुद्धिमान है वो किसी से भी जीत सकता है, चाहे क्यों ना हाथी ही हो, है ना?
5: जी दीदी।
0: तो चलते हैं हम, हमारे आज तन्मय क्या लेकर के आया है? तन्मय कहाँ है भाई? तन्मय, अरे शर्मा रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, ऋषभ की ओर चलते हैं। और ऋषभ आज आप क्या सुनाने वाले हो?
5: दीदी कहानी।
0: अरे वाह, बहुत सारी कहानियाँ हो रही हैं, चलिए कहानी सुनते हैं हम सब।
5: एक छोटे से गांव में आरो और समीर नामक के दो दोस्त रहते थे।
0: आरो और समीर
5: दोनों बचपन से साथ थे।
0: बच्चों ध्यान से कहानी सुनो।
5: स्कूल जाना हो, खेत में खेलना हो या किसी मुसीबत का सामना करना हो, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई, नदी का पानी बढ़ गया और समीर का छोटा भाई नदी के पास फंस गया। गांव वाले डर के कारण पास नहीं जा रहे थे। तभी आरो बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में कूद पड़ा और समीर के भाई को सुरक्षित बाहर ले आया। समीर के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, आज तुमने साबित कर दिया सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के दर्द को अपना समझे।
6: बिल्कुल।
5: आरो मुस्कुराया और बोला, दोस्ती सिर्फ हंसाने का काम नाम नहीं है बल्कि मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहना का नाम है। उस दिन पूरे गांव में सब समझा कि सच्ची दोस्ती किसी रिश्ते से कम नहीं होती। दोस्ती वह अनमोल रिश्ता है जहाँ शब्द कम और भरोसे ज़्यादा होता है।
0: बिल्कुल भाई, आप लोग ही तो एक अच्छे दोस्त हैं ना। सब एक दूसरे के साथ कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हो, ये सबसे बड़ी बात है। और कभी कोई अगर दुख या मुसीबत या परेशानी में कोई हो तो सबको सबकी क्या करना है,
7: मदद
0: करनी है, हेल्प करनी है सबको, है ना। तो चलो चलते हैं अब हम तन्मय की ओर। और तन्मय देखो आज कुछ शर्मा रहे हैं। तन्मय क्या हो गया आज, अब इतना चुप चुप क्यों है क्या? हमें तो हमेशा तो तुम हंसाते रहते हो सबको और हंसते रहते हो, आज क्यों इतना शांत हो? तो चलिए आज तन्मय देखते हैं कि क्या सुनाने वाला है। तन्मय
8: जी, दीदी
0: क्या सुना रहे हो आज?
8: दीदी एक सॉन्ग है।
0: सॉन्ग
8: जी दीदी।
0: तो चलो जल्दी से सुना दो।
9: हिंदू धर्म में जन्म,
0: अरे तीन तीन सुना रहे हो
8: जी दीदी।
0: तो चलो चलो चलो, अच्छा अच्छा है, एक साथ सुना रहे हो।
8: हिंदू

0: राम का।
1: तो देखिए हमारे साथ इतने ढेर सारे ये बानर सेना है और यही जो है ये बानर सेना जो है झंडा लहराएगी धर्म का और सनातन धर्म का कहेंगे। तो ये हमारे आज के बच्चे कल के नागरिक हैं और ये कमान संभाल रहे हैं हिंदुत्व की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा अभी से।
0: धन्यवाद दीदी।
1: हाँ, अभी से इनके दिल में भारत माँ से कैसे इतना लगाव है, इतना जुड़ाव है, ये देखकर मेरा मन बाग बाग खिल उठा है। तो अब थोड़ा सा आराम कर ले, है ना, ब्रेक ले लेते हैं।
0: जी दीदी।
1: तो थोड़ा छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते हैं बच्चों के पास और क्या क्या मटेरियल है आपको मनोरंजन करने के लिए और आपको हंसाने के लिए और आपको ज्ञान अर्जित कराने के लिए।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।

0: तो लीजिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने हम्प्टी डम्प्टी के साथ। और ये शैतान बच्चे आज तो कुछ ज़्यादा ही शैतानी कर रहे हैं, लेकिन हमारी सानिध्या बहुत ही भोली भाली, बहुत ही सीधी सादी है, इसलिए हम फिर से सानिध्या को चांस देते हैं, क्योंकि सानिध्या दिखा रही हैं दीदी अभी मेरी दो पोएम बाकी हैं, है ना तो जल्दी से सुना दो।
1: सदा सवेरे उठा करो, ध्यान लगा करो, पढ़ा करो, दांत साफ नित किया करो, नथ मत बढ़ने दिया करो, फिर ईश्वर का ध्यान करो, दर जनता सम्मान करो, तभी न तुम अभिमान करो, सबसे मिलजुल कर रहना, तड़वी बातें मत कहना, दुतियों की सेवा करना, झगड़ा कभी नहीं करना, अच्छे अच्छे काम करो, जग में ऊंचा नाम करो।
0: अरे वाह, देख रहे हो कितनी अच्छी बात बताई है सानिध्या ने। अभी हम देख रहे थे तो कभी कभी तुम लोग जो आपस में लड़ाई भी करते हो ना।
2: जी दीदी।
0: तो अब नहीं लड़ना है सानिध्या। हाँ बेटा,
1: मैं तो कविता सुनाऊं।
0: एक और कविता तो सुना दीजिए।
1: लाल टमाटर, लाल टमाटर, मिर्ची बोली सुन लो आटर, मैं पतली सी हरी हरी दौड़ लगाऊं थड़ी थड़ी। टमाटर बोला मिर्ची रानी, क्यों इतना इतराती हो, पतली सी तुम दम भी तम है, क्यों गुस्सा मुझे दिलाती हो। मैं बच्चों तो प्यारा लड्डा, डोल डोल हूँ सब तो भाता, तुम तो ठूप लाती हो, सब तो डुट पहुँचाती हो
0: भाई बहुत सही बात की, अगर इतना सा भी मिर्ची काट लो तो तुरंत आंखों से आंसू आ जाते हैं। और टमाटर खाते जाओ, लाल टमाटर सेहत बनाता है और बच्चों को के मन को भी भाता है। तो चलिए बहुत अच्छी पोएम सुना दी है हमारी सानिध्या ने, और अब भाई हम तो बस समझ गए हैं कि लाल टमाटर हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। तो आप चलते हैं, हमारे सत्यम जी हैं, और सत्यम जी देखो आज क्या लेकर के आए हैं, कौन सा खजाना इनके पास है।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं हम सभी का साप्ताहिक कार्यक्रम हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्थान की जहाँ इतिहास बोलता है, संस्कृति जीवित रहती है और पुरानी यादें हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। जी हाँ, आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। हर वर्ष 18 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों, संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के रक्षक होते हैं। यहाँ हमें पुराने सिक्के, ऐतिहासिक हथियार, प्राचीन मूर्तियाँ, पेंटिंग और कई अनमोल चीज़ें देखने को मिलती है। भारत में भी कई प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, जैसे इंडियन म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम। यह संग्रहालय भारत की समृद्ध विरासत को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध संग्रहालय लोअर म्यूजियम है माना जाता है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। संग्रहालय हमें केवल इतिहास नहीं सिखाते, बल्कि हमें अपने देश और संस्कृति पर गर्व करना भी सिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
2: बच्चों और युवाओं के लिए संग्रहालय ज्ञान का एक अनोखा स्रोत है, जहाँ किताबों में पढ़ी बातें वास्तविक रूप से देखने को मिलती है। आज डिजिटल दौर में कई संग्रहालय ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जिससे लोग घर बैठे इतिहास को जान सकते हैं।
0: जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने।
2: दोस्तों, हमें अपने इतिहास और विरासत को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किसी म्यूजियम में जा कर के पुराने जो भी संग्रह हमने करके रखे हैं उनको देखना और उनकी छोटी छोटी बारीकियों को समझना।
2: जी दीदी,
0: तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लखनऊ में भी एक छोटा सा संग्रहालय बना हुआ है
2: जी।
0: तो वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ममीज रखी हुई हैं। हाँ, कई साल पुरानी, कई हजार साल पुरानी या कई सैकड़ों सालों पुरानी वो ममीज आज भी वहाँ पे सुरक्षित रखी हुई हैं।
2: जी, अंतिम संदेश बस यह देना चाहूँगा, जो अपने इतिहास को याद रखता है वही भविष्य को बेहतर बनाता है।
0: जी,
2: इसी संदेश के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, धन्यवाद।
0: तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? आप लोग जाते हैं कि नहीं? आप लोग जाते हैं कभी कभी संग्रहालय में, म्यूजियम में?
3: बिल्कुल, एक बार तो मैं गया हूँ और वहाँ की हिस्ट्री देखकर बिल्कुल इतना अच्छा लगता है कि क्या ही कहूँ, ये अंदर से गौरव भर देता है हम सभी भारतीयों के लिए
0: जी, बिल्कुल,
3: कि हमारा भारत उस समय पर कितना ज्यादा महान था और आज भी है,
0: आज भी है,
3: बड़ी बात नहीं है।
0: तो चलते हैं हम हमारे छोटे साइंटिस्ट हैं उनकी ओर और देखिए आज वो क्या जानकारी लेकर के आए हैं। साइंस से जुड़ी जानकारी है या कोई अन्य?
3: बिल्कुल साइंस से जुड़ी है, आपने सही बिल्कुल अनुमान लगाया है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बारे में।
0: अरे वाह, लाफिंग बुद्धा।
3: बिल्कुल, ये स्माइलिंग बुद्धा जो ऑपरेशन था ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम था और ये इस तरह से निभाया गया था कि जो सामने के देश थे हमारे, जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे उस समय के हमारे भारत के, जैसे US थे, वो US जैसे कंट्रीज जो थे वो उस समय पर हमारे ऊपर ध्यान रखा करते थे, अपनी इंटेलिजेंस कंपनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा ये ध्यान रखते थे कि भारत क्या कुछ कर रहा है, हर समय का एक अनुमान और एक डाटा अपने पास रखते थे। लेकिन ये जो चीज़ रखी गई थी, ये जो हुआ था भारत के साथ ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये इस तरह से हुआ था कि लगभग कई सालों के बाद जब इंडिया की एजेंसीज ने खुद ये बताया है US को, तब US को पता चल पाया कि इंडिया ने कुछ ऐसा किया भी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल हिस्टोरिकल साइंस सेगमेंट और आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के इतिहास की उस रहस्यमयी चैप्टर में जहां साइंस सीक्रेसी और स्ट्रेटजी ने मिलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। रेगिस्तान के साथ रेत के नीचे दुनिया को बिना भनक लगे भारत एक हिस्टोरिक कदम उठाने वाला था। तारीख थी 18 मई 1974, मतलब कल इसको कल का दिन
0: है,
3: बिल्कुल 18 मई कल है। स्थान था पोखरण राजस्थान, रेत थी पूरे जगह पे और मिशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सवाल यह है आखिर भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी ही क्यों, क्योंकि भारत तो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम और चाहता ही यह है कि पूरी दुनिया में शांति हमेशा बनी रहता है
0: जी,
3: तो भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच ये एक न्यूक्लियर रेस चल रही थी और जैसा कि वो अपना अभी देखिए वो जो कोल्ड वॉर है उसी के परिणाम स्वरूप आज रशिया के पास लगभग 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उनके पास US के पास लगभग 4 से 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो वो कभी भी भारत जैसी कंट्रीज़ को, क्योंकि जापान को भी उन्होंने 1945 में अपना निशाना बनाया था, तो भारत को एक डर था, डर की ऐसी बात नहीं था क्योंकि उनके पास इतने वॉरहेड्स थे वो कभी भी पगला सकते थे और हमारे पर अटैक कर सकते थे। फिर भारत के पास उतना कोई बहुत ही अपना मिसाइल सिस्टम
0: उस समय तो नहीं था, आज तो हम बहुत सशक्त हो चुके
3: हैं, है हम S-400 की ताकत जानते हैं और ये जो हमारे पास उस समय था, वो जो समय का दौर था उस समय भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस भी काफी कम थी। साल 1995 में तो हमारे भारत के पास 15 दिनों का ही पैसा बचा हुआ था, फिर ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस थी उसमें भी एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रही थी इस पूरे चीज़ में। फिर 1998 आता है और भारत को ये जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डेवलप करना ही पड़ता है और ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको अपनी एक फील्ड बनाना पड़ता है। फिर 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और उसके बाद भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या बिना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएगा। और देखिए जो पाकिस्तान है ना, वो अगर हमारा भारत ऐसा ना करता तो पाकिस्तान और हमारे जो दुश्मन देश हैं वो चाइना जैसे देशों से मिलकर, चूंकि चाइना के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे
0: कभी भी भारत
3: तो वो अपने पास भी वॉरहेड्स ले सकते थे, लेकिन चाइना मतलब हमारा भारत क्या करता, वही दिक्कत थी। लेकिन भारत का उद्देश्य सिर्फ वेपन्स बनाना नहीं था, इंडिया साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस चाहता था, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में भारत किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। और देखिए आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है, हमारे अभी कुछ दिन पहले जो हमारे PM थे उन्होंने ये कहा है कि आप जितनी जो हो सके, वैसे तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाए जैसे कि पेट्रोल आप जितना ज़्यादा, डीजल जितना ज़्यादा कम आप यूज़ करेंगे, मतलब क्रूड ऑयल से बनने वाली चीज़ जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, कुकिंग ऑयल इवन आप जितना कम यूज़ करेंगे, फिर आप जितना कम सोना खरीदेंगे, जितने कम ऑर्नमेंट्स खरीदेंगे, जैसे मैं अभी एक सुना रही हूँ और हमारे ऊपर जो हमारा बिजनेस है उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन देश हित हमारे लिए सबसे
0: देश पहले सर्वोपरि देश है।
3: बिल्कुल, और ये जो भावना है ये हर भारतीय के अंदर
0: होनी चाहिए। लेकिन मालूम है अभी बड़ा हमें दुख होता है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं और जो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रही हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, कोई संदेश दिया है, तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं।
4: दीदी अगर हम लोग पेट्रोल की महंगाई के बारे में बात करें तो जो जैसे जो गिग वर्कर्स होते हैं जैसे ब्लिंकिट और जोमेटो स्विगी के, वो लोग अब साइकिल पर डिलीवरी कर रहे हैं और बहुत से लोग तो अब हड़ताल
0: और सबसे ज्यादा तो मैंने देखा कि जो प्रधानमंत्री जी का काफिला चला करता था अब वो काफी सिमट कर रहे
4: हैं।
0: तो हाँ
4: अभी वैसे हमारे पूरे दुनिया में तो वैसे 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स हैं, लेकिन आगे चल के 2027 में 28 में ये 2.5 करोड़ गिग वर्कर्स हो जाएंगे।
0: और हम तो जो हमारी ये युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों को भी बहुत सारी फैसिलिटीज जो पेरेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे उनको बाइक दे दी या फिर उनको स्कूटी दे दी, आना जाना उनका आसान हो जाए। तो अब जो समय आ गया है उसके हिसाब से क्या है, हमें साइकिलों का यूज करना चाहिए।
3: बिल्कुल, और हम चाहे अगर उसको ना चाहे तो हमारे पास ईवी का भी एक ऑप्शन बस।
0: बिल्कुल
4: जी, आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं।
3: उसके लिए भी आपको कुछ सेफ्टी कंसर्न्स है उसको बरतना पड़ेगा, बाकी आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं।
0: हम तो यही कहेंगे कि साइकिल तो बहुत अच्छा, साइकिल में क्या है कि हमारा जो हमारी हेल्थ है वो भी तो, जैसे मोदी जी ने कहा है कि जो कुकिंग ऑयल अगर उसका हम कम यूज करते हैं तो हमारी सेहत भी तो बनी रह सकती है, उसी तरीके अगर हम साइकिल का यूज करते हैं तो स्ट्रांग हो सकते हैं हम लोग।
4: बहुत से लोग जैसे कुकिंग
0: एक्सरसाइज, हाँ
4: जैसे बहुत से लोग कुकिंग स्टोव पे खाना बनाते थे तो उसमें कुछ ऐसे गैस रहते हैं जो हम लोग की सेहत के लिए हानिकारक
0: है।
4: पहले जमाने में जो चूल्हे पे खाना बनता था वो बहुत ही बढ़िया बनता था, उससे लोग स्वस्थ भी रहते थे।
3: देखिए जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ये एलपीजी गैस, ये भी क्रूड ऑयल से आती है, और ये क्रूड ऑयल भी ये ईरान से ही, मोस्टली तो ईरान और उसके आसपास रीजन से आपको पता ही होगा ये वहीं से आता है और वहाँ पर भी वॉर की स्थिति है।
0: तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे अथर्व जी?
4: अब संदेश तो यही देना चाहेंगे कि जितना हो सके आप लोग अपने रिसोर्सेज की जो महंगाई है उससे जैसे आप जूझ रहे हैं तो उससे आप क्या करिए उसका कम ही यूज करिए।
0: हाँ, कम कंजप्शन होना चाहिए। और हमारे देखिए समर मुस्कुरा रहे
4: हैं
0: वो भी कुछ
3: कहना चाहते हैं। सबसे बड़ा संदेश तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री
0: दे चुके हैं, लेकिन हम बच्चों का भी तो संदेश जाना चाहिए लोगों तक।
5: अच्छा ये जो वॉर क्राइसिस हुई है इसकी वजह से देखिए आप कितना इम्पैक्ट पड़ा दुनिया पे, कि जब मैं जानने योग्य हुआ था कि डॉलर रुपए क्या होते हैं तब मैं गूगल पे सर्च किया करता था कि डॉलर और रुपए क्या होते हैं, और ये एक डॉलर में तब तकरीबन 60-62 रुपए थे जब मैं इसको समझा था, और तब मुझे ये नहीं पता था कि एक डॉलर में इतने सारे रुपए क्यों हैं, बस ये मैं समझता था कि एक डॉलर मतलब 60-62 रुपए। आज स्थिति है कि एक डॉलर मतलब 95 रुपए 96 रुपए, लेकिन क्यों ऐसा क्यों है कि एक डॉलर एक रुपए के बराबर नहीं, जबकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक डॉलर एक रुपए के अप्रोक्सीमेट बराबर था। ऐसा क्यों होता है कि किसी देश की करेंसी, और हम तो इसको कुछ कह भी नहीं सकते, हम तो इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई गलती नहीं है हमारी सरकार की, ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक क्राइसिस है
0: जी।
5: अभी हम सिर्फ अपनी देख रहे हैं, और अगर हम नाइबरिंग कंट्रीज की देखें, अभी अगर हम पाकिस्तान की हालत देखें तो एक रुपए में पाकिस्तान के लगभग लगभग 3-4 रुपए हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
5: और जो इंडिया था जो हम कहते थे कि जापान को पीछे करके चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, वो फिर छठवें नंबर पे फिसल गया इंडिया, अब इंडिया छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसका पूरा कारण है कि और चाइना की भी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। अच्छा इसमें अगर आप एक पैटर्न देखें कि जिन देशों की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है उनमें से किसी के पास भी क्रूड ऑयल नहीं है, किसी के पास भी तेल नहीं है। तेल को क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में।
0: बिल्कुल,
5: इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उस पर राज करेगा वो असल में कभी ना कभी तो खत्म होने वाला रिसोर्स है ना, रिन्यूएबल एनर्जी तो है नहीं।
0: बिल्कुल,
5: नॉन रिन्यूएबल,
0: एक बार यूज किया खत्म,
5: एक बार यूज किया खत्म, और उसके ऊपर पॉल्यूशन वो एक बार खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक तो जिसके पास हुआ तब तक वो राज करेगा ना। अब जैसे देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स हैं, वो वेनेजुएला के पास हैं,
0: वो
5: हाँ, और आप वो तो आगे जानती हैं कि यूएसए ने वेनेजुएला के साथ क्या किया
0: अगर
5: यूएसए ने ना किया होता तो आज इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल के दाम स्टेबल रहते हैं। और यूएसए ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि यूएसए के पास खुद अलास्का में बहुत सारा क्रूड ऑयल है, रशिया के पास बहुत सारा क्रूड ऑयल है, तो उनकी इकोनॉमी को कोई
0: वो अपना सेव कर रहा है और इधर उधर से जो है एक तरीके से डकैती कह सकते हैं हम इसको,
5: और
0: हाँ इसको डकैती करके वो उसका यूज करेगा और अपना जो क्रूड ऑयल है उसको वो सुरक्षित रखेगा।
5: हाँ, और इसमें रियल कल्प्रिट अगर मैं देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को देखता हूँ, क्योंकि चाइना का भी बहुत बुरी हाल है, क्योंकि वहाँ पे भी क्रूड ऑयल नहीं है ना, वो भी तो इम्पोर्ट ही करता है।
0: जी बिल्कुल।
5: और अगर आपने एक देश जिसके पास बहुत सारा क्रूड ऑयल था उसके राष्ट्रपति को पकड़ लिया, मरवा दिया, फिर जिंदा छोड़ा, वो भी नहीं
0: पता नहीं क्या है उसके साथ क्या हुआ है,
5: वहाँ पे अपनी सरकार बनवा दी। और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा देश था ईरान, उसको भी आपने बिल्कुल ऐसे खत्म स्थिति पे ला दिया कि अब वो बेचारा कहीं से क्रूड ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों है कि डॉलर सबसे ज़्यादा मजबूत है, ये इसलिए मजबूत है ये मैं सोच रहा था। तो आज मुझे पता चला कि एक बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे सऊदी अरेबिया जो कंट्री थी वो बहुत कमज़ोर थी, उसके पास तेल बहुत था, तो यूएसए की आर्मी ने और यूएस की सरकार ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और कहा सऊदी अरेबिया से कि हम आपको सुरक्षा देंगे, इसके बदले में आप अपना सारा तेल डॉलर में बेचेंगे सारे देशों को। अब अगर इंडिया को डॉलर तेल खरीदना होता है सऊदी अरेबिया से तो इंडिया को डॉलर चाहिए
0: और हमारा रुपया कहीं
5: कहीं काम नहीं आता, कहीं नहीं काम आता, सिर्फ और सिर्फ डॉलर काम आता है। अब ये तो एक ट्रेडिशन बन गया, तो अब हमको डॉलर चाहिए, हम डॉलर कहाँ से खरीदेंगे, डॉलर खरीदेंगे हम अपने रुपयों को बेचकर,
0: कितनी करेंसी हमारी बाहर चली जाएगी।
5: हाँ, और बहुत सारी, और हमारा जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी, इसीलिए जितनी ज्यादा जो है हमारी इकोनॉमी
0: कहते हैं कि अगर थोड़ा सा तेल का यूज कम करें बाइक। हाँ,
5: इनडायरेक्टली तो आपको तेल का यूज कुछ आने वाले 20 सालों में कम करना ही पड़ेगा, अब खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। अभी तो हम ठीक है, तेल है पर्याप्त है, अभी अगर ये ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए तो तेल पर्याप्त है। आने वाले 10-5 साल में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देखिए दुनिया में हर जगह तेल है, चिली में तेल से बिजली बनती है, इंडिया में सारी गाड़ियाँ तेल से चलती हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स तेल से चलते हैं, और शिप्स तेल से चलती हैं, एरोप्लेन्स तेल से चलते हैं। अब सबको पता है कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, खत्म होनी है, अब खत्म हो जाएगा तो अब क्या करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले से हमको सतर्क रहना चाहिए था, वो एक गलत काम हुआ और ये बहुत, और अभी हमारे देश का ये बहुत क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। अगर
0: और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, हम जब दूसरे देशों पे डिपेंड हो जाते हैं ना तो हमारी बहुत सारी करेंसी जो है उन देशों के पास पहुंच जाती है, और देखिए करेंसी हमारी कहां पर खड़ी हुई है।
5: और इसके लिए हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार मेरे घर वाले बहुत पहले बताते हैं, कहते हैं कि एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतीय इकोनॉमिक क्राइसिस में कहा था कि एक हफ्ते में एक दिन सोमवार को व्रत रखें, तो वो सारे भारतीय व्रत रखते थे
0: जी।
5: वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसलिए कहा था क्योंकि भारत में भुखमरी थी, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था और गेहूं कम होता था, तो सोमवार को सारे भारतीय व्रत रखते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना पहले ट्राई करके कहा था कि सारे सोमवार को भारतीय सारे व्रत रखेंगे और कोई खास फर्क किसी आदमी के सेहत पे नहीं पड़ा, लेकिन जो उससे लाखों करोड़ों टन गेहूं सेव हुआ उसकी वजह से हम अगले 30 दिन अगले 40 दिन का रिजर्व बना पाए।
0: बिल्कुल।
5: तो इसी तरह अगर किसी देश का नेता कुछ भी कह देता है वो अलग बात है कि वो किस परिस्थिति में कहता है, बस आपको अपना इसमें देशभक्ति समझना चाहिए और आंख बंद करके, मेरे हिसाब से आंख बंद करके उस बात को मान लेना चाहिए।
0: ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं हमारे इतिहास में कि हमारी जो महिलाएं थी एक आर्मी बनाने के लिए, आप लोगों को बच्चों याद होगा आर्मी बनाने के लिए जो सोना या चांदी या मंगलसूत्र तक उन्होंने दान में दे दिया था आजाद हिंद फौज की।
5: और अभी भी जो साउथ कोरिया है वहाँ पे जितने सारे सोना है उस पे सारे पे गवर्नमेंट का अधिकार है, अगर साउथ कोरिया के ऊपर कोई अटैक होता है तो वो सारे सोने को, सारा सोना उसके नागरिक दे देते हैं साउथ कोरियन गवर्नमेंट को, तो हम पेट्रोल तो कम यूज ही कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो ये बातें याद रखनी चाहिए हमको, जो इतिहास से सीख मिली है उस पर अमल भी करना चाहिए। ताकि आगे हम सर्वाइव कर सकें। बहुत सारी जो क्राइसिस हमारी लाइफ में आने वाली हैं उनसे हमें कुछ तो रिलीफ मिलेगा। तो बहुत अच्छी बातें हमारे समर ने बताई हैं और हमें लगता है कि बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अब बच्चे जो है हमारे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी जानकारी जो बड़ों के पास शायद उपलब्ध नहीं होगी, वो हमारे नौनिहाल दे रहे हैं, छोटे बच्चे दे रहे हैं।
4: जिस तरह से हमारे देश की अभी कंडीशन चल रही है, इसके वजह से तो हम बच्चा अब छोटा छोटा बच्चा भी उसको जानना जरूरी है,
0: जानना जरूरी है
4: हमारे देश में हो क्या रहा है।
0: जी तो अब चलिए हम चलते हैं अथर्व की ओर, और अथर्व भी कुछ अच्छी जानकारी देने वाले हैं आज।
4: तो दीदी, वैसे तो अच्छी जानकारी मैं हमेशा देता हूँ, लेकिन आज का थोड़ा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के अवसर पर, कह सकती हैं ये डे है, जो कि हम लोगों को जैसे हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं, तो जिस तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में इसका कनेक्टिविटी फैला हुआ है, तो इसी से कुछ जुड़ी अवेयरनेस, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये डे आखिर शुरू क्यों हुआ, इसका पर्पस क्या है, और इसके हमारे डेली लाइफ से क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके शुरुआत के बारे में। असल में क्या था कि 17 मई 1865 को एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ था, जिसका नाम था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि ITU। ये दुनिया की सबसे पुरानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है।
0: जी।
4: अब जैसे कि उस समय पर जब टेलीफोन नया था और वायरलेस कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट एक हम लोग के लिए उस टाइम पर सपना था, और लोग लेटर्स से एक दूसरे से बात करते थे, जैसे कि पीजन के पैर में बांध करके लेटर्स एक दूसरे की तरफ पहुंचाते थे,
0: कबूतर जा
4: जी, मतलब ये 300 मतलब लगभग 300 ईसा पूर्व ये की ये बात है,
0: कबूतर और ये डाक का काम करते थे।
4: और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसका उपयोग किया जाता था 1914 से लेकर के 1945 तक का, और इंडिया में भी इसका उपयोग 1946 से 2008 तक का इसका उपयोग हुआ था, आधिकारिक तौर पर हुआ था। और इसीलिए मतलब ITU बनाई गई थी, जिससे लोगों को अलग अलग देशों में, हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पर हैं और हम लोग को कोई दूसरे देश में बात करनी, तो आज देख सकते हैं आप कि हमारे पास कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम लोग दूसरे देश तक बात कर सकते हैं, दूसरे देश तक, यानी कि अपने रिश्तेदार से नहीं बल्कि हम लोग अपने दूसरे देश तक बात कर
0: और सेकंडों में अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं।
4: अब जैसे कि उस समय पर फोन तो इतना मुश्किल से होता था कि क्या बताएं, लेकिन आज हम लोग एक सेकंड में वीडियो कॉल कर सकते हैं, आमने सामने बैठ करके बात कर सकते हैं, मतलब हम लोग के लिए किसी वरदान से तो कम नहीं है।
0: जी।
4: अब जैसे कि एक सबसे अमेजिंग बात यह है कि आज एक छोटा क्रिएटर भी चाहे वो अपने घर से पूरी तरह से दुनिया तक पहुंचा सकता है, मतलब अपने घर की पूरी बात, वो क्या करता है, वो क्या अपलोड कर रहा है, मतलब जैसे कि यूट्यूब पे हो, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे वो सोशल मीडिया या रेडियो पर ही क्यों ना, जैसे हम लोग हैं एक प्रोग्रामर की तरह। अच्छा, अगर जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है इसका गाँवों और मतलब कह सकते हैं रिमोट एरियाज में थोड़ा ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो इससे मैं रिलेटेड आपको एक फैक्ट बताता हूँ। हमारे इंडिया में आप जानते हैं सबसे फेमस स्टेट महाराष्ट्र, वहाँ पर एक गांव है पुरंदर तालुका, जो कि पुणे में है, मतलब मुंबई से 250 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर एक गाँव है अडाचीवाड़ी। ये हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट एंड फ्यूचरिस्टिक विलेज है,
0: सबसे पहले जो ये कैशलेस इकोनॉमी वहीं पर।
4: हाँ, आप देख सकती हैं कि जो चीज हमारे शहर में नहीं है वो वहाँ गांव में है, जैसे कि वहाँ के गांव में बच्चों के पास इवन आईफोन मतलब एप्पल के वॉच होते हैं, और वहाँ पर टैबलेट से बच्चे पढ़ाई करते हैं, यहाँ हम लोग के पास सामने किताब रहती है, वहाँ पर बच्चे टैबलेट से पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप बताइए।
0: बिल्कुल।
4: और वहाँ पर ATM से पानी आता है, मतलब आप ATM स्कैन करिए आपके पास पानी आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जब लोग सुबह उठते हैं तो पूरा गांव एक साथ मिलकर के पूरे गांव की सफाई करता है, तो सोच सकते हैं आप ये डिसिप्लिन है एक, जो कि इस गांव को सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, स्मार्टेस्ट और साथ में डिसिप्लिन भी बनाता है। कैसा लगा इफेक्ट?
0: बहुत बहुत बढ़िया।
4: तो मतलब
0: हम जिस समय ये बात हमने पढ़ी थी पेपर में कि एक ऐसा गाँव है महाराष्ट्र में कि जहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी है, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ था कि वहाँ पर कैसे है, वो गांव है।
4: जो लोग इसके बारे में पहले से नहीं जानते होंगे वो लोग अब सुनकर के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं कि ये कौन सा गांव है जहाँ पर जो चीज हमारे शहर में नहीं है वो वहाँ गांव में
0: कैसे है।
4: तो यही है कि हर टेक्नो मतलब जो आज की टेक्नोलॉजी है वो हमारे जैसे रिमोट एरियाज़ और जो हमारे स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सबको नहीं बल्कि हमारी लाइफ को भी पूरी तरह से बदल रहे हैं। जैसे कि साइबर क्राइम, फेक न्यूज़, ऑनलाइन स्कैम्स, ये डेटा प्राइवेसी,
0: तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं।
4: ये सब चैलेंजेस हैं हमारे पास। जैसे कि कोई अगर फेक
0: अच्छा है तो उसके साथ बुरा भी है।
4: जी, जैसे कोई फेक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे तो ये पूरे हमारे स्टेट के लिए एक पैनिक सा हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, कहीं हमारा पैसा हमारे अकाउंट से उड़ ना जाए, तो ये सब एक पैनिक होता है। लेकिन इससे हम लोग को डरना नहीं चाहिए, अवेयर पहले ही रहना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
4: तो यही है कि टेक्नोलॉजी एडवांस है, लेकिन अगर सही से हम लोग उसका यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि जब जैसे अब तो हमारा देश है, अब आगे बढ़ेगा और नया साल आएगा, हमारी जनरेशन नई आएगी, मुझे तो अभी से खुशी हो रही है कि कैसे हमारे जो मतलब पूरी जो टेक्नोलॉजी AI वो और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। मतलब कि कह सकते कार हवा में उड़ेंगी, पहले से सोच करके घूस बम सा।
0: चलिए, होप कि हम लोग भी ये नज़ारा देखें। तो समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, और हम वादा करते हैं कि आपसे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप
4: सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: आपका स्वागत है, वेलकम है आपके मॉर्निंग स्पेशल शो के बाद दोपहर वाला स्पेशल, संडे स्पेशल, मेरा स्पेशल, आपका स्पेशल, हम सब का स्पेशल। शो का नाम क्या है?
1: ओपन माइक शो।
0: यस, ओपन माइक शो, यानी वो शो जिसमें हम आप कोई भी जो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहे, जो भी यहाँ पर आकर अपने जौहर दिखाना चाहे, अब चाहे आप स्टोरी टेलिंग अच्छी कर लेते हो या खुद लिखते हो शेरो शायरी, कोई गजल, कोई काव्य, या फिर आप अच्छे क्रैक कर लेते हो जोक्स जिस पर घर पर खा जाते हो दो टीप, तो भी आप आ करके यहाँ पे हमसे साझा कर सकते हैं। इसी शो में हम वेलकम करते हैं आज हमारे कैंडिडेट्स का, लेकिन उससे पहले हमारे को होस्ट मौजूद हैं आरजे मनु। कैसे हैं आप?
2: जी हाँ, बहुत शानदार, एकदम आपकी दुआएं रक्षा कर रही हैं गर्मी से। रखवाला आया नहीं, अब आपकी दुआएं हैं तो हमारी रक्षा कर रही हैं, अब हम दूसरों की रक्षा करेंगे।
0: से करना अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड हमारे साथ में चूंकि अजिता जी मौजूद हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: बहुत बढ़िया, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ।
0: कितनी अच्छी हैं आप?
1: सर बहुत अच्छी हूँ।
0: बहुत अच्छा लगा सुन करके ये। इसके अलावा हमारे साथ में सृष्टि भी मौजूद हैं, कैसी हैं आप?
3: मैं अच्छी, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ रिया मौजूद हैं, आप कैसी हैं?
4: मैं भी अच्छी हूँ।
0: अरे ये तो ऐसा लगा कि आपने नहीं, आपकी आत्मा ने बोला कुछ ज्यादा ही अंदर से आया,
2: रूहानी अंदाज है,
0: रूहानी अंदाज था।
4: मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: दिन में ही आज हम लोगों ने हॉरर शो देखा।
2: नहीं हो सकता है रात में मूवी कोई हॉरर वाली देखी हो। आवाज बैठी हुई, चलिए खड़ा कर लेते हैं आवाज को।
0: ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, संडे का दिन है, संडे का दिन क्यों अच्छा लगता है अजिता जी, आप बताइए।
1: बचपन से लेके देखा है अभी तक में, संडे को ऑफ होता था, उस स्कूल जाते थे संडे को ऑफ, रेस्ट करना, थोड़ी सी अपनी मनमानी करना, शैतानी करना, इसलिए हमेशा से संडे स्पेशल था।
0: अभी कुछ शैतानी होती है कभी कभी संडे संडे में?
1: या अभी करती हूँ।
0: जैसे कुछ शैतानी होती है कभी कभी संडे संडे में?
1: या अभी करती हूँ।
0: जैसे?
1: जैसे मेरे घर में दो भतीजी हैं मेरी
0: जी,
1: तो वो भी शैतानी करती हैं, मैं उनके साथ में मैं भी करती हूँ।
0: तो मतलब
1: सर, उसकी एक एज थोड़ी रहे,
0: मतलब आपको बुआ को कंपनी मिल जाती है शैतानी करने की।

0: यस।
1: तो जब उन पे कोई आफत आती है, कोई डांटने या मारने चलता है, तो क्या आप बचाते हैं उनको?
0: ऑफ कोर्स।
1: तो आप बचा पाते हैं या खुद भी मारे जाते हैं?
0: नहीं, पूरा सपोर्ट करती हूँ और अच्छा। खुद भी बचती हूँ, उनको भी बचाती हूँ।
1: हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बचपना जिंदा रखना तो खैर अच्छा है, बहुत मस्त रहता है, बहुत मजा रहता है। संडे में कभी ऐसा प्लान नहीं करती जैसे कि आप पूरे वीक बिजी हैं, किसी सहेली को कॉल किया, चलो यार शाम में मिलते हैं, कुछ खाते हैं और इसी बहाने मुलाकात करते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है।
0: यस सर, ऐसे तो बहुत बार होता है, हर संडे तो नहीं, लेकिन हाँ कई बार संडे में ऐसा होता है कि हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होके हमारे घर के पास पे ही हैं, बहराइच रोड पे एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, या फिर कभी अगर नुमाइश लगी है तो वहाँ पे हम चले गए, या यूं ही गांधी पार्क में कभी कभी, या मार्केट में, या किसी रेस्टोरेंट में चले गए, तो गप्पे शप्पे होते रहते हैं।
1: गप्पे शप्पे होते रहते
0: जी।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात कही। रिया, आप कभी ही है क्या संडे में आप भी निकलते हो अपनी सहेलियों से मिलने जाते हो?
2: जी सर।
1: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आज रिया थोड़ा सा बीमार है शायद, और आवाज में ही प्रॉब्लम है क्योंकि बार बार आती नहीं हो सकती।
0: गले में खराश है।
1: ओके, सृष्टि आपको क्या रहता है संडे में?
3: मॉर्निंग से लेके
1: मतलब यूजुअली क्या रहता है?
3: यूजली तो
1: स्पेशल कैसे होता है संडे, बस हम ये जानना चाहते
3: हैं। स्पेशल मेरा होता है बॉर्डिंग में, पहले रेडियो ऑन होता है,
1: सेकंड
3: मेरा डॉग रहता है,
1: वो ऑन रहता है,
3: उसको परेशान करना।
1: अच्छा, उसको परेशान करते हैं, और किसी दिन उसने कायदे से परेशान कर दिया तो
3: काफी तो मार भी तो खाता है।
1: अच्छा, मार खाता है, नहीं हमें सुइयों की बात। पहले तो 14 लगती थी, अब का नहीं पता।
4: हाँ, अब तो दो लगती
3: हैं। दो,
1: अच्छा,
3: दो
1: लगती
3: हैं। दो तीन दिन में दो दो लगती हैं।
1: दो तीन दिन में दो दो लगती हैं।
4: मतलब क्या व्यक्तिगत अनुभव है या कहीं सुना?
3: अरे एक बार लगवा चुके हैं।
4: हाँ, एक ही बार लगवाया इन्होंने, मतलब
1: वो डॉगी आपका ही था या
3: मेरा ही है?
1: और छेड़ रहे थे आप उसको, क्या कर रहे थे?
3: छेड़ नहीं रहे थे, उसकी पूछ पकड़ के उसको शैतानी कर रहे थे।
1: तो ये तो छेड़ना होता है।
4: किस तरीके से छेड़ेंगे आप?
3: पूछ पकड़ के,
4: मतलब वो सीधा कर रही थी
1: पूछ को, सीधा करने की कोशिश
3: नहीं, उसको घुमा रहे थे रोल रोल।
1: अच्छा, घुमा रहे थे, तो चक्की
4: ऑलरेडी घूमी हुई है, उसको आप क्यों घुमा रही थी?
3: अच्छा लग रहा था, उसको परेशान करने में अच्छा लगता है, कहीं उसकी कान खींचते हैं।
1: तो जब उसने परेशान किया तो कैसा लगा
4: आपको? कैसा लगा?
3: तो फिर उसको बहुत ज्यादा मार के फिर सेकेंड इवनिंग में ही हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पता चला कि नेक्स्ट डे होगा, संडे था उस दिन भी, तो मंडे को
1: आज वो, मतलब हर संडे आप थर्रा जाते होंगे कि अरे वो दिन आ गया जिस दिन ये कांड हो गया था।
3: अभी तो पड़ा सो रहा होगा घर पे।
1: अच्छा, गलती आपकी थी, कोशिश आपने किया, फिर मारा भी उसको आपने, ये मतलब क्या तरीका?
3: नहीं तो मतलब मैं उसके साथ खेल लिया, उसने मुझे उठा के काट लिया।
1: तो जाहिर सी बात है, अगर आप छेड़ रहे हो तो वो काटेगा काटेगा, है ना?
3: हाँ।
1: आइंदा कभी ऐसा मत करिए कि अपनी गलती किसी और पर
3: थोप
1: दीजिए। चलिए, बातचीत होती रहेगी। एंड फिलहाल जिस तरह के सिनारियो चल रहे हैं, जो चीजें चल रही है, उसमें एक चीज तो है कि भाई अभी लगातार ये अपडेट आ रही है कि महंगाई और बढ़ने वाली है, तो किस तरह से हम अपने, अगर घर में देखते हैं तो छोटे छोटे जो खर्चे हैं जिसको शायद हम रोक सकते हैं, अब वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो, या व्हीकल्स का हो, या सामानों के खरीदने ना खरीदने का, कपड़ों का होगा, ये सारी ही चीज़ें आखिर कैसे क्या हो सकता है, ये हम बताने वाले हैं आपको आपके इसी ओपन माइक शो में, यानी हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो चलिए सबसे पहले हम आज शुरुआत करते हैं अजिता जी से, आप हमारे साथ में हैं, तो आज हमारे श्रोताओं के लिए, उनको सुनाने के लिए आप फिलहाल क्या लाई हैं, और आज आपको एक बार नहीं दो दो बार जहमत देंगे हम।
0: थैंक यू सो मच सर, ये तो अच्छी बात है कि अगर दो दो बार मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: थैंक यू।
0: हर बार की तरह वही शेर मेरे नए पुराने।
1: अरे वाह,
4: शेर आप साथ लेकर आई हैं, तो मतलब हाँ, लोग सुरक्षित हैं।
0: हाँ, मेरे शेर से लोग सुरक्षित ही रहते हैं सर।
4: अच्छा, मतलब वो, अच्छा वो गाने वाले शेर, हमको लगा कि वो जंगल वाला।
1: बहुत लगता है आपको जंगल वाला?
0: सर आप हमेशा जंगल में क्यों चले जाते हैं?
4: क्या होता है जब ये सामने गाना, सब वन्य प्राणी ही बैठे हो,
1: गाना सूट करता है इन पे, चाहे मुझे कोई जंगली
4: कहे। हाँ, नहीं, फिर सामने जो है हम देखते हैं कुछ वन्य प्राणी दिखाई पड़ जाते हैं जो जंगल में निवास करते हैं, तो एहसास होता है जैसे हाँ, जंगल हाँ, में हाँ, है।
1: सामने किसी की आंखों में देखते होंगे तो आपको अपना अक्स दिखता होगा।
4: हाँ। देखिए व्यक्तिगत अनुभव जो है ये अदनान सर का सामने आ गया,
1: बिल्कुल
4: मतलब आंखों में देखा हो अपना अक्स नजर।
1: मेरी आंखों में जब जब आपने देखा तो मैंने आपके डराव को देखा।
4: अच्छा, ये बात किया
1: वही समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई थी जी।
4: तो
0: एक सर है मेरे और वो बॉम्बे में जॉब करते हैं, बैंक जॉब है उनकी।
1: okay.
0: और काफ़ी टाइम से वो कह रहा था स्पेशली कि मतलब बहुत से मेरे शेर उन्होंने सुने हैं और उस चीज़ को नोटिस भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में है मेरे।
1: okay.
0: एक फ़ोन में सुनते हैं, नेक्स्ट फ़ोन में उसको रिकॉर्ड करते हैं,
1: उनके पास दो दो फोन। अरे वाह।
0: उसके बाद में उन्होंने आज नहीं मतलब कई दिनों से कह रहे हैं आप प्लीज़ जाओ संडे में, आप काफ़ी टाइम से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ।
1: okay.
0: उन्होंने कई शेर मुझे बताए हैं, कहें कि वो उसको फिर से आप दोहराइए, और अगर कोई नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे जितने भी श्रोताए हैं जिसने नहीं सुना है वो सुनेगा, और जिसने सुन लिया है वो फिर से मेरी तरह सुनेगा।
1: क्या बात है, दोहराव।
0: जी हाँ, दोहराने के लिए कहा गया, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कोई है जो मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, सुन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए।
1: ये तो एक कोई है जो आपको मुंबई से सुन रहे हैं, इतनी बिजी लाइफ में भी अपना टाइम निकाल कर दो दो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए।
0: जी हाँ, वो एक्चुअली संडे को उनका भी ऑफ रहता है,
1: संडे को ऑफ रहता है, और ये बड़ी बात होती है कि आपके शेर को कोई याद रखे और कहे कि मुझे वो वाला बताइए।
0: जी हाँ, मतलब बहुत अच्छे से उनको याद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कॉल किया मुझे तो बताया कि ये वाला बार फिर से आप कहो, बड़ा अच्छा लगा। बट मैं बता दूं कि मुझे गले में खराश है, शायद वैसी आवाज ना हो, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ।
1: कोई बात नहीं, शेर आप जरूर सुनाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सर भी सुन रहे होंगे मुंबई से, और आज उनको अच्छा लगेगा कि उनकी रिक्वेस्ट पे आपने उन शेर्स को दोबारा दोहराया।
0: जी
1: सो भाई, ये हमारे साथ में अजिता जी हैं जो कि गोंडा की ही निवासी हैं, और हमारे साथ में जब जब जुड़ती हैं कुछ ना कुछ जज्बात अपने लिख करके लाती हैं। हर बार मौजू अलग अलग होता है, इस बार देखना है कि किन किन मौजू को इन्होंने दोबारा कहने की कोशिश की है अपने शेरों के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए, अपनी कविताओं के ज़रिए।
0: सबसे पहले तो सर ने बोला था, वही मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ।
1: हाँ जी,
0: बहुत मतलब मेरे लिए अच्छी बात है कि सर को इतना पसंद आया कि वो फिर से मुझे कह रहा, रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कि एक शेर लिखा था मैंने आज से कई शायद महीने पहले लिखा होगा या कई हफ्ते पहले।
1: कई साल तो नहीं?
0: नहीं सर, साल नहीं। okay. साल तो नहीं गुजरे अभी यहाँ आते हुए। कि दिन की तपती धूप को भी शाम में ढलते देखा है,
1: दिन की तपती धूप को भी शाम में ढलते देखा है।
4: क्या बात।
0: हाँ, सच की तस्तरी में भी साहब झूठ को पलते देखा है।
1: क्या बात है।
0: सच की तस्तरी में भी साहब झूठ को पलते देखा है।
1: वाह।
0: और वक्त से भी तेज रफ्तार में कुछ लोगों को मैंने बदलते देखा है।
4: क्या
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, मुकम्मल
0: जी। थैंक यू सो मच सर। कि बनावटी फूलों को गुलदस्ते में और जिंदा फूलों को मैंने अक्सर पांव के नीचे कुचलते देखा
4: है। क्या बात है, क्या बात है, मुकद्दर इरशाद, क्या बात है।
0: थैंक यू सो मच सर। और एक और है
4: जी,
0: गर मोहब्बत में हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए,
1: गर मोहब्बत में हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए
0: तो गिला जरूर करना।
1: क्या बात है,
0: गिला जरूर करना, कुछ और न सही, कम से कम इसी बहाने हमसे मिला जरूर करना।
1: हाय, क्या बात है, मतलब जो लोगों के बीच के रिलेशंस होते हैं, बॉन्डिंग होती है, उन रिलेशंस को आप इतने आसान शब्दों में अपनी शेर में पिरो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि कई हाँ। बार इंसान सोचता है कि गिला करने के लिए ही सही तो मुझसे मिलने आया कर, क्या बात है, वाओ, बहुत खूब।
0: हम तो फूल बनके मुरझा जाएंगे,
1: हम तो फूल बनके मुरझा जाएंगे,
0: पर तुम कमसिन कली बनके खिला जरूर करना,
4: क्या बात,
1: वाह।
0: मेरे हिस्से में तेरी मोहब्बत हो या तेरा बिछड़ना, मेरे हिस्से में तेरी मोहब्बत हो या तेरा बिछड़ना, हमें दोनों ही मंजूर है पर तुम फैसला जरूर करना,
4: करना क्या,
1: क्या बात, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ी ही प्यारे शेर्स हैं और आज दोहराया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इनमें बड़े डीप मीनिंग्स हैं।
0: और एक और बोला था सनी
1: जी
0: कि माना की रियासत में मुझे दौलत नहीं मिली,
1: माना की रियासत में मुझे दौलत नहीं मिली,
0: पर वो मेरी मोहब्बत का कर्जदार हो बैठा है, पर वो मेरी मोहब्बत का कर्जदार हो बैठा है, गर मोहब्बत करना इतना ही गुनाह है, गर मोहब्बत करना इतना ही गुनाह है तो तेरा गुनेगार बैठा है,
1: क्या बात है,
0: तुझे दौलत का नशा है ना, तुझे दौलत का नशा है ना, हर दौलतमंद तेरा ही खरीदार हो बैठा है,
4: क्या बात, वाह।
0: इस चकाचौन भीड़ से, इस चकाचौन भीड़ से बाहर तो निकल, आ देख जरा सन्नाटे में, आ देख जरा सन्नाटे में, आज भी तेरा तलबगार बैठा है,
1: तलबगार बैठा है, वाह वाह वाह वाह,
4: वादे इंतजार की इंतहा हो गई है,
0: थैंक यू सो मच सर,
4: क्या बात है।
1: इससे जुड़ता गाना भी तो याद आ गया कि इंतहा हो गई इंतजार,
4: इंतजार
1: आई ना कुछ खबर मेरे यार,
4: मेरे यार,
1: वाओ।
0: और एक है थोड़ा सा भाव विभोर होना जैसा हो जाते हैं लोग सुन के
1: जी,
0: उसको भी सर ने कहा था, फिर से एक बार दोहराइएगा
1: जी,
0: तो मैं उसको भी दोहराऊंगी कि बचपन से लेके जवानी तक,
1: बचपन से लेके जवानी तक
0: और जवानी से लेके बुढ़ापे तक,
1: वाह।
0: उम्र के हर पड़ाव में हर इंसान का किरदार बदल जाता है,
4: क्या
1: वाह वाह,
0: बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक, उम्र के हर पड़ाव में हर इंसान का किरदार बदल जाता है, जो आज सर आँखों पे है, जो आज सर आँखों पे है ज़रूरी नहीं वो कल भी हो, जो आज है वो कल हो जाता है, जो आज है
1: वो कल हो जाता है, क्या बात है,
0: क्योंकि प्रतिदिन अखबार बदल जाता है,
4: क्या बात है।
0: बचपन में जिस बिटिया को, बचपन में जिस बिटिया को एक बाप ने गोद में उठाया, लाड लडाया, हक जताया, जवानी में उसी बिटिया के साथ फेरे होने के बाद उसका हकदार बदल जाता है,
4: क्या बात कही यार,
1: क्या बात है, क्या बात है,
4: याद आ गया सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन,
0: जी हाँ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि सर ने कहा था और सर ध्यान से सुन रहे होंगे, शायद फिर से उन्हें अच्छा लगा होगा,
1: उन्होंने दूसरे मोबाइल को भी काम पे लगा रखा होगा
0: वो संडे को सुनते हैं सर,
1: अरे वाह,
0: और बाकी जितने भी हमारे यहाँ श्रोतागण हैं सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार देख के,
1: बिल्कुल। तो भाई सर अगर आप सुन रहे हो मुंबई से तो हम आरजेज की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आपको कि आपने अजिता जी को रिमाइंड कराया कि कौन कौन से शेर ऐसे थे जो कि आपको दोबारा सुनना अच्छा लग रहा है, और इस वक्त आप वक्त निकाल करके जिस दिन आपका पूरी तरह अपना वक्त है आप हमारे साथ में साझा कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा ही शुक्रगुजार हैं
4: जी,
1: एंड थैंक यू सो मच, बहुत जैसे कह सकते हैं कि आपके कलेक्शन के जेम्स थे ये, नगीने थे जो अभी आपने सुनाए हैं,
0: थैंक यू। और एक्चुअली मैं लिखने के बाद में मैं खुद भूल जाती हूँ, तो शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ सुनने वाला ही बता सकता है कि ये वाला एक बार फिर से कहना
1: करेक्ट, क्या बात है। जैसे कल मैंने एक थॉट ऑफ द डे जिक्र किया था अपने मॉर्निंग शो में
0: जी,
1: कि हम अक्सर वो चीज़ें भूल जाते हैं जिसे हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं होता, एंड ये सच है कि जब कभी कोई शख्स आता पुराना और एक ऐसी घटना याद दिलाता है, खट से आपको याद आता, अच्छा हाँ ऐसा हुआ था, और इतने टाइम से आपको याद ही नहीं था, एक बार भी बीच में नहीं याद आया,
0: नहीं याद आता।
1: और ऐसे सोचिए जिंदगी के कितने मोमेंट्स होते हैं जो हमेशा के लिए चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि उसको याद दिलाने वाला कोई
4: नहीं होता है।
0: सही बात। मतलब मैं खुद भावविभोर हो गई कि सर ने कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे हो,
1: सही बात है,
0: और मैं बताता हूँ इसको फिर से आप दोहराओ। मैंने कहा अच्छा आपको याद है, कह रहा फोर्स याद है, मैं सुनता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत प्यारा आपने पढ़ा, और मुकम्मल हर शेर में अलग अलग जिंदगी के फलसफे मिले, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मुझे लगता है एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हमारे साथ में सृष्टि एंड रिया भी मौजूद हैं, और अजिता जी को दोबारा भी हम जहमत देने वाले हैं जैसा कि हमने कहा था। एंड किस तरह से छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान दे करके अपने रोज़मर्रा के खर्चे बचा सकते हैं, घर को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, इस पर भी हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे इस शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए अपना ओपन माइक, अपना टैलेंट, अपना FM।
2: Come on, man. Excellent.

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन और स्वागत आपके ही कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में।
1: बिल्कुल, और जैसे कि हमने जाने से पहले वादा किया था कि हमारे साथ में रिया एंड सृष्टि दोनों मौजूद हैं, तो अब चलते हैं इन दोनों की तरफ। ओके, सो पहले हम सृष्टि की तरफ चलते हैं और देखते हैं सृष्टि क्या लेकर के आई हैं आज हमारे लिसनर्स के लिए। क्या लेकर आई हैं आप?
2: पता नहीं
1: किसे मतलब पता होगा?
0: लापता
1: लेडीज हैं। ओके, चलिए आप जो भी लाए हैं आप पहुंचाते जिनके लिए लाए हैं वो सुन रहे हैं आपके। अच्छा,
0: चलिए तो अपने लिए लाई हूँ।
1: आप आए हैं इतना पता है? हाँ, तो बस ठीक है, आप जो लाए हैं वो चलिए सुनाइए।
2: जिंदगी से शिकायत करने वालों, जिंदगी इतनी उदास नहीं होती, बस कुछ पल गुजर जाए तो ये किसी की मोहताज नहीं होती। ना सोचो इसके बारे में इतना कि वक्त ही निकल जाए सोचते सोचते, वक्त के हालातों को समझो थोड़ा, वक्त से कीमती कोई साथ नहीं होती। ना करो शिकायत किसी से कि शिकायत की किताब बन जाए, निकल तू हल इस पे खुद ही, क्योंकि हल से बड़ी कोई निजात नहीं होती। मत दे मुकद्दर को दोष, तू अपने जज्बात तेरे खुद ही मर जाएंगे, थोड़ा सोच तू अपने बारे में, क्योंकि जिंदगी बड़ी कई बात नहीं होती।
0: क्या मतलब, क्या शानदार कहानी बताई आपने। इस कथा वाचन के लिए आपको हृदय से, हृदय तल की गहराइयों से आभार। क्या लिखा है, मतलब
1: गजब। कितना भार है? कितना भार
0: आभार, मतलब लगभग लोग 72-73 किलो जितना। अच्छा, हमारा है, हम समर्पित कर रहे हैं।
1: अच्छा हाँ। चलिए, ये अच्छी बात है।
0: अच्छा, ये सोचना है कि मतलब जिंदगी में जो नजरिया है, जो हमको समझ में आया कि हाँ मतलब जिंदगी जीने का दृष्टिकोण अगर वो आपका कैसा है, इस पर आपकी लाइफ बहुत कुछ डिपेंड करती है। दो भाई जो है वो समुद्र के किनारे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते दोनों में झगड़ा हो गया। अक्सर होता ही है बच्चों में, तो झगड़ा हो गया तो जो बड़ा भाई था उसने अपने छोटे भाई को एक झापड़ मारा। तो छोटा भाई उठा, उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे भाई ने मुझे झापड़ मारा। बड़ा भाई देखते रह गया, कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीते, बच्चे आया करते थे, खेला करते थे। एक दिन क्या हुआ, छोटा भाई समुद्र के तट पर ही खड़ा था, अचानक एक तेज़ लहर आई और तेज़ लहर उस बच्चे को घसीट ले गई अपनी तरफ। अब बड़े भाई ने आओ न देखा ताओ अपनी जान पर खेल कर वो कूदा और अपने छोटे भाई की ज़िंदगी उसने बचाई, मतलब ले कर के आया। पेट में पानी भर गया था, निकला। कुछ देर के बाद उसको होश आया और उसने पत्थर पर लिखा कि आज मेरे भाई ने मेरी जान बचाई।
2: क्या बात है।
0: तो उसके बड़े भाई ने पूछा कि ये क्या बात है कि जब मैंने तुमको झापड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और आज जब जान बचाई तो पत्थर पर लिखा, क्यों? तो उसके छोटे भाई ने जो उत्तर दिया था वो बहुत शानदार उत्तर था। उसने कहा, भैया वो निगेटिव बात थी, नकारात्मक बात थी। आपने मुझे झापड़ मारा, मैंने रेत पर लिखा, कुछ दिन के पश्चात वो समाप्त हो जाएगी, और जो आपने मेरी जान बचाई इसको मैंने पत्थर पर लिखा, ये कभी नहीं मिटेगा। हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ तो बुरा कर दे अनजाने में, तो हमें अपने हृदय की रेत पर लिख देना चाहिए ताकि कुछ दिन बाद वो मिटल जाए, और अगर कोई अच्छा करे तो उसे अपने हृदय के पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वो कभी ना मिटे। लेकिन होता इसका उल्टा है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारे साथ किसी ने अच्छाई की है तो उस अच्छाई को हम भूल जाते हैं, 10 अच्छाई की है उसने, लेकिन अगर वो शख्स एक बुराई कर दे तो वो बुराई
2: जिंदगी भर।
0: और आपने कहीं सुना होगा, अक्सर सुन लिया होगा कि एक बार उन्होंने ऐसा कहा, उसके पश्चात मैंने उनके दहलीज पे कभी पाँव नहीं रखा। मतलब बुराई अमिट हो जाती है और अच्छाइयाँ छुप जाती हैं। तो हम एक कोशिश कर सकते हैं कि 15 तारीख को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस रहा
1: जी।
0: तो परिवार अगर चलता है तो मुझको लगता है परिवार में बहुत सारे सदस्य होंगे और सभी के परिवार में होते हैं, तो हमको लगता है कि अगर हम सभी लोग अच्छाइयों को तवज्जो दें तो हमको लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। क्या लगता है आपको अदनान सर?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो कहानी बताई ये तो खैर सुनी भी होगी हम में से कई लोगों ने, पर शायद कहानी सुनना और कहानी को अपनी ही ज़िंदगी की कहानी बना लेना
0: जी,
1: इधर फ़र्क है। और जैसा आपने कहा कि हाँ अच्छी चीज़ों को हम भूल जाते हैं और फिर हम उतर आते हैं दुश्मनी करने पे, जिसमें हमारा टाइम, हमारे एफर्ट्स, हमारी एनर्जी, सब कुछ हमारा वेस्ट हो जाता है। हमको लगता है दुश्मनी रख करके हम उनको सबक सिखाएंगे, हम ये भूल जाते हैं कि जो ज़िंदगी हमको यूनिवर्स ने दी थी अपने लिए, वो हमने अब किसी और के पीछे पढ़ने के लिए लगा दी है।
0: हाँ, और मेरा तो फलसफा ही दूसरा है साहब
1: जी।
0: नफरत तो हमारे दिल में कभी किसी के लिए आई ही नहीं,
1: मोहब्बतें लिख कर
0: देखिए मेरी गाड़ी पर भी मोहब्बतें लिखा रहा है। तो नफरत तो हमारे दिल में कभी किसी के लिए आई ही नहीं, जिसने दिल दुखाया उसे माफ किया और फिर चुपचाप अपनी जिंदगी से उसे आजाद किया।
1: क्या बात है,
0: आप मेरी लाइफ में है ही नहीं। मतलब हम सोचते हैं कि हमको लगता है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, कि अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो इससे उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, लेकिन आपका नुकसान जरूर होता है।
1: बेशक,
0: मतलब आपकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो निगेटिविटी की ओर बढ़ती जाती है। तो भाई दूसरे लोग आपको निगेटिव करें, इससे अच्छा है आप स्वयं में पॉजिटिव रहिए,
2: स्वयं में रहना चाहिए,
0: जो मुझे लगा कि मतलब हाँ ये होना चाहिए।
1: बेशक सही बात है, और आप अपने रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, राइट। चलिए इसी के साथ रिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं भाई रिया क्या लेकर आई हैं।
3: शायरी,
1: शायरी है, तो चलिए हमारे श्रोताओं तक अपनी शायरी आप पहुंचा दीजिए, जो भी आज आप कहने आई हैं इस ओपन माइक।
3: दिल की आवाज से नगमे बदल जाते हैं,
1: दिल की आवाज से नगमे बदल जाते हैं।
0: आहा, क्या बात है, दिल की आवाज से नगमे बदल जाते हैं,
3: साथ न दे तो अपने बदल जाते हैं,
1: साथ न दे तो अपने बदल जाते हैं। क्या बात है,
3: पलके भी जरा संभाल कर छपकाना, क्योंकि पलके झपकने से सपने बदल जाते हैं।
0: क्या बात है, पलके झपकने से सपने बदल जाते हैं,
1: ये बात सही है ना, जैसे आँख खुलती है सपना बदल जाता है, फिर दूसरा देख लेते हैं। कभी अपने हिसाब से कस्टमाइज सपना देखा है कि आज हम ये देखना चाहते हैं, आज हम ये देखेंगे?
2: ऐसा होता है कभी कभी,
1: कभी कभी,
2: क्योंकि उस चीज को अगर हम माइंड में बहुत ज्यादा रख रहे हैं रात के सोने से पहले, तो ऐसे सपने आते भी है, फिर वो हॉरर वाला हो या फ्रेंड्स का हो।
1: अच्छी नींद कैसे आती, अच्छे सपने कब आ सकते हैं, ज्यादातर किस तरह के, जस्ट सोने से पहले कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको करने से आप रिलैक्स होते हैं?
0: हमको तो लगता है कि
1: क्वालिटी स्लीप,
0: हाँ, मतलब हमको ये लगता है कि अगर आपने दिन भर में जो अच्छा काम किया है उसकी तरफ अगर आप निगाह डालें और ये सोचकर कि कल हमको ये काम, अच्छे काम करने हैं, तो हमको लगता है कि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ सोते हैं तो पॉजिटिव सपने आते हैं,
2: पॉजिटिव सपने आते हैं।
0: और निगेटिविटी के साथ सोचते हैं, जैसे अभी हम आज ओपन माइक हुआ और अभी तक कोई गाना नहीं हुआ, तो आज अदनान सर गाना गाने वाले हैं, ये कल हमने सपने में सोचा था।
1: अच्छा,
0: और आज आप गाएंगे भी,
1: और आपने भजन भी गाया था उसी से।
0: हमने भजन भी गाया था,
1: जब आया था तो हम सपने में हम भी थे ना।
0: आप सपने में, मतलब देखिए, मतलब हम लोग कितना प्यार करते हैं, ये हमारा सपना देखते हैं, हम शादीशुदा होने के बावजूद इन्हीं का सपना देखते हैं। इससे बड़ी मोहब्बत की मिसाल दुनिया में होगी नहीं।
1: मोहब्बत की नहीं, कैरेक्टर के थोड़े ढीले होने की मिसाल।
0: मतलब कैरेक्टर के ढीले क्या, छोटे भाई का ध्यान रखना फर्ज है।
2: तो
1: क्योंकि आप अपने दाम्पत्य जीवन पे जितना फोकस करेंगे उसकी उतनी अच्छी लाइफ आप
0: नहीं। दाम्पत्य जीवन का फोकस हमने किया, लेकिन 7-8 साल गुजर गए। अब छोटे भाई पर फोकस करने का वक्त है कि जिस दुख को मैंने झेला है, अब आप भी शुरू करें, मतलब उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं।
1: हम शुरू करें और आप उसके लड्डू खाएं।
0: जी हाँ, छुआला बिल्कुल कहीं बाकी है, उनको लगता है बहुत जल्दी बटेगा।
1: देखिए कद्दू कटेगा तो सब छुआरे का नहीं पता। सो बहुत अच्छा आपने बोला है रिया, काफी अच्छा था, जिंदगी के फलसफे को बताने वाला, दैट्स वेरी गुड।
0: तो अदनान सर अब कौन सा गीत सुनाने वाले हैं?
1: गीत से पहले मुझे लगता है हम जो बात करने वाले थे उसके लिए वक्त का तकाजा है कि किस तरह से हम अपने घर में सेविंग्स कर सकते हैं, ये सवाल मेरा आप सब लोगों से है। बदलते दौर में जिस तरह अभी लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, सभी अंदाज़ा लगा रहे हैं, इवन RBI गवर्नर ने भी कह दिया है कि अब महंगाई का बॉम्ब फूटेगा, तो एक प्रैक्टिकल बात है, तो इसको लेकर के हम अपने फैमिली में किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह अपने एक्सपेंसेस खर्चे को कम कर सकते हैं, इसको लेकर के हम आप लोगों से थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे अजिता जी आपसे।
2: सर सबसे पहले तो अपनी फिजूल खर्ची बंद कर देना चाहिए, जैसे
4: मुझे आदत है बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने की, वो मैंने छोड़ दिया।
1: जैसे 10 रुपए का अगर लेती हैं तो कितने गोलगप्पे देते हैं वो?
4: अब जो भी 4-5
1: 5 देते हैं?
4: कहीं नहीं, कभी कभी 5 भी देते हैं,
2: कभी 6,
4: कुछ लोग 4 भी देते हैं।
1: अच्छा,
4: मुझे तो 6 वाले कम ही मिलते हैं।
1: तो चलिए, अगर बाली ये 5 देते हैं और आपने 4 लिया तो क्या कुछ बचत होगी?
4: नहीं, मैंने खाना ही छोड़ दिया।
1: खाना ही छोड़ दिया? खाना खाना ही छोड़ दिया आपने?
4: नहीं, खाना खाती हूँ, गोलगप्पे खाना सब छोड़ी हूँ।
1: गोलगप्पे
4: वो जो मेरी हैबिट में था उसको मैंने छोड़ा है।
1: ओके।
4: और जैसे हम लोग पहले कभी भी जा रहे हैं बाहर तो वाटर बोतल जो है हम लोग अक्सर करके दुकान से लेते थे, अब क्या करते हैं वाटर बोतल को हम घर से लेके जाते हैं।
1: ये एक अच्छा मुझे इनिशिएटिव लगा कि उसी प्लास्टिक भी बढ़ जाती इस तरह से।
4: जी हाँ,
1: क्यों
4: ना हम बोतल घर से लेके चलें। और अगर जैसे वॉकिंग डिस्टेंस है तो ऑटो के बजाय, अगर धूप नहीं है प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तो हमें थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है अगर तो हमें वॉक करना चले, वॉक करके ही जाना चाहिए।
1: ये अच्छी बात है, बहुत सही बात कहा आपने।
4: और थोड़ा हमारा भी बॉडी बैलेंस सही हो जाता है।
1: राइट।
4: एंड हमारे जो ऑटो के खर्चे हैं वो भी बच जाते हैं। और लाइट का अगर मैं करूं तो बहुत से लोगों की मैंने हैबिट देखी है कि फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं ऑल नाइट, उनका फ़ोन चार्ज में लगा रहता है, वो 100% होने के बाद में भी ऑफ नहीं होता है।
1: करेक्ट।
4: बट मुझे क्या लगता है, अगर आपको आपकी बैटरी फुल हो गई है तो उसको एटलीस्ट आप इतना करो कि उसको ऑफ कर दो। एंड बहुत से लोगों की होती है आदत कम, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से कि एसी ऑन है, कंबल ओढ़ रखा है, क्या बेनिफिट है एसी का?
1: सही बात है
4: भाई, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप उसको ऑन करो, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता इसका कोई ना वो है। मैं देख रही हूँ उसका एक फैशन बना रखा लोगों ने कि एसी ऑन है, हम कंबल भी ब्लैंकेट भी ओढ़ के लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, फैन भी चल रहा है, क्या मतलब है इसका?
1: करेक्ट, बहुत पॉइंट की बात
4: की आपने। हमारा ही, हम खुद से ही वेस्ट कर रहे हैं ना।
1: बिल्कुल।
4: और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों की अगर बात की जाए आजकल, जैसे 13-14 साल के बच्चे जो होते हैं, अगर उनकी हाइट पर्सनालिटी ठीक ठाक है तो वो लोग साइकिल चलाना कम पसंद करते हैं, बाइक से आना जाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल।
4: तो उसमें आपका फ्यूल का जा रहा है। उन बच्चों को पहले, हम लोग 12th में थे, 12th में क्या, मैं जब LBS में पढ़ती थी तो हमारे साथ में बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन करते थे, मैं भी करती थी, तो उस टाइम में मैं देखती थी कि मैक्सिमम बच्चे साइकिल से आते थे। एक साइकिल स्टैंड बना हुआ है, उसका जो भी चार्ज रहता हो XYZ, तो वहाँ पे अब मैं देखती हूँ मैक्सिमम बाइक खड़ी होती है,
1: साइकिल रेयर हो गई है।
4: अब लेकिन होता क्या, उसका कुछ दिनों बाद में उल्टा होता है, पहले हम बाइक चलाते हैं, बाइक का शौक होता है, उसके बाद में जब हमारा फैट ज्यादा हो जाता है फिर से हम साइकिल चला रहे हैं, जिम ज्वाइन कर रहे हैं।
1: करेक्ट, सही बात है।
4: उस चीज को अगर हम बैलेंस बना के रखें तो काफी फिजूल खर्ची से हम बच सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बातें कही आपने, जैसे आपने कहा कि अक्सर हम अलग से जिम जाते हैं,
4: जी,
1: अलग से वक्त निकालते हैं। मुझे लगता है अलग से वक्त और जिम दोनों हम बचा सकते हैं अगर हम छोटे मोटे काम के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल करें।
4: जी,
1: राइट। एंड दूसरी बात, आपने एसी की बात कही, तो एसी की बात में मुझे एक बात याद आई, अभी नोएडा में और गुड़गांव में ऐसे कई केसेस हुए हैं जहाँ पे ब्लास्ट हुई हैं एसी।
4: जी, जी।
1: मैंने भी कई बार अपने शो में अनाउंस करके बताने की कोशिश की है, 18 एंड 16 जो ये जो टेम्परेचर होता है इस पे नहीं चलाना
4: नहीं
1: चाहिए,
4: चलाना चाहिए।
1: कंप्रेशर पे जबरदस्त दबाव होता है जिसकी वजह से वो हीट करता है।
4: जी।
1: और कूलिंग भी उस तरह हो नहीं पाती है,
4: नहीं।
1: ये प्रॉब्लम करता
4: है।
1: सो 16 पे देखती हैं आप, और कभी भी ऐसा हो तो प्लीज़ समझाइए, कम से कम बहुत ज़्यादा है तो 24 तक आ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही जनरल सा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। एंड दूसरी बात, आपने कहा फिजूल खर्ची, चलिए बताशे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप खाना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई दिल
4: तो
1: है
4: एक फन में बोल,
1: हाँ मतलब कभी कभी आप खा सकते हैं 10 का 20 का। हाँ, ये एक चीज़ देखा है मैंने कि कई बार आदमी निकलता है तो कहते हैं हचक के खाएंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जब आप खाते हो तो टेस्ट भी आता है, मतलब बाहरी चीजें टेस्ट के लिए होती हैं, ना कि वो मेन कोर्स होती है, खाना होती है ना,
5: कोर फूड नहीं है,
1: कोर फूड नहीं होता। हम देखते हैं कि भाई बताशे भी खा ली, फिर टिक्की भी खा ली, चलो अब वहां पे चल के बर्गर भी खा लेते हैं, अब बचा हुआ तो अब डोसा क्यों बचा है भाई, अन्ना खड़ा है बना रहा है डोसा, तो चलो डोसा भी खा लेते हैं। तो वो पूरा पूरा फूड चेन आप गड़बड़ कर देते हैं
4: जी।
1: खर्चा भी ज़्यादा होता है। एंड अगर हमने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हम बस एक या दो बताशे दे दो, जस्ट टेस्ट आ जाए
4: जी, बिल्कुल
1: तो वो समझ में आता है। या आपने चार पांच खा लिए, मतलब वो भी एक क्वांटिटी सही है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा करो आप, ये मैं आप खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं वो बता रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बहुत सही बात कहा कि टीवी चल रहा है, एसी कम पे कंप्रेशर पे भी ज़्यादा कर रहा है और बिजली भी ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है जितने ज़्यादा हम मिनिमम टेम्परेचर पे आते हैं।
4: जी जी बिल्कुल।
1: तो ये इस पर ख्याल रखना चाहिए। लाइट्स बिला वजह जल रही है, उठ के गए तो पंखा चल ही रहा है चल ही रहा है, उसको देखा नहीं, इवन कई बार टोकना मुझे भी पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दिया तो चीज़ें बच सकती हैं।
4: एल पी जी गैस
1: के बारे में,
4: उसके बारे में भी बचत करनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं, मैं कुकिंग करती हैं तो अगर उस फ्राई पैन ले रखा है, गैस पहले ऑन कर दिया, आपको फ्राई पैन नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट उसको आप ये करिए पहले सारी चीजों को ढूंढ के इकट्ठा करके रख लीजिए,
1: करेक्ट,
4: उसके बाद में गैस ऑन करिए, वहां पे भी आप बचत कर सकते हो।
1: वाओ,
4: बहुत से लोग होते हैं इतने में कितना जल जाएगा, आप इतना रोज कर रहे हो डेली तो आप सोचो
1: महीने में
4: कितना आपका जल जाएगा।
1: करेक्ट,
4: छोटी छोटी चीजों से हमें बचत करना सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड यही चीज़ें ओपिनियन मैं सृष्टि से पूछना चाहूँगा कि कैसे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, कैसे फिजूल के खर्चे कैसे बचा सकते हो आप, कोई आइडिया?
2: मैं टाइपिंग करने जा रही हूँ स्टार्टिंग में।
1: टाइपिंग करने जा रहे हैं, उससे खर्चे कैसे बचेंगे?
2: थोड़ा बहुत अपने लिए निकाल सकती हूँ। अच्छा, मम्मी के पैसे बच सकते हैं।
1: मतलब जो एक्सपेंसेस आप पे हैं मम्मी करती हैं वो आप खुद से निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घर के खर्चे कैसे कम कर सकते हो जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही है?
2: वो तो मम्मी लाती हैं, बट थोड़ा बहुत मुझे यूज करना होता है उसको।
1: अगर हम खाने के बारे में बात करें तो खाने में कैसे बचत हो सकती है?
2: खाने में जैसे उतना ही बनाए जितना खाना हो, उससे ज्यादा बन जाए तो ऐसा ना कि फेंकना पड़े।
1: एग्जैक्टली, अक्सर ये देखा जाता है कि घरों के बाहर
2: बन जाता है,
1: एक जगह ऐसी बना लेते हैं लोग, इवन उसके लिए आए दिन लड़ाइयाँ होती है पड़ोसियों से, इवन पुलिस तक आ जाती है और कहती बताओ यार कूड़ा फेंकने को लेकर हमको परेशान किया जा रहा है। तो गंदगी भी होती है और फूड वेस्ट भी होता है, उससे मुझे लगता है बेहतर कि आप एक्स्ट्रा गर्मा गर्म बना करके जानवरों को पहले ही खिला दें।
0: सही बात है।
1: अगर आपको इतना फेंकने का शौक है तो आपको पुण्य भी मिल जाएगा, उन जानवरों का भी भला हो जाएगा और वो सड़ा खाने से जानवर भी इवन बच जाएंगे। भाई आपका नुकसान अकेले का नहीं है, जानवर सड़ा खा रहा है क्योंकि वो भूखा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बीमार हो रहा है, वो मर रहा है।
0: इसीलिए कहा जाता है कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जानी चाहिए।
1: करेक्ट,
0: इसका मतलब बीच वाला इंसान खाए।
1: करेक्ट,
0: हाँ सही बात है।
1: तो ये इस चीज का मुझे लगता है ख्याल रखना चाहिए। क्या कहना आपका रिया, कैसे बचत हो सकती है? पूरे शहर में पैदल ही निकल लिया जाए कैसे
2: जी?
1: अच्छा, कुछ और तरीके हैं पैसे बचाने के? जैसे आप क्या देखती हैं अपने घर में कि अगर इस चीज पे हम थोड़ा सा और काम करेंगे तो पैसे और बच जाएंगे?
3: मेरे पास पैसे नहीं रुकते।
1: नहीं, आपके पास नहीं, घर के खर्चे की हम बात कर रहे हैं।
3: पापा,
1: हाँ पापा, या घर का जो पूरा एक निज़ाम चलता है, एक सिस्टम होता है, उसको लेकर के?
3: वो सब मेरे को नहीं पता, ये सब पापा ही रखते हैं, पापा ही जानते हैं।
1: चलो खैर ठीक है,
3: पापा जानते हैं, अगर इसको मेरे को दे दिए
0: मुझे लगता है
3: पापा के पास जाएगा नहीं।
1: ओके,
0: कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देश में कमी थी उन्होंने कहा लोगों से कि हफ्ते में एक दिन का व्रत रखो,
1: फास्टिंग का,
0: हफ्ते में, और वो स्वयं हफ्ते में दो दिन व्रत रखते थे। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक गाड़ी के पीछे करीब 20 गाड़ियों का काफिला चलता है, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि आप खर्चे कम कीजिए, कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए कि हम अपने को कैसे कम करें।
1: चलिए, वैसे हमें लगता है कि हर कोई अपने अपने लेवल पे कर सकता है, चाहे वो आम इंसान हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी कर सकता है। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा सा इन चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं। एक फूडिंग का है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक व्हीकल्स पे है, पेट्रोल वगैरह का है, और एक खाने पे है,
4: एक और है
1: पहनने पे,
4: नहीं पहनने पे भी है,
1: मेकअप पे
4: नहीं, वो तो करती है लड़कियां, वो कभी नहीं सुधरने।
1: लड़कियां अब तो लड़के भी

0: तो चलिए भाई, अब हम चलते हैं आपसे विदा ले करके, और काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनको अच्छा भी लगा है, इवन मैसेजेस भी आ गए हैं। तो किन किन के मैसेजेस आए हैं आइए बता देते हैं। सबसे पहले जो मीनू जी हैं, आपने लिखा है गुड आफ्टरनून टू यू। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, 100% राइट, थैंक यू सो मच। मन के साथ ही मस्ती करने के बाद नेहा नाज जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। मनीष शर्मा मौजूद हैं, चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का ओपन माइक वाला प्रोग्राम कैसा लगा ये हमको आप ज़रूर बताइए। और फिलहाल अब इजाज़त दीजिए, हम लोग चलते हैं इस शो से, क्योंकि ये शो अब हो रहा है अपने मकाम पर पहुँच कर मुकम्मल। सो अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, अगले हफ्ते डेफिनेटली कोई गाना हम ज़रूर गाएंगे
1: जी।
0: सो फिलहाल आप सुन रहे थे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में, क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: Delicious.
5: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में, क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: अरे सुना
1: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: नमस्कार, आदाब, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून। आपके इस पसंदीदा एफएम चैनल 89.6 एफएम रेडियो ज्ञान असली आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर दोपहर के बज चुके हैं ठीक 2:09 बाय स्टूडियो क्लॉक। वक्त हो चला है आपके सबसे चहेते काउंटडाउन शो इन द टॉप 20 की तरफ चलने का। आपके साथ शुरू के सफर में आपका हम सफर यानी कि आपकी हम सफर हाजिर हैं बनने के लिए आपकी आरजी उन्नति, आपकी होस्ट एंड दोस्त। भाई दोस्तों, संगीत का कोई दौर नहीं होता, लेकिन कुछ दौर ऐसे ज़रूर होते हैं जो हमारे दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में यानी कि इस बेहतरीन प्लेलिस्ट के अंदर हम लेकर आए हैं उसी दौर के कुछ चुनिंदा 20 गाने जो हम आपके लिए चुन कर लेकर आए हैं, ढूंढ कर लेकर आए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी पुरानी यादें ज़रूर दिलाएंगे। एक ऐसा दशक जिससे हमने मोहब्बत करनी सीखी, जिससे हमने महसूस करना सीखा, जिसको हमने इंजॉय किया और आज भी हर शाम जिसकी प्लेलिस्ट हम इंजॉय करते हैं। 2000 से लेकर 2010 तक का वो बेहतरीन दौर जिसमें हमें बहुत ज़बरदस्त गाने मिले, जिसमें हमें बहुत ज़बरदस्त सिंगर्स मिले, एक्टर्स मिले, हमें वो मिला जिसकी तलाश हमें थी। हमें गीत जैसी एंट्री मिली, शाहिद कपूर जैसा लड़का देखने को मिला, जिसको देखने के बाद लोगों ने कहा कि भाई हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आदित्य होना चाहिए। लोगों ने या फिर कहें तो लड़कियों ने खास तौर पे गीत को अपना फेवरेट बनाते हुए बोला कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। केके की आवाज़ सुनने के बाद लोगों ने अपने रोमांस को जाहिर करना, अपनी मोहब्बत को पेश करना सीखा। प्रीतम के म्यूजिक ने लोगों को घर बैठे बैठे डांस का मूड कैसे बनता है ये बनाना सीखा। AR रहमान का म्यूजिक हो, प्रीतम का म्यूजिक हो या फिर हो जबरदस्त आवाज केके की, सभी ने सबके दिलों को इस कदर छुआ कि आज भी उनकी प्लेलिस्ट शामिल है। बट बदलते दौर के अंदर आजकल बहुत ज्यादा गाने बदलते जा रहे हैं और हमारा टेस्ट दिन ब दिन बदल रहा है। और इसी बदलते हुए टेस्ट, बदलते हुए जमाने में आइए लेकर चलते हैं हम आपको 2000 से लेकर 2010 तक के उस दौर में वापस से, जहां आप फील करेंगे अपने उन पुराने दिनों को, उन नॉस्टैल्जिया को जो आप आई थिंक कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। फिलहाल सुनते रहिए आपका सॉन्ग नंबर 20 इन द टॉप 20 में और आप सुन रहे हैं अपनी आरजी के साथ आपका अपना एफएम रेडियो ज्ञान असली 9.6 एफएम, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। पहली आवाज़ केकी की ही होने जा रही है। गाना है डिस्को वाले खिसको हड़प्पा फिल्म से और दिल बड़े हड़प्पा। ऑफकोर्स आपका दिल भी अब बोलने वाला है, तो ज़रा बोलाइए और डांस करते करते इन्जॉय करते बताइए गाना आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो ज्ञान असली 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: हां जी, डिस्को वाले खिसको, बड़ी देसी बीट बजानी, दिल बोड़े हड़प्पा फिल्म से आप इस गाने को एंजॉय कर रहे हैं। बोल हैं जयदीप सहानी साहब के, संगीतकार हैं प्रीतम, और इस गाने को एंजॉय करते हुए हमारे साथ एक लिसनर जुड़ गए हैं जो लिख रहे हैं, डियर आरजे मैम को मेरा नमस्कार। नमस्कार आपको, कैसी हैं आप? आपका भी स्वागत करते हैं हम इंडिया टॉप 20 में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आर्जुनती मौजूद है लेकर के आपके आफ्टरनून का काउंटडाउन वाला शो, जिसमें आपने एंजॉय किया सॉन्ग नंबर 20। तो ये भाई हमारे काउंटडाउन का नंबर 20 वाला जो गाना था, आई थिंक आपको पसंद आया होगा, और ये गाने ने आपके दिमाग को और इस गर्मी से परेशान आपको कर दिया होगा तरोताज़ा। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं सलाम नमस्ते फिल्म से। आवाज़ किसकी है ये आप गेस करके बताने वाले हैं चैट बॉक्स के अंदर। एंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 19। हम मिलते हैं अगले बीट पर, अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 19।

0: हाँ जी, सलाम नमस्ते। और हम भी आपसे करते हैं दोबारा से सलाम और नमस्ते, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM पर आपका अपना काउंटडाउन वाला शो एंड टॉप 20 अपनी आरशोनती के साथ, अपनी होस्ट एंड दोस्त के साथ। एंजॉय कर रहे थे आप एक बेहतरीन सा गाना। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बॉलीवुड के जो पुराने गाने थे, मतलब 2000 से लेकर 2010 तक के जो भी गाने थे, उन सब में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पंजाबी बीट्स डाले हुए हैं। और पंजाबी बीट्स की वजह से ये गाने मुझे इतने पसंद आते हैं कि मैं यही बोलते चली जाऊँगी मुझे कितने पसंद आते हैं। फिलहाल आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मेरा भी सवाल है, और आई थिंक आपका भी सवाल यही बनता होगा कि क्यों नहीं बन रहे हैं बॉलीवुड से ऐसे गाने। अब मेरा मन तो कर रहा था कल रात जब मैं बैठ कर गाने सुन रही थी, तो क्यों ना चिल्ला चिल्ला के पूछ लूँ कि बॉलीवुड वालों बताओ क्यों नहीं बन रहे हैं आपसे गाने, क्यों नहीं हो रही हैं तारीफें, क्यों नहीं आप वैसे बीट्स ला रहे हो। आपको भी पता होगा कि भाई 90 के उस दशक में जब हिमेश रेशमिया, जब प्रीतम, जब एआर रहमान और उनके साथ लिरिसिस्ट समीर साहब आए थे, तो उन्होंने कितने हिट गाने दिए थे और मोहतरमाओं की तारीफों में क्या चार चांद लगाए थे। कहाँ हैं वो तारीफें? अब क्यों आप ये गन थार कार और न जाने क्या क्या दुनिया चार चार कर रहे हो, बट वो जो ये मेन गाना था हमारा जो बॉलीवुड का टशन था, जो हमारे बॉलीवुड का एरा था, हमारे बॉलीवुड का जो एक वो कहते नहीं है, आप बहुत सारी फिल्में देखते हो लेकिन एक तड़का लगाने वाला जो सस्पेंस है, जो स्टोरी है, जो रोमांस है, वो कहाँ है, वो चार्म कहाँ है बॉलीवुड का? क्यों नहीं आपसे ऐसे गाने लिखे जा रहे हैं? क्यों नहीं मोहतरमाओं की तारीफ आपसे हो रही है? क्यों नहीं आप अपने दिल के जज्बातों को अल्फाजों में लिख पा रहे हो? कहाँ हैं वो राइटर्स? क्यों भैया समीर साहब को वापस कर दो मुझे, क्योंकि मैं समीर साहब के गाने बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और उससे भी बड़ा सवाल ये बनता है कि जब भी मैं कोई 90s का गाना सुन रही हूँ, 2000 का गाना सुन रही हूँ, तो लोग कहते हैं तुम इतना पुराना गाना सुन रहे ऐसे रहते हो। मैं दिल से सुनती हूँ भैया, दिल में ना मेरे गिटार बजती है जब 90 के दशक के गाने बजते हैं या 2000 के दशक के गाने बजते हैं। जब भी 2000 से लेकर 2010 तक के गाने आते हैं और पीछे से भाई साहब के की आवाज़ आती है, ओहो भाई हाँ, हम सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने गाना सुनने के लिए ट्यून किया था, झूमने के लिए नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी झूमने लग जाती है। और मुझे ये भी नहीं याद रह जाता है कि मुझे डांस नहीं आता, डांस नहीं करना आता है, डांस नहीं आता हमको, हम फिर भी करने लग जाते हैं बैठे बैठे कहीं पर भी। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी डांट रही होती हैं और मेरे दिमाग में चल रहा होता है गाना, और गाना ये होता है मम्मी वहाँ पर गाने, मम्मी डांट रही है मुझे कि बेटा ये कर लो वो कर लो, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, तुमसे लिखाई नहीं हो रही, और हम पीछे से मस्त के गाने चला करके प्रीतम के म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं और मम्मी कह रही है मैं डांट रही हूँ तुमको हंसी आ रही है। एज ए सीरियस सिचुएशन पर अगर आपके कानों में एयरफोन है ना, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस तरह के गाने नहीं बजाएंगे, नहीं तो मम्मी की डांट और मार अलग से पड़ती ही पड़ती है और आप सोचेंगे कि मार खाने में भी मज़ा आ रहा है, जस्ट बिकॉज हमारे कानों के अंदर वो गाने चल रहे हैं जो उस ज़माने के बड़े बेहतरीन थे। तो भाई बॉलीवुड वालों जरा मुझे जवाब दो कि क्यों नहीं बन रहे आपसे ऐसे गाने, बनाने चाहिए ना। मैं समीर साहब को मिस कर रही हूँ, मैं हिमेश रेशमिया को वापस लेकर आई है। हिमेश रेशमिया जब भी गाने लेकर आते थे, ओ माय गुडनेस, मार्केट में क्या बवाल होता था जब भी उनके गाने आया करते थे। हमेशा डीजे वाले भैया फुल ऑन मार्केट में लगा करके सीडी पूरे मार्केट को सुनाते थे और हमको उस दिन समझ में आ जाता था कि अब एक महीना लगातार यही चलेगा और सब जगह चलेगा। और हम तो गानों को लिखा करते थे ताकि हमें गाने याद हो जाएं। अब जिनके पास MP3 था, जिनके पास फ़ोन था, वो रिकॉर्ड करते थे TV से और हम इंतज़ार करते थे कि कब 9XM पर कोई बढ़िया गाना आएगा और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल अगर आप उस एरा को मिस कर रहे हैं तो अपने चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जी हाँ, स्पेशली आपके लिए ट्यून किया है आज का प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस्तकबाल करते हैं हम। मैम आप एहसास कर लेती है ना? जी हाँ बेशक, मैंने आपको एहसास कर भी लिया कि आप कौन हैं और हमारी प्यारी सी मोहतरमा है और आपका हम स्वागत भी करते हैं वापस से। मैम नाइस सॉन्ग सिलेक्शन किया है आज आपने, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके नाउ हम चलते हैं हमारे अगले वाली बीट पर, क्योंकि हमने बकवास बहुत ज़्यादा कर ली है, बातें बहुत ज़्यादा कर ली है और आपका अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है। तो सुनते रहिए सॉन्ग नंबर 18 काउंटडाउन इन द टॉप 20 की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट में, जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं 2000 से लेकर 2010 तक के गाने अपनी आरशोनती के साथ, आपके अपने FM रेडियो के असली 99.6 FM यही गोला शहर की धड़कन पर। एंजॉय कीजिए टन टन और चलाइए भी, क्योंकि भैया इस गाने पर हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। आप भी कीजिए और जरूर बताइएगा ये गाना आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गाना सरी 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 18।

0: और ये वो गाना है जिसको सुनते वक्त ड्राइविंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग करेंगे ना तो फिर स्पीड में दौड़ाएंगे, खुद को विवेक ओबरॉय समझ लेंगे और अतीफ असलम की आत्मा आपके अंदर आ जाएगी, बीट्स के साथ साथ गाड़ी दौड़ाएंगे और चालान पीछे से कट जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कुछ गाने बहुत डेंजरस होते हैं सुनते टाइम। और आप सुन रहे थे सॉन्ग नंबर 17 प्रिंस फिल्म से तेरे लिए श्रेया और अतीफ की आवाज में, म्यूजिक डायरेक्टर थे भाई सचिन गुप्ता जी। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि बोल समीर साहब लिखते हैं तो जबरदस्त लिखते हैं और उनके गाने हम बड़ा मिस करते हैं। समीर साहब की अगर बोल हो जाए के अतीफ असलम या फिर किसी और बढ़िया सिंगर की आवाज हो जाए, जस्ट लाइक सोनू निगम साहब, अरिजीत सिंह साहब, भैया क्या ही आवाज थी, बिंदास झकास उमदा, शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन उनकी आवाज़ की तारीफें कम नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आप वो उनके गानों को महसूस करते हैं। और आजकल तो भाई ऐसा होता जा रहा है कि लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, सुर और ताल बिगड़ चुका है। अब आपके साथ भी ऐसा अगर फील होता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा फील हो रहा है कि आजकल लोग सुर और ताल का जो मैच है उसको ख़त्म करके सिर्फ ध्यान देते हैं कि आप क्या गा रहे हो। और क्योंकि हमारी ऑडियंस जो होती है वो कहीं ना कहीं सिर्फ म्यूज़िक में डूबी रहती है तो लिरिक्स पर इतना फोकस जाता ही नहीं, और जो गाने लिरिक्स के लिए लिखे जाते हैं वो हम तक पहुँचते ही नहीं। और भाई पहले के ज़माने में ऐसा था कि हर वक्त लिरिक्स इतने ज़्यादा पॉइंट पर लिखे जाते थे कि अगर आपका दिल टूटा है तो आप उसे महसूस कर पाओगे, आपको दुनिया ने धोखा दिया तो आप उसे महसूस कर पाओगे, आपको मोहब्बत हो गई है तो आप उसे महसूस कर पाओगे, और हर एक इमोशन शायद आपको ना भी फील हुआ हो, कभी आपने ना महसूस किया हो, आपकी जिंदगी में वो जज्बात कभी आया ही ना हो, इसके बाद भी महसूस हो जाएगा। और इसीलिए शायद लड़कियां सोचती थी कि ये सफेद घोड़े पे कोई राजकुमार उनके लिए आएगा, क्योंकि बॉलीवुड उस वक्त लिख ही कुछ इस तरह से रहा था। और आप सुन रहे थे 2000 के आसपास की प्लेलिस्ट, यानी कि 2000 से लेकर 2010 तक की बीच वाली प्लेलिस्ट, जिसके सॉन्ग्स भाई साहब क्या ही तोड़-तोड़ है, समझ रहे ना आप, पाड़ू गाने जिनको कहते हैं हम, जी हाँ, कुछ इस स्टाइल में हम गाने लेकर आए हैं आपके लिए और आप इंजॉय करते रहिए इन द टॉप 20। फिलहाल हमारे साथ चैट बॉक्स में जस्सी जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने लिखा है सॉन्ग और प्लस लगाया है फायर। थैंक यू सो मच, हम आपका इशारा समझ चुके हैं, यानी कि गानों में आग है, मतलब आग में फायर है, मतलब फायर ही गाने हैं। एंड SSS ओके लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, आपका इस्तकबाल करते हैं हम इन द टॉप 20 में। आप सुन रहे हैं काउंट डाउन प्लेलिस्ट का सॉन्ग नंबर 16 जो आपके लिए हम अगला पेश करने जा रहे हैं, मुझसे दोस्ती करोगी। आवाज़ है उदित नारायण साहब की, फीमेल कौन है ये आप मुझे बताएंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा कि उदित नारायण और कुमार सानू के साथ उस वक्त जिसकी आवाज़ ज़्यादा फेमस हो रही थी वो थी अलका साहब, लेकिन उनके साथ कुछ और भी सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। अब आप बताइए वो सिंगर कौन है जिनकी आवाज़ आप सुनने जा रहे हैं इस गाने के अंदर। गाना है अनदेखी सी अनजानी सी, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, इन्जॉय करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वाली बीच पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन।
1: रेडियो 9.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 16।

0: क्या बात है, क्या बात है। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। और ये मोहब्बत वाले दिन जो फिलहाल खतों में लिखे जाते थे, आजकल तो व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, मैसेजेस का ज़माना है, कॉल्स का ज़माना है, और भैया वीडियो कॉल भी हो ही जाता है। वहीं पर जो लोग उस ज़माने से आ रहे हैं जिन्होंने खतों को लिख करके अपने जज्बात बयां किए हैं, या फिर जिन्होंने हालचाल पूछा है कि आप कैसे हैं और आने वाले खत का इंतज़ार किया है कि भाई खत आएंगे, पोस्टमैन भाई साहब लेकर आएंगे, और वो जो खुशी है जो आजकल आपको कुरियर आने पर होता है, यानी कि आपके पार्सल्स आने पर होते हैं, और स्पेशली लड़कियों को ज़्यादा होता है जब भी उनका कोई पार्सल आ रहा होता है, बेचारी उछल उछल के आती है, अरे वाह सुबह से नहा धोकर कि पार्सल वाले भैया आ रहे हैं, होता है। और उस वक्त लोगों को एक्साइटमेंट थी खतों की। आजकल तो लोगों को फिलहाल अंदर ये आ चुका है कि अगर हम मैसेज कर देंगे, किसी ने हमको मैसेज किया और हमने फास्ट रिप्लाई दे दिया, तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, न जाने क्यों, लेकिन ऐसे ख्याल लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। फिलहाल आप सुन रहे थे लता जी की आवाज़ में और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना अनदेखी अनजानी सी। संगीतकार थे राहुल शर्मा और बोल थे आनंद बख्शी के। और ओके, हमारे एसएस ने बताया है कि आशा जी की आवाज़ है, तो माफ़ कीजिएगा, आशा जी की नहीं लेकिन उनकी बहन की ज़रूर थी, यानी कि लता जी की आवाज़ थी। और आप इन्जॉय कर रहे थे 2002 से मुझसे दोस्ती करोगी, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया गाना है खूबसूरत सा नगमा। और इस नगमे के बाद आइए लेकर चलते हैं हम आपको दोबारा से हाई बीट की तरफ, और हाई बीट को इन्जॉय करेंगे क्योंकि अब आप करेंगे लग जगले से हाँ ठा करके। ये गाना आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो दोबारा से याद कर लीजिए, क्योंकि 9XM का वो ज़माना हम आपके लिए वापस से लेकर आए हैं जो आप इन्जॉय करने रहे हैं आज इंटर टॉप 20 की 20 वाली काउंट डाउन वाली प्लेलिस्ट के अंदर। सॉन्ग नंबर 15 आपके लिए पेश करती हैं आपकी आशी उन्नति। एंजॉय करते रहिए आज का शो, आज की प्लेलिस्ट और आज का गाना आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर। सुनते रहिए रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यह गुना शहर की धड़कन पर आवाज है आपकी अपनी आशी उन्नति की। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो ज्ञान 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 15.

0: हाँ जी, और इस गाने को सुनने के बाद दिल भी यही करता है कि हट जा रे ना पंगा ले, नहीं तो हो जाएगा दंगा रे, क्योंकि हम इस गाने को सुन रहे हैं और हम पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं। एंड ओके, चैट बॉक्स में आइए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। एंड हमारे साथ मन्ने शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं हाय हाय, कैसे हैं आप, आपका भी इस्तकबाल है एंड द टॉप 20 में गोलमाल का सॉन्ग है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने SSG। एंड सही बात है, SMS नहीं करना चाहिए, ऐसे तो हम मैसेज करते हैं, हमारे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए हम कुछ नहीं करते, हम सोते हैं और सोने में हमें महारत हासिल है। फिलहाल भारत में ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो आपको स्लीप शेमिंग की जाती है, यानी कि आपके लिए सोना गुनाह माना जाता है। वहीं दूसरे देशों में कहते हैं भाई अगर आप सोते हैं, काम के बीच में सो जाते हैं, नैप ले लेते हैं, तो ये हार्ड वर्किंग का सिंबल है और आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं। बताइए हमारे साथ कितना भेदभाव होता है भारत के अंदर। फिलहाल आप बताइए, मेरी मम्मी तो ऐसा करती है, जब भी मैं सो रही हूँ और ना उठ रही हूँ तो आकर पंखा बंद कर देती है, AC बंद कर देती हैं, और ऊपर से जो वो ब्लैंकेट है वो आराम से ओढ़ के सो रही है वो और ऊपर ढक देती है कि आप सो के दिखाओ तुम कैसे सोने वाली हो। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? ओके, जिज्ञासा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जिज्ञासा श्रीवास्तव जिनका नाम है, लिख रही है हाय मैम हाय, कैसी हैं आप, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम इन द टॉप 20 में। एंड इसके बाद ओके, तो आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉक एंड रोल सोनी है। ये गाना आपको याद है? वैसे मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ, हालांकि इस गाने को मैंने एंजॉय बहुत किया था एक टाइम पर। और अब बात हो रही है इस गाने को दोबारा सुनने की, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट लिरिक्स हम भूल चुके हैं और बचपन का टैलेंट है, हर एक लिरिक्स को उल्टा गाते आए हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक गाना था जस्ट चिल चिल और हम गाते थे जस्ट चियाओं चियाओं, और मुझे पता ही आपने भी गाया है इसलिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आप इन्जॉय करें सॉन्ग नंबर 14 इन द टॉप 20 की काउंट डाउन वाली प्लेलिस्ट में। हम मिलते हैं अगले बीट पर, अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 14.

हां जी, गजब भयो रामा, जुलम भयो रामा, और आप सुन रहे हैं आ देखे जरा किसमें कितना है दम। और इस गाने ने साबित कर दिया कि बहुत दम है भाई, क्योंकि ये गाना आपको बैठे बैठे डांस करा रहा था ना। अब प्रीतम का म्यूजिक था और बिपाशा बासु के ऊपर फिल्माया गया गाना था, तो ऑफकोर्स जबरदस्त तो होना ही था। चैट बॉक्स में हमारे साथ मीनू जी जुड़ गई हैं, जो हमें सुनती हैं गोंडा से, और आते ही उन्होंने डांस फरमाया। क्या बात है भाई, डांस डांस डांस, और हम भी कर रहे थे डांस आपके साथ ही साथ। आपका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं।

0: हम आपके अपने इंटर टॉप 20 में नींद में आने वाले सॉन्ग चल रहे हैं. ओके, मुझे लगा था भाई हम हाई बीट बजा रहे हैं. फिलहाल हम आपको कुछ गाने अभी कुछ देर बाद ऐसे सुनाने वाले हैं जो बड़े रोमांटिक होंगे, क्योंकि हमारा हमेशा से एक रिवाज रहा है, 10 गाने होते हैं हाई बीट वाले. और जिस तरह से वक्त गुजरता है, शाम आती जाती है, सूरज ढलता जाता है, हमारे गाने सूथिंग होते जाते हैं. एंड ओके, इसके बाद लिखा है, वाओ नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मनीष शर्मा जी ने हमें काफ़ी सारे लॉलीपॉप्स भेज दिए हैं. एंड ओके, इसके बाद अभी मैं डिकोड करके आती हूँ तब तक आपका इस मैसेज को, और आप सुनिए हमारा अगला गाना, सॉन्ग नंबर 12, यू आर माय सोनिया, कभी खुशी कभी गम, फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं. और आप भी ज़रा कहिए खुद से कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता, तुम इतनी सुंदर दिखो. चलो बोल के आओ अपने आप से, मुस्कुराइए और एंजॉय करते रहिए इंटर टॉप 20 अपनी आशंती के साथ. स्टे ट्यून्ड.
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 12.

0: यही बात तो हम भी आपको कह रहे हैं भाई, ना तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, इसीलिए आईने में जाकर देखिए और कह दीजिए ना कि तुमको कोई हक नहीं बनता इतना खूबसूरत दिखने का, है ना, ये तो फाइन लगेगा। और आपकी इस खूबसूरती को, एंड हमारी मीनू जी लिख रही हैं कि नींद में चला है तो सो जाइए। वैसे बात तो सही है यार, नींद आ रही तो सो जाइए, लेकिन सोने हम आपको देंगे नहीं। एंड हम सुंदर नहीं दिखे तो हैं, भैया आप इतने सुंदर दिखते तो हैं और आपका नाम इतना खूबसूरत है, आपके नाम के आगे ये जो गुलाब का और इतना प्यारा सा पौधा लगा है वो इतना प्यारा, तो आप कैसे प्यारे नहीं दिख सकते, आप बहुत प्यारे दिखते हैं, वो अलग बात है कि आपने हमारी नज़र से कभी नहीं देखा है। एंड एस एस जी लिख रहे हैं ज़रा ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है सिंगर, भाई सिंगर की गलती नहीं है, गलती है लिरिसिस्ट की जिसने इस गाने को लिखा है, तो ज़रा शिकायत करके आते हैं हम उस लिरिसिस्ट से, उस गीतकार से, उस इंसान से। तब तक के लिए आपको लेकर चलते हैं अलका जी की आवाज़ की तरफ और आप इंजॉय करने जा रहे हैं वो वाला गाना जिसको हम तब गाते थे जब दूध वाले भैया आते थे और हम कहते थे दैया दैया दैया रे, दूध वाले भैया रे, दूध देकर जाना। अगर आपने भी कभी गाया है तो ज़रूर चैट बॉक्स में बताना। एंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 11 आपकी अपने शो हिंदी टॉप 20 में आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन पर आवाज़ है आपकी अपनी आरजे नदी की स्टूडेंट।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 11.

0: हाँ जी, तो भाई अलका जी की आवाज़ में आप इस बेहतरीन से गाने को सुन रहे थे, दैया दैया दैया रे। और आज हम नहीं बोलेंगे दूध वाले भैया रे, क्योंकि हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। और हमारे मीनू जी ने भी कहा है कि मैम हम तो आज भी बोलते। क्या बात है भाई, चलिए हमको लगा था इकलौते हम ही ऐसे एलियन जैसे प्राणी हैं जो गानों को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बट आपसे मिल के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें लगा कि आज हम अकेले नहीं हैं। थैंक यू सो मच। वाओ मैम, नाइस, इतना लंबा चौड़ा बाव बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ओके, इसके बाद जिज्ञासा जी हैं हमारे साथ जो बहुत सारी इमोजीज हमें भेज रही हैं, थैंक यू सो मच। और मनीष शर्मा जी हमें बता रहे हैं कि पंजाब ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया है। चले तो रन देख के भी बताइएगा कितने रन किसने बनाए हैं और कौन सी टीम जीतने वाली है। वाओ सो ग्रेट लिखा है मीनू जी ने। एंड SS जी कह रहे हैं ओके बाय बाय बाय बाय, आपको ख्याल रखिएगा आप अपना। मैं तो डांस कर रही हूँ, बेशक डांस करते रहिए, ऑल दिस गोल, थैंक यू सो मच। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं 2001 से, राज फिल्म से, जो खोलेंगे आपके कुछ राज और आपको सुनाएंगे जो भी कसमें खाई थी हमने। अब आपने कौन सी कसम खाई है ज़रा बताइए चैट बॉक्स में, और इन्जॉय करते रहिए इस बेहतरीन से गाने को। हम मिलते हैं अगला सॉन्ग जो कि होने वाला है काफ़ी रोमांटिक, चोरी चोरी चुपके चुपके लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 99.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 10.

0: चोरी चोरी चुपके चुपके, और आप सुन रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, आपका सॉन्ग नंबर 9 काउंटडाउन प्लेलिस्ट का एक ऑलमोस्ट वन ऑफ द रोमांटिक सॉन्ग उदित नारायण और अलका जी की आवाज में चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से लेकर आए हैं हम आपको सलमान खान और प्रीति चंटा पर फिल्माया गया गाना। और भैया क्या ही खूबसूरत नज़ारे थे, उनकी ब्लैक एंड वाइट ड्रेस और उनका वो अंदाज, उनकी क्यूटनेस, उनके छोटे छोटे बाल और प्लस सलमान खान का वो धांसू लुक। वैसे सलमान मियाँ आपकी 90s के फिल्मों में, 2000 की फिल्मों में थोड़े से ज़्यादा शर्मीले, थोड़े प्यारे, थोड़े चार्मिंग लगते थे, लेकिन अभी वो हो चुके हैं, आपको पता है ना, पांडे जी ऑन ड्यूटी बजाएं सीटी। जी हाँ बिल्कुल भाई। एंड हमारे साथ गुल्लू जी जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू यू, एंड अभी ज्वाइन किया है। अरे वाह क्या बात है भाई, तो आपका स्वागत करते हैं हम ज्ञानसली फैमिली में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानसली 9.6 FM, ये है गोना शहर की धड़कन पर। ऑलमोस्ट वक्त हो चला है 3:30 बाय स्टूडियो क्लॉक, और हम आपको बता दें भाई हमारे 2 घंटे के स्पेशल वाले शो में बजे हैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, और हमारे पास है भी 8 गाने। तो आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 8 की तरफ, एंजॉय करते हैं 2000s का एक और बहुत खूबसूरत सा गीत, बहुत खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण की आवाज़ में। गाने का नाम आज आपकी अर्जुनती नहीं बताने वाली, क्योंकि काफ़ी देर से हम आपसे गाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब बारी है आपकी, आप गेस कीजिए और बताइए कि कौन सा गाना होने वाला है आपके लिए अगला। चैट बॉक्स में अपने गाने को गेस करके ज़रूर बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर, आई होप आप कर लेंगे, क्योंकि आप हैं रेडियो ज्ञान असली के लिसनर्स प्लस बॉलीवुड वाले फैंस। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हम मिलते हैं अगली बीट अगले गाने पर, तब तक के लिए बने रहिए, इन्जॉय करते रहिए।
1: Radio Ganasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs.

0: बातें हैं, आप सुन रहे हैं अतराज फिल्म से। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ऐ सनम। उदित नारायण जी और अलका जी की आवाज में इस गाने को सुनते ही न जाने कितने ही दिल आज भी धड़क उठते हैं। वाकई इस दशक के रोमांस की बात कुछ और थी। तो भैया आंखें बंद करके अगर आपने अपने चेहरे सारे देख लिए हो, सारे नज़ारे देख लिए हो, तो ज़रा आप आंखें खोलिए और यादों के सफ़र में आइए। आगे चलते हैं और हम आपको लेके चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि अगला गाना हमारी प्लेलिस्ट में आपका इंतज़ार कर रहा है और उससे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि भाई सॉन्ग है कभी अलविदा ना कहना फिल्म से मितवा। तो आइए इंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड ओके, जिज्ञासा जी ने हमें एक लाइन लिखकर भेजी थी जो हम नहीं पढ़ पाए थे, और लाइन कुछ इस तरह से थी कि मैम खास आपके लिए सारा शहर देख लिया, सारा शहर काफ़ी नहीं था। क्या बात है, सारा शहर देख लिया, सारा शहर काफ़ी नहीं था, जब तेरी आंखों को देखा तो फिर कुछ बाकी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत लाइंस लिखी हैं आपने। तो आइए एंजॉय करते हैं हमारा सॉन्ग नंबर 7 आपके इंटर टॉप 20 की काउंट डाउन वाली प्ले लिस्ट में, और हम मिलते हैं अगले बीट अगले गाने पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM presents इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 7.

0: और आप सुन रहे हैं एक खूबसूरत सा गाना प्यार की कहानी क्रश फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ में। और आई थिंक ये फिल्म हर किसी ने देखी है, सबने देखी है, आपने देखी है, मैंने देखी है, और हमारे जो छोटे मोटे बच्चे होने वाले होंगे ना उन्होंने वो भी देखेंगे ही, क्योंकि हमारे टाइम पर सिर्फ एक ही सुपर हीरो था ना, बैटमैन, ना आयरन मैन, ना कैप्टन अमेरिका, हमारा था भैया क्रश, क्रश मैन जो उड़ जाता था, और हमने उसकी तरह उड़ने की कोशिश की थी, हालांकि मैं गिर पड़ी थी उड़ते उड़ते क्योंकि उड़ा नहीं जा रहा था मुझसे। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले सॉन्ग की तरफ। जिस्म से लेकर आए हम आपके लिए वो जादुई गाना जिसकी आवाज में जादू है, नशा है, और गाने का नाम भी है जादू है नशा है। एंजॉय करते रहिए इन द टॉप 20। मिलते हैं अगले बीट अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 5।

0: क्या बात है भाई साहब, क्या आवाज है, क्या सुकून है, क्या रिदम है, क्या म्यूजिक है, क्या लिरिक्स है। सच में ये गाना जादू है और अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको नशा हो ही जाता है। आप सुन रहे हैं सॉन्ग नंबर 5, जादू है नशा है। और अगर मैं यहाँ से उठकर कहीं बाहर भी जाऊंगी ना तो मुझे पता है इतने गानों में मैं सिर्फ एक ही गाना गुनगुनाने वाली हूँ और वो है जादू है नशा है मदहोशियां हैं। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। सॉन्ग नंबर 4 एंड सॉन्ग नंबर 3 आपके सामने पेश कर रहे हैं हम। नकाब फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं जावेद अली की आवाज में एक दिन तेरी राहों में, और सॉन्ग नंबर 3 तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे तुम बिन फिल्म से। एंजॉय करते रहिए बैक टू बैक दो गाने। हम मिलते हैं अपने आखिरी के दो गानों की तरफ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 4

0: है कि वो इंसान आपका पार्टनर हो, हो सकता है वो आपका दोस्त हो, आपकी माँ हो, आपके पिता हो, कोई भी हो, जिसके अंदर आपको रब नज़र आता है, जिसके अंदर आपको वो सब नज़र आता है जो आप चाहते हैं। बात तो भले ही आपके नज़रिए की होती है, लेकिन नज़र अगर उसमें आ रहा है और आपको उनके पास आकर सुकून महसूस हो रहा है, तो उनको गाना भेज दीजिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके आप कभी कुछ कहते नहीं हैं। और मुझे लगता है 90s की प्लेलिस्ट इसीलिए बेस्ट होती है क्योंकि हम अपने जज्बातों को गानों के साथ भेज सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे थे इंडिया टॉप 20 की सुपर डुपर हिट प्लेलिस्ट, काउंटडाउन आ चुका है लास्ट पर सॉन्ग नंबर 2 एंड सॉन्ग नंबर 1। एंजॉय करते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM और घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। हमारी मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वाले प्रोग्राम अगले ज्ञान असली में, तब तक के लिए बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज का शो आपको कैसा लगा, आज की प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी, चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी आपके फीडबैक्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए। और जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं पिछले 2 घंटों से रेडियो गार्डन से, फ्रीक्वेंसी से या एप्लीकेशन से, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 2.

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है, तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं, तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा, और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
5: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
4: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
5: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
4: जी,
5: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है, और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
5: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
4: जी,
5: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन न लगना।
4: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख न लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं, तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
5: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
4: जी,
5: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ, और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
4: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
5: जी आज दीदी
4: है? क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
5: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
4: जी।
5: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
4: जी,
5: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
4: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
5: जी दीदी
4: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
5: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
4: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
4: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
6: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
4: यानी कि ये जो SNECU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
6: हाँ बिल्कुल, SNECU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
4: अच्छा।
6: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
4: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
6: बहुत सारी,
4: जैसे?
6: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
4: जी।
6: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
4: और बाकी?
6: अरे बताता हूँ बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
4: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
6: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल। यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
4: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
6: देखिए आकांक्षा जी,
4: जी
6: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
4: जी
6: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है, देर मत करो। आरजे दीदी
4: जी,
6: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
3: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
6: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल ना घी ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
3: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
6: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें, साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
3: और भैया हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्यों?
6: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं, और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
3: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
6: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है, संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
3: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है, हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
7: हाँ जी, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी? आए हो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और वक्त हो चला है संडे के स्पेशल वाले प्रोग्राम क्लिनिक ज्ञानश्री का, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानश्री की एक बहुत ही खूबसूरत पहल, जिसके अंदर बात होती है आपके सेहत की। और हमारे साथ आज सेहत पर बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल विश्वकर्मा जी, जो कि हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट, तो उनका आइए उनका स्वागत कर लेते हैं।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी रेडियो टीम की भी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे धन्यवाद करना चाहिए हमारे लिसनर्स का भी, जिन्होंने इतना प्यार दिया, और उनके साथ ही साथ लगभग 2 वर्षों का ये हमारा सफ़र हो चुका है, जिसमें हम लोगों को एडवाइस देते हैं, फिर एक बार आ गए हैं आप सभी के बीच, और आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमसे जुड़िए। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कॉल कर सकते हैं या हमें चैट बॉक्स में भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं, और इसी के साथ जैसा कि हर रविवार को हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, और आज भी ऐसा कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर लेकर के आई होंगी उन्नति मैम। चलिए जानते हैं इनसे कि ऐसा वो क्या टॉपिक लेकर के आई हैं आज।
7: काफ़ी सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर के हर दिन एडवर्टाइजमेंट होता है।
8: अच्छा, ऐसा क्या सस्पेंसिव टॉपिक लेकर के आई हैं?
7: क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?
8: टूथपेस्ट में नमक? नमक वैसे हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है,
7: और ये ख़राब भी है अगर आप हद से ज़्यादा लेते हैं।
8: एक्चुअली ख़राब होना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अक्सर करके कम लेना लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनता है, ज़्यादा लेना ही लोगों के लिए प्रॉब्लम बनता है।
7: बिल्कुल, और यहीं से शुरू होता है BP, ब्लोटिंग और न जाने क्या क्या। फिलहाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है?
8: टूथपेस्ट में तो हमारे नमक, पुदीना, लौंग, लहसुन और पता नहीं क्या क्या
7: है, क्योंकि है, तो आपके दांतों में कैविटी नहीं होगा
8: जी। बिल्कुल, जो मतलब वैसे हर्बल टूथपेस्ट जिनमें और तमाम तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अपने भारत में विभिन्न विभिन्न तरह के मतलब टूथपेस्ट भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि नमक भी होना चाहिए मेरे टूथपेस्ट में।
7: ओके, तो घर जाके फिलहाल आप चेक कीजिएगा। तो तक हम आपके दांतों से जुड़ी बात कर लेते हैं कैविटी के बारे में
8: जी।
7: और मेरा आपसे एक सवाल है, जब भी मैं एडवर्टाइजमेंट देखती थी और कहते थे कि डेंटिस्ट का सुझाया नंबर वन ब्रांड, और मुझे लगता था कि डेंटिस्ट हर किसी को से ये ही बता रहे हैं कि आप ये टूथपेस्ट करो, आपके दांतों में कुछ नहीं होगा, आपके गमों में कुछ नहीं होगा, आपकी जुबान बढ़िया रहेगी, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा?
8: बिल्कुल, और यदि सबको वो यही सुझा रहे हैं तो लोग इसको करने के बाद लोगों के दांतों में कैविटीज और ऐसी दूसरी परेशानियां क्यों हो रही हैं?
7: बिल्कुल
8: जी, बिल्कुल।
7: और हम वैसे तो मैं हमेशा डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये सवाल हमेशा क्यूरियोसिटी की तरह रहा कि आपका तो काम ही दांतों की कैविटी दूर करना है, बट आज हम डॉक्टर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कैविटी के ऊपर, क्योंकि दांतों में कैविटी लग जाना ये बचपन से हम सुनते हैं, अरे ज़्यादा मीठा मत खाओ कैविटी लग जाएगी, ये मत करो कैविटी लग जाएगी, दांतों में कीड़े लग जाएंगे। और मैं सोचती थी दांतों में कीड़े कितने बड़े होते हैं।
8: बिल्कुल, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे इसको लेकर के मिथ भी हैं हमारे समाज में कि दांतों में कीड़े लग जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं वो झाड़ फूंक करके वो कीड़े निकाल भी देते हैं।
7: हाँ, और वो सुड़ियाँ निकल भी आती हैं।
8: हाँ, तो वो झाड़ फूंक करके कीड़े भी निकालते हैं, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी करती हैं।
7: और मैं सोचती थी आपके इतने छोटे से दांत पे इतना बड़ा कीड़ा आया कहाँ से,
8: इतना बड़ा कीड़ा कहाँ से आया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आज वो मिथ और वो सारे जो है समस्याएं जो हैं लोगों के दांतों से जुड़ी हुई, उन पर हम एक अच्छी चर्चा करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि दांतों से कैविटी के बारे में उन्नति मैम क्या प्रश्न पूछने वाली हैं।
7: सर, मुझे आप ये बताइए पहले तो कि कैविटी क्या चीज़ होती है। इसको मैंने अलग अलग जगह पर सुना है और इसका अलग अलग मतलब होता है, और कैविटी शायद हमारे दांतों में कुछ लेयर भी होती है जिसको मतलब उसको भी मैंने पढ़ा हुआ है, और उसके बाद जब दांतों में कीड़ा लग जाता है ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है उसको भी लोग कैविटी बोलते हैं।
8: चलिए तो कैविटी से पर्दा उठाते हैं और सबसे पहले यही स्पष्ट करते हैं कि कैविटी होती क्या है। देखिए, हमारे
7: दिवाली में भी गाना गाया ना कैविटी वाला, वो छुरछुरिया घुमाते हुए
8: कैविटी वाली छुरछुरिया भी घुमाएंगे हम जरूर। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इससे ही पर्दा उठाना चाहिए कि कैविटी होती क्या है। देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैविटी क्या होती है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हमारे बॉडी में कई अलग जगह पे, डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट कैविटीज़ मौजूद होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम बायोलॉजिकली जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि जो मुंह का हिस्सा है उसको भी हम ओरल कैविटी कहते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पेट का जो हिस्सा है वो पेरिटोनियल कैविटी कहलाता है, और इसके अलावा जो जो हमारे छाती का हिस्सा होता है वो चेस्ट कैविटी कहलाता है। तो कैविटी का जो संदर्भ होता है वो होता है किसी एक स्पेशली डेडिकेटेड स्थान से, मतलब आप ऐसा समझिए कि जो हमारे पेट में जो जगह है जिसमें हमारे सारे ऑर्गन्स जो सेटल्ड हैं, वो जगह जो है वो पेरिटोनियल कैविटी कहलाती है। तो ठीक इसी तरह कहीं ना कहीं हमारे जो मुंह की जगह होती है, ओरल स्पेस होता है, इसको ओरल कैविटी कहते हैं। बट जब कभी हमारे दांतों में, स्पेशली हमारे टूथ के जो बीचले हिस्से होते हैं, जैसे जहाँ पे दो दांत सेपरेट होते हैं, इन जगहों पे आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कई बार जगह हो जाती है, गैप हो जाता है, कभी कभी वहाँ का थोड़ा सा जो दांत का हिस्सा होता है वो डैमेज भी हो जाता है। तो उस डैमेज से बने हुए स्पेस की वजह से कई बार वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो कैविटीज़ जो है वो बनती हैं। उस स्पेस को, उस जगह को, उस डैमेज्ड हिस्से को कैविटी कहते हैं, स्पेशली जब बात दांतों की होती है तो।
7: हाँ जी, तो भाई इसी कैविटी से जुड़े हुए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, एक बात मुझे आपसे जाननी है, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि मीठा नहीं खाओ नहीं तो तुम्हारे दांत कीड़े खा जाएंगे, ये बात सच है क्या?
8: देखिए, मीठा वैसे हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है, दैट इज नो डाउट, ठीक है। बट क्या है कि जैसे बच्चे इसका ज़्यादा सेवन करते हैं, बच्चे दांतों को ठीक से ब्रश भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और मुंह की अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं, बच्चों के मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ भी होती है अकॉर्डिंग टू, अगर आप एडल्ट्स के कंपैरिजन में लेंगे तो ये रीजंस होते हैं कि मतलब हाई शुगर आपके दांतों को जल्दी डैमेज करता है, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो दांत खराब हो जाते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बट सिर्फ मीठा खाने से दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं।
7: ओके, मतलब दांतों की सफाई ना ठीक से करने की वजह से दांतों में कैविटी होती है, कीड़े लगते हैं। और मुझे आपसे एक और सवाल है, अगर दांतों में कीड़े लगते हैं तो वो दिखते कैसे, मतलब दांत कैसे दिखते हैं?
8: ठीक है, देखिए मैं इसके लिए आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, बहुत से लोगों के दांतों में आपने देखा होगा कि बाकी सारे दांत सफ़ेद होते हैं, जो दांत काला भी होता है उसका भी बाकी हिस्सा सफ़ेद होता है, बट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो आपको देखने को मिलता है कि वो ब्लैक हो गया है। ब्लैक होने के साथ साथ उसमें थोड़ा गड्ढा वगैरह भी दिख गया है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अभी कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं कि दांतों में दर्द होता है बट दांत हिल नहीं रहे होते हैं, दांतों में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, वो कंडीशन जो आपकी कहलाती है वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही क्रिएट होती है। बट समटाइम्स जैसे कुछ बाहरी जो पैरासाइट्स होते हैं, बाहरी कोई कीड़े होते हैं जैसे मक्खियाँ होती हैं, फ्लाइज वगैरह होती हैं, उनके लार्वा वो हैच कर देती हैं हमारे माउथ के पास सोते समय, तो ऐसे कंडीशन में कई बार दांतों में भी जो लार्वा वाले कीड़े, पैरासाइट वाले कीड़े हैं वो देखने को मिले हैं। ऐसा भी मतलब मेडिकल फील्ड में हमको देखने को मिलता है।
7: ओके, तो मेरे को अब बात समझ में आई कि बच्चों के दांतों में कैविटी क्यों लग जाती है और वो कैसे देखते हैं।
8: जी बिल्कुल,
7: कई लोगों के दांत जो होते हैं वो बीच से टूट जाते हैं और इसके बाद उनके दांतों में वो कैविटी लगना या फिर वो ब्लैक स्पॉट हो जाता है और उन्हें बहुत पेन भी फील होता है। क्या कैविटी लगने पर दांतों में पेन होता है और इसके पीछे का रीजन क्या होता है?
8: ठीक है, देखिए जो दांत हमारे होते हैं ये हमारे बॉडी का एक लिविंग पार्ट है। मतलब जैसे हमारे नाखून होते हैं, हमें बेसिकली लगता है कि नाखून जो है वो लिविंग पार्ट नहीं है, उसी तरह हमें लगता है कि हमारे जो दांत भी हैं वो लिविंग पार्ट नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि दांत लिविंग पार्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। जब कभी भी आप गूगल पे या किसी दूसरे सर्च इंजन पे आप दांत का एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब एनाटॉमी ऑफ टूथ सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि दांत का ऊपरी हिस्सा एक हार्डर शेल से बना हुआ है, कैल्शिफाइड सेल से, और जो इनर उसका हिस्सा है जिसको पेरिडोंटम बोलते हैं, पेरिडोंटम ये एक सॉफ्ट टिश्यू जैसा हिस्सा होता है और उसके अंदर माइक्रो वेसल्स भी आपको दिखती हैं और उसके अंदर नर्व भी होती है।
7: और उसी की वजह से जब हम, मुझे लगता है ऊपर वाली लेयर में कोई दिक्कत होती है तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है।
8: जी, अब जो ऊपर वाली लेयर होती है वही हमारे दांतों को स्ट्रेंथ और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। क्या होता है कि अगर आप अच्छे से सफाई ना करने की वजह से, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या कुछ तरह के जैसे जो शुगर कंटेंट होते हैं, मीठी चीज़ें हो गई या अल्कोहलिक चीज़ें हो गई जिसमें अल्कोहल कंटेंट्स होते हैं, ये हमारे दांतों को तेज़ी से डैमेज करते हैं। एसिडिक चीज़ें हो गई जिसमें जो अगर बहुत ज़्यादा आप खट्टी चीज़ें का भी सेवन करते हैं तो ये भी हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है।
7: या एक्चुअली मैंने कई बार नोटिस किया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा खा लेते हो तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए फिर आपसे कुछ नहीं खाया जाता और आपके जो दांत बैठ चुके
8: हैं। हाँ, दांत बैठ गए हैं, दांत गोठिल हो गए हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के शब्दों का।
7: मैं हमेशा एक नया शब्द ज़रूर सीखती हूँ और मैं भूल भी जाती हूँ।
8: ज़रूर हमारे लिसनर्स आके हमको ऐसे, मतलब जो हमारे पेशेंट्स हैं वो आके हमको ऐसे शब्दों के बारे में बताते रहते हैं और वो हम यहाँ आकर के आप लोगों को बताते रहते हैं।
7: ओके, तो मुझे ये बताइए ऐसा क्यों होता है कि खट्टा खाने के बाद हम कुछ और खा नहीं पाते, या फिर कभी कभार दांत के नीचे अगर कोई कंकड़ आ जाता है तो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए फिर हम नॉर्मल खाना यानी सॉफ्ट खाने को भी नहीं खाते, हम छोड़ देते हैं कि पूरा मुंह झंझना रहा है और नहीं प्रेस हो रहा है उतना।
8: बिल्कुल, जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है,
7: जी
8: सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमारे दांतों का जो अपर लेयर होता है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, इनेमल जो है वो डैमेज हो चुका होता है, मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और इसके वजह से सडन टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाता है आपके दांत के इनर पोर्शंस पे। मतलब ठंडी चीज़ें अगर आप खा रहे हो तो उसको आपका जो दांत है वो उसका टेम्परेचर बाहर ही रोक ले रहा है, जो इंटरनल पोर्शन है जहाँ पे माइक्रो वेसल्स हैं, बारीक जो नसें हैं दांतों को ब्लड सप्लाई पहुँचाने वाली, उन नसों तक और जो जो नर्व सप्लाई होती है वहाँ तक टेम्परेचर सडन ट्रांसफ़र हो जाता है और वो चूंकि अब नर्व होती हैं तो नर्व पे जब टेम्परेचर पड़ता है तो वो इंस्टेंट सिग्नल भेजती हैं और वो थोड़ा सा पेनफुल या झंझनाहट जैसा सिग्नल होता है। तो जब कभी भी हम कुछ कंकड़ जैसा पड़ता है तो वो हमारे दांत में जब पड़ता है तो चूंकि हम प्रेशर तो पूरा देते हैं, हमें लगता है कि हम खाना चबा रहे हैं बट वो सडन पड़ जाता है तो वो एक जगह पे, एक पिन पॉइंट पे हमारे दांतों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है और वो जो उसका प्रेशर है वो नर्व रूट तक जाता है। इसके वजह से हमको एक मतलब सडन तीखा पेन होता है और कुछ देर तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। ऑन द सेकेंड हैंड जो आपने पूछा कि हम कुछ भी खट्टा खा लेते हैं, जब भी हम कुछ खट्टा खा लेते हैं तो देखिए हमारे दांतों में चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे जब हम जो हमारे मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं जब वो अपनी पढ़ाई करते हैं तो उनको ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ड्रग का डिलीवरी रूट के बारे में पढ़ना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि कुछ इंजेक्शन जो हैं वो नस में लगा दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शन जो होती हैं वो हमारे मसल्स में लगाई जाती हैं, शुगर जैसी जो इंजेक्शन होती हैं वो हमारे मतलब सबक्यूटेनियस टिशू में, फैटी टिशूज़ में लगाई जाती हैं। कुछ दवाइयां हैं जो हम डॉक्टर खाने के लिए एडवाइज़ करता है, कुछ दवाइयां ज़बान के नीचे रखने के लिए एडवाइज़ करता है। तो ठीक उसी तरह जो ओरल रूट, पेरेंट्रल रूट, ठीक है, उसी के साथ साथ एक बक्कल रूट होता है। बक्कल रूट मतलब जो आपके दांतों का और ये ज़बान के नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ से भी दवाइयाँ एब्जॉर्ब होकर के और हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचती हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनमें सॉर्बिट्रेट नाम की एक दवा है, वो स्पेशली दे दी जाती है ज़बान के नीचे रखने के लिए। ऑनडेम एमडी जैसी जो टैबलेट्स होती हैं वो दे दी जाती है। मतलब जो दवाइयां हमें बहुत फास्टर एक्शन चाहिए होता है कि मतलब इधर हमने दवा खाया और तुरंत हमें 2-4 मिनट के अंदर आराम चाहिए होता है, उनको हम स्पेशली माउथ डिस्पर्जेबल फॉर्म में बनाते हैं। जैसे ऑनडेम एमडी का मतलब होता है ऑनडेम माउथ डिस्पर्जेबल टैबलेट्स,
7: यानी कि मुँह के अंदर जाते तुरंत घुल जाती,
8: तुरंत घुल जाती हैं। तो जो बक्कल रूट होता है वो हमारे दांतों से और जबान के नीचे से एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो जब भी हम कुछ खट्टा खाते हैं तो जो उसका एसिडिक मीडिया होता है वो भी हमारे दांतों से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर हमारे वो नर्व रूट्स तक जाता है और कुछ देर के लिए उनको जो है वो मतलब बहुत हाइपर एक्टिव कर देता है। थोड़ा सा भी हम दबाते हैं तो हमारे दांतों में एक सडन पेन और झंझनाहट टाइप का फील होता है।
7: ऑलराइट, और मुझे लगा था कि सिर्फ हमारे दांत चबाने के काम आते हैं, आज पहली बार मुझे पता चल रहा है कि दवाइयों मतलब दवाइयां जो होती है वो आपके दांतों से भी अब्सॉर्ब हो रही है, जो खाते हो वो आपके दांतों से अब्सॉर्ब होता है।
8: जी, इसको अगर आप साधारण भाषा में समझे तो जो खैनी का सेवन लोग करते हैं, खैनी अब चूंकि जाहिर सी बात है एक हैबिट फॉर्मिंग कंटेंट है, नशा होता है इससे, और उस नशे को ही लेने के लिए लोग करते हैं। और यूजुअली आपने खैनी देखा होगा तो वो अपने दांतों के आसपास ही लोग ऐसे प्लेस करते हुए आपको नजर आते हैं। तो दैट इज बक्कल रूट डिलीवरी सिस्टम, मतलब जो बक्कल रूट से ड्रग की डिलीवरी हो रही है आपके ब्लड स्ट्रीम तक।
7: ऑलराइट, तो चलिए बात कर रहे हैं हम आपकी कैविटी से जुड़ी हुई चीज़ों की, आपके डेंटल प्रॉब्लम्स की। और डेंटल प्रॉब्लम में हमने पिछली बार बात की थी पायरिया की, और आपको याद भी होगा हमने पहले पे काफ़ी सारी बातें की थी। कैविटी में मुझे आपसे ये जानना है कि वो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिसके आते ही लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, और क्या कैविटी एक दांत से दूसरे दांत में ट्रांसफर हो सकती है?
8: जी बिल्कुल, कैविटी एक दांत से दूसरे दांत में ट्रांसफर हो सकती है। आपकी कैविटी जो है वो धीरे धीरे आपके बोन्स में ट्रांसफर हो सकती है, जो लोअर जॉ होते हैं, मतलब निचला या ऊपरा जबड़ा है, जबड़े की जो बोन है, हड्डियां हैं, हड्डियों तक भी ट्रांसफर हो सकती हैं। और कैविटीज अगर उनको इग्नोर किया जाए, अगर उनको नज़रअंदाज किया जाए, तो ये धीरे धीरे किसी बहुत बड़ी समस्या में भी कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है कि जो दांत की ओरोमैक्सिलरी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो स्टार्ट है, जो शुरुआत है, वो कहीं ना कहीं डेंटल कैविटी से हुई है और आज वो बहुत बड़ी गंभीर समस्याओं का एक रूप ले चुकी हैं।
7: क्या कैविटी होने पर दांतों को निकालना ही एकमात्र इलाज बचता है, या फिर कुछ और भी प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम अपनी दांतों की कैविटी भी ठीक कर सकते हैं और दांत भी रिप्लेस ना करना पड़े?
8: बिल्कुल, कैविटीज का डेंटल एक्सट्रैक्शन के अलावा भी बहुत सारे मतलब सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत सारे ऐसे पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से दांतों को रिपेयर किया जा सकता है। और मुझे लगता है आज के इस एडवांस एरा में, जिस एरा में मतलब आर्टिफिशियल परमानेंट दांत भी फिक्स कर दिए जाते हैं, तो ऐसे समय में जो डेंटल रिपेयरमेंट की भी बहुत सी चीज़ें हैं, कैविटीज़ को भरने के लिए कुछ विशेष प्रकार के जो है डेंटल पेस्ट और डेंटल सीमेंट आते हैं। इसके अलावा और भी, जैसे अगर मान लीजिए कैविटी बड़ी है तो उसको रिपेयर करने के भी ऑप्शंस हैं, डेंटल कैपिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब इसमें दांत का अगर आधा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा भी कई बार डैमेज हो चुका होता है, डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, उसको भी हम मतलब रिपेयर करके और सिंथेटिक दांत बना करके उसमें परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं।
7: तो अच्छा, आपने चीज नोटिस की होगी कि लोग दांतों के ऊपर एक वाइट कलर का कैप लगवाते हैं, कई बार वो पूरे उसमें ही लगवाते हैं, और आजकल तो ट्रेंड बन चुका है कि हर कोई अपने दांतों को ऊपर और नीचे दोनों जगह से फिक्स कर लेता है। जो भी हम खाएंगे वो उसी प्लास्टिक के जरिए खाए, क्या ये सेफ है और इसको कौन लगवा सकता है?
8: देखिए, मुझे लगता है कि ये मेडिकल से ज़्यादा ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, ये इनके द्वारा प्रमोट की गई चीज़ें हैं। देखिए, वैसे ये बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सुरक्षित और नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है।
7: बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को बहुत सेंसिटिविटी है या फिर जो कुछ भी गर्म ठंडा या ऐसी चीजें खाते हैं तो उनको बहुत जल्दी झंझनाहट हो जाती है, अगर वो ये कैप लगवाते हैं तो क्या उन्हें राहत मिलेगी?
8: हाँ, वो अगर इस कैप का यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ये पोर्टेबल होते हैं, मतलब रिमूवेबल भी होते हैं, जिनको आप रिमूव कर सकते हैं जब चाहें तब, तो उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है, उसके लिए ठीक है, इसके कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं है। बट हाँ, अगर आप इसको यूज़ करके अगर आप चीज़ों को खाते हैं, देखिए ये बहुत ज़्यादा सेफ़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो प्लास्टिक है, फ्रिक्शन से उसके माइक्रो पार्टिकल्स टूटते हैं, वो टूट के आपके बॉडी में जाते हैं। खैर, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी में दूसरे फूड कंटेंट के पैकेजिंग प्रोसीजर के माध्यम से या प्रोसेसिंग प्रोसीजर के माध्यम से, इन सारे माध्यम से बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं। बट स्टिल वो भी यूज़ करना एक बहुत अच्छा विकल्प तो नहीं है।
7: ओके, तो यानी कि अगर आप डेंटल कैप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो खुद से या फिर किसी से इंस्पायर्ड होकर नहीं करना है, आपके पास डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लीजिए और उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल कीजिए अगर वो आपसे कहते हैं तो।
8: जी बिल्कुल।
7: अच्छा सर, हम जब बात करते हैं डेंटल केयर की तो इसको हम सबसे ज्यादा मद्देनजर रखते हैं, हम कभी भी इस पर इतना वो नहीं करते कि करना ही है, डेंटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह शाम ब्रश कर लिया बस बात खत्म, दांतों में दर्द होने लगा है तो आजकल जो हमें पेन किलर्स मिल जाते हैं हम वो खा लेते हैं, यूं तो हम अपने बॉडी का टेस्ट भी नहीं कराते हैं। और अगर डेंटल टेस्ट की बात करें तो आपको क्या लगता है कितने महीनों में कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए?
8: देखिए, जैसे बॉडी के जो अदर टेस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि जो रूटीन टेस्ट होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT, थायराइड, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल, शुगर एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये क्या है कि आप खुद से भी करा सकते हैं और इसको एक रूटीनली आप करा के अपने बॉडी की इंटरनल हेल्थ को चेक कर सकते हैं।
7: बट डॉक्टर्स के पास जाना, मतलब डेंटल डॉक्टर के पास जाने में लोगों को ज़्यादा डर लगता है कि वो दांत निकाल ही लेंगे, कुछ दिक्कत हो गई तो।
8: थोड़ा सा जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की कुछ जैसे छवियाँ हैं कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल देगा, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा एक हाइप है मार्केट में। देखिए, बात अगर डेंटल हेल्थ की जाए तो डेंटल हेल्थ के लिए तो बेहतर होगा कि आप,
7: आपसे माफी चाहेंगे, एक कॉल है हमारे पास।
8: ऑल राइट,
9: गए नंबर की।
7: ओके, तो ये ओके,
8: ठीक है, किसी सिस्टम जनरेटेड कॉल थी और इसने हमें डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक हमारा क्या था मैम?
7: हमारा टॉपिक ये था कि डेंटल केयर, जो हमारी डेंटल रूटीन होती है, इसके टेस्ट होते हैं और अगर होते हैं तो कब कराने चाहिए, क्यों कराने चाहिए?
8: ठीक है, डेंटल टेस्ट के बारे में तो मेरी राय यही है कि इसके लिए आपको एक अपने जो रूटीन डेंटिस्ट है उनको ही विजिट करना ठीक है, क्योंकि डेंटल टेस्ट में मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता नहीं है कि हाँ इससे आपके दांतों की हेल्थ पता चलती है। इसके अलावा कुछ तरह के स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे आपको दांत में किसी तरह का इन्फेक्शन एंड इस टाइप की चीज़ें हैं, तो इसमें हम एक विशेष तरह का एक्सरे, OPG एक्सरे करते हैं, और OPG एक्सरे में हमारे जो जबड़े होते हैं और जो दांत होते हैं उनका एक्सरे लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि OPG एक्सरे मैं लोगों को ऐसे जनरली एडवाइस करूंगा कि वो अपने हिसाब से उसको करा सकते हैं, वो विशेष कंडीशंस में ही डॉक्टर के सुझाव के द्वारा ही किया जाना चाहिए।
7: ऑल राइट सर, अगर मैं बात करूं, मैंने बचपन से कुछ लोगों को देखा है जिनके दांत, आपने कहा था एक टार्ट नाम की कोई चीज़ होती है जो ब्राउन कलर की होती है, एंड हाँ वही, सॉरी उसका नाम भूल गई,
8: कोई बात नहीं, वो आई कैन अंडरस्टैंड वो,
7: एंड वो जब दांतों के पीछे आ या फिर कहीं भी लग जाते हैं, किसी के दांत पीले हो जाते हैं तो वो जाकर अपने दांतों की सफाई करवाते हैं या फिर अपने दांतों को वाइट करवाने की कोशिश करते हैं। उस दौरान मुझे ये जानना है कि अगर आप ऐसी कोशिश कर रहे हो, आप अपने पीले दांतों को एकदम मोती की तरह सफ़ेद करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आप अपने दांतों को डैमेज कर रहे होते हो? ये जो आपकी पहली लेयर है जो आपको हर तरह की बीमारी, कैविटी और सेंसिटिविटी से बचा रही, क्या आप इसको डैमेज करते हो या फिर एक सेफ प्रोसेस होता है जो आप मंथली वाइज करा सकते हो?
8: देखिए, सबसे पहली बात तो मंथली वाइज इसको बिल्कुल नहीं कराना होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले के समय में इसको जो है मैनुअल फ्रिक्शन मशीन से घिस करके और साफ़ किया जाता था। उस कंडीशन में हमारे दांत ज़्यादा डैमेज होते थे और उनको रिपेयर होने में टाइम भी ज़्यादा लगता था। बट अभी कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हाई प्रेशर जेट थ्रोअर का इस्तेमाल किया जाता है, और मतलब प्रेशराइज्ड और वेपराइज्ड वाटर से दांतों को क्लीन किया जाता है, जो कि हमारे इनेमल को बहुत ही कम से कम नुकसान पहुंचाता है।
7: बट क्या वो प्रेशर हमारे मसूड़ों को तकलीफ देता है?
8: हाँ, हमारे मसूड़ों को थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, बट अगर एक एक्सपर्ट हैंड्स के द्वारा ये चीज़ें कराई जाएँ, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ये चीज़ें कराई जाएँ, तो वो सेफ़ होता है। दांतों को साफ़ कराना ये एक आपका रूटीन वर्क नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके दांत गंदे हैं तो कभी आप साल दो साल में एक बार उनको क्लीन करा करके और वापस से हेल्दी ओरल हैबिट्स को अगर आप पालन करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे आपके दांत वापस से मतलब चमकते ही रहेंगे और वापस से पीले या शेड नहीं होंगे।
7: अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी। जैसे हमारे बोन का कलर होता है ये बिल्कुल वाइट तो नहीं होता है और हमारे दांत भी बोन से ही बने होते हैं, बट क्यों लोगों को ये लगता है कि हमारे दांत एकदम सफ़ेद होने चाहिए जस्ट लाइक चॉक?
8: देखिए, चूंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ हैं, स्पेशली एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ के साथ साथ जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दांत काफ़ी ज़्यादा चमकते रहते हैं। देखिए, जो हमारे हड्डियों का कलर और स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जो हमारे दांत होते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हड्डियाँ जो होती हैं वो इनर टू आउटर मतलब सेम टिश्यूज से बनी होती हैं, बट जो हमारे दांत होते हैं वो इनर टू आउटर डिफरेंट टिश्यूज से बने होते हैं। हमारे दांत में जो कैल्सिफाइड स्टोन होता है वो ज़्यादा कैल्सिफाइड होता है, मतलब उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। हड्डियों में उसके अपेक्षाकृत मतलब कम डेंस कैल्शियम्स होते हैं, मतलब कैल्शियम्स होते हैं बट उनकी डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए उस डेंसिटी के वजह से और इस इनेमल के वजह से दांतों में वो चमक रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ बैड हैबिट्स की वजह से ऐसे खाने जो होते हैं जंक फूड होते हैं वो आपके दांतों को भी नुकसान करते हैं, जैसे जो ये चाउमीन बर्गर और ऐसे जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए इसमें तरह तरह का विनेगर और जो टेस्ट इन्हेंसर अजीनोमोटो जिसको कहते हैं और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल टेस्ट इन्हेंसर्स का प्रयोग किया जाता है जो केमिकलाइज्ड होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। हम जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ये भी हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि हमें बचना चाहिए और ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अपने दांतों को चमकता हुआ देखना चाहते हैं तो।
7: ओके, तो हम डेंटल केयर की बात करें, दांतों की बात कर ली है, लेकिन इनके बीच में रहने वाली जो हमारी टंग है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक तो बैड ब्रीथ आती है यानी कि आपके मुंह से स्मेल आती है और उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरा, क्या ये हमारे मुँह में होने वाली कुछ और बीमारी प्लस कैविटी का भी खतरा बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी टंग को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हो तो?
8: देखिए, टंग को प्रॉपरली क्लीन ना करना भी हमारे जो माउथ कैविटी होती है उसमें पैदा होने वाली बीमारियों की खतरे और चांसेस को बढ़ाती है। टंग को हमें प्रॉपर क्लीन करना चाहिए और टंग को ना क्लीन करने का एक और मेजर फैक्टर है, टंग जो होती है वो हमारे टेस्ट बड्स से पूरी ढकी हुई होती है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इसके टेस्ट बड के वो प्लेस्ड होते हैं। टंग को अगर आप क्लीन नहीं करते हैं तो उस पे भी धीरे धीरे वो टार्टर जो है वो प्लेक जो है वो जमा होने लगती है और वो आपके टेस्ट बड्स को ब्लॉक करती है।
7: okay.
8: इससे क्या होता है, आप नमक मिर्चा और इन चीज़ों का स्वाद थोड़ा सा कम पाते हैं और आप मतलब और ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्चा और मसालों का ज़्यादा सेवन करते हैं जो कि आपके शरीर में दूसरी समस्याएँ पैदा करती हैं।
7: right.
8: प्लेग के प्लेस होने के वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, बैक्टीरियल ग्रोथ के वजह से मुंह में बैड ब्रीथ बढ़ती है, बैड ब्रीथ बढ़ने के साथ साथ आपके मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसके अलावा पेट की भी कई बीमारियां धीरे धीरे जन्म ले सकती हैं। तो टंग को कहीं ना कहीं रूटीनली क्लीन करना चाहिए और ये आपके मतलब मुझे लगता है कि जो दांतों की सफाई है उसकी सफाई जितना ही ज़रूरी होती है।
7: चलिए अब बात कर लेते हैं टंग के कलर की, यानी कि जीभ में भी कुछ रंग होते हैं। एक तो होता है पिंक जिसे हम कहते हैं हेल्दी है
8: जी।
7: आपने एक वाइट होता है जिसमें हम कहते हैं कि आपकी रंग प्रॉपरली क्लीन नहीं है
8: जी।
7: कुछ लोगों की टंग पर्पल पड़ जाती है टाइम के बेसिस पर, एंड ऑफकोर्स मेरी तो बचपन से ही पर्पल है।
8: जी बिल्कुल, हो सकती है कभी पर्सन टू पर्सन मतलब कलर टाइप भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है।
7: एंड ये बात जब मैंने पहली बार पढ़ी और मैं गूगल पे बैठ के सर्च कर रही थी कि पर्पल टंग का क्या मतलब हो सकता है, तो उसने मुझे पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां बता दी कि आपको ये हो सकता है वो हो सकता है। मैंने कहा चाइल्ड हुड से ही है, मतलब पैदाइशी मेरी जबान ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ तब हो सकता है कि आपका पर्सन टू पर्सन कुछ अलग हो, अदरवाइज ये बहुत रेयर केस होता है
8: जी।
7: अब आप बताइए मुझे कि अगर टंग के कलर से आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है।
8: देखिए, अगर आपकी टंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा येलोविश दिख रही है, ठीक है, मतलब बहुत से कलर पैटर्न्स होते हैं, मुझे लगता है 15 से 20 तरह के कलर पैटर्न्स हो सकते हैं, बट कुछ मेजर जो मैं आपको बता सकता हूँ जो आपको समझ में आ सकती है। अगर आपकी जो टंग है वो अगर येलोविश दिख रही है, मतलब उसमें प्रॉपर पीलापन दिख रहा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सभी तरह का, मतलब अगर आप ऊपरी लेयर पे देखेंगे तो वो थोड़ी सी पीली दिख सकती है बिकॉज ऑफ द प्लेक्स, बट अगर उसका निचला हिस्सा साइड साइड का हिस्सा भी येलो दिख रहा है तो ये इंडिकेशन होता है किसी गंभीर लीवर या किडनी से संबंधित बीमारियों के बारे में। इसके अलावा समटाइम्स हमारी जो टंग होती है वो थोड़ी सी उसका कलर जो पिंकिश कलर होता है वो फेड होने लगता है, पिंक रहता है बट फेड सा लगने लगता है, थोड़ा सा ड्राई सी लगने लगती है, ये इंडिकेशन हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या विटामिन B12 डेफिशिएंसी की। इसके अलावा हमारे जो इसके बड्स होते हैं समटाइम्स ये थोड़े उभरे उभरे से दिखते हैं, ये हमारे बॉडी में दूसरे मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी में भी कभी कभी ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी जो टंग है उसमें और ज़्यादा ये जो कलर है वो और ज़्यादा डार्क रेड हो रहा है तो ये किसी तरह का इन्फेक्शन का जो है सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपकी टंग जो है ये वाइटिश जो है वाइटिश और स्पेशली ऊपर के साइड में साइड में अगर ये वाइटिश टेक्सचर दे रही है, कलर दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है, मतलब माउथ में फंगल इन्फेक्शन का सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपकी टंग जो है वो डार्क रेडिश दिख रही है तो समटाइम्स ये कुछ ब्लड से एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स में भी हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक पैटर्न्स होते हैं जिनको देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी में भी बहुत सारे ओरल सिम्टम्स आते हैं, लिप्स का फटना और साइड साइड में ड्राई होना और वहाँ पे इन्फेक्शन जैसा लगने लगना, ये सारी भी चीज़ें विटामिन सी डेफिशिएंसी के अंतर्गत आती हैं।
7: भाई आपकी एक छोटी सी जुबान आपके बारे में कितना कुछ बता देती है
8: जी,
7: और यही काबिल तारीफ है कि इतने सारे रंग होते हैं और इस रंग के बेसिस पे आपने मुझे बताया कि किस तरह से आपके डिफरेंट टंग का कलर आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट में होने वाली बीमारियों को शो कर रहा है।
8: और इतना ही नहीं, टंग से और भी बहुत सारी बीमारियों का इवेल्युएशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंडीशन होती है जिसमें टंग को बाहर निकाल करके उस पर एक छोटा सा मतलब उस पर मारते हैं, ठीक है, उसको छोटी सी हल्की सी चोट दी जाती है और उसमें वो जो टंग होती है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ऐसा कंडीशन जो है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक इवेल्युएशंस हैं जो टंग के थ्रू हम दूसरी गंभीर बीमारियों के बारे में हम जो है उसका अंदाजा लगाते हैं।
7: ओके, तो भाई बड़ी छोटी सी दिखती है लेकिन इसके काम बड़े बड़े हैं
8: जी।
7: फिलहाल अब हम बात करते हैं दांतों की मजबूती की। अब क्योंकि कुछ लोग होंगे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होंगे, कुछ होंगे जिनको डेयरी से एलर्जी होगी, दूध से, दही से, इन सारी चीजों से एलर्जी होगी और वो बेचारे कुछ भी नहीं ले पाते। एंड क्योंकि हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी हुई हैं और वो सप्लीमेंट्स लेना नहीं चाह रहे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि फिर नेचुरल सोर्स से वो कहाँ से कैल्शियम ले और किस तरह से अपने दांतों की मजबूती बनाए रखें।
8: देखिए, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी जानते हैं कि कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स होते हैं। अगर वो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रिपरेशन जैसे जो दूध से ही बने हों बट प्रोसेस्ड हों, लाइक पनीर हो गया या कोई ऐसी चीज़
7: है। एलर्जी है तो, क्योंकि मुझे ऐसे भी कुछ केसेस मिले जिन्हें डेयरी से ही एलर्जी है, वो कुछ भी नहीं ले।
8: अगर उनको कम्प्लीटली डेयरी से एलर्जी है तो फिर तो उन्हें सप्लीमेंट्स पे ही निर्भर होना चाहिए और उन्हें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो इजीली डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे भारी मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स में ही पाई जाती है। इसके अलावा बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, बट वो मुझे नहीं लगता कि उस भारी मात्रा में वो उसका सेवन कर सकते हैं और कैल्शियम की जो कमी होती है उसको अगर वो फुलफिल कर सकते
7: और
8: हैं।
7: और अनाज में अगर बात करें तो सिर्फ रागी आई थिंक एक ऐसा अनाज होता है जिसमें कैल्शियम मौजूद होता
8: बिल्कुल,
7: है।
8: बिल्कुल, थोड़ा बहुत मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है और रागी मुझे लगता है आजकल बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रेंड भी है। बहुत मुझे लगता है गिने चुने ही लोग होंगे जो शायद मल्टीग्रेन आटा वाटा में शायद वो खाते हो रागी।
7: एक्चुअली मुझे लगता है ना, रागी का अगर आप दूध भी लेते हो या फिर कोई भी चीज़ आप रागी से बनी लेते हो तो फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, प्लस उसमें कैल्शियम भी है, उसमें आयरन भी है
8: जी,
7: फाइबर भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो वो एक सुपर फूड की तरह आप उसे मान सकते हैं।
8: बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ जो मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फिश वगैरह हो गया और दूसरे जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, अंडा हो गया, चिकन वगैरह हो गया, इसमें भी, इन चीज़ों में भी कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे बॉडी के स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन होता है और उनसे भी हमें कैल्शियम मिलता है।
7: सर एक और सवाल था, क्या बोन मैरो में कैल्शियम होता है?
8: बोन मैरो में कैल्शियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम होता है बट बहुत कम मात्रा में।
7: जो लोग ये सोच रहे हैं कि नॉनवेज में हम बोन मैरो ले रहे हैं तो हमारा ठीक हो जाएगा, आप देख लीजिए इसमें भी कैल्शियम कम है।
8: जी, इसमें कैल्शियम की मात्रा कम है। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है बट वो ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से है। मतलब वो कैल्शियम का सोर्स ले रहे हैं, वो कैल्शियम ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं या दूसरे सोर्सेज ले रहे हैं, बट वो उनकी बॉडी
7: एब्जॉर्ब करने वाला विटामिन डी उनके पास नहीं है,
8: विटामिन डी नहीं है। तो कैल्शियम के जितने भी डेफिशिएंट लोग हैं या कैल्शियम से संबंधित चीजों पर यदि उनका चिंता का विषय है तो उनको विटामिन डी का भी अपना लेवल जरूर चेक करना चाहिए,
7: मानना पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहां धूप एकदम सर पर होती है, उस देश में भी 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं
8: जी,
7: और ये काफी बड़ी ट्रेजेडी है हमारे साथ।
8: जी बिल्कुल। और देखिए, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे धूप में लोगों का समय कम देना, इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से अब लोगों की बॉडी उतना ज्यादा सिंथेसाइज भी नहीं कर पाती है विटामिन डी को, तो इसके पीछे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं।
7: फिलहाल घड़ी ने इशारा कर दिया है और घड़ी का इशारा होते ही हमें एक कॉल भी आ गई है, तो पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। ओके, कॉल आई, कॉल कट गई, एंड आई थिंक नेटवर्क इशू या फिर कुछ और रीजन।
8: ठीक है, जो भी हमारे लिसनर हैं जल्दी से वो अगर दोबारा कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं।
7: फिलहाल रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत कर लेते हैं हम क्लिनिक ज्ञान असली में। और घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जाने से पहले अगर आप कोई टिप देना चाहें डेंटल केयर के बारे में जिससे लोग अपने दांतों को सुरक्षित रख सकें,
8: जरूर मैं बता, बिल्कुल बिल्कुल मैं टिप देना चाहूंगा। स्पेशली बच्चों के मामले में मैं एक टिप देना चाहूंगा, बच्चों का जो दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो उनके पेट से ही नहीं बल्कि जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनके दांतों से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर के उनके दांतों को स्ट्रेंथन करता है। इसलिए बच्चे को जो लोग निपल में दूध पिलाते हैं वो लोग थोड़ा सा प्रयास करें कि उसको ऐसा दूध पिलाएं कि वो दूध उसके दांतों से टच होकर के जाए, क्योंकि निपल से क्या होता है दूध सीधा हमारे पेट में जाता है। बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी चीज़ों से बचें, ये हमारे दांतों को नुकसान देती है। प्रॉपर सफाई करें, अच्छे से सफाई करें, और इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा तीखी मीठी खट्टी अल्कोहलिक चीज़ें या बहुत ही क्रॉनिक बहुत ही तेज सिरका होता है तो इस सब चीज़ों को डाइल्यूट करके लें क्योंकि ये भी हमारे दांतों को नुकसान करती है। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छी हैबिट्स का पालन करेंगे और कहीं ना कहीं अपने दांतों का ख्याल ज़रूर रखेंगे।
7: और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं क्लिनिक ज्ञान असली, आपकी अपनी एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अब फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।
9: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, और मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं तो कुछ देरी कर देते हैं, कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव गांव की ज्ञान की पिटारी हमारी टीकन भाभी को। स्वागत है एक बार आपका वापस से इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई।
10: धन्यवाद।

0: स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये एक खास यूनिट है जो जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्स, खास मशीनें और बच्चों की निगरानी की सुविधा होती है। ये यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हों और कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों, पीलिया, संक्रमण, दौरा या तेज बुखार से ग्रसित हों, दूध ना पी पा रहे हों या बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म हों। SNCU को ऐसे समझो जैसे नवजात बच्चों की ICU, जहां हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
1: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं, वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए?
0: हाँ बिल्कुल, और नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं होता है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं, यही सबसे खतरनाक बात है।
1: तो टीकन भाभी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए। अब जरा इन लक्षणों के बारे में बताइए।
0: बहुत जरूरी है। मैं साफ साफ बात बता देती हूँ कि नवजात में मैं जो बताने जा रही हूँ उनमें से किसी भी एक लक्षण को हल्के में मत लेना, तुरंत SNCU ले जाए। जैसे दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त, हाथ पांव ढीले हो जाए उसके, उसकी सांस तेज चली हो, मतलब 60 से ज्यादा प्रति मिनट, सांस लेने में मुश्किल, छाती का धसना, लगातार रोने लगे या उल्टी बहुत ही ज्यादा हो और सोना भी उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दौरा, फीट्स, शरीर बहुत गर्म या बहुत ठंडा पड़ जाए, नाभि में पस आने लगे, लालिमा धाली नाभि या फिर उससे बदबू आने लगे, गंभीर पीलिया हो जाए, खासकर 24 घंटे के भीतर बार बार उल्टी, दूध वापस आना, मतलब जब हम दूध का सेवन कराए बच्चों को और वो तुरंत ही उस दूध को बाहर फेंक दे।
1: बिल्कुल, तो भाई एक बात याद रखना, नवजात में देरी का मतलब खतरा, एक मिनट भी इंतजार मत करना। बिल्कुल श्रोताओ, इसे दिल में बांध लीजिए कि खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। सो टीकन भाभी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहां क्या क्या होता है?
0: अरे आरजे भैया, SNCU तो पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है। मैं एक एक सेवा बताती हूँ। जैसे पहला है वार्मर। इनक्यूबेटर नवजात अपना तापमान नहीं संभाल पाता, वार्मर में शरीर गर्म रखा जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन या CPAP। अगर बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो तो CPAP से फेफड़ों में मदद मिलती है। तीसरा है दवाइयां और एंटीबायोटिक्स। इन्फेक्शन फैलने ना पाए इसलिए तुरंत दवा दी जाती है। फिर है फोटोथेरेपी। पीलिया के लिए सुरक्षित नीली रोशनी वाली थेरेपी। कई बार होता है कि हम घर पे ही बल्ब लगा के भी ये थेरेपी देने लगते हैं, लेकिन श्रोताओं ध्यान रखिए, पहले परामर्श फिर कोई थेरेपी। पांचवा है शुगर या फ्लूइड मैनेजमेंट। लो शुगर नवजात में बहुत खतरनाक होता है, इसकी लगातार निगरानी की जाती है। छठवां है फीडिंग सपोर्ट। अगर बच्चा खुद नहीं पी पा रहा तो नली यानी NG ट्यूब से माँ का दूध दिया जाता है। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर यानी KMC। माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं और इससे बच्चा जल्दी ठीक होता है। अगला है निरंतर निगरानी। हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर एक दो घंटे में इन सभी की जांच होती है। फिर अगला है परिवार को सलाह देना कि कैसे दूध पिलाना है, कैसे साफ सफाई रखनी है और कब वापस आना है। और आखिरी और दसवां है फॉलोअप यानी डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है, अभी समय भी बताया जाता है।
1: वाह क्या बात है, इतना सब कुछ एक ही जगह, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल भैया, और सबसे खास बात ये है कि ये सारी सेवाएं पूरी तरह निशुल्क यानी मुफ्त है।
1: मुफ्त?
0: जी
1: सच में?
0: बिल्कुल।
1: लोग तो समझते हैं अस्पताल में बहुत खर्च होगा।
0: नहीं जी, सरकार ने नवजात के लिए इलाज को मुफ्त रखा है। इसमें शामिल है भर्ती, दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP।

टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह और 108 एम्बुलेंस की सुविधा। गरीबी और पैसों की वजह से कोई इलाज ना रुके, ये सरकार का एकदम साफ साफ

रिएक्शंस को कभी कभी एडीआर के तौर पे मान लिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से खुजली और ये चकत्ते पड़ते हैं। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये शुभ संकेत है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन था, इन्फेस्टेशन था, हमने सही समय पे दवाई खा ली, एलिफेंटेसिस से हम बच गए। देखिए, जैसा कि आप जानते, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज मतलब ना ठीक होने वाली बीमारी है, मच्छर से फैलती है। तो पहले तो ये जो भ्रांति है कि हम इस मरीज को, जो भी जिसको फाइलेरिया होता है, जिसको हाथी पांव होता है, उसके साथ भेदभाव दुर्व्यवहार करते हैं, ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक दूसरे को छूने से या उसका उसके साथ रहने से, उसके पास बैठने से ये बीमारी नहीं लगती है। तो ये भ्रांति जो है एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म होनी चाहिए। आपके गांव लेवल पर एक आयुष्मान केंद्र स्थापित किया गया है, जिस पर एक CHO पोस्ट होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से इसकी पोस्ट है, पोस्टिंग है, और वो आपको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उसको भी हमने फाइलेरिया रोग के तहत इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, उसको ट्रेन किया है, उसको सब कुछ बताया उसके बारे में, वो आप और दवाएं भी उसके पास डिपो रहता है। ये दवाएं भी आपको कभी भी ज़रूरत है तो ये दवाएं भी उसके पास रहती हैं। सारे लोग जो इस फाइलेरिया प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनको इस आयुष्मान केंद्र के एक तरीके से सम्मिलित होके, आयुष्मान केंद्र की सेवाओं में सम्मिलित होके, चाहे वो आशा हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, टीचर हो, उस गांव के कोटेदार हो, ये सारे लोग जैसे हमको इसको सहयोग करते हैं, तो ये सब लोग मिलके आयुष्मान केंद्र के साथ काम करके जनता को जागरूक करें, उनको दवाई खिलाने में सहयोग करें, यही एक तरीके से हम लोगों ने इसमें प्लान किया है। देखिए, MDA अभियान हमारा जैसे मैंने बताया कि निश्चित अवधि के लिए होता है, ये सिर्फ 10 वर्किंग डे में चलता है। कभी कभी जब ज़्यादा मतलब जनमानस ज़्यादा छूट जाता है दवाई खाने से, तो हम उसमें एक मॉपअप के लिए राउंड भी प्लान करते हैं, 2 दिन या 3 दिन का। तो मैक्सिमम 15 दिन मान के चलिए कि मैक्सिमम 15 दिन हम लोग ये दवाई खिलाते हैं। अब लेकिन समस्या ये आती है कि क्या लोगों को दवाई इसके बाद भी मिल सकती है? हाँ, हमारे प्रत्येक सरकारी अस्पताल में ये दवाई निःशुल्क हमेशा उपलब्ध रहती है, पूरी साल उपलब्ध रहती है। लेकिन समस्या यही है कि लोग स्वयं अपने आप आना नहीं चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो लोग वाकई में, जिनके काम में, जिनके एरिया में, क्षेत्र में दवाई खिलाई जा चुकी है, उनका क्षेत्र फाइलेरिया के लिए एंडेमिक है, उन लोगों को अस्पताल जाके ये दवाई स्वयं खानी चाहिए। अब इसमें जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसमें दो तरह के लोग होते हैं। तो ब्लॉक लेवल स्ट्रेटजी होती है इसमें, ब्लॉक का मेडिकल अफसर इसमें सारी गतिविधि देखता है, उसको आशा, उसमें आशा और उसके साथ काम करने वाले लोग बेसिक पब्लिक के साथ इंटरेक्ट होके, उसको जुड़ के उसको दवाई खिलाते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा जिला मलेरिया अधिकारी इसके लिए खास तौर से रिस्पॉन्सिबल होता है, जिला मलेरिया अधिकारी और ACMO वेक्टर बॉर्न। पब्लिक की भागीदारी अभी भी इसमें कम है। पब्लिक की भागीदारी मेरे हिसाब से तो इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप उसको ये पता है कि हमारे जनपद में फाइलेरिया रोग है या फाइलेरिया रोगी हमारे गांव में पाए जाते हैं, तो उस गांव के हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है या जिम्मेदारी होती है कि वो जाके अपनी दवाई स्वयं खाए, कहे भाई मुझे दवाई दे दो, मुझे दवाई खाने, मैं कल मेरे घर में कल टीम गई थी, मैं घर पर नहीं था, मुझे आज दवाई दे दो। तो इस तरह का एक तरीके, जब तक अभियान नहीं चलेगा तब तक लोग मतलब इस लेवल तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक अभियान की सफलता पर थोड़ा सा प्रश्नचिन्ह रहेगा या थोड़ा सा कठिन होता है इस तरह के अभियान को सफल करने में। तो किसी भी अभियान को सफल करने के लिए मतलब दो तरीके, एक तो पब्लिक की भागीदारी और दूसरा पब्लिक द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं अपने अपने

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: Delicious.
6: है ना? Let's dine. Come and join. Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: तो देखो, आज सब जने कहें ना कि चाची हम टाइम से आ जाइबे, और आज हम देखो इतना बढ़िया बढ़िया सामान बनाए बैठन, एक को नाई दिखाई देती। आवे देव, आज सबका कनपटियाए दीप। हम बहुत गुस्सा लागे हमरे, आज टाइम ये टमिया निकला जात है और सब गायब हैं। अब आ जाई है लोटन चाचा तो हमें लुटाए दे हैं।
3: ओ चाची,
2: देखो आई गई बस
3: चिल्लाए। चाची हो, पल्लवा खोल दे।
2: अरे आए जा, पल्लवा हम पहले खुला छोड़ दिया है भाई।
3: ने पल्ला तो हाथ टूट दिया भाई।
2: तोहरे लोगन के चक्कर में एक दिन हमरे घर चोरी हुई जाई।
3: अब लात मारा तो हर पल्ला गिर पड़ी।
2: अरे हम कही थे खुला है, चली आओ चुप पे।
3: कहाँ खुला है ई, तू कुकुर पाले हूँ, कुकुर भगाओ।
2: अरे भगाए दो कुकुर।
4: राम राम चाची।
3: ये बहनी अर्चना, चली आओ कुकुर भगाए दो।
4: अरे चाची, लतावे मारे तो तू जानते हो, और कुछ करे जाने हो।
3: काहे की ऐसे कहूं बहनी, हम का तू
4: वैसे बतिए करत हो।
2: हमार कुकुर का लतियाए दे हैं।
3: अरे तब का करी, कुकुर है आगे परोस दे छू।
4: चाची झगड़ा बंद करो। राम राम,
3: अब हमार धोती फाड़
2: दे। आज हमार दिमाग बहुत खराब है, हमसे कुछ बोलो ना
4: तो जवाब ना दे। राम राम के
2: हम ना दे, गुस्सा ही गई ना
4: आप चाची।
3: हम नहीं गुस्सा, बहनी इनके कुकुर देखो
4: तो। राम राम चाची।
3: राम राम बहनी, राम राम।
2: चलो
3: राम राम बहनी अर्चना।
4: राम राम चाची।
2: ये बताओ कहाँ रही गई राव तू सबे?
4: अरे चाची, पढ़े बढ़े जाई थे तो तनी संडे रहा, तो हम कह तनी और पढ़ ली। कल पूछे परीना सर से,
2: कतना पढ़ियो दादा, कतना पढ़ियो दुल्हवा ना मिली तू का उतना पढ़ा लिखा।
4: पढ़े लिखे तो मिले थे चाची,
2: अब उतना ना पढ़ाओ
3: क्या? ये बताओ, ये ज्यादा पढ़ लिए हैं तब कहाँ डीएम दुल्हा है बहू?
2: तो वहाँ तो हम कही था तो ना, कहाँ चली हो पढ़ के?
3: ये चाची हम अंग्रेजी बोले नहीं।
2: हाँ डीएम तो बोली रहा।
3: हाँ अब ना कहो कि हम अंग्रेजी डीएम बोले।
4: चाची के इतना ऊपर ऊपर तक पहुँच है, काहे में ना हेर पही है डीएम?
3: नहीं
4: अरे चाची, अब तो सभे पढ़ते मिल जाये हैं।
2: हम ढेर ढेर दिन से इनके लिए दुल्हा तलाश करी थे।
3: हाँ
2: हाँ, तो हमारी एक बहन जी है जान पहचान के, उनसे हम कही रखा है कि एसडीएम हो चाहे डीएम हो और चाहे वो एसपी सिटी हो।
3: अच्छा
2: हाँ, बस यह है दो तीन दुल्हावा।
3: तो ये एसपी जो होते थे सिटी मारत है?
2: अब देखो कर दियो ना तो देहाती
4: चाची।
3: तो यह कहा थी एसपी
4: सिटी? आई लागे जाट जाट पेट पिराए लागी।
2: एसपी सिटी माने?
3: हाँ
2: सिटी माने जाना क्यों कहा होता है?
3: सिटी मारो,
2: हम कुछ ना बताए।
4: चाची बता बताओ, हम सबे जाना बताओ। अर्थ कहे अनर्थ कहे देती चाची।
2: सिटी माने होते शहर, शहर गोंडा शहर
4: सिटी चाची।
3: ये कहा थी सिटी? सिटी ये कहीं नहीं सिटी।
2: हाँ तो सिटी तो हम कहा
4: सही बोल चाची, चाची अपने हिसाब से सही बोल।
2: हाँ
3: हाँ,
2: एसपी सिटी, एसपी का मतलब होता है कि शहर का बड़का पुलिसिया।
3: अच्छा,
2: जो जाने
3: जे बंदूकिया धरे रहा था।
2: हाँ जेके रे साथ दो चार और पुलिसिया चला था।
3: कोई बोले तो मार दे थे बंदूकिया
2: ना ही हो?
3: हाँ
2: कहे मार दे है?
3: हाँ
2: नहीं मारत ना ही, वो तो डरावे के लिए चलत है कि कोनो बेजा बात करी तो उसका ठोक दियो।
3: हाँ
2: यही से लेके चलत है सब दल बल।
3: अच्छा अच्छा,
4: तो ये बताओ चाची तहार तबियत ठीक है?
2: हाँ बहनी, अब तो ठीक आई गई हन।
3: आज बड़ा चमचम चमचम पहरे ही देखो ही।
4: हाँ, गुलाबी गुलाबी चाची।
2: तो निक नहीं लागी था का? कर भाई ने
4: ना ना चाची चाची बहुत नहीं लागत थी।
2: हाँ तो तोरे चाचा लाई के दिए ना लोटन चाचा।
4: यही तो चाची आज स्पेशल लागत थी।
3: आज इनके यही कुर्तवा बहनी अंग वस्त्रवा देख के एक ठो गौने ही हमारे याद आवत है।
2: तो सुनाई दे
4: चाची।
3: हाँ
2: गाय दे
3: तो ढोलिया के पीटी।
2: ढोलिया लाओ हम है पीट दे
3: ला बहनी ढोलिया ले आओ तन के डहरिया धरा उतार लो
4: लाई थे चाची बड़ा ऊंच है मेरे
3: दुल्हन अरे तनी घोड़ा तो दुल्हन का के तो ढोलिया दे दे
2: अरे सोवती है घोड़ा बेच के
4: चाची के पतो ही है कुछ नहीं करती हमें
3: कुछ नहीं बहनी जब देखो तो सोवत
2: जाए तो बहनी सोवे जे सो जो से सोई ते कोई
4: हां चाची हम सब जाग जाग के सब सीख ले
2: और का सोवे तो हमें का करे
3: चलो एक तो बहनी दे इने काई जो इनी फराकवा पहरे ही है फराक तो इनके देखो गुलाबी गुलबी है कि नहीं है गुलबी गुलबी है ना
2: ये फराकवा नहीं कहां जाती का
3: हां फराकवा तो पहरे हो
2: नहीं नहीं कुर्तवा है कुर्तवा
3: अच्छा कुर्तवा है
4: ए अच्छा अच्छा
2: कुर्तवा कुर्ता
3: अच्छा कुर्ता
2: अरे पाड़े की जो पहनत नहीं है कुर्ता
3: हां हां
2: वो है बटे वो
3: है ये मोर बहनी मर्द कपड़ा पहरे घूमत ही है
4: जा ए चाची कुर्ता खाली जेंट्स में थोड़ी ना पहनते लेडीज लोग भी पहने थी
2: का जाने बंदर का जाने अदरक का सवार इन साड़ी लपेटे घुमा करती है धोतिया पहने घुमा करती है और इन्हें का पता कि कुर्तवा का होते पैजामा का हो
4: अब इन्हें हम समझाए थे चाचियों के सिलाई अलग होता है
3: क्या कहे
4: जेंट्स लोग के सिलाई अलग होते कुर्ता
3: पेंट्स का होते हंसे थी हमारे बतिया पा पेंट्स काय का
4: चाची जेंट्स बोली सी
3: ई का मतलब होता है
4: चाची माने मर्दवे अरे जो
3: मर्दवे के बहनी पेंट्स कहा जाता है
4: जेंट्स चाची
2: जेंट्स
3: जेंट्स जेंटस
2: हां जेंटस
4: हां जेंटस
3: अच्छा जेंटस अच्छा और मेरा रोन के यहां मैं हां
4: लेडीज
2: नहीं वुमेन वुमेन
4: वुमेन मैन
3: ई वुमेन का होते बहनी
4: चाची
2: मेरा रो कहां थे वुमेन वुमेन
4: अरे वही वुमेन चाची
3: ये औरो बिगाड़ दी
2: वुमेन नहीं कहा था वुमेन कहा
4: तो वहां ही समझाई थी
3: है तू अंग्रेजीया बहुत पढ़ा थी
2: वुमेन कहा जाता है
3: अंग्रेजी टांग
4: चाची लिखा रहा था वुमेन लेकिन पढ़ा जाता है वुमेन तो जान ले चाची
2: जो चाहो को ले अलग हम तो वुमेन जानी थे वुमेन
3: हां भाई नहीं वुमेन ही कहा पे वुमेन
2: और मेन मेन
4: लेडीज
3: नहीं
4: जेंट्स
3: जेंटस पेंटवस हां जेंटवस हां तो चलो हम तोहर कुर्तवा जो देखे ने मर्द वाला ये कुर्तवा पर हमरे एक गौ नहीं याद आवत है
2: गौ वाला तो नहीं है
3: हां
2: का कहां थे पान खाए सही
3: ना हूं ना भाई
4: ओ पूरा रहेगा चाची
3: दूसर बातें हम गावत है देखा सुना सुना हम गावत है सुना

0: ढोल बजाए हूँ चाची, मजा आएगा।
1: आज ये चटपटो चाची, आज जो कुर्ता वा पहने मर्दवा वाला, तो मर्द वाला ताकत इनके अंदर।
2: चाची अपन नवा ले जाते
1: हैं। हाँ पलक दुलारी का कहा जाते हैं बहन।
0: चाची ये गनवा नहीं जाने, ये गनवा हमारे मम्मी बर्तनवा धोवा करती गावा करती।
1: हाय हाय
0: तब भो हमने ना याद, आज तो गाय दी हुआ याद है जी।
1: दिए खेलो एक ठो बहनी बुलाए गए ने, एक छोरी जो है भुलाए गए ने, ठो
3: काहे भुलाए जाती है बुढ़ापा है
1: का? सारी जाई थे बहनी, इतना
3: इतना तो बुढ़ापा नहीं आवा है।
1: नहीं बुढ़ापा नहीं आवा है, लेकिन बिसर जाई थे का करी।
3: बादाम खावा करो, बादाम
1: बादामवा तो खाई थे बहनी, भिगोए भिगोए पनिया में है खूब।
0: ना चाची कच्चे दूध पिया करो, लगाए बस बाल्टी भर के पी लिया करो। बाल्टी भर के चाची बाल्टी सो जाई हो।
1: हमें ही कच्चा दूधवा नीक नहीं लागत
0: है। हम ना निकला थे चाची,
1: हमें तो नहीं,
0: हमें तो पक्कनो ना निकला,
1: हमें पक्कना नहीं क्या, हम पकाए के उबाल के पी रहे थे चाची।
3: हाँ नहीं तो ठीक करती हो, लेकिन हम ज्यादा दूधवा ना पियो।
1: हमें निकला के कल हम बड़का गिलास या गिलास पी गए,
3: बाल्टी घट हो जाती हूँ
0: चाची। बुढ़ा थी वो चले वाले ना पाई हो।
1: हमारा तो कुछ कम भावा है, देखो ये हमारा मैदवा पटवा लागत है, लागत है
0: कुछ तो कम भावा चाची, लेकिन दो का बढ़ाए ले हो।
1: यह दुधवा पी गए
3: और का
0: चाची,
3: ऐसे मोटान हो तो दुधवा काहे पिए थे हो। हाँ
1: अरे तो मोटान हन तो दुधवा
3: दही खावा करो, दही दही से दुबरा
1: दहिया, हम दहिया पी तो गटैया बरे लागत है का जने काहे।
3: अरे ना ही तो कैसे बरे लागत है, उमा गुड़ लावा करो गुड़।
1: अच्छा ये चाची एक बात बताओ, काम के बाद पूछो।
3: हां तो पूछ,
1: आजकल देखा तो ये मौसम हुआ कौन में रहन जात है।
3: अरे आजकल तो बहुत बढ़िया है मौसम,
1: आज तो मौसम हुआ बढ़िया है।
3: हाँ।
1: लेकिन आजकल कितना बेरामी फैली है, बेरामी
3: बेरामी तो हमेशा फैले थे, उनका तो रोक ना पाई हो।
1: अच्छा तो हमका ये बताओ, समझाई दो कि जैसे ये सच्ची उल्टिया दस्तवा होते, जेखा देखो पलटिन दस्त होते।
3: हां तो ये तो बहुत
1: खाई पी
0: चाची, हम सबे तो रास्ता में स्कूलिया जब जाई थे कॉलेज में अपने, रास्ता में जात जात चाची चक्कर आवे लागे।
3: देखो बताई तो बहनी, तो लोग सुन लो, जब घर से चला करो तो तनिक चीनी नाय के पानी में घोल लो, और मा तनिक नमक डाल लो और नींबू गाड़ लो।
0: अरे भाई तो टेस्टी होता है चाची, मनो लागी
3: की बनाए के रखे रहो, जब प्यास लगे तो दुई घूंट का कट से मार लो।
0: हमारे पापा यही बताते हैं चाची कि स्कूल निकले से पहले एक पी लिया, तब तो इतना दिन से हमसे नहीं समझाया,
2: हम अपने नहीं पीते हैं।
0: कल ही हमारे चक्कर में आएगा रहा संदेश कहो, आज रहा तो आराम,
2: हम अपने नहीं पीते
1: हैं। हमारे बहनी पढ़ा घूमनी आवत है, और घूमनिया घूमनिया है मंगरा में बाहरा पड़ी थी,
0: बाहरा
3: तोरे घूमनी आ
2: लगा बाहर जात है चाची,
1: बाहरा ही माने हम फट पड़ी थी।
0: अरे माने गिर पड़ा थी।
1: हां
3: तो तू जो है यह जो नुस्खा बताए हैं,
1: तो हम तो चाची छोड़ दिया ना चिनिया,
3: चिनिया छोड़ दियो।
1: हाँ
3: तो कोनो बात नहीं।
1: हाँ
3: मैं गुड़ ना लिया करो तने।
1: अच्छा भेलिया डाल दी,
3: भेलिया डाल दिया,
1: भेलिया डाल दी। नुनो
3: नुनो तनिक नुनो डाल दे, और नींबू खूब गाड़ दे बढ़िया।
1: हाँ
3: बना के पी लिया करो सवेरे में,
1: बहुत फायदा करी,
3: एकदम फायदा करी। हम ये हमारे घूमने ना आई।
1: हाँ तो ये बतिया नीक बताई।
0: हाँ चाची,
1: चाची के लगा बड़े बड़ा वो है बहनी,
0: नुस्खा
1: नुस्खा।
3: हाँ तो है, हम कहे थे कि भाई देखो जिंदगी जब चलावे खाए ढंग से, तो ये सब पुराना नुस्खा हो।
1: हाँ नुस्खा नुस्खा माने पड़ी,
3: काम करे चाहिए, इका समझे चाहिए, का सब
1: पूरे खाओ पियो पूरे।
3: आज आजकल मालूम का हुईगा है कि सब जौन है इज्जा पिज्जा और जाने का का नाम होते, हमें तो दादा नाम है ना याद आवत है।
0: अरे चाची बर्गर, डोसा, चाउमीन
1: और रचना बहनी
3: यहाँ आवत है,
1: सुगी सुगी
3: सुनो सबके
0: सुगी ना आए चाची,
1: सुगी वहाँ सुगी ऐसे सबे सामानवा मंगा लेते
3: हैं। नहीं मैगी मैगी कहते हैं
1: मैगी।
0: ना
1: ही चाची
0: नहीं समझू चाची, हम बताए थे अब सब
1: होटल है सुगी, वो है सुगिया में सब फनवस कहते हैं।
3: अच्छा अच्छा जमेटो टमेटो सोमेटो आए वो जो चला है कि भैया ये लेता आयो हमरे लिए, वो है
1: हाँ, फनवा से कहते थे कि हमें मैगी चाहिए। हाँ। बस उनके मैगी आ जाते
3: तो सुनो भैया ये सब ना खाए बहनी, तू लोग सुन लो, तू लोग
1: बहनी सुगी से मंगाओ
3: तो का नुकसान करी।
1: हाँ पटवा बगत जाए जान लो, चला दिना भर बैठी रह वो।
0: लेकिन वही तो नीक लागत है चाची,
3: लोगन तो बताओ कि लीवर खराब हुई जाए।
1: हाँ बहनी तो ये बताओ बहनी, लीवर का होता है?
3: लीवर पेट में होता है और कहाँ होता है
0: चाची? एक चीज हम ये सोचे थे
2: कि चाची समझ नहीं पाती पहले कह दे हाँ बहनी तब सोचे एक मतलब का होते तब पूछे है
1: तब हम सोचे तब पहले सुन ली बतिया का कहा थी हाँ। तब पूछी तो ये लीवर का हुए बनी लीवर
3: लीवर पेट में होता है एक यहाँ अंग हुए
1: तो ये का करे थे अंदरवा
3: ये सब खाना वाना हजम करे थे
1: ये हंसा थी हमारे बतिया देख लो चाची
3: खनवा जब लाई हजा था ना तो लीवर समझो खराब हुई का
1: माने खनवा ही हजम करत है मशीन हो
3: तो हाँ
2: चाची अंदर गन्ना रस रस निकाल लेता है मशीन हुए लाग
1: हाँ तो ये मशीन ये तो हो चाची
3: वैसे जानो वैसे जानो जैसे गन्ना रस निकलत है ना वैसे शरीर से सब निकाल देता है
1: और ये का जानी का बतावत थी कि जैसे गन्नावा पेरे वाली मशीनियां होती
3: हां तो खराब सब निकल जाता
1: पेटावा में यह
3: कोई एक तरफ निकल गई जुसवा एक तरफ निकल गया
1: हां
3: यार लीवर का यहां काम हो
1: अच्छा
2: उसका छानत है
1: अच्छा
2: हर एक चीज का एक स्पेसिफिक जगह तो होता है
1: अभी अब्बा तू किसी की बोले पीछे पड़
2: चाची हम बताए जैसे चलनिया नहीं होता छननिया नहीं होता है तो चेवा छान के अलग कर देते हैं और जो नहीं उपयोग में रहता है अलग कर देते हैं तो वही
1: तो यह हमारे मशीनियां करती लीवर
3: यह पूरा शरीर मशीनियां तो
2: नहीं तो नहीं तो पूरे शरीर में गंदगी ना जम जाए तो जुड़ते हैं इंसान खत्म हो जाए
1: अब नहीं बाकी काओ काओ भगवान बनाए डारिन रच दीहिन पटवा तब एक बना ई जब बनी पैदा होते तब बाहर से का फिट करा जाता है
3: नहीं भगवान फिट करके भेजा था दादा तो एकदम मारो अर्थ का अनर्थ कर देलियो
1: काहे कर
3: अब बताए दे ये भगवान फिट करत है
1: अच्छा पेटवा मां
3: सब जगह पेटवा मां हाथे मां गोड़े में सब भगवान ने करत है और तू अब बेकार की बातें कर रहा है देव एक ठो गौनैया आवत हो तो और गा दो
2: इनका गवावी चाची
1: चाची काहे चिड़ी है ये
2: चाची जिसमा ही तब हो चाची गौ नहीं मैं सुनिया
1: हां काहे कर ये चिड़ी कुर्ता पहने
3: अब नहीं समझ नहीं पावती है ना ये सुनो तो दिमाग में दूसरे तरफ फेरे
1: बहनी ये कुर्ता पहने ही मार दे अब इनका दिमागवा नहीं काम करत है
3: तो कहा है कहा करो नहीं
2: हमें लाते चाचे मेर रिसिया चढ़ेगा है ओका पहिने
1: हम हो जाए मत लौट ए चाची यार लौटन चाचा कुछ कहीं नहीं मारिन वारिन
3: अरे कल है से बहुत कुछ कहा था तब हमार मूड सनका है एकदम मुड़िया दगा जात है का करी हम का कह डाली
1: ये मोरी मैया कहां है लौटन चाचा बताओ गायब है चाचा बहनी
2: चाची यार दोनों जने बड़े लड़ लियो तब हमें तो बताओ तब हम बोलब
1: ये बताओ बहनी जनी कि लोटन चाचा घेर लो तो
2: अरे चाची भाई गए चाची हो अब बुरा न मानो तो बात बताई
1: बताओ तो देखे हो का लोटन चाचा
2: तेवराइन के यहाँ देखे
1: भगवान
3: दादा इस सब के मर्द से बात कर रहा था अपने लिए तो यहाँ एक हम तो रोए पड़ी क्या करी हम
2: अरे रहा है
1: ना रो ना रो वो लोटन चाचा गए थे उराई
3: अपने साथ धोखा कर रहा था
1: हाँ धोखा
2: अरे चाची हो ऐसा करते कुछ खंगा हो मैं मांगे गए हुए
3: क्या खंगा हो गया सब तो उनके घर भरा
1: उन्हें क्या बहनी क्या खंगा
2: है आँखों खत्म चूना खत्म हो गया हो तो बस
1: तो हमसे मांग लेते ना
3: हाँ तो
2: चाची
3: बाड़े जी से मांग लेते
2: चाची बात देखो चाची अपन पोल खोल दिन कत्ता दिन पहले आप छोड़वा दी उराइन के तमाकू चूना
1: ना तो हम घर थोड़े थोड़े खाई थे चाची
3: ना खाओ भाई ने ना खाओ तोरे
2: हाथ अब ये आओ रिस लगवा दे
3: चाची हमरे तो गोल परी थे कि छोड़ दे ये ना ही ठीक है तोरे लिए तो हमारे अगर सखी ना जुराए होती ना हम कहते तू जहर खा लियो
1: ये चाची सुनो कन्हैया तो हम बीड़ियों पी लिया ना
3: अरे दही हम का
2: चाची हमें सबका बर्बाद कर दे
3: तो सब पाले तो बीड़ी कैसे पी लिए दादा
1: अब सुन ही लिया हमारे गांव से एक जने आए रहे वो फूकत रहे वो हमसे कहीं कि हे का की लो दू छोरी एक बाजी दुई बाजी फूक लियो तो तोहरे जो खोखिया आओ तो ठिकाई जाई बस हम फूक लिए
3: ए वो तोहार पक्का दुश्मन होए जाने हो जे पी बीड़ी वो तो खोखी आवे लगी जाई ना
1: और वो कहीं की खोखी ना आई और तब हमारे संगलिया बैठ के तमाखू बनाई हम खाई उन्हों खाई ली
3: तब तो तोहार पक्का जानी दुश्मन हो दुश्मन ना हो
2: चाची यही मेरे मन इनके लगे ना बैठा करो यही तो हम सब रोज संडे का आए थे कि आपके साथ बैठी कुछ नवा बतावा करी
1: तो हमें सब खा के लिए कहे थे
2: आप हमका कुछ सिखावा करो
3: जानी दुश्मन तोहार जानी दुश्मन कहते तो हमने लगे हटके हो ना
1: अब उनका हम दुआरन भगाए देबे भैया जान लियो
3: जाना तो ना ये सब कैंसर वाली चीजें हैं
1: यह कुल खाए कैंसर में हो
3: जाती है बीड़ी हो तो कैंसर हो जाए तंबाकू खाई तो कैंसर हो जाए और तो शराब पी हो तो कैंसर हो डर है
1: अरे मोरी माई रे माई
0: अरे चाची कहो ना बीमारी कहाँ से कहाँ इफेक्ट डाले थे कुछ पता ही ना है
1: कल हमारे कौन चीज बनी
0: प्रभाव चाची प्रभाव सियावा ना करो पूछा करो
1: तो यही नहीं हमने कहा थी कहा थी कि कौन फिटेक डाला था
0: इफेक्ट माने चाची प्रभाव मतलब परसों हमारे गांव के बगल में एक लड़का मतलब सऊदी रहा
1: हाँ,
0: तो ओकरे गिल्टी मतलब गला में निकला रहा हाँ, और शर्मा कैंसर होएगा मरगा और दो बच्चे रहे
1: मोरी मैया तो हमारे घर के लगा एक लड़कवा रहा था तो ओकरे ये कनवा के बगलिया में बहनी गुलटी निकला है
3: डॉक्टर के पास भेजो
1: हाँ
3: कह दो की जाँच करे
1: अच्छा अच्छा तो ये चाची बहुत घामे साइन तनी हमें कुछ खवाए जो बुखार
3: अरे हम सब बनाए रखे रहा ना भात भात की चीजें बनी है सब मेर मेर का
0: भात भात बनाई नहीं तो
3: भात भात मतलब तरह तरह का भात
0: रकम रकम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम तो सुने भात बनाए नहीं
3: मीठा भात बनाए हैं
1: हाँ
3: जाने हो और पलाव बनाए पलाव
1: तो अब सुनो अब हमें खवाए दो अब वही बिरयक मार दो बिरयक मार दो हमारे भूखिया ला गए
3: चलो चलो ले ली जाए एक ठो बीरे ले अल्प विराम और मिली थे अल्प विराम के बाद
1: अच्छा उनको बोलना होगा मेरे को अच्छा
3: तो हो गया अब
1: बस 20 इधर बोलते हैं 40
2: खाना खिलाएंगे
0: हाँ मतलब आ रहे हैं फ्लो में आ रहे हैं
3: भात भात की चीज बनाए
0: भात भात की चीज खिला दीजिए
3: अब आप बताए तो
0: उसके बाद गाना है
1: साक्षी शुरू कर शुरू ले तनवी में बैठे ना मेरी वजह से
4: अरे सुना
5: क्या
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट
5: वाओ
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12 गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346
6: सही उपाय अपनाएं लू से खुद को बचाएं
7: जी हाँ बाहर निकलते वक्त गमछा टोपी चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें व चेहरे सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें
6: छाछ लस्सी नमक चीनी का घोल नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें
7: बार बार पानी पिएं ठंडे पानी से नहाएं हल्के सूती कपड़े पहने दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें
6: चाय कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें तेज धूप में बाहर न निकले चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
7: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
6: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
8: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ कोई आइडिया है
9: अरे हाँ मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है
8: सच में क्या खास है वहाँ
9: बहुत कुछ है वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है
8: अच्छा डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था
9: सब कुछ टॉप क्लास था फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वहाँ कम्प्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो सब संभाल लेंगे
8: और फोटोग्राफी वगैरह
9: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है और हाँ मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है
8: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है लोकेशन कहाँ है
9: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949 बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा
8: वाह तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी
5: अच्छा ये बताओ।
10: हाँ सर।
5: तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेक काम किया है?
10: हाँ बिल्कुल किया ना सर।
5: क्या किया?
10: एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे और मैंने उनके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया और जल्दी से उन्हें उनके घर पहुंचा दिया।
11: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
13: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
14: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
13: विजिट करें अल्टर स्किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
1: बड़ा नीग रहा चाची, ई मिठका भतवा किसके बनायु है?
3: अरे इकी बड़ी तैयारी करे पड़त है।
1: हाँ
3: और सीखी है ना ही तो कबो ना बना पाई हो। एक एक दो बार में ना आई।
1: अच्छा तो
3: दो चार बार बनावे परी तब आई तू का समझ मा।
1: अच्छा
3: हाँ। तो नीक लाग?
1: बहुत नीक लाग
0: चाची। कबो ऐसा
1: भतवा तो बहुत नीक लाग।
0: कबो ऐसा होते रहे चाची।
1: हाँ।
0: कि हमें लोग का खाए के बाद ये कह पड़े कि चाची मन नमक कम ना है मन चीनी ज्यादा रहा।
2: एकदम परफेक्ट
0: रहा था चाची।
1: हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही है। तो ये कसके कहा था चाची की सिखबो ना तब ना बनाई पाइबो का सीखे खे मा
3: तो सिखाई दे थे ना
1: का।
3: देखो उनसे कहो पाड़े जी से
1: हाँ
3: कि बढ़िया वाला बासमती चावल लई है कह के। बासमती चावल होते नाव है।
0: अरे टिबिया देखा थे चाची?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: जिमन अमिताभ बच्चन रहा था।
1: बड़का बड़का चौरा होता
0: है। हाँ, हाँ, हाँ,
1: अच्छा महकुआ
3: महकुआ चावल।
1: हाँ
3: उनका लाए के खूब रगड़ के धोए डालो।
1: हाँ
3: और धोए के भिगो दियो।
1: बिचारी ना
3: बिचारा रहा था।
1: अच्छा कछु रहा था नहीं
3: महंग रहा था ना।
1: महंग है हाँ
3: तो इका भिगो दियो।
1: हाँ हाँ हाँ
3: और दो चार घंटा भीगे दियो।
1: अच्छा हाँ
3: ना हो कम टाइम हो तो एक घंटा भिगो दो।
1: अच्छा
3: फिर भीगे के बाद वो साफ रही है तो उबाल डालो चावल का।
1: अच्छा
3: और जब 60% 70% हुई जाए एक ऐसे तोड़ के दिखियो।
1: हाँ हाँ
3: एक अंदर तनिक एक कनिकी निकली चावल।
1: अच्छा
3: तो बस उसका खोल दियो।
1: हाँ
3: है बंद ना रखे तो पक जाए फिर वो चावल टूट जाए।
1: हाँ
3: फिर उसका खोल दो और तब तक तैयारी करो सब मेवा काटो।
1: हाँ
3: बादाम ले लियो।
1: हाँ
3: काजू ले लियो।
1: किशमिश ले लो।
3: ले लियो।
1: हाँ
3: किशमिश चौन तुके तोरे होए।
1: हाँ
3: उस सब मेवा ले लियो।
1: हाँ
3: है और ले के वो तनिक उसका देसी घी डाल के
1: कलहर डाल दे। हाँ हाँ
3: और उसका धर लियो बना के।
1: हाँ
3: अब तब चावल तो हाँ तैयार है।
1: हाँ
3: अब डालो मत तनिक देसी घी।
1: अच्छा
3: पतीली माँ भगवना मुझे
0: तो चाची हम सोचा था कि चावलों में चाची हमें सामने घी नहीं डालनी हो कितना सुंदर महकत है।
3: हाँ तो अब डाले खाए देसी घी डाल।
1: अच्छा फिर क्या करी? फिर
3: तनिक इलायची
1: अच्छा
3: डाल दो।
1: इलायची
3: हाँ और तेज पत्ता डाल दो तनिक खुशबू आ जाइए।
1: हाँ
3: अब उमा चावल डालो।
1: अच्छा
3: थोड़े
1: अच्छा अच्छा
3: चावल डालो।
1: हाँ
3: और फिर चीनी लो उतने चीनी ले लियो चीनी के ऊपर डाल दो फिर मेवा डाल दो।
1: अच्छा
3: फिर चावल डाल दो फिर चीनी डाल दो फिर मेवा डाल दो।
1: तो ये बेर बेर का है
3: दो बार दो चक्कर।
0: हाँ। चाची हमें हंसी आवत है बहुत आ रही।
3: दो बार लगा दो मतलब थोड़ा थोड़ा डालो।
1: अच्छा
3: मेवा मिल जाई है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
3: हाँ परत परत लगावे परत है।
1: हाँ
3: परत लगाए के दो परत मौसम अपना भर दियो।
1: हाँ
3: और कब बंद कर दियो एकदम नीचे
1: कुकुरवा बंद कर दी।
3: कुकुर में ना बनायो।
1: कुकुर में ना बनाई तब क्या माहने बनाई?
3: कुकुर में ना ही बनी।
1: हाँ
3: पतीले में बनाओ भगौना में बनाओ।
1: अच्छा तो
3: कुकुर में ना बनाओ।
1: हाँ
3: हाँ
1: अच्छा फिर
3: वहाँ सीटी वीटी ना ही लगाए थे कुकुर में।
1: हाँ
3: और ऐसे भगौना बंद कर दियो पहले।
1: हाँ,
3: से बढ़िया।
1: हाँ,
3: और एकदम हटाए लो गिया गिया सब बाहर
1: बाहर के
3: तनिक तनिक बस खाली गरम रहा और कब बंद रहा
0: तो सीज जाए।
1: अच्छा सीज जाए।
3: सीज जाए बस 10 मिनट बाद उसका उतार दो तुरंत ना परसे हो टूट जाए चावल।
1: अच्छा
3: हाँ तनिक ठंडा जाए।
1: हाँ
3: तब उसका कल छुरी से ऐसे धीरे धीरे
1: अब बड़ा नीक बना
3: बढ़िया बना।
1: हाँ। बहुत
3: एक एक दाना अलग है
1: मजा आएगा वहाँ खाए के। आज
3: या ये बना था जरदा इका कहा था।
1: अच्छा
0: सब ज्यादातर घी का
1: परदा।
3: हाँ जरदा कहा था तो।
1: अच्छा
3: परदा
0: जरदा
3: जरदा कहा था वहाँ पीला रंग नहीं डाले हैं। कोई
1: पियर पियर हो जाते का।
3: हाँ तब तनी तनी ऐसे डाल दे दूर दूर तनी तना तना तना रह और फिर
0: चावलवाजी पीला पीला दिखात रहा
3: तो तनिक तनिक पीला हो जाए कोनो सफेद रही कोनो पीला हो जाए तो देखे में अच्छा लागत है।
5: अच्छा अच्छा हाँ बड़ा नीक। और
3: पुलावा ना बताओ कैसे लगा
5: बहुत नीक लाग। आज भुखाने आए ना बहनी कुछ बनाए नहीं पान बेटवा हमार भरी का
0: हम तो अजी खाए गए ना तब भो भुखाई है सूंग के।
3: हाँ बहुत बढ़िया बनत है सब चीज आजकल अच्छी लागत है।
0: हाँ
3: अब गला खाई लो अब पानी पी लो लोटा भर
1: पानी पी लो।
0: गला बहुत खराब रहा था का करी
3: गला खराब रहा था
1: बेटवा का होगा बहनी
0: हमेशा खराश रहा था
1: या बहनी
3: ये कने गरम पानी पी लिया करो।
1: नहीं नहीं सुनी ले चाची
3: ठंडा पानी ना पियो
1: ये का हमार तू नुक्ता सुन ले नुक्ता
0: नुस्खा
1: वो है नुक्ता वा
3: नुक्ता ना नुस्खा कहा जाता है
1: नुस्खा
3: कहो
1: नुस्खा।
3: हाँ नुस्खा
1: नुस्खा
0: नुस्खा
1: नुक्सा।
3: हाँ तो नुस्खा
0: कोई ना सीख पाई है चाची हमें बताओ
1: नुक्सा। हम नुकसान बताई थे। हाँ। देखो बहनी एक काम करो ये जो बाजारवा में है मुलेठिया नहीं बिकात है तो मुलेठिया पाउडर ना लाओ ऐसे छोट छोट डंडिया जैसे होते है ओका ले आओ रतिया में एक गिलासा
3: करो
1: नहीं एक गिलासा चूस नहीं जाते बहुत खराब लगते है एक गिलासा पानी में तू ओका भिगा दो रतिया में ठीक और सवेरे उठो तब वो लकड़िया भीज जाती ओका चाकू वाकू से काट लो तीन चार
0: कूच लियो
1: नहीं कूचक नहीं चकुआ से काट काट के ऐसे निकाल दियो अब वो चारों वही भगोनो में डाल के और पनिया तनी भर खौलाई दो।
3: अच्छा तो उनका पी लो
1: बाद पनिया एक बोतल में भर लो लकड़िया वही पड़ा रह दो। अच्छा। अब थोड़ थोड़ थोड़ पनिया
3: ऐसे हमका तो नीक लगा
0: ट्राई कर
1: कुछ कहा थी आज एक चाची कहा बोला थी
3: तराई करे
1: तराई
0: ये सब अंग्रेजी बोला डराई थे चाची
1: तराई
0: बताओ
3: तराई मतलब
0: आदत है चाची कहूँ कहूँ निकल जाए।
1: अब तोरे लोग बहनी पढ़ाती है तब तोरे लोग के निकल जाते है और हम समझी नहीं पाई थे तब
0: लेकिन समझा करो चाची
1: मैंने डराई मैंने डराई
0: प्रयास करब होई पाई तो करबे मतलब।
3: हाँ सही कहा था पूरे कहा थी
1: बहनी प्रयास का हुए
3: प्रयास माने कोशिश करब कोशिश।
1: अच्छा कोशिश।
0: हाँ चाची एक थू गाय जो बहुत देर से हम
1: काव गई बो काव गई बो चाची काव गई बो
3: दिमाग अब बड़ा अब मालूम है जब हम रेडियो खोली थे।
1: हाँ
3: तो मैं पुरान पुरान गाने आवत है बड़ा नीक लागत
1: है ये
0: बात चाची कुछ गाय
3: रतियम सुना करो
1: चाची ये बताओ हमका इसे तो कितना घर यार वहाँ देखो ब्याह है ब्याह कल यहाँ कितना लगनिया तेज रही तो कुछ ब्याह है बहनी कल यहाँ तू कल यहाँ ब्याह वाला एक गुनगुनावत रहुआ है गाय दो
0: रुको चाची सोचो तब तक कुछ और गाओ आओ
3: चाची
0: हम सोच ली
1: बर्बाद हो जाती मोबाइल अब चलाए चलाए बिगड़ी जाती।
3: अच्छा ना तू गाओ तू बहुत बढ़िया गाओ
0: गावे की बात ना ही करी थे हम एक ठो लिखन है अवधि में कविता टाइप कर हाँ। तो सुनाइबे आपका
1: अच्छा तो सुनाए तो
0: अब ना
3: बाद में सुनाए
0: अगले बार आए तब तो
3: याद कर ले
1: आद नहीं आद नहीं
0: आद है लेकिन थोड़े थोड़े
1: तो एक तो गाय ली है बनी वो गनवा याद है लावा परछनी वाला।
0: हाँ, लेकिन वो बहुत गाय हुए चाची रोज रोज मैं लोग का वाय सुनाते मैं दिमाग
1: ये खराब है हमारे बनी रहनी आवत है।
0: अच्छा ठीक है एक तो गाय जी एक तो याद आवा है याद आवा
1: गाओ गाओ गाओ
0: अरे वो बहुत सुंदर गाना है मतलब ऐसा है कि जैसे कि एक तो बिटिया रोवत थी
1: काहे की रोवत थी
0: अरे ओके विदाई हो गया है बिहार हो चुका।
1: अच्छा अच्छा
3: अच्छा तो छूटत है महतारी बाप से तब रुआई लगत
1: है तब रुआई लगत है हाँ, तब रोज तब का करत थी गावत थी
0: तो गावत थी कि बिना उनके बिना माई नहीं हर है मैं ओके माई नहीं ही ऊपर गाना है
1: गाय दो बहनी बहुत नीक लगी गाय दो
0: चाची तू हमें बजाई
1: लेबे पुरवाई लेबे
0: तू इन बजाए चाची तू नीक बजाए
1: पुरवाई लेबे
3: अब तू का बहुत मारा है हमार सहेली के
0: चाची ज्यादा नहीं बजाव थी हम नहीं ना गए पाई थे हमारे हिसाब से आप बजाए लेते
1: यह देखो उल्टी दे दे के
3: तब वहां तो कहीं था
1: उल्टी दे
0: आगे ही चाची
1: चल गाओ मारी जाबो
0: छोड़ो चाची हम गाना गाए थे सुनो के

0: वैज्ञानिक भाई वनी रचन चाची हमारे एक तो
1: याद आवा है पता के हां तू का चाची ठोकते ही ढोलिया भई
2: चाची और एसडीएम के बतिया करियो रहा
3: होता है कि दिल भर
2: चाची जो ध्यान से सुन ले तो सही रोवे लागत
1: ये देखो का खाती अच्छा ना बहनी
2: जोन एसडीएम के बतिया करियो रहा कि कहां लड़कवा ढूंढा डीएम एसडीएम तो हम ही लोग बन जावे
3: देखो यहाँ तो पढ़ावा लिखावा जात है
2: तो हम गाना गाए थे वहीं पर
3: सुनाई दे सुनाई दे

0: मतलब बनवावा ना चाहते हैं एसडीएम।
1: अच्छा
0: तो उनका मुंह पर ताला लगाई।
1: अच्छा तब तो ठीक। हाँ बनी गाँव गाँव।

0: रानी एक गायु बन
1: बन गई हैं अब ये
2: यहाँ तो होता है कि ससुराल में लड़की चली जाए तो बस यहाँ सोचे थे कि नौकरानी आ गई, इसे काम कराओ, रोटी बनाओ, चौका चूल्हा करो।
0: दिना भर बहनी वही जो है चौकों में है उनका बैठाए नहीं
1: है, उनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे।
0: हाँ बस यहाँ
2: अब जब चाहिए आज के युग में यहाँ चाहिए।
0: हाँ तो जब
2: लड़कियन का खूब पढ़ाए ताकि वो डीएम एसडीएम सब बने खानदान का नाम ऊंचा करे, समाज में अच्छी नजर से उनका देखा
1: जाए। आप सबके नाम ऊंचा करी चाची।
0: तो ये कहती इनके कहती हमारे ब्रास बैंड हमें ऊ करी है
2: ब्रास बैंड नाइस दादा हस बैंड
1: सपोर्ट।
0: हाँ और अब देखो कहानी का कहती सपोर्ट सपोर्ट कहती
1: मतलब बिटी वा घर वाले ना सपोर्ट कर रहे तो उनके मुंह पर ताले
0: लगा। सपोर्ट का हुआ बहनी
2: सपोर्ट का मतलब ये है कि नाई चाहत नाई रहे कि ये कुछ बन जाए
0: सपोर्ट करी है तब ये कुछ करी है।
2: तो इनका आदमी सपोर्ट कर इसके लिए तुम पढ़ाओ तुम लिखाओ
0: डीएम
2: एसडीएम बनाओ।
1: हाँ भाई हमारा साथ देते हैं
2: साथ दी
0: अच्छा हमारा साथ दिए साथ दिया। हाँ हाँ
1: जैसे हमारा तो
0: खाओ
1: तो कोई साथ दे
0: आपका। हाँ जैसे वो आए और सुनो बहनी इनके लोटन चाचा साथ नहीं देते इनका
2: नहीं।
0: इनका सपोर्ट कहाँ करते थे सपोर्ट
2: नहीं कोनो बुरे काम में हम हमारा सपोर्ट नहीं करी हुई।
0: हाँ
2: अब तमुखिया खाए थे तोरे कहीं दुलारी तो का जोन है वो सब बिगाड़ दी।
0: हाँ
2: हाँ तो वो कहा था एक दिन दुलारी हम डाटक जाए के।
0: हाँ
2: हाँ तो हम कह रहा है
0: चलो लोटन चाचा।
2: हाँ कहीं के
0: काहे के बहनी रटी है हमका
2: यहाँ सब जाने ना कि तू खा दियो।
0: हाँ पूरा कहूँ पूरा कहूँ
2: तो हम उनका रोका हम कहे ना ही उनसे कुछ कहा जरूरत है हम खुद
0: उनका। हाँ कहे उन्हें कि हम डाटा करेंगे दिना भर
2: हम कब छुड़वाए नहीं उनका।
0: हाँ
2: एक जो सहेली होए सच्ची सहेली होए
0: हाँ हाँ
2: तो उनका काम का होता है कि तू अगर बुरी

0: गौधूली बेला होता है।
1: वो है गधा बेरिया।
0: गधा बेरिया नहीं कहा जाए, गौधूली बेला कहा जाता है।
1: हमारे बुहरिया कुल तो गधा बेरिया कहा था, गधा बेरिया है ना, कहा था कि नहीं बहनी अर्चना?
2: ठीक है।

0: फल से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं, मोहब्बत के नाम, ये प्यारा सा गीत। और मिलेंगे इस संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-14416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में, क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत।

0: खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
0: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सुन रहे हैं और रेडियो गन स्लिट 9.6 एफएम में है गोंडा शहर की रकन। कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। फिलहाल शाम का समय है और शाम के समय में आप सभी को शुभ संध्या जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब तो भाई ऐसी स्थिति है कि लगन वगैरह बंद हो चुकी है, तो सब लोग अपने घर पर ही होंगे, सुन रहे होंगे बड़े आराम के साथ। जी हाँ, हमारे साथ मीनू जी हैं गोंडा से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जी हाँ, आपको भी शुभ संध्या। और तीरज प्रसाद सोनी जी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग सर जी। जी हाँ, गुड इवनिंग और शुभ संध्या आपको। वक्त रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, वक्त रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए।

उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, उसने छूकर मुझे पत्थर से कुछ इंसान किया, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। जी हाँ, जिंदगी है साहब और जिंदगी ऐसे ही चलती है। आइए, अब आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है और अब भाई हमारे साथ उपस्थित हैं तीरथ प्रसाद सोनी जी। उन्होंने लिखा है, हमराज फिल्म का कोई गीत सुना दीजिए। बिल्कुल भाई, आपकी फरमाइश को करते हैं पूरा। लीजिए, सुन लीजिए हमराज फिल्म का ये प्यारा सा गीत और फिर आपसे मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पास। सुनते रहिए और रेडियो गणस्लेट 9.6 FM, यह है गुणा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, और क्या बात है भाई, 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी। सविता शास्त्री जी गोरखपुर से उपस्थित हो चुकी हैं, प्रणाम करते हैं आपको सविता जी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी और फिलहाल चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर। हमारे तीरथ प्रसाद सोनी जी ने कहा है और उनकी बात, क्योंकि बात से मुकरना नहीं चाहिए। याद आया मुझको, शाख से उतरने में देर कितनी लगती है, फूल को बिखरने में देर कितनी लगती है, उम्र बीत सकती है बात को निभाने में, बात से मुकरने में देर कितनी लगती है। और जी हाँ, क्या बात है, देखिए अभी जो अधूरापन था ये पूरा हो गया, क्योंकि सविता शास्त्री जी के साथ मदे दादा जो हमको सुनते हैं गोरखपुर से, अनिल जी प्रणाम करते हैं आपको, चरण स्पर्श और शुभ संध्या आपको, वो भी उपस्थित हो चुके हैं। जी हाँ, तो आप लोग उपस्थित हैं और इस उपस्थिति में चार चांद लगाने के लिए

ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। क्या बात है, मतलब कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की ये पंक्तियाँ हृदय को छू लेती हैं। बहुत मुश्किल होता है कुछ काम, जैसे दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कोई उलझन ही रही होगी जो वो भूल गया, कोई उलझन ही रही होगी जो वो भूल गया। मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी लिखना, आते जाते हुए मौसम से अलग रह के ज़रा। आते जाते हुए मौसम से अलग रह के ज़रा, अब के खत में तो कोई बात पुरानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। इस इशारे को वो समझा तो मगर मुद्दत बाद, इस इशारे को वो समझा तो मगर मुद्दत बाद, अपने हर खत में उसे रात की रानी लिखना। जी हाँ, तो दिल पे दिल की कहानी लिखना उतना ही कठिन होता है जैसे बहते हुए पानी पर हम पानी से पानी लिख दें। और यही हाल दोस्ती का भी है, मित्रता का भी है। मित्रता करना उतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिख देना, बहुत आसान काम। लेकिन मित्रता को निभाना उतना ही दुश्वार है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखा जाए। तो पानी से पानी पर पानी लिखने यह आसान काम नहीं होता। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। और भाई ये रात की रानी पता नहीं कौन है भाई, लेकिन आरजे को मेरा नमस्कार। जी हाँ, आपका नमस्कार हम कबूल करते हैं और हमारा भी प्रणाम आपको। चलिए चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ और।

बरखुरदार, बहुत खूब। आज तुम्हारी आवाज में वो शिद्दत, दिल में वो दर्द है जिसकी मुझे तलाश थी। आखिरकार इश्क और दर्द, जिंदगी के इन दो महासुरों से तुम्हारा परिचय हो ही गया। जानना चाहते हो मैं कौन हूं? इस नाचीज को बशीर खान कहते हैं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज की तरफ से मेरा काम है नए कलाकारों को रास्ता दिखाना। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे जायज मकाम तक पहुंचाऊंगा। आओ।

0: हाँ राहुल, कैसा है तू? बहुत दिनों से तेरी आवाज नहीं सुनी ना, कुछ बोलना यार।
1: क्या बोलूं?
0: अरे कुछ भी बोलना यार।
1: क्या और भी कोई मेरी आवाज सुन रहा है?
0: हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं है यार, मैं अकेला हूँ यार।
1: देख पल्लो, मैं तुझे सालों से जानता हूँ, पन्ने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैं किसी को अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ और ना ही किसी की आवाज सुनना चाहता हूँ।

जी हाँ, और वो घड़ी आ गई जिस घड़ी की प्रतीक्षा होती है आपको। जी, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब हम इंतजार करेंगे आपके फोन का। आपका दूरभाष क्रमांक वही है साहब, 6393-9631-64-29। अंग्रेजी में बोले तो 6393-31-6429। अब गीत बजेंगे, लेकिन वो जो चाहेंगे आप। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा।

जी हाँ, फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में भाई पहला फोन हमारे पास आया है अनु जी का, और गीत है आपकी दुश्मनी कबूल हमें, आपकी दोस्ती से डरते हैं। जी हाँ, कभी कभी इंसान को दोस्ती से डर लगता है।

जी हाँ, दोस्ती से डर लग रहा है। अब चलते हैं भाई बहराइच की तरफ, अर्थात तो अपनी बहन जी प्रीति शुक्ला जी की तरफ। और गीत बहुत अच्छा चुना है, पर्वत से आज मैं टकरा गई और हमको लगता है पर्वत चकनाचूर हो चुका होगा। फिलहाल ये गीत आप सुनिए।

जी हाँ, और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ, और वहाँ से मेरी बहन जी आशु मिश्रा जी की फरमाइश है। भाई बहुत प्यारी फरमाइश है, एक तो मुकेश की आवाज़, उसके ऊपर से राज कपूर की एक्टिंग, और उसके बाद दुनिया का सच, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, बहुत ही प्यारा गीत ये।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

बताओ हो, क्या बात है भाई, ये एहसास होता है भारतीय नारियों का अपने पति के प्रति, विशेषकर जो गोंडा में रहती हैं और जो गोंडावासी हैं, वो तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही सब कुछ हो। और इस बहुत अच्छे से ख्याल के इस बाद अब चलते हैं विश्वपर्मिला जी की तरफ, और उन्होंने गज़ल भेजी है, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। बहुत ही प्यारी गज़ल विष्णु परमिला जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, वास्तव में उस मोड़ से शुरू करें फिर से वो जिंदगी। जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी गजल ये जगजीत सिंह की आवाज़ में। और इसके बाद चलते हैं भाई हमारे बहुत ही जानकार प्यारे और मुस्कुराते हुए श्रोता श्री राजेश सिंह जी, जो हमको सुनते हैं मालवीय नगर से। गीत भेजा है वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, बहुत ही प्यारा गीत मुकेश की आवाज़।

गीत सुना भाई आपने, बहुत ही प्यारा गीत। और अब चलते हैं भाई, अमित कुमार जी की फरमाइश है, चांद बैठा हुआ है मेरे सामने, मेरे घर में चांदनी रात हो। यह बहुत ही प्यारा गीत है अमित कुमार जी की फरमाइश पर।

0: जी हाँ, और अब चलते हैं भाई अपने दादाजी की तरफ, अर्थात अनिल बनर्जी जी, जो हमको सुनते हैं गोरखपुर से। बहुत ही प्यारा सा गीत और मेरा भी बहुत मनपसंद गीत है वो, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। क्या गीत है साहब, रफी साहब ने अपनी आत्मा घोल दी है इस गीत में। आप भी सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
1: जितने सितारे हैं वो भी शर्माए,

गीत है भाई, आत्मा घोल के रख दी मोहम्मद रफी साहब ने अपनी। और अब चलते हैं मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश। गायक कलाकार वही है, जी हाँ, मोहम्मद रफी, और गीत है शोले शोले मेरी जवानी।

जी हाँ, और अब बढ़ते हैं भाई हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही जानकार और हम सभी के दुलारे श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी की फरमाइश है। और फरमाइश है, बड़ी दूर से आए हैं और जो साथ में लाए हैं साहब ना, वो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है, सबसे प्यारी चीज़ है। तोहफा लाए हैं, कौन सा तोहफा? प्यार का तोहफा लेकर श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे FM में आए हैं।

अरे सुन भैया सुन, जरा दिल लगा के सुन। हाँ हम यार हैं, यारों के निभा देंगे यारी, यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी, अपना तो दिल है

0: चुनौन हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड में क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2-दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
3: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
5: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NCB ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग NCB और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक NCB मामले में मुख्य आरोपी है जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के NCB मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वी ए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, और आपको बताते चलें कि ये प्यारी सी गीत ये इस प्यारे से नगमे की फरमाइश की है विजय पाल यादव जी ने, और यही गीत चुना है हरिश्चंद सविता जी ने भी दिल में तुझे बिठा के। जी हाँ, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, ये है गुनाही नहीं आपके भी दिलों की धड़कन।

यहाँ बहुत ही प्यारी से प्यासा गीत। अब चलते हैं भाई संतोष कुमार जी जो को हमको सुनते हैं गिलौली से, बहुत ही प्यारा गीत भेजा है, एक दूसरे से खफा होना नहीं।

यहाँ लड़की बहुत अनजानी है और अब उसके बाद आइए चलते हैं भाई। ये फरमाइश है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और ये फरमाइश है नागेश्वर धाकर जी की, तो देखा एक ख्वाब।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: सिलसिले।
1: जी हाँ, जब आप ख्वाब देखेंगे नागेश्वर धाकर जी तो सिलसिले होंगे। और अब चलते हैं भाई, राजू सलमानी जी की फरमाइश है, बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, लेकिन आ गए।

जी हाँ, और अंत में भाई रात को चमकाते हुए चलते हैं श्रीमती सविता शास्त्री जी की फरमाइश है, बिंदिया चमकेगी। जी हाँ बिल्कुल, बिंदिया को चमकाते हुए चलते हैं आपके साथ।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री

जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। अभी जब ये पहला गीत बजा, ओ राही, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, तो मुझे लगा कि क्यों ना, बात तो हम करते ही करते हैं, आज शायर शायरा इन सबको छोड़कर जरा जिंदगी की बात करें, जिंदगानी की बात करें, कुछ आपकी बात हो कुछ मेरी बात हो, और वास्तव में जीवन क्या है इसको परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है, जो परसेप्शन होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। जिनके लिए जीवन सुखमय है वो कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिन्होंने उससे जिंदगी की समस्याओं से दो चार नहीं हुए, उनके लिए जिंदगी एक उलझन है। जब कोविड आया था तो लोग कहते थे कि कोरोना, जिसको हुआ और वो ठीक हो गया उसके लिए बीमारी है, जो लोग गुजर गए उनके लिए लाचारी है, महामारी है, और जो देख रहे हैं और फिर कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनके लिए लाचारी है। तो एक ही चीज़ को देखने के कई तरीके होते हैं। आज जिंदगी और जिंदगी के सफ़र पर बात करते हैं, और उम्मीद है कि आपका साथ इस सफ़र में हमको मिलेगा। जी हाँ, बहुत खैर मकदम भाई, स्वागत अभिनंदन मंदन और नमन अनिल वर्मा जी, सदापुर से सुनते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। और जीवन की अगर हम बात करें तो है जिंदगी कितनी खूबसूरत, तभी उन्हें ये पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। और जब इंसान प्यार की तरफ बढ़ता है, मोहब्बत में नाकाम होता है, तो उसके लिए जिंदगी के मायने कुछ अलग हो जाते हैं। आपके लिए राहें कैसी हैं, मतलब ये कहना बहुत आसान होता है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, लेकिन जरा वास्तव में सोचिए कि क्या हारने के बाद इंसान का मन फिर से उठने का करता है? कहीं ना कहीं वो भीतर से थोड़ा सा टूटता है। और अगर हम परिभाषित करें जीवन को, तो हम ये कहते हैं कि एक सपने के बिखर कर चकनाचूर हो जाने के पश्चात दूसरे सपने के देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। एक ख्वाब आपने देखा और वो ख्वाब टूट गया, तो जिंदगी वहां पर रुकेगी नहीं, कुछ लोगों के लिए वहीं पर रुकती है। लेकिन जो संघर्ष जिन्होंने झेला होता है उनको उसी में मजा आता है। कोई शेर है कि गमों से कह दो कि घिर घिर के आए, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है। तो कोई इंसान गम में भी मुस्कुराता है, दुख में ठहाका लगाता है, और हमको लगता है कि वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जिंदगी, जिंदगी का सफर, इन सब मौजू पर आज बात करेंगे, और आपका साथ भी मिलता रहेगा, कुछ संदेश आपके भी प्राप्त होते रहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ, आप जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल चलिए जिंदगी से एक प्रश्न करते हैं और देखें जिंदगी हमें क्या उत्तर देती है। जी हाँ, सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल चलिए जिंदगी से पूछते हैं जरा एक सवाल।

जी, जिंदगी और जिंदगी का सफर, ये आज हमारे मौजू हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। और अनिल बाबे लिखते हैं कि यही गीत हर लम्हे को खुलकर जियो, क्या पता हो ना हो इस जिंदगी की किताब का अगला पन्ना खुला हो ना हो, हंसकर बीतना सीख लो, बिताना सीख लो सफर का हर एक मोड़, क्या पता ये खूबसूरत समा हो ना हो। क्या बात है, गिरना भी जरूरी है संभलने के लिए, अंधेरा भी जरूरी है उजाले के लिए, मत मायूस हो जिंदगी के थपेड़ों से, ये मुश्किलें हैं तरासती हैं निखरने के लिए। जी हाँ, इरफान शाह लिखते हैं, गुड इवनिंग सर जी, इरफान शाह रेडियो मैन गोंडा उत्तर प्रदेश। जी हाँ इरफान शाह जी, अरे आपको कौन नहीं जानता। और साहब, जिंदगी अगर हम देखें तो एक समय तक इंसान को सुख और दुख लगता है। कहा जाता है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, गम और खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। तो जिंदगी में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे पलट कर देखते हैं तो कुछ को अपने साथ पाते हैं और कुछ का साथ छूट गया। कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ बुरे लोग भी मिले। किसी ने हमसे कहा, भाई आप दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल दे दिए, तो हमने कहा कि दिल

0: छोड़कर कुछ और ही मांगा करो हमसे, दिल छोड़कर कुछ और ही मांगा करो हमसे, हम टूटी हुई चीज़ों का तोहफा नहीं देते। तो साहब, टूटा हुआ है इसका मतलब दिल है अंदर, जिनके अंदर दिल ही नहीं है वो टूटेगा क्या। और कहा जाता है कि शायर होने के लिए, कवि होने के लिए कहीं ना कहीं आपको, आपका दिल अगर टूटा है तो अंदर से जब कोई चीज़ टूटती है तो एक सिद्धांत है विज्ञान का कि वहाँ से एनर्जी निकलती है। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। किसी कोई नहीं है तो खुदा है, लेकिन दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है, मांग कर तुम खुशी लो मुझे मंजूर नहीं, मांग कर तुमसे खुशी लो मुझे मंजूर नहीं, किसी का मांगी हुई दौलत से भला होता है, मांगा आपने और हमने दिया। लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, बहुत अच्छी बात आ रही है, लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। वक्त की बात करें अगर हम तो कहा जाता है कि ये कहावत है अपने यहां कि समय धरावे तीन नाम, परसुआ परसु परशुराम। तो इंसान का वक्त जब नहीं ठीक होता है तो लोग कहते हैं परसुआ, यस या उसका वक्त थोड़ा सा अच्छा आता है तो लोग कहते हैं परसु सुनो, और जब उसका वक्त अच्छा आ जाता है, वो ले आता है अपनी मेहनत से, तब लोग उससे कहते हैं परशुराम जी एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या आपके पास दो मिनट का समय है। तो लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है। कोई इंसान खराब नहीं है, वक्त है। और क्यों अपनी तबाही का एक कैसा शिकवा, जितना तकदीर में लिखा है अदा होता है। जो आपकी तकदीर में है साहब वो भोगना पड़ेगा। इस दुनिया में भगवान भी आए तो लड़ने से नहीं बच पाए, सबको लड़ना ही पड़ा अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध। आपकी जिंदगी की लड़ाई लड़ने कोई और नहीं आएगा, आपको लड़नी पड़ेगी। और अंत में कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है, मतलब अगर आप मायूस हो गए जिंदगी से तो मतलब आपने ऊपर वाले की दी हुई इतनी अच्छी चीज को शापित समझ लिया। जी हाँ, मीनू जी गोंडा से मेरे साथ हैं। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, क्या बात है, वाह। और जी मीनू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी होंगी। और चलिए, ज़रूरी है, मतलब अच्छा वक्त आए इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा बुरा वक्त देख लिया जाए। पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी, पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी, अरे डगमगाना भी ज़रूरी है संभलने के लिए। कोई हमसे कहता है संभल जाइए तो हमने कहा अरे पहले डगमगाने तो दीजिए, डगमगाएंगे तब न संभलेंगे साहब। तो हम आज तुम्हारी महफिल में इस दिल को जलाकर देखेंगे, हम आज तुम्हारी महफिल में इस दिल को जलाकर देखेंगे, दुनिया का तमाशा देख चुके अब अपना तमाशा देखेंगे। जी हाँ, आइए चलते हैं गज़ल की तरफ। और गज़ल इंसान को ज़िंदगी जीना सिखाती है, गज़लों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे, गज़लों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। गजल इसी जुबान में बात करती है कि रोती है लेकिन आंसू नजर नहीं आते। जी हाँ, सुनते रहिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। मनीष शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आइए अब आपको ले चलते हैं ऐसे लोगों की ओर जिन्होंने मोहब्बत की। जो लोग ये कहते हैं कि भाई जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। और देखिए इसका दूसरा दृश्य क्या होता है, आपने मोहब्बत की और आप नाकाम हो गए तो शायर क्या कहता है, आइए सुनते हैं शायर की ही जुबान से।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
2: जाने वो कैसे

0: जी हाँ, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले, क्या बात है। और यही हाल जीवन का है। जी हाँ, हमारे साथ मीनू गोना जी हैं। किताबों से सीखा था कि वक्त बदल जाता है, पर जिंदगी ने सिखाया कि वक्त के साथ अपने भी बदल जाते हैं। क्या बात है भाई अनिल वर्मा जी, आज आपकी पंक्तियां हमको बहुत प्रभावित कर रही हैं। मनीष शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, लिखते हैं कि जिंदगी की इस अदालत में खुद ही जज बनना पड़ता है, लोग तो सिर्फ वकील बनकर अपनी कमियां, आपकी कमियां गिनवाने आते हैं। साहब बिल्कुल सही कहा, क्या बात है, लेकिन आप भी जज बन जाइए। मनीष शर्मा लिखते हैं, कभी रात के आने पर न जाने मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पर न जा दिल की आवाज़ भी सुन। क्या क्या गीत है साहब, वास्तव में ये इसीलिए था कि वक्त कभी कभी भी वक्त नहीं मिलता ख्वाहिशों को पूरा करने का, और आज जब वक्त मिलता है तो ख्वाहिशें ही नहीं रहीं। ये ज़िंदगी का सफ़र भी बड़ा अजीब है दोस्तों, जब चलना सीखा तो मंजिल ही पीछे छूट गई। क्या बात है भाई, आज लग रहा है कि एक अध्यापक बोल रहे हैं, मैं हकीकत हूँ ये एक दोस्त दिखाऊंगे तुझे। क्या बात है भाई मनीष शर्मा जी, वाह मनु जी, काफ़ी दिनों के बाद आपका साथ हुआ है और भड़ास निकल दूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। और जी मनीष शर्मा जी, दीवाना चला जाएगा शम्मा रह जाएगी, क्या बात है, मैं भी टाइपिंग सीख रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल, सीखते रहिए, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और उम्र तो बस एक बहाना है दुनिया को दिखाने का, वरना तजुर्बा तो ज़िंदगी को के कड़वे थपेड़ों से आती है। जी हाँ, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर सके प्यारी सी मुस्कान, आसमान वाले ने चाहा। तो कल इसी कार्यक्रम में आपको फिर मिलेंगे ठीक 9:30 बजे बाहर ए गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश की 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: कभी कभी ना जिंदगी में कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो डर के साथ एक सन्नाटा छोड़ जाती है। इमेजिन करके देखो, अंधेरे कमरे में खामोशी में आप अकेले बैठे हो और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जस्ट आपके पीछे खड़ा आपकी सांसें गिन रहा है।
3: सही कहा, कुछ कहानियां सुनकर लगता है जैसे इंसान नहीं कोई और ही प्रजाति हमारे बीच में घूम रही हो, चेहरे पर मासूमियत पर अंदर से मौत की मशीन।
2: और मजे की बात पता है क्या है, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, नॉर्मल, हंसमुख, फ्रेंडली, बातूनी, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ होता है, कुछ ऐसा जो उन्हें बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग और अकेला कर देता है।
3: सीरियल किलर्स की दुनिया ही कुछ इस तरह से होती है, जहां मौत एक गेम होता है और इंसान सिर्फ एक मोहरा। हर मर्डर उनके लिए एक नई कलाकारी बन जाती है।
2: और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने मर्डर को अपनी आदत बना लिया था। एक ऐसा इंसान जो रात को अकेला बैठकर सोचता था कि अगला शिकार कौन होगा और उसे कैसे हमेशा के लिए अपने पास छुपा के किसी कीमती तोहफे की तरह रखे।
3: मतलब वो लोगों को सिर्फ मारता नहीं था बल्कि उनके शरीर के साथ कुछ ऐसा करता था जो आप सोच भी नहीं सकते।
2: हाँ, और इतना खौफनाक है कि पुलिस ने भी उस केस की रिपोर्ट दोबारा पढ़ने से इनकार कर दिए। सोचो, एक छोटा सा फ्लैट जहाँ फ्रिज में रखे हों ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, वो भी छोटे छोटे टुकड़े में। इतना ही नहीं, आलमारी में हड्डियां और दीवारों पर टंगी थी शिकारों की तस्वीरें।
3: यानी उसके लिए ये सब नॉर्मल था, जैसे किसी के लिए सुबह की कॉफी होती है, जैसे हमारे लिए हमारी यादें होती हैं, वैसे ही उसके लिए डेड बॉडीज के साथ वक्त बिताना था।
2: बिल्कुल, वो शिकारों को अपने पास रखता था, उनकी बॉडी को काटता था, उनको स्टोर करता था, यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें खाता भी था। इसलिए दुनिया उसे कहती है द मिलवॉकी कैनिबल, जेफरी डामर।
3: जेफरी डामर, नाम सुनते ही एक फ्लैशबैक सा आ जाता है, लेकिन सवाल ये है वो क्या बचपन से ऐसा था या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसको बदल कर रख दिया।
2: यही तो सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस बात है, क्योंकि जेफरी का बचपन बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, पढ़े लिखे माता पिता, अच्छा घर, अच्छा स्कूल, पर इंटरनली वो बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गिरता जा रहा था।
3: मतलब वो जन्म से मॉन्स्टर नहीं था, समय ने उसे ऐसा बना दिया।
2: हाँ, और ये समझना ही इस कहानी का सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि यहाँ कोई सीधा जवाब नहीं है, बस टूटी यादें, अकेलापन और खामोशी की ढेर सारी चीखें।
3: तो चलो अब परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं आफ्टर ऑल क्या था जेफरी डामर।
2: जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को हुआ था, अमेरिका के विस्कॉन्सिन में। बचपन में वो एकदम नॉर्मल बच्चा था, शांत, थोड़ा शर्मीला लेकिन होशियार। उसके पिता लाइनल डामर केमिस्ट्री प्रोफेसर थे और माँ मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी।
3: मतलब घर बाहर से तो बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था बचपन में उसके दिमाग पर बहुत खराब असर डालने वाला था।
2: बिल्कुल, जेफरी के घर में अक्सर झगड़े होते थे, माँ और पापा के बीच चीखें, दरवाजों का बंद होना और छोटा जेफरी कोने में बैठा ये सब सुनता रहता था। उसे लगता था कि उसकी दुनिया हर पल टूट रही है।
3: कई बार ना बच्चे जब ऐसे माहौल में रहते हैं तो चुप हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। उनके अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन वो किसी से कहते ही नहीं।
2: सही कहा, जेफरी के साथ भी यही हुआ। वो धीरे धीरे अकेला होता गया, बाहर खेलने के बजाय जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करने में दिलचस्पी लेने लगा। उसके पिता ने सोचा शायद साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन असल में वो फैसिनेशन कुछ और था।
3: मतलब उसे जानवरों के शरीर को देखने में मजा आ रहा था।
2: हाँ, और यही उसकी कहानी का पहला डरावना पार्ट था। वो मरे हुए जानवरों की लाशें सड़क के किनारे से उठाता, उन्हें काट कर देखता कि अंदर क्या है, कभी जार में उनके पार्ट्स रखता, कभी उनके सिर अलग करके सेफ रखने की कोशिश करता।
3: ये तो बचपन से ही बहुत गलत इशारा है, पर क्या इसे किसी ने रोका नहीं?
2: नहीं, उसके पिता को लगा वो बस जिज्ञासु है, साइंस माइंड वाला बच्चा है। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो क्यूरोसिटी एक ऑब्सेशन में बदल रही है। और जब तक लोगों को ये एहसास हुआ, ये रियलाइज हुआ, वो अंदर से किसी और ही दुनिया में चला गया था।
3: कभी कभी ना जो बच्चे बचपन में प्यार से दूर हो जाते हैं, वो ऐसी अजीबो गरीब चीजें में अपना कम्फर्ट ढूंढने लग जाते हैं, और शायद जेफरी के साथ भी वही हो रहा था। उसके अंदर का अकेलापन उसे भरने के लिए वो बाहर न जाने क्या क्या कर रहा था।
2: तुम बिल्कुल सही कह रही हो। स्कूल में वो चुप रहता था, उसके दोस्त भी बहुत कम थे। लोग कहते हैं वो क्लास में मजाक करता, शराब पीकर घूमता और खुद को नजरअंदाज करवाना चाहता, पर असल में वो किसी को अपने बहुत करीब आने ही नहीं देना चाहता था।
3: पता नहीं क्यों, लेकिन ये उसकी हरकतें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहता था कोई उस पर ध्यान दे, उसकी तरफ हमेशा ध्यान रखे और हमेशा उसे देखता रहे, उससे बात करे, उसे जाने।
2: हाँ, और वो अंधेरा अब बस उठने वाला था, क्योंकि जब जेफरी कॉलेज गया, वहाँ उसने अल्कोहल से किसी को पूरी तरह डुबो दिया, और फिर 1978 में उसने पहली बार किसी को मारा।
3: यानी ये वहीं से शुरू हुआ जहाँ उसके अंदर का अकेलापन दरिंदगी में बदल गया।
2: हाँ, और आगे जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब जेफरी डामर सिर्फ इंसान नहीं था, वो अब बन चुका था मौत का कलाकार, जिसे पूरी दुनिया जानती है द मिलवॉकी कैनिबल। 1978 में जेफरी का पहला शिकार हुआ, स्टेफन हिक्स, 18 साल का लड़का। जेफरी ने उसे लिफ्ट दी, दोनों ने शराब पी, ढेर सारी बातें की, और जब स्टेफन जाने लगा, जेफरी को डर लगने लगा कि मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं होगा और मुझे फिर से अकेला तन्हा रहना पड़ेगा। उसने पीछे से स्टेफन के ऊपर वार कर दिया और फिर उसका शरीर काट डाला।
3: मतलब पहली बार में ही उसने मौत और कंट्रोल को मिला दिया, किसी को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश।
2: हाँ, और ये उसका पैटर्न बनने वाला था। उसने सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स को ही नहीं काटा था, उसकी हड्डियों को बैकयार्ड में दफन कर दिया और बाकी हिस्सों को एसिड में घोल दिया था।
3: मतलब पहली बार में ही उसने मौत और कंट्रोल को मिला दिया, किसी को हमेशा अपने पास रखने की कोशिश।
2: पहले मर्डर के बाद जेफरी कई साल चुप रहा, वो सेना में गया, फिर उसने सेना छोड़ी, फिर काम करने लगा, फिर उसने काम भी छोड़ा और अल्कोहल की लत फिर से लगा ली। 1987 में जब वो विस्कॉन्सिन के एम्बेसडर होटल में था, वहीं से उसकी दरिंदगी फिर से लौटी। स्टेवन टाउमी नाम का 25 साल का लड़का जेफरी ने उसे होटल में बुलाया। सुबह जब उठा तो स्टेवन मर चुका था। उसे याद भी नहीं था कि उसने कैसे मारा स्टेवन को। फिर उसका शरीर सूटकेस में डालकर अपने घर लाया और उसे काटकर डिस्पोज कर दिया।
3: मतलब अब वो खुद को भी रोक नहीं पा रहा था, उसके अंदर हो क्या रहा था।
2: 1988 में उसे एक 13 साल के बच्चे को ड्रग करके मॉलेस्ट करने के लिए पकड़ा गया, पर उसे सिर्फ प्रोबेशन की सजा मिली। 1990 में वो मिलवाउकी के ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हुआ, जहाँ शुरू हुई मौतों की लड़ी।
3: और यहीं से उसका ये टाइटल नाम मिला।
2: एडी स्मिथ 1990 में उसे नशा देकर एस्ट्रेंगुलेट किया और उसका सिर फ्रिज में रखा। रिकी बीक्स 1990, रिकी की हत्या के बाद जेफरी ने उसकी खोपड़ी ब्लीच करके साफ की और उसे शेल्फ पर सजाया। अर्नेस्ट मिलर 1990 में, अर्नेस्ट को वो बहुत परफेक्ट मानता था। उसे क्लोरोफॉर्म दिया, गला काटा और उसका दिल व मांस बाद में खाया।
3: यानी कि वो एक नरभक्षी बनता जा रहा था।
2: बिल्कुल,
3: अब वो शिकार को खाना चाहता था ताकि उसे हमेशा के लिए अपने अंदर रख सके।
2: डेविड थॉमस का मर्डर 1990 में किया। डेविड को मारा, लेकिन बाद में जेफरी ने बोला ही वॉज नॉट माई टाइप। यानी
3: टाइप, वो लोगों को मार रहा है और इसमें भी वो टाइप बोल रहा है,
2: क्योंकि
3: जैसे कि हम किसी को डेट पर लेकर जा रहे हैं।
2: जैसे जब हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं ना, तो हम लोग अपना टाइप ढूंढते हैं कि किसी से हमारी वाइब मैच होती है, किसी से हमारी वाइब नहीं मैच होती है।
3: ओ कम ऑन, तो क्या बॉडी से मुझे वाइब मैच करनी पड़ेगी अपनी।
2: ही वॉज अ साइको, तो अब समझ लो उसके दरिंदगी का तुम लेवल समझ लो। नेक्स्ट, डेविड को मारा, लेकिन बाद में जेफरी ने बोला ही वॉज नॉट माई टाइप, यानी उसके लिए मर्डर भी सेलेक्शन था। 1991 में जेफरी डामर ने सबसे ज्यादा मर्डर किया, कुल 8, हर एक में क्रुएलिटी का नया रूप। कर्टिस स्ट्रॉटर 19 साल का लड़का, जेफरी ने उसे तस्वीरें खींचने के बहाने बुलाया, फिर ड्रग देकर उसकी हत्या की और शरीर के हिस्से सहेज के रखे। एरोल 1991 में उसका पहला ऐसा शिकार था जिस पर उसने ड्रिल एक्सपेरिमेंट किया। उसने उसके सिर में छेद करके एसिड डाला ताकि वो जॉम्बी बन जाए और हमेशा उसके साथ रहे, पर एरोल की भी मौत हो गई।
3: और अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि वहाँ की पुलिस को आइडिया लगा या नहीं लगा, शहर से इतने लोग गायब हो रहे थे और किसी को कुछ पता ही नहीं है। क्या उनके फैमिली मेंबर्स नहीं थे?
2: थे, लेकिन ढूंढने में टाइम लगता है। और ये सारे के सारे स्ट्रेंजर्स थे, कोई जेफरी डामर को नहीं जानता था और ना ही जेफरी डामर किसी को जानता था।
3: मतलब वो अब इंसान नहीं, लाशों में कंपनियां ढूंढ रहा था।
2: टोनी एक डीप म्यूट था। जेफरी ने उसे भी वही एसिड ड्रिल देकर मार डाला जो उसने एरोल को दिया था। 14 साल का लड़का जो बच निकल सकता था, वो सड़क पर भागा, लेकिन नशे में बेसुध वो पुलिस के हाथ लगा। पर जेफरी ने कहा वो मेरा बॉयफ्रेंड है। पुलिस उसे वापस जेफरी के घर छोड़ देती है और कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो जाती।
3: सोचो, एक बच्चा बच सकता था पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अगर उस वक्त शायद पुलिस उसे पूछ लेती, या फिर जेफरी से ही पूछ लेती, या फिर उसको नशे की हालत में, 14 साल का बच्चा नशा कर रहा है, उसे इसी बात की पेनल्टी पड़ जाती, तो शायद उस दिन वो बच जाता।
2: तुमने सही कहा। ये चारों लेकिन उसके आखिरी शिकार थे। जेफरी हर बार एक जैसी पैटर्न अपनाता, ड्रग्स, स्ट्रेंगुलेशन, डिसेक्शन, फिर फोटोग्राफ और ट्रॉफीज। उसका अपार्टमेंट एक प्राइवेट म्यूजियम बन चुका था, जहां हर ट्रॉफी एक इंसान की कहानी थी। 22 जुलाई 1991 की रात ट्रेसी एड वॉर्ड्स नाम का आदमी किसी तरह उसके अपार्टमेंट से भागा। वो सीधे पुलिस के पास गया। पुलिस जब जेफरी के घर पहुंची तो फ्रिज में, सिर, अलमारी में, शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स और दीवारों पर पोलराइड तस्वीरें मिली। हर तस्वीर एक लाश का पोज था।
3: ओके, सो अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब हम किसी को इस तरह से स्टोर करेंगे तो क्या हमारे आसपास के लोगों के घरों में वो स्मेल नहीं जाएगी?
2: तो उसने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी, स्टोरेज की व्यवस्था थी, घरों में स्मेल नहीं जाता था, उसने सारे प्रोटेक्शंस करके रखे थे। पड़ोसियों को लगता था कि वो बहुत सीधा साधा और शर्मीला लड़का है।
3: पता नहीं,
2: उसने अपनी असलियत कभी पब्लिक के सामने आने नहीं दी ना। पर्सनालिटी डिसऑर्डर था शायद उसको,
3: एंड वो सबके सामने इंट्रोवर्ट सा शाय सा पर्सन।
2: हाँ,
3: ओह माय गॉड, इंट्रोवर्ट।
2: पूरा मिलवाओ की शहर हिल गया था,
3: एंड यहाँ बैठे मैं हिल चुकी हूँ कि इतने सारे लोगों को मार के वो फ्रिज में रख रहा था। चलो फ्रिज का मुझे समझ में भी आता है, लेकिन अलमारियों से भी स्मेल नहीं बाहर?
2: नहीं, उसने पूरे घर को स्टोरेज के लिए प्रिपेयर करके रखा था, उसका पूरा अपार्टमेंट उसी हिसाब से एडजस्ट करके बना हुआ।
3: या फिर वो शुक्र मना रहे थे कि जेफरी की मुलाकात उनसे नहीं हुई।
2: खैर, लेकिन उनकी नजर में जेफरी डामर नहीं था। जेफरी बन चुका था मिलवाओकी शहर के लोगों के नजर में मॉन्स्टर। लोग सड़कों पर उतरे मॉन्स्टर चिल्लाते हुए। मीडिया ने उसे मिलवाओकी कैनिबल कहा। माँ उसकी पूरी तरह टूट गई, जो कि ऑलरेडी मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा बीमार था, शैतान नहीं। फिर उसके पिता ने बाद में किताब भी लिखी, अ फादर्स स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो अपने बेटे को कभी समझ ही नहीं पाए।
3: पड़ोसी भी हैरान थे, वो रोज उनके बीच से गुजरता था, मुस्कुराता था और अंदर 17 लाशें रखता था। मतलब क्या उसे पता था कि वो गलत कर रहा है?
2: साइकेट्रिस्ट ने कहा कि वो सफर करता था बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, नेक्रोफिलिया और पैराफिलिया से। वो अकेलेपन से इतना डरता था कि लाशों को साथ रखना चाहता था। वो कहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट देम टू लीव मी। लेकिन अदालत ने कहा वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, इसलिए उसे इनसेन नहीं गिल्टी माना गया।
3: वेल, किसी के साथ रहना और किसी को मार के रखना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है तो आप लोगों का साथ मांगते हैं, लाश नहीं। क्या उसे सजा भी मिली?
2: जेफरी को 15 आजीवन कारावास की सजा मिली, 957 साल की जेल,
3: यानी कि कभी भी ना रिहा होने वाली जेल।
2: बिल्कुल, 1994 में जेल के अंदर ही एक साथी कैदी क्रिस्टोफर कार्वर ने उस पर हमला किया और पीट पीट कर जेफरी डामर मींस मिलवाओकी के कैनिबल मॉन्स्टर को क्रिस्टोफर स्कार्वर ने मार डाला। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा।
3: जैसे उसने सबके साथ किया, लोगों को मारा, उन्हें खाया, उन्हें परेशान किया, लास्ट में उसके साथ भी वही हुआ, किसी ने उसे पीट पीट के मार दिया।
2: हाँ, जेफरी डामर की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि उस अकेलेपन की भी है जो इंसान को दानव बना सकता है। वो दूसरों की जिंदगियां अपनी हॉलो दुनिया में भरना चाहता था, पर खुद अपनी ही अंधेरी दुनिया में दफन हो गया।
3: और आज जब भी कोई जेफरी डामर का नाम लेता है तो हवा में एक ठंडक फैल जाती है, क्योंकि वो याद दिलाता है एक ऐसे राक्षस की जो कभी शहरों के बीच में रहा करता था, लोगों के बीच में रहा करता था, जो इंसानों की बस्ती में रहकर इंसानों का ही शिकार किया करता था।
2: जेफरी डामर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये उस खामोशी की भी कहानी है जो घरों में झगड़ों, अकेलेपन और अनदेखी के बीच पलती है। कभी कभी राक्षस पैदा नहीं होते, समाज, हालात और हमारी चुप्पी उन्हें बना देती है मॉन्स्टर।
3: ऐसा नहीं लगता है हर कहानी को खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं एक सीरियल किलर को पैदा करने वाले हम ही होते हैं?
2: हाँ, ये हमारा सो कॉल्ड पब्लिक एंड देयर ओपिनियंस,
3: राइट,
2: दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड।
3: ऐसा लगता है कि घर में प्यार ना मिल पाना, बाहर दोस्त ना मिल पाना, हमेशा अकेले रहना, उदास रहना, अपनी बातें किसी को ना कह पाना, हमें कोई सुनने वाला ना होना, यही वो सारी चीजें हैं जो हमें एक सीरियल किलर की तरफ मोड़ देती हैं, एक साइको बना देती हैं। मुझे लगता है जब भी कोई बच्चा आपको उदास दिखे, उसकी आंखों में उदासी दिखे, या वो सबसे अलग कहीं चुपचाप बैठा हो, तो उसके पास जाओ, हो सकता है उसे आपकी जरूरत हो सकता है आपका हाथ उसकी हाथ में दे देना उसे उस रास्ते से वापस ले आए जहाँ पर वो जा सकता था।
2: सही कहा तुमने, और यही शायद सबसे बड़ा सबक भी होगा कि बुराई हमेशा चिल्ला कर नहीं आती, कई बार वो मुस्कान ओढ़ कर चलती है और हमें उसकी आहट तभी सुनाई देती है जब बहुत देर हो चुकी होती है।
3: और शायद हर किसी को अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, शायद क्यों, ये तो यकीनन करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हमारे लिए सब कुछ होते हैं।
2: और जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जिन बच्चों को घर में प्यार नहीं मिलता वो बाहर प्यार तलाशते हैं, ऑब्वियसली
3: जिनको बाहर भी नहीं मिलता फिर वो ऐसी ही हरकतें करते हैं जैसा जेफरी कर रहा था।
2: और ये स्टेज एक फाइनल स्टेज होती है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है उसमें लोगों को समझना चाहिए कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है। अगर कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो हम लोग को दिखता है ना उन्नति। जैसे कोई हमारे आसपास अपसेट है तो हमें उसके फेस से उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ही इज और शी इज अपसेट। तो हम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है।
3: बिल्कुल सही कहा। पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले ही अगर हम किसी का हाथ थाम लें तो शायद ये रास्ता कभी शुरू ही ना हो।
2: तो ये थी कहानी जेफरी टामर की।
3: इसी के साथ अब हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी लेकर एक और कहानी। तब तक के लिए स्टे ट्यून।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी यानी आपकी अपनी आरजे अनोखी और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। दोस्तों, आज का हमारा सफर है उन पुराने दौर के डुएट गीतों की तरह, वो गीत जिनमें सिर्फ दो आवाजें नहीं बल्कि दो दिलों की धड़कनें गूंजती थी। पुराने समय के डुएट गाने सिर्फ प्रेम कहानी नहीं कहते थे बल्कि शर्म, संकोच, इजहार और इंतजार की खूबसूरत दास्तान बनते थे। तो चलिए यादों के उस सुनहरे दौर में चलते हैं। और जब दौर में शुरुआत के ही दिनों की बात होती है ना, या फिर जाते जाते कुछ कहना

और आशा भोसले जी ने। कहानी में ये गीत उस पल आता है जब जुदाई से पहले कुछ लम्हे और मांग लिए जाते हैं। ये गाना हमें सिखाता है कभी कभी जिंदगी में कुछ पल रोक लेने चाहिए, क्योंकि वही पल आगे चलकर यादों का सहारा बनते हैं। चलिए फिर हम भी सुनते हैं यही गीत आपके अपने आज के सफर के।

आपने सुना अभी ये नगमा, और इस नगमे के बाद मतलब जब हमने सामने वाले से थोड़ा सा वक्त मांग लिया, फिर उसको उसकी खूबसूरती का एहसास कराने का वक्त होता है। जी हाँ, आज हम एंजॉय कर रहे हैं आपके भूले बिसरे गीत में डुएट सॉन्ग्स को, जो सिर्फ एक नहीं दोनों तरफा बात करती है, जो सिर्फ एक नहीं दोनों तरफा बात करते हैं। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम

0: तुम सा नहीं देखा। जी हाँ, अब मैं आपसे इस गीत के पीछे छुपी हुई एक प्यारी सी कहानी बताती हूँ। वैसे तो ये गीत है फिल्म तुम सा नहीं देखा, यानी इसी का टाइटल ट्रैक। इसे स्वर से सजाया था मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने ही। ये गीत बताता है कि भीड़ में लाख चेहरे हों, पर दिल को छू लेने वाला चेहरा सिर्फ एक होता है। भले ही हम भीड़ के इर्द गिर्द क्यों ना हों, पर हम उस भीड़ में भी होके उस एक चेहरे के साथ होते हैं जो हमारे जहन में छप चुका होता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है जनाब, बहुत लोग मिलते हैं पर जो अपना बन जाए वही खास होता है। तो चलिए उन खास चेहरों को याद करते हुए इस गीत का आनंद लेते हैं आपके अपने शो भूले बिसरे गीत में। और मैं हूँ आपकी रात के सफर की साथी, यानी आपकी आरजे अनोखी।
1: सुनो तो,
2: क्यों उस्ताद,
1: गाने वाले का शौक रखते हो?
2: शौक तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के सामने मैं क्या गाऊं? बीबी जी से कहिए।
1: क्यों बीबी जी?
3: शट अप।
1: बीबी जी का मुख खराब है, मेरा ख्याल है तुम ही गाओ।
3: खबरदार जो गाना वाना गाया इसी तरह टांगा चला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
1: अजीब खुश्क इंसान है आप भी। गाना मत गाओ, मोहब्बत की बातें ना करो, आखिरी रास्ता कटेगा कैसे? उठाने वाले गाओ इसी तरह।
3: मजाल है उसकी जो गाए।
1: जिन्हें मैं नहीं गाऊंगा साहब, हरगिज नहीं गाऊंगा।

0: तक चलेगी। याद रखो, अगर शाम से पहले मैं घाट पर न पहुंची तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ।
1: दोस्तों, ये गाना आपने अभी सुना और इसमें खूबसूरती को बड़े ही प्यार से उकेरा गया हर एक शब्द में। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की ओर और ये सॉन्ग है लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मतलब क्या ही बोलूं मैं इस सॉन्ग के लिए, इतनी खास वाली फीलिंग है इसको लेके। एक चुभता सा मीठा सा दर्द कहीं पे, एक गुदगुदाहट सी फील हो रही है इस गाने को सुनते हुए। और जब भी इसको लिखा गया था, कहीं ना कहीं लिरिसिस्ट ने इस चीज को पूरी तरह से फील किया था, उस गुदगुदाहट को फील किया था जो इस गाने में बिल्कुल साफ नजर आती है। फिल्म सीआईडी का ये सुपरहिट सॉन्ग है। स्वर से इसे सजाया था मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने ही। ये गीत पहली मोहब्बत की मासूमियत को दर्शाता है बिल्कुल। और पहला प्यार हमेशा थोड़ा तो शरारती होता है, थोड़ा संकोची होता है और बेहद सच्चा होता है। जहां मासूमियत की बात आती है, ऑटोमेटिक चीजें सच्चाई में बदल जाती हैं। जिंदगी में पहली बार जो एहसास होता है, वो चाहे दोस्ती हो या मोहब्बत, वो कभी भूला नहीं जाता। जिंदगी के एक सफर को हम तय कर रहे हैं आज के डुएट सॉन्ग्स के माध्यम से। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो भूले बिस्तरे गीत और आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी आरजे।

भाई मुलाकात हुई, थोड़ा सा ठहराव लिया गया, फिर खूबसूरती की बातें की गई, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे गए। उसके बाद थोड़ा नोकझोंक और फिर अब वो वक्त आ गया इस सफर में जहाँ प्यार के इकरार की बात होती है। जी हाँ, नेक्स्ट सॉन्ग इसी से रिलेटेड है,

मंजिल। इस उतार चढ़ाव के साथ में कहीं ना कहीं दिल धक धक धक धक करता है और हम इजहार भी करना चाहते हैं, पर इजहार करते हुए दिल थोड़ा सा तो नर्वस होता है। फिल्म श्री 420 का ये अमर गीत है और इसको स्वर से सजाया है लता मंगेशकर जी और मन्नाडी साहब ने। बारिश में छतरी के नीचे फिल्माया गया ये गीत आज भी प्रेम का प्रतीक है और जब भी बारिश होती है ना कहीं वो ब्लैक एंड व्हाइट वाले मूड में ये सॉन्ग हमारे दिमाग में कौंध जरूर जाता है। ये हमें सिखाता है सच्चा प्यार मौसम नहीं दिखता, वो हर हाल में साथ निभाता है, एकदम आपके अपने रेडियो की तरह जो जब आप चाहें ट्यून हो जाता है। फिलहाल आपने ट्यून करके रखा हुआ है आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गैनेस्ट 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपकी रात की रेडियो साथी, आपकी अपनी आरजू अनन्या।

जी हाँ दोस्तों, आज हम सफर तय कर रहे हैं डुएट सॉन्ग्स का और उसके माध्यम से उस एहसास का जो हर किसी के लिए बेहद खास होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर और प्यार के इकरार के बाद में भाई हम हर बार ही सवाल करते हैं, अच्छा बताओ ना, अच्छा आज कितनी बार तुमने मुझे याद किया, अच्छा मेरी याद तो आई थी ना। ऐसे कुछ सवालात होते हैं हर बार, या तो सामने वाले से या तो यूं ही हम अपने आप से ही ख्यालों में कर लिया करते हैं। फिलहाल इसी सवालों को कहीं ना कहीं रंग दे रहा है ये नगमा जिसके बोल हैं, लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। जी हाँ, फिल्म तीन देवियाँ और इसका ये बहुत ही मधुर सा संगीत है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की युगल जोड़ी के रूप में इसको आवाज दिया गया है। ये गीत बताता है कि कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखें ही दिल की कहानी कह देती हैं। जिंदगी में अगर समझ हो तो खामोशी भी एक खूबसूरत संवाद बन जाती है।

जी हाँ दोस्तों, आज हम एंजॉय कर रहे हैं भूले बिसरे गीत में उन नगमों को जो कि युगल गीतों के लिए जाने जाते हैं, यानी युगल जोड़ियों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मोहब्बत, शरारत और सादगी के सदाबहार नगमे उकेरे गए हैं। पुराने गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। हर लफ्ज में एक दौर बसता है दोस्तों, हर धुन में एक कहानी छुपी हुई होती है। तो आज की कहानी और ये सफर हम तय कर रहे हैं बिल्कुल इन्हीं सब चीजों के लिए। अब बात करते हैं अगले नगमे की। ये सारे हालात बीत चुके हैं जो अभी हमने गानों के माध्यम से सुना और जाना। अभी हम आगे बढ़ेंगे उस नगमे की ओर जब हम दोबारा से मुलाकात करना चाहते हैं। भाई अब प्यार हो गया, इकरार हो गया, इजहार हो गया, ढेर सारे सवाल हमारे जहन में चल रहे हैं और उन सवालों का जवाब भी तो चाहिए। फिर जो दूसरी मुलाकात होती है वो कुछ ऐसी होती है।

ये गीत उस दौर की मासूम मोहब्बत की मिसाल है। चांदनी रात, खुला आसमान और दो दिलों की सादगी। कहा जाता है कि गीतकार हसरत जयपुरी ने इस गीत से प्रेम को बहुत पवित्र रूप दिया। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस हम तुम और चांदनी की वो गवाही जो हमेशा से सदियों से पवित्रता की मिसालें देती है। ये गीत सिखाता है सच्चा प्यार शोर नहीं करता, वो चांदनी की तरह खामोशी से दिल पर

अब मैं आपसे जिस गीत के बारे में बात करने वाली हूँ उनके शब्द हैं, अल्लाह करे तू भी आ जाए। ये गीत इंतजार और दुआ की भावना से भरा है। अल्लाह करे तू भी आ जाए, यानी मोहब्बत में दुआ का रंग। उस दौर में गीतों में धर्म से ऊपर उठकर इंसानी भावनाओं को जगह दी जाती थी। गीतकार का ख्याल साफ था, जब दिल सच्चा हो तो दुआ भी असर करती है। बेशक दोस्तों, ये गीत हमें सिखाती है और याद दिलाती है कि इंतजार अगर मोहब्बत से भरा हो तो शिकायत नहीं, बस दुआ निकलती है, सिर्फ और सिर्फ दुआ। तो पैगामे दुआ देते हैं इस गाने के माध्यम से उन सभी प्रेमियों को, उन सभी दोस्तों को जो अपने अपनों से थोड़े से दूर हुए।

0: हृदय से ये सलूक नहीं करते।
1: जी हाँ दोस्तों, आपसे अभी मैंने ढेर सारे नगमे, उसके पीछे छुपी कहानी और कहीं ना कहीं जिंदगी से उसको जोड़ते हुए अभी आपको पूरी एक श्रृंखला सुनाई। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट नगमे की ओर और ये भी हमारे जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। जुड़ाव तो रखता है संगीत, हमारी जिंदगी से बेहद गहराई से जुड़ाव रखता है। कारण ये इमोशन से ही तो बन के हम तक पहुंचता है। तो चलिए फिर से एक और इमोशन को उकेरती है आपकी आरजे अनोखी आपके अपने शो भूले बिसरे गीत में, और ये नगमा उन सभी के लिए खास होने वाला है जो थोड़े से शरारती होती हैं, जो थोड़ी सी चंचल टाइप की होती हैं। और वैसे भी कहते भी हैं दोस्तों कि सारी स्त्रियां चंचल ही होती हैं। फिलहाल इस गीत के बोल हैं, ये लो मैं हारी पिया। जी हाँ, तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि भैया मैं हार गई हूँ आपसे, बट संभल जाइए, इतना भी नहीं हारी हूँ, अभी भी मेरी शरारत कम नहीं हुई और मैं फिर से वही शरारत करूंगी जिसको आपने देख के मुझे पसंद किया। ये गीत शरारत भरी मोहब्बत का प्रतीक है, ये लो मैं हारी पिया, यहाँ हार में भी जीत है। गीतकार ने स्त्री के नखरे, मासूम गुस्से और प्रेम की मिठास को शब्दों में पिरोया। ये गाना बताता है रिश्तों में कभी कभी छोटी छोटी हार प्यार को और गहरा बना देती है। तो अगर आपके भी रिश्ते में अगर थोड़ी सी दूरी आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि सब कुछ ब्लैंक सा जा रहा है, तो थोड़ी सी शरारत दिखाइए और अपने अपनों को और करीब लाइए। और हम भी बढ़ते हैं इस गाने के माध्यम से आप

तो भाई इतना सब कुछ हो गया आज के सफर में जो हम और आप तय कर रहे हैं डुएट गीतों के माध्यम से। और अभी ये अगला गाना, नखरे हो गए, लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए लेकिन अब होंगे। कारण ये है दोस्तों, अब आ गई है बात मांग की, यानी डिमांड की। अब डिमांड में हम क्या मांगते हैं, हाँ ये गाने के माध्यम से आप खुद ही समझ लीजिएगा। फिलहाल इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी। गाने के बोल हैं, 5 रुपया 12 आना, याद है ना ये वाला गाना। चलिए बढ़ते हैं। फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, अभिनेत्री मधुबाला। ये गीत हास्य और प्रेम का अद्भुत मेल है, 5 रुपया 12 आना, मजाकिया अंदाज में प्यार की नोकझोंक। इस गीत के पीछे की कहानी ये है कि फिल्म में ये सीन बेहद हल्के फुल्के मूड में रखा गया था ताकि दर्शकों को हंसी के साथ रोमांस का स्वाद मिले। गीतकार ने ये दिखाया कि मोहब्बत सिर्फ गंभीर नहीं होती, वो शरारती भी हो सकती है, और जब शरारती होती है तो भाई जिंदगी का असली मजा बस इसी में है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानने और बताने की जरूरत नहीं, समझती आपकी आरजे अनोखी। और चलते हैं इस गाने की ओर।

आज का सफर बहुत ही सुहाना रहा, उम्मीद है आपको भी बेहद पसंद आया होगा। और अभी इस युगल सॉन्ग्स के यानी ड्यूएट क्लासिकल सॉन्ग्स के सफर में एक बतौर तोहफा आपको ये सॉन्ग सौंप की जाएगी आपकी अपनी आरजे अनोखी। प्यार में सब कुछ होता है ना, लेकिन जो सबसे ज्यादा सतर्कता बरतनी होती है वो इस गाने के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। बोल हैं

स्वर दिया है इसमें गीता दत्त जी ने और गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, ये गीत सिर्फ छेड़छाड़ नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत में स्त्री की चंचलता के साथ उसकी समझदारी को भी दर्शाया है। वो कहती है, प्यार आसान रास्ता नहीं, जरा संभल कर चलने वाला राह है। ये गीत आज भी इसलिए टाइमलेस है क्योंकि मोहब्बत में जल्दबाजी हमेशा नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पुराने गीतों में मोहब्बत थी, दुआ थी, शरारत थी और समझदारी भी थी। वो दौर अलग था पर भावनाएं आज भी वही सेम है। याद रखिए, जिंदगी भी एक पुराना गीत है जिसे सही सुर में जी लिया जाए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मैं थी आपकी अपनी आरजे अनोखी और आप सुन रहे थे आज का आपका अपना भूले बिसरे का ये एपिसोड जो कि आधारित था डुएट क्लासिकल सॉन्ग्स के ऊपर। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, अगली किसी कहानी के साथ, अगले किसी किस्से के साथ, अगले ढेर सारी प्यार मोहब्बत नोक जोक या फिर किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ आखिरी।

0: स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
2: और जेंट्स के लिए,
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वही श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।